0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: क्या आप केवल विचार करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या विचार करके अपने बिगड़े हुए ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं? क्या केवल विचार करके रुके हुए काम भी बना सकते हैं? आपके विचारों की क्या है शक्ति और क्या है प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: NCR में रिमझिम बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। यूपी, उत्तराखंड सहित देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भव्य झूला उत्सव का आयोजन किया गया। तीनों भाइयों सहित चांदी के हिंडोले में विराजमान हुए रामलला, श्रद्धा और भक्ति में सराबोर नजर आए साधु संत। जन्माष्टमी के मौके पर राजधानी दिल्ली में होगा मटकी फोर लीग का आयोजन। गोविंदा आलारे थीम सॉन्ग लॉन्च, मैस्कॉट मटकू भी तैयार। 20 गोविंदा टीम के बीच होगा रोमांचक मैच। बिहार में धार्मिक पर्यटन पर जाने वालों के लिए सुनहरा मौका, शानदार पैकेज के साथ 1 सितंबर को चलेगी भारत गौरव ट्रेन। राज्य के 11 शहरों से होगी बोटिंग की सुविधा। लुसानी डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, 88.95 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ हासिल किया दूसरा स्थान। श्रीलंका के रुमेश से महज 9 सेंटीमीटर पीछे गिरा नीरज का भाला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
5: भगवान सबको कोई ना कोई कृपा दिए हुए हैं। सबके जीने का अपना अपना तरीका है, सब कुछ निश्चित है, नियति भी निश्चित है, नीति भी निश्चित है। कोई किसी का भाग बदल नहीं सकता, लेकिन मिलने वाली पीड़ा या कष्ट को हटाया तो नहीं जा सकता, घटाया जा सकता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सुपाय विधाता। कोई भी किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, सबके सुख दुख का कारण आदमी खुद है। आपको कोई दुख मिल रहा, इसके कारण आप ही हैं, चाहे आपको अनजाने में मिल रहे हो या जाने में। आपने कोई काम जानबूझकर किया हो या अनजाने में, उसका कारण कुछ भी बन सकता, चाहे वो बाधा बन जाए, विपत्ति बन जाए, दैहिक बन जाए, दैविक बन जाए या भौतिक हो जाए। शरीर से पीड़ा मिल सकती, प्रेतों से पीड़ा मिल सकती, या फिर साधनों से संसाधनों से पीड़ा मिल सकती, पर असली कारण क्या है यह समझना आवश्यक। असली कारण पीड़ा का है आपका कर्म। जो जो आपने बीज बोए हैं वो आप काट रहे हैं। तो लोग हमारे पास आते कि आप क्या कर्म काटते हैं? नहीं। तो क्या आप भाग्य बदल देते हैं? नहीं। तो फिर हम आपके पास क्यों आए? बात सही है आपकी, हम आपके भाग्य नहीं बदलते, हम आपके कर्म नहीं काटते, पर इतना कर सकते हैं आपको ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं कि जो पीड़ा आपको 10 कोड़ों की मिलनी है वो 1 कोड़े में निकल जाएगी। एक किलो रुई और 1 किलो लोहे का बांट या पत्थर, आपने कोई कर्म किया और आपके भाग्य विभाग्य में लिखा गया कि आपको 1 किलो का भार फेंक कर मारा जाए, आपने ऐसा कर्म किया कि 1 किलो का वजन आपके सिर पर फेंका जाए, तो यदि 1 किलो का पत्थर सिर पर गिरेगा तो खपड़िया फूटेगी, टांके लगेंगे। लेकिन जब तक कोई तुम्हें महात्मा मिल जाए वो आशीर्वाद दे दे कि 1 किलो का वजन का चोट तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब पत्थर की बजाय रुई से लगेगा, तो वजन बराबर होगा पर पत्थर की चोट टांके देगी, रुई की चोट में तुम्हारा ध्यान जाएगा कि कुछ गिरा कुछ लगा पर खपार ना फूटेगा। तो आपने जो कर्म किए हैं वो उतना ही आप पाओगे, बस दुख भोगने का आपका तरीका बदल जाएगा। दूसरी बात, पागलों, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया वो दुख पाएगा। जन्म लेने का मतलब यह है कि दुख पाना है, और तुम्हें सुखी आदमी कोई कर नहीं सकता सिवा तुम्हारे। सुखी होना है तो तुम ही हो सकते, तुम्हें दूसरा कोई सुखी नहीं कर सकता। अब सुखी होने का कोई हमसे मंत्र पूछे, इतना सा छोटा मंत्र हमें आता है कि शायद आप उस पर चल पाओ तो सुखी हो जाओ, शायद आप उस मंत्र को पकड़ पाओ तो सुखी हो पाओ, शायद आपको वो मंत्र याद हो जाए तो आप सुखी हो पाओगे, शायद आपके चित्त में वो बात बैठ जाए तो सुखी हो पाओगे। और वो बात बहुत छोटी सी है, इतनी सी बात है कि अपनी जिंदगी के मालिक खुद मत बनो, अपनी जिंदगी के मालिक बालाजी को बना दिया जाए, बस इतनी सी बात। किसी कंपनी का मालिक तब टेंशन में होता है जब मालिकाना हक उसका होता है, नौकरों को चिंता नहीं होती, वेतन से लेना देना, फैक्ट्री कल बंद होती है आज हो जाए दूसरी देख लेंगे, पर टेंशन मालिक की होती, शेयर गिरने लगे तो चिंता मालिक को होती, प्रोडक्शन कम हो जाए तो चिंता मालिक को होती। वैसे ही जब तक तुम अपनी जिंदगी के मालिक रहोगे चिंता तुम्हारी रहेगी, और जिस दिन तुम अपनी जिंदगी के मालिक परमात्मा को बना दोगे तो चिंता परमात्मा की हो जाएगी। पर एक अजीब बात है, हम लोगों के जीवन में सुख अंदर है, शांति अंदर है, और खोजी बाहर जा रही, जैसे कि मृग कस्तूरी को खोजता है वन में, रहती उसकी नाभि में पर वो खोजता वन में, वैसे ही हम लोगों का हाल है। अरब की एक बहुत प्रसिद्ध महिला हुई मुसलमानों के देश में, बड़ी ऊंची महिला हुई, बड़ी फकीर हुई, उसका नाम था राबिया। राबिया नाम की जो महिला हुई अरब में, वो बहुत पहुंची हुई थी, बड़े बड़े लोग उसके पास दर्शन करने जाते थे। तो एक रात शाम के समय एक घटना हुई कि वो अपनी गली में घर के बाहर कुछ खोज रही थी, तो गांव के लोग आए और पूछा कि बड़ी देर से आप गली में कुछ खोज रही हो, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरी जो सुई थी वो सुई खो गई है और मैं सुई को खोज रही हूं। तो गांव वाले भी लग गए, क्योंकि गांव के लोग बड़ा प्रेम करते थे उससे, और बड़ी पहुंची हुई महिला थी, बड़ा नाम था उसका। तो गांव के लोग भी सुई खोजने लगे, पर यही कोई एक घंटे हुए पर सुई ना मिली, दो घंटे हुए सुई ना मिली, और वो चिल्ला रही कि खोजो। और गांव के लोग आ गए, एक एक कोना कोना छान मारा गली का, वहां भी खोजा जहां ना खोजना चाहिए, नाले में खोजा, किनारे पर खोजा, एक एक रेत के कंकर कंकर को उठाया गया, सुई ना मिली। तो गांव वालों ने पूछा, मां आपने सुई फेंकी कहां या गिरी कहां, ऐसा कोई अंदाजा है प्रॉपर ताकि उसी एरिया भर में खोजा जाए ताकि मिल जाए। उसने कहा गिरी तो मकान में अंदर थी। तो गांव वाले सिर पकड़ के बैठ गए कि हमें तो लग रहा है तुम पागल हो गई हो। राबिया बोली क्यों, बोली जब गिरी अंदर है तो खोज बाहर क्यों रहे हो, और तुम क्यों बाहर खोज रही जब अंदर गिरी। तो उसने कहा दरअसल उजाला अंदर नहीं था बाहर था, इसलिए सोचा यहां खोज लो। गांव वाले बोले फिर तो और पागल हो, उजाला अंदर बाहर है तो अंदर की वस्तु बाहर मिलने का क्या मतलब है, उजाला बाहर है तो यहां सुई ना मिलेगी क्योंकि वो अंदर गिरी, वहां उजाला करो सुई खोजो वही मिलेगी। राबिया बोली यही तो तुम्हें कहना चाहते। गांव वाले बोले मतलब, बोले सुख अंदर है और तुम बाहर खोज रहे हो, जहां है ही नहीं वहां तुम कितना भी खोजो तुम्हें मिलेगी थोड़ी, सुई अंदर गिरी है बाहर ना मिलेगी चाहे जितना खोजो। वैसे ही सुख और शांति बाहर है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगी कहां से, है तो वो अंदर, जब अंदर खोजा जाएगा तो मिलेगी। और मेरे पागलो उस शांति और सुख का एक नाम है, वो बड़ा प्यारा नाम है, और चाहो तो तुमसे बड़ा कोई अमीर ना होगा दुनिया में यदि तुम बनना चाहो तो, नहीं बनना चाहते हो तो बहुत बड़ी आदमी, यदि तुम बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हो तो उसका भी हमारे पास बहुत अच्छा मंत्र है। अब वो ये है, जो भी तुम्हारे पास अभी है उसी में संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि तुम पर जो अभी है उसको पाने के लिए भी करोड़ों लोग लाइन में लगे, लाखों लोग लाइन में लगे। तुम पे आंखें हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके आंखें नहीं है, अब हुए तुम अमीर के नहीं। तुम पर परिवार है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके परिवार नहीं। तुम पर खाने के लिए थोड़ी व्यवस्था है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जो भीख मांग के खाते। तुम्हारे पास चलने के लिए पांव है, लाखों लोग ऐसे हैं जिन पर पैर ही नहीं। तुम उन्हें मत देखो जो हवा में उड़ रहे हैं, तुम उन्हें देखो जो नीचे घिसट रहे हैं। तुम पाओगे तुमसे ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं, और पूरी दुनिया में आदमी दुखी ही इसीलिए कि उसके पास जो है उसकी कद्र नहीं कर रहा, और जो है नहीं उसकी इज्जत कर रहा। पड़ोसी की घास ज्यादा हरी नजर आती, खुद की कम। पड़ोसी की गाड़ी ज्यादा चमकती, खुद की कम। दूसरों की लुगाई या दूसरों का पति बड़ा समझदार और बढ़िया लगता है, खुद की और खुद का। ये भावना ही तुमको गरीब बनाए, ये भावना ही तुमको बहुत दुखी किए, ये भावना ही तुम्हारे संकट का सबसे बड़ा कारण है। अब मेरे पागलो आज की बात तुम एक बात घर लेके जाओ, अब वो बड़ी मजेदार बात यही है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। और तुम्हें मांगने का मौका मिले तो वस्तुओं को ना मांगा जाए, और तुम मांगते भी क्या हो भगवान से, दो कौड़ी की बात है। धन हो जाए, कद हो जाए, पद हो जाए, लुगाई मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, बस हो गया। इससे ज्यादा तुम मांगते क्या? मकान मकान मांग लेते हो। थोड़ा भक्त वाले लोग होते हैं, भक्ति भाव वाले, भजन भजन मांग लेते हैं, मति ठीक हो जाए, विचार ठीक हो जाए, इतना ही मांगते हो। बाकी ज्यादा तुम कुछ मांगते नहीं। इन सबकी कीमत 2 कौड़ी की है। मांगने का तुम्हें मौका मिले तो कभी हमारे जैसा मांगना। जब हमारे गुरु हमें पहली बार मिले थे 9 साल की आयु में, सन्यासी बाबा इसी पेड़ के पास, दादाजी हमारे जिंदा थे जिन्होंने हमें साधना दी, सिद्धि दी। रात थी अंधेरी, रात के 12 या 1 बज रहे थे। हमारी मां ने गांव से हमें भेजा यहां कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, कुछ मांग लाओ। हम धन मांगने आए थे। झोपड़ी में बैठते थे वो, मंदिर के बगल में झोपड़ी थी हमारे गुरु की, लंबी जटा, आंखें लाल रहती थी, आंख चढ़ा के बात करते थे, बात बहुत कम करते थे, मुस्कुराते ज्यादा थे। चाय हर घंटे में पीते थे। जैसी आज बारिश हुई ऐसी बारिश थी। रात को बड़ी बारिश बरस रही थी, बादल चमक रहे थे, बिजली गिर रही थी और हम यहां पगडंडी के सहारे, अंधेरा था, कोई लाइट वाइट तो यहां थी नहीं, अंधेरा था, यही मंदिर पर आकर के गए। अपने गुरु को हमने बात बताई कि 3 दिन से खाना नहीं बना, अब तो आप सन्यासी हो गए, पहले तो आप ग्रस्त थे, तो आपके ही नाती हैं हम, तुम्हारे बेटा के बेटा है, हालत खराब है, एक ही कुर्ता है, गांव में भी अब लोग भिक्षा नहीं देते हैं, गांव में भी लोग जाएं तो कई लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, पिताजी हमारे कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारी भी अवस्था बढ़ रही है, मां भी बड़ी परेशान हो रही है, कुछ दया करो, हमारे जीवन में कुछ हो जाए ठीक ठाक, कुछ दो। अंधेरी रातें काटती हैं। एक छोटा सा कमरा था, आप लोगों में से किसी ने जन्मभूमि पर हमारे जाकर के देखा होगा, एक छोटी सी जन्मभूमि जहां 5 लोगों का परिवार एक ही जगह रहता था, 5 लोग एक ही जगह रहते थे, तो छोटा सा कमरा है, आप दया करो कुछ। उस रात हमें क्या पता कि हमारे जीवन में घटना होने वाली है। और ठीक रात 12 बजे हमारे गुरु ने कहा, अकेले हम और वो थे, उस दिन बड़े बिजी थे हमारे गुरु, बड़े व्यस्त थे, गांव के पास हेडपंप था, यहां नहाने की कोई सुविधा नहीं थी, बोले जाओ नहा करके आओ। और हम स्नान करके आए, हाथ में बाल्टी ली, एक फटी हुई तौलिया थी हमारे पास, उसको हमने पहना, ठंड लगने लगी तो जो धूना गुरु ने रमा रखा था उस धुना को हम तापने लगे। रात को 12-1 बजे के बाद जहां सन्यासी बाबा की समाधि है वहां पर हमारे गुरु हमें ले गए और 40 मिनट तक दादाजी कुछ पढ़ते रहे, पता नहीं इतना याद नहीं हमें रात का, पर कुछ पढ़ रहे थे वो। बड़ी जोर से हवा चली और हमसे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें डरना नहीं, हाथ जोड़ लो। हमने हाथ जोड़ लिए, बोले डरना ना, तो ये इधर-उधर हम देखने लगे, बच्चे ही थे, कभी पीछे देखे कभी आगे देखे, अंधेरा था, यहां इतना कुछ बना भी नहीं था, एक झोपड़ी भर थी, डरने लगे। तो देखा कि जो पेड़ लगा है अभी समाधि के पास पलास का, छेवला का, वो पेड़ बड़ा हिल रहा है। हमें लगा बारिश का मौसम है, हवा चल रही है, इसलिए हिल रहा होगा। पर उससे बड़ी जोर जोर की एक आवाज आई और एक कोई 16-17 फिट का लंबी जटाओं वाला, एकदम चमकती हुई त्वचा और हाथ में एक बड़ा सा चमीटा लिए हुए और पैर में बड़ी ऊंची खड़ाऊ पहने उतर रहा है। अब बड़े नीले रंग की एक लाइट गिरी तो हम डर गए, हमने अपने गुरु को पकड़ा, रोने लगे, बच्चे थे तो रोना स्वाभाविक था, और इतनी लंबी हाइट का कोई देख ले, हम तो तुम रोने लगोगे, रोने लगे तो हमने जोर से पकड़ा। हमारे गुरु ने थपकी मारी, डरो मत, बात करो, और गए हम। थोड़ी देर में सांस आई, ठीक लगा तो पूछा डरते डरते कि कौन हो तुम, उसी रात जो पहली आवाज निकली थी हमारे गुरु की, वो बड़ी अजीब आवाज थी, आज भी हमारे कानों में वो गूंजती रहती है। अब वो सीधी सी आवाज थी, बड़ी करुणा से भरी हुई, मानो कोई रोता हुआ गला भरा हुआ बोल रहा हो। और सीधी सी आवाज कि मैं तुम्हारा बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर मिली, थोड़ा लगा कि हम पहचान गए, तो हमने कहा कि हम नहीं पहचाने। तब हमारे दादा ने बताया पीछे से कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के, ये तुम्हारा इंतजार थे। और तुम्हारे जन्म होने के पहले हमारे सन्यासी बाबा ने हमारे दादा को कहा था कि रामकृपाल गर्ग के जो बड़ा बेटा होगा वो जन्म के ठीक बाद हमें दे देना। तो हमने कहा कि हमें तो पता नहीं, ये बात सही है कि हम रामकृपाल के बेटा, पर हमें कुछ याद नहीं आ रहा। थोड़ी देर बातें हुई, जब याद आई लगभग 40 से 42 मिनट तक उस दिन बात हुई। बड़े दिनों बाद मिले थे हम अपने गुरु से, पिछले जन्म के बाद ही मिले थे। और बातें होती रही और 40-42 मिनट बाद उनके जाने का समय आया, तो वो जाने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, वो हमारी आंखों में आंसू थे, डर तो मानो भाग गया था कोसों दूर। और जब जाने का समय आया तब हमने उनको कहा कि आप हमारे गुरु और हम आपके चेला, पिछले जन्म के भी गुरु, इस जन्म में भी आपने अब दीक्षा दे दी है तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, बिना दिए जाए कैसे आप, और हम पे कुछ है ही नहीं। इस जन्म में जो जन्म हुआ वो हालत ही खराब है, पिता कुछ करते नहीं, मां की फटी साड़ी है, अंधेरा कमरा है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। अब हम आपको दें तो दें क्या, पर आपने दीक्षा दी तो गुरु को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम पे कपड़े भी नहीं है कि हम कपड़े भी उतार के आपको दे दें, वो भी फटे हैं, वो भी देने योग्य नहीं। शायद इस जिंदगी हम तुम्हें खड़ाऊ भी ना पहना पाए, ये हमारी औकात नहीं है। जाते जाते हमने अपने गुरु के चरण को पकड़ा और कहा आज से हम ही तुमको अपने आप को देना चाहते, और हमारे पास कुछ नहीं। इतना कहा कि हमारे गुरु का जो जवाब था वो जवाब आज भी काम कर रहा, जा काया तेरी माया मेरी, जा करता हुआ तू दिखाई पड़ेगा पर करूंगा मैं, जा आज से तेरे तन पर मेरा हक है, तेरे शरीर पर मेरा हक है, फिर क्या। उसके बाद फिर लौट के पीछे ना देखा। मेरे पागलो, तुम्हें भी मांगने का मौका मिले कभी बालाजी से तो संपत्ति मत मांगना, बालाजी को ही मांग लेना। हमने तो सिर्फ गुरु को मांगा, उसका परिणाम ये है। अभी अंदर हम बता ही रहे थे कि लीला देखो तुम, बालाजी की करामात देखो, जहां जिस गांव में भीख मांग के खाते थे उसी गांव में आज भंडारा चल रहा है। जलवा देखो बालाजी का, जिस गांव में सरपंच नहीं बैठाते थे उस गांव में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दर्शन करने आ रहे हैं। जलवा देखो जरा बजरंगबली का, अपनी बहन के विवाह में 20,000 रुपया उधार न मिले, आज देखो तो 365 दिन में 365 बेटियों का विवाह हो रहा है। जलवा तो देखो हनुमान जी का,

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: क्या आप केवल विचार करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या विचार करके अपने बिगड़े हुए ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं? क्या केवल विचार करके रुके हुए काम भी बना सकते हैं? आपके विचारों की क्या है शक्ति और क्या है प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: अब आपको लखनऊ से आई एक खास तस्वीर का दीदार करवाते हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी लेने के लिए जापानी बच्चों में खासा क्रेज नजर आया। मुख्यमंत्री आवास पर बच्चे सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगे हुए दिखे। हर बच्चा सीएम योगी के साथ तस्वीर लेना चाहता था। जापानी बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिख रही थी। सबसे पहले तो सभी बच्चों ने एक साथ सेल्फी स्टिक से सीएम योगी के साथ तस्वीर लेने की कोशिश की। सीएम योगी ने भी विदेशी मेहमानों को निराश नहीं किया, बल्कि खुद उनसे सेल्फी स्टिक लेकर फोटो लेने लगे। फिर एक एक करके बच्चे आते गए और बच्चों के साथ सेल्फी लेते गए। सीएम योगी के साथ बड़ी ही सहजता के साथ सेल्फी लेते हुए छात्र नजर आए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। यूपी उत्तराखंड सहित देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भव्य झूला उत्सव का आयोजन किया गया। तीनों भाइयों सहित चांदी के हिंडोले में विराजमान हुए रामलला, श्रद्धा और भक्ति में सराबोर नजर आए साधु संत। जन्माष्टमी के मौके पर राजधानी दिल्ली में होगा मटकी फोर लीग का आयोजन, गोविंदा आलारे थीम सॉन्ग लॉन्च, मास्कॉट मटकू भी तैयार, 26 गोविंदा टीम के बीच होगा रोमांचक मैच। बिहार में धार्मिक पर्यटन पर जाने वालों के लिए सुनहरा मौका, शानदार पैकेज के साथ 1 सितंबर को चलेगी भारत गौरव ट्रेन, राज्य के 11 शहरों से होगी बोटिंग की सुविधा। निसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, 88.95 meters जैवलिन थ्रो के साथ हासिल किया दूसरा स्थान, श्रीलंका के रोमेश से महज 9 सेंटीमीटर पीछे गिरा नीरज का भाला।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भव्य झूलनोत्सव का आयोजन किया गया, सावन के महीने में तीनों भाइयों के साथ रामलला को झुलाया गया झूला। झूलनोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा मौजूद रहे, श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आए लोग। रामलला को झूला झुलाने के लिए लगी होड़, धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भजन कीर्तन करते हुए दिखे साधु संत। भगवान राम के उत्सव विग्रह को फूलों से सजे चांदी हिंडोले में कराया गया विराजमान, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। रामनगरी में झूला उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भी दिखा उत्साह, तीनों भाइयों के साथ रामलला के दर्शन का मिला सौभाग्य। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली में होगा मटकी फोड़ यानी एमपीएल सीजन 2 का आयोजन, लड़के और लड़कियों की कुल 26 गोविंदा टीमों के बीच होगा रोमांचक मैच। मटकी फोड़ लीग का आधिकारिक एंथम सॉन्ग गोविंदा आला रे लॉन्च किया गया, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रोमी ने एंथम को आवाज दी। मटकी फोड़ लीग के दौरान बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए आधिकारिक मैस्कॉट मटकू किया गया तैयार, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर मटकू एमपीएल का संदेश देगा। सूरजमल बिहार की यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा आयोजन, मटकी फोड़ लीग के खिलाड़ियों में ताकत संतुलन और रणनीति और टीम वर्क की होगी परीक्षा। आधुनिक खेल प्रतियोगिता की तरह मटकी फोड़ लीग को किया गया डिजाइन, आयोजकों के मुताबिक आईपीएल की तर्ज पर बेची जाएंगी एमपीएल की टीमें। दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, तो यूपी उत्तराखंड सहित देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब में मौसम रहेगा कूल कूल, मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती हैं हवाएं। यूपी में राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट, झांसी, जालौन, हमीरपुर और महोबा में मानसून दिखाएगा अपने रंग। दिल्ली में H1N1 और फ्लू को लेकर बढ़ी सतर्कता, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जेपी नड्डा के साथ बैठक की। दरभंगा के लहेरिया सराय ऑडिटोरियम में बिहार ग्रामीण बैंक की ओर से मुख्य आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और मजबूत बिहार का लक्ष्य, ग्रामीणों तक बैंकिंग सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दी गई जानकारी। कृषि लोन, जीविका सहायता समूह लोन और एमएसएमई के जरिए स्वरोजगार की दी गई जानकारी, खराब क्रेडिट वाले लोगों के लिए भी लोन से जुड़ी प्रक्रिया समझाई। इंदौर में होटल सयाजी में फूड सेफ्टी में पाई गई कई गड़बड़ियां, जिला प्रशासन ने होटल के किचन को सील किया। टीसीएस 2026 बैच के इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा, युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में कई संभावनाओं का लाभ उठाने का संदेश दिया। बिहार से 1 सितंबर को चलेगी भारत गौरव ट्रेन, धार्मिक पर्यटन पर जाने वालों के लिए सुनहरा मौका। एक यात्रा में 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के अलावा एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं को कराया जाएगा भ्रमण। भारत गौरव ट्रेन में स्लीपर का किराया 18,160 रुपए, थर्ड एसी का 32,550 रुपए और सेकंड एसी का 39,425 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया। पैकेज में रेल यात्रा के अलावा ठहरने, स्थानीय परिवहन और बीमा जैसी सुविधाएं शामिल, यात्रा के लिए बिहार के 11 शहरों में बोटिंग की सुविधा। सन को गोल्ड एंड डायमंड्स का नया TI-22 कलेक्शन लॉन्च किया गया, अभिनेता हर्षवर्धन राणे को बनाया गया कैंपेन का चेहरा। उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में चांदी की नई जलधारी, हैदराबाद के भक्तों ने दिया खास दान। 20 किलोग्राम चांदी से बनी है जलधारी, चांदी की जलधारी की कीमत करीब 50 लाख रुपए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बदली गई जलधारी, नई जलधारी से और भव्य हुआ मंगलनाथ दरबार। शिवलिंग पर विराजित हुई नई जलधारी, 20 साल पुरानी जलधारी को हटाया गया। पुरानी जलधारी से बनाया जाएगा नाग कलश, नई प्रतिमाओं की भी हुई प्राण प्रतिष्ठा। अलीगढ़ के मलखान सिंह चिकित्सालय में खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा, खाने की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर कैंटीन को सील किया। मरीजों की परोसी जाने वाली दाल और सब्जी के नमूने आए अनसेफ, अस्पताल में खराब मौसम, खराब खाना दिए जाने की मिल रही थी शिकायतें। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। होटल में जांच के दौरान मिली खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां। होटल के किचन में इस्तेमाल किए लिए रखा पनीर मिला खराब। टॉयलेट के एंट्री गेट पर काटी जा रही थी सब्जियां। एफडीए की टीम ने होटल का एफएसएसएआई लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। नियमों के उल्लंघन को लेकर होटल पर पहले भी लगाया जा चुका है जुर्माना। हरिद्वार में 4 दिवसीय हिमालयन एमएसएमई एक्सपो शुरू किया गया। 100 से ज्यादा स्टॉल्स बने आकर्षण का केंद्र। स्थानीय उत्पादों को मिला बड़ा मंच। 6 राज्यों की कंपनियां और विभाग शामिल। सिक्किम के ऑर्गेनिक उत्पादों की भी प्रदर्शनी। तेलंगाना और दिल्ली के उत्पाद भी शामिल। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर उत्पादों की धूम देखने को मिली। हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों ने खींचा सभी का ध्यान। फूड प्रोसेसिंग और एरोमा प्रोडक्ट्स मौजूद। हस्तशिल्प कृषि उत्पादों की भी प्रदर्शनी। ड्रोन और रोबोटिक्स तकनीक ने चौंकाया। छात्रों ने आधुनिक तकनीक में दिखाई रुचि। युवाओं को मिल रही तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी। जालना में जल संरक्षण को लेकर महा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। डीएम ने दिखाई हरी झंडी। पानी बचाओ जमीन में उतारो का संदेश दिया गया। जिलाधिकारी कार्यालय से महा वॉकथॉन का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण के नारों से गूंजा जालना। जल है तो कल है का संदेश दिया। सैकड़ों नागरिकों ने वॉकथॉन में हिस्सा लिया। पानी की बर्बादी रोकने की शपथ ली। जल स्रोतों को बचाने का संकल्प लिया। महा वॉकथॉन में स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं और सरकारी कर्मचारियों की भी भागीदारी देखने को मिली। जल संरक्षण अभियान को मिला जोरदार समर्थन। पुलिस मैदान में हुआ महा वॉकथॉन का शानदार समापन। दिल्ली के हैंडलूम हाट में वीव द फ्यूचर 5.0 एक्सपो शुरू हुआ। देश भर से 30 से ज्यादा ब्रांड शामिल हुए। 24 राष्ट्रीय स्तर के बुनकर भी पहुंचे। हैंडलूम में परंपरा के साथ आधुनिकता का मेल देखने को मिला। सस्टेनेबल फैशन की दिखी नई तस्वीर। भांग केला बांस से बन रहे हैं कपड़े। बिच्छू घास और अनानास से भी फाइबर तैयार किया गया। कमल के तने से तैयार हो रहा है लोटस सिल्क। पौधों से बन रहा है वीगन सिल्क। मदार के फूल से भी फाइबर तैयार किया जा रहा है। ऊन से बने शोपीस और खिलौनों ने खींचा सभी का ध्यान। सोलापुर की दुर्लभ कला ने किया सभी को हैरान। 2.5 साल में तैयार हुई खास पश्मीना साड़ी। गया जी में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। मां मंगला गौरी मंदिर में भक्तों का तांता लगा। दर्शन पूजन के लिए लंबी कतारों में श्रद्धालु खड़े हुए। मां के दरबार में भक्ति भाव से हो रही है पूजा अर्चना। मनोकामना लेकर मां दरबार पहुंच रहे हैं भक्त। सावन के मंगलवार को पूजा का विशेष महत्व है। 51 शक्तिपीठों में शामिल है मां मंगला गौरी मंदिर। भस्म कूट पर्वत पर विराजमान है माता। गर्भगृह में सदियों से चल रही अखंड ज्योति। अखंड ज्योति की रोशनी में होते हैं माता के दर्शन। काशी की तर्ज पर आध्यात्मिक पर्यटन की ओर गोवा। गोवा के पर्यटन मंत्री ने काशी में साझा किया विजन। पर्यटकों को गोवा आने का न्योता दिया। समुद्र और नाइट लाइफ से आगे बढ़ रहा है गोवा। अपनी आध्यात्मिक जड़ों को संवार रहा है। मंडवी नदी किनारे घाट आरती बनी आकर्षण। गोवा ने चुना रीजनरेटिव टूरिज्म का मॉडल। स्थानीय समुदायों को पर्यटन से जोड़ने की तैयारी। भोजन और संस्कृति को पर्यटन से जोड़ने पर जोर। रेगिस्तान में गरजा भारत का अपाचे हेलीकॉप्टर। जैसलमेर सीमा पर दिखी सैन्य ताकत। हाईवे पर उतरे सेना के हेलीकॉप्टर्स। 3 अपाचे और 3 रुद्र ने किया ऑपरेशनल अभ्यास। हाईवे को बनाया गया अस्थायी लैंडिंग जोन। सड़क पर लैंडिंग टेक ऑफ की क्षमता परखी। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने रचा इतिहास। चाइना की जोड़ी को हराकर पदक किया पक्का। पहला सेट हारने के बाद त्रिशा और गायत्री की शानदार वापसी हुई। मैच जीतकर सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह। बीडब्ल्यूएफ में आज महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सेमीफाइनल मैच हुआ। चाइना की वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी ली शेंग शू और टन निंग ने से दोपहर 12:35 पर भिड़ंत होगी। लुसानी डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया दूसरा स्थान, 88.05 मीटर भाला फेंक कर जीता सिल्वर मेडल। श्रीलंका के स्टार रोमेश पतिरागे के विजेता थ्रो 88.14 मीटर से सिर्फ 9 सेंटीमीटर कम रहा नीरज का थ्रो। सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके भी दूसरे स्थान पर रहे नीरज। चाइना के हैनान में शुरू हुआ वाटर स्प्लैश फेस्टिवल, मस्ती में डूबे सैलानी, विदेशी पर्यटकों ने पानी में जमकर उड़ाया लुत्फ। पानी के छोटे से छींटों से बनाया गया आशीर्वाद दिया गया, ली समुदाय की परंपरा ने लिया बड़े उत्सव का रूप, 8 देशों के पर्यटक बने फेस्टिवल का हिस्सा। विदेशी मेहमानों ने स्थानीय लोगों के साथ मस्ती की, वाटर शो ने बढ़ाई फेस्टिवल की रौनक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं।

0: परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आपके विचारों की शक्ति के बारे में और जानेंगे कि विचारों के प्रयोग से आपका भाग्य कैसे चमकेगा। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि केवल आप अपने विचारों से अपने पूरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आजकल की आधुनिक बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। विचार कितने प्रभावशाली होते हैं, देखिए, ईश्वर ने दो बड़े जबरदस्त वरदान दिए हैं आपको, एक आपका मन और दूसरा आपकी सोच या विचार। तो सोच या विचार जो है वो ईश्वर का वरदान है। अगर आप अपने विचारों का सही प्रयोग करें तो आप अद्भुत शक्तियां अपने जीवन में पा सकते हैं। और अगर आपको प्रभावशाली तरीके से अपने विचार को बदलना आता है, आप अपने विचारों को कंट्रोल करना जानते हैं, तो विचार से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और एकमात्र विचार अगर प्रबल हो, अगर शक्तिशाली हो, तो जीवन की तमाम समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके विचार केवल आपके ऊपर असर डालते हैं, आपके विचार स्वयं पर, अपने ऊपर और दूसरों पर धीरे धीरे बहुत गहरा असर डालते हैं। आप अपने विचारों की शक्ति को अगर जान लें और विचारों को प्रयोग कैसे करना है ये जान लें, तो आप दूसरे व्यक्ति के मन को भी बदल सकते हैं। विचारों का विशेष प्रयोग जब शास्त्र में गया, जब साधना में गया, तो उसे कहा गया मंत्र। मंत्र क्या है? एक विशेष तरह का विचार है जो प्रकृति में और आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो आपके विचार केवल आपका जीवन नहीं बदलते, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप दूसरे की सोच को भी

0: अपने विचारों द्वारा बदल सकते हैं। देखिए, विचार जो है ना, ये आपके मन का रिफ्लेक्शन है। कोई भी बात, कोई भी विचार पहले मन में आता है, फिर आपके एक्शन में आता है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आपके जो विचार हैं, देखिए, केवल आपका सोचना, केवल आपके विचार आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कैसे? लगातार किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या घटना के बारे में आप निरंतर विचार करें तो वो सत्य होने की तरफ बढ़ने लगता है, वो मूर्त रूप लेने लगता है। अगर विचार नकारात्मक हैं, आप रोज सोचते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, आपके मन में हमेशा ये चक्कर रहता है, तो याद रखिए, एक न एक दिन आप एक्सीडेंट के शिकार होंगे अपने इसी विचार की वजह से। अगर विचार नकारात्मक हैं तो अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप जिस तरह के नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, प्रकृति में फैलाते हैं, प्रकृति में आपके लिए अशुभ परिवर्तन होने लगता है। अगर आपके विचार शुभ हैं तो प्रकृति आपके जीवन में शुभ परिवर्तन करती है और चीजें आपके पक्ष में घटनी शुरू हो जाती हैं। आपके विचार का आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से बड़ा गहरा संबंध है। जॉन मर्फी की एक बड़ी फेमस किताब है, पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। वो दरअसल आपके विचारों को एक दिशा देने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अपने विचारों को अगर आप पॉजिटिव बनाते चलें, अगर अपने विचारों को शुभ बनाते चलें, तो निश्चित रूप से जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। तो आपके विचार प्रभु आपको ईश्वर तक जब पहुंचा सकते हैं, तो जीवन में लाभ और हानि भी करवा सकते हैं। देखिए, अक्सर हम अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए रत्न पहनते हैं, दान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपने विचारों से खराब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रह आपका खराब है उसकी समस्या को समझिए। मान लिया जो ग्रह आपका खराब है वो स्वास्थ्य की समस्या बता रहा है, तो आप अब लगातार विचार करना शुरू करिए कि ये ग्रह आपके लिए अनुकूल हो रहा है और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। आप कभी मत सोचिए कि आपकी खराब ग्रह की दशा चल रही है तो आपको नुकसान होगा। आप ये मान करके चलिए, ये सोचिए कि ये ग्रह मेरे लिए अनुकूल रहेगा और इस ग्रह के पीरियड में मुझे लाभ होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे आप ये विचार लगातार करेंगे तो उस ग्रह की अशुभता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको अपने आचरण को भी ठीक रखना होगा। अगर ग्रह की वजह से स्वास्थ्य की समस्या होने वाली है तो आप ये सोचिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साथ में डॉक्टर का परामर्श मानिए, खान पान में, जीवनचर्या में सुधार करिए और निरंतर विचार करिए कि आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये विचार आपके ग्रह की अशुभता को बहुत हद तक कम कर देगा। देखिए, आप अपने विचारों से अपनी बहुत सारी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। कैसे? आप जब काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का, घर का, कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छे विचार रख करके करिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उस काम में मैं सफल होऊंगा। खाना बनाते समय खासतौर से हमारी बहनें, माताएं अच्छी सोच रखें, क्रोध में, तनाव में, टेंशन में भोजन ना बनाएं, मन में आनंदित रहें। देखिए, जीवन है तो कष्ट तो आएगा ही, जीवन है तो मन प्रसन्न भी होगा और अप्रसन्न भी होगा, लेकिन आप अपने मन को समझा करके मन को ठीक रखने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति से संबंध खराब है उसके बारे में अच्छा सोचिए। हालांकि इतना आसान नहीं है, जिससे आपके संबंध बिगड़े हों उसके बारे में अच्छी सोच आती नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करके उसके बारे में अच्छा सोचें और मन में ये सोचें कि मेरा संबंध उसके साथ बेहतर हो जाएगा, तो आपके संबंध उस व्यक्ति से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जो काम नहीं हो पा रहा है या काम होने में लगातार अड़चन आ रही है, आप लगातार अपना प्रयास करते रहें और लगातार अपने मन में विचार करते रहें कि मेरा काम बनने वाला है, मेरा काम होने वाला है। जब भी आप घर से निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, आप मन में ये सोच कर निकलिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा और आज मुझे हर काम में सफलता मिलेगी। रात को सोते समय प्रार्थना करने की आदत डालिए, दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, भगवान से प्रार्थना करिए और अच्छे विचार करते हुए सोइएगा। रात का अंतिम विचार अगले दिन के सुबह का पहला विचार होता है, तो रात में अगर आप अच्छे विचार करके सोएंगे, भगवान से प्रार्थना करके सोएंगे, तो अगले दिन की सुबह से ही आपके मन में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो रात को सोने के पहले उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पलंग पर बैठिए, भगवान का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। अगर आपको बार बार बीमारी का वहम होता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे वो बीमारी हो जाएगी, अगर बेवजह बीमारी के वहम से परेशान हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे नहाइए जरूर, स्नान जरूर करें, एक चांदी का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में पहने और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय नमः शिवाय का जप करते रहें, आपके वहम की समस्या दूर होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: दिल्ली NCR में रिमझिम बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। यूपी, उत्तराखंड सहित देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भव्य झूला उत्सव का आयोजन किया गया। तीनों भाइयों सहित चांदी के हिंडोले में विराजमान हुए रामलला, श्रद्धा और भक्ति में सराबोर नजर आए साधु संत। जन्माष्टमी के मौके पर राजधानी दिल्ली में होगा मटकी फोड़ लीग का आयोजन। गोविंदा आलारे थीम सॉन्ग लॉन्च, मैस्कॉट मटकू भी तैयार। 20 गोविंदा टीम के बीच होगा रोमांचक मैच। बिहार में धार्मिक पर्यटन पर जाने वालों के लिए सुनहरा मौका, शानदार पैकेज के साथ 1 सितंबर को चलेगी भारत गौरव ट्रेन। राज्य के 11 शहरों से होगी बोटिंग की सुविधा। लुसानी डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, 88.95 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ हासिल किया दूसरा स्थान। श्रीलंका के रमेश से महज 9 सेंटीमीटर पीछे गिरा नीरज का भाला।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
0: जी नमस्कार।
3: तो आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं आपके विचारों के बारे में। अपने विचारों में बदलाव करके आप जीवन में समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आज पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो रात को सोने के पहले उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पलंग पर बैठिए, भगवान का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी पूरी होगी।
3: और चलिए सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि 22 अगस्त 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर 2:49 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 2:49 तक राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर या भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि पंडित जी विचार हमारे जीवन में कितने प्रभावशाली होते हैं, हमारे जीवन की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं।
0: जी देखिए आज हम आपको बता रहे हैं कि केवल आप अपने विचारों से अपने पूरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आजकल की आधुनिक बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। विचार कितने प्रभावशाली होते हैं। देखिए ईश्वर ने दो बड़े जबरदस्त वरदान दिए हैं आपको, एक आपका मन और दूसरा आपकी सोच या विचार। तो सोच या विचार जो है वो ईश्वर का वरदान है। अगर आप अपने विचारों का सही प्रयोग करें तो आप अद्भुत शक्तियां अपने जीवन में पा सकते हैं। और अगर आपको प्रभावशाली तरीके से अपने विचार को बदलना आता है, आप अपने विचारों को कंट्रोल करना जानते हैं, तो विचार से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और एकमात्र विचार अगर प्रबल हो, अगर शक्तिशाली हो, तो जीवन की तमाम समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके विचार केवल आपके ऊपर असर डालते हैं, आपके विचार स्वयं पर, अपने ऊपर और दूसरों पर धीरे धीरे बहुत गहरा असर डालते हैं। आप अपने विचारों की शक्ति को अगर जान लें और विचारों को प्रयोग कैसे करना है ये जान लें, तो आप दूसरे व्यक्ति के मन को भी बदल सकते हैं। विचारों का विशेष प्रयोग जब शास्त्र में गया, जब साधना में गया, तो उसे कहा गया मंत्र। मंत्र क्या है? एक विशेष तरह का विचार है जो प्रकृति में और आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो आपके विचार केवल आपका जीवन नहीं बदलते, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप दूसरे की सोच को भी अपने विचारों द्वारा बदल सकते हैं।
3: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़े, उससे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें, काले चने का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उससे लाभ या हानि कैसे होती है।
0: देखिए, विचार जो है ना, ये आपके मन का रिफ्लेक्शन है। कोई भी बात, कोई भी विचार पहले मन में आता है, फिर आपके एक्शन में आता है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आपके जो विचार हैं, देखिए, केवल आपका सोचना, केवल आपके विचार आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कैसे? लगातार किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या घटना के बारे में आप निरंतर विचार करें तो वो सत्य होने की तरफ बढ़ने लगता है, वो मूर्त रूप लेने लगता है। अगर विचार नकारात्मक हैं, आप रोज सोचते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, आपके मन में हमेशा ये चक्कर रहता है, तो याद रखिए, एक न एक दिन आप एक्सीडेंट के शिकार होंगे अपने इसी विचार की वजह से। अगर विचार नकारात्मक हैं तो अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप जिस तरह के नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, प्रकृति में फैलाते हैं, प्रकृति में आपके लिए अशुभ परिवर्तन होने लगता है। अगर आपके विचार शुभ हैं तो प्रकृति आपके जीवन में शुभ परिवर्तन करती है और चीजें आपके पक्ष में घटनी शुरू हो जाती हैं। आपके विचार का आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से बड़ा गहरा संबंध है। जॉन मर्फी की एक बड़ी फेमस किताब है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो दरअसल आपके विचारों को एक दिशा देने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अपने विचारों को अगर आप पॉजिटिव बनाते चलें, अगर अपने विचारों को शुभ बनाते चलें, तो निश्चित रूप से जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। तो आपके विचार प्रभु आपको ईश्वर तक जब पहुंचा सकते हैं, तो जीवन में लाभ और हानि भी करवा सकते हैं।
3: आगे बढ़ने से पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं।
0: कर्क राशि, तनाव इस समय आपका कम होता जाएगा, करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, उपहार मिल सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, आज का पहला प्रश्न राहुल जी ने हमें हैदराबाद से लिखा है। 26 जुलाई 1990 का जन्म है। 4:20 दोपहर में मुंबई महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। ये कह रहे हैं कि मैं आईटी के सेक्टर में एक अच्छा करियर बनाना चाहता हूं और उस क्षेत्र में मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं, तो मुझे बेहतर नौकरी कब तक मिलेगी, मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? राहुल, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कन्या राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। नौकरी आप अभी पा जाएंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में, लेकिन अभी नौकरी आपको सामान्य मिलेगी। जो सामान्य नौकरी मिलेगी वो नौकरी कर लीजिएगा। 2028 के फरवरी के बाद आप अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, तब तक आराम से सामान्य नौकरी करते रहिए। साल 2027 के अप्रैल के बाद आपके विवाह होने का योग बन रहा है और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, सफलता पाने के लिए एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपको सफलता मिलेगी।
3: और चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, अगला प्रश्न अविनाश कुमार जी ने हमें लिखा है जहानाबाद बिहार से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 7 नवंबर 2002, 8:22 रात को पटना बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी बीकॉम कर रही है, आगे किस करियर में जाना चाहिए और उसका भविष्य कैसा रहेगा? अविनाश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए, सबसे पहले आप अपनी बेटी को कहिए कि वो मेहनत करे, वो कोशिश करे, प्रयास करे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में या आगे बढ़ने के लिए उतना प्रयास नहीं करती हैं, आलस्य बहुत है और एफर्ट कम है। बीकॉम के बाद इनको बीएड करवा दीजिए और शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए इनको आगे बढ़ाइए, काफी बेहतर होगा। एक इनको पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाइए और अपनी बेटी से कहिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगी तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
3: और चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेंगे कि अपने विचारों से खराब ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं।
0: देखिए, अक्सर हम अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए रत्न पहनते हैं, दान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपने विचारों से खराब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रह आपका खराब है उसकी समस्या को समझिए। मान लिया जो ग्रह आपका खराब है वो स्वास्थ्य की समस्या बता रहा है, तो आप अब लगातार विचार करना शुरू करिए कि ये ग्रह आपके लिए अनुकूल हो रहा है और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। आप कभी मत सोचिए कि आपकी खराब ग्रह की दशा चल रही है तो आपको नुकसान होगा। आप ये मान करके चलिए, ये सोचिए कि ये ग्रह मेरे लिए अनुकूल रहेगा और इस ग्रह के पीरियड में मुझे लाभ होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे आप ये विचार लगातार करेंगे तो उस ग्रह की अशुभता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको अपने आचरण को भी ठीक रखना होगा। अगर ग्रह की वजह से स्वास्थ्य की समस्या होने वाली है तो आप ये सोचिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साथ में डॉक्टर का परामर्श मानिए, खान पान में, जीवनचर्या में सुधार करिए और निरंतर विचार करिए कि आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये विचार आपके ग्रह की अशुभता को बहुत हद तक कम कर देगा।
3: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल जानने का।
0: तुला राशि, करियर में आपके लिए इस समय लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन हानि से बचाव करें। ऑफिस में समस्या हो सकती है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
3: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उनसे छोटी छोटी समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, कैसे सुलझाया जा सकता है।
0: देखिए, आप अपने विचारों से अपनी बहुत सारी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। कैसे? आप जब काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का, घर का, कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छे विचार रख करके करिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उस काम में मैं सफल होऊंगा। खाना बनाते समय खासतौर से हमारी बहनें, माताएं अच्छी सोच रखें। क्रोध में, तनाव में, टेंशन में भोजन ना बनाएं। मन में आनंदित रहें। देखिए, जीवन है तो कष्ट तो आएगा ही, जीवन है तो मन प्रसन्न भी होगा और अप्रसन्न भी होगा, लेकिन आप अपने मन को समझा करके मन को ठीक रखने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति से संबंध खराब है उसके बारे में अच्छा सोचिए। हालांकि इतना आसान नहीं है, जिससे आपके संबंध बिगड़े हों उसके बारे में अच्छी सोच आती नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करके उसके बारे में अच्छा सोचें और मन में ये सोचें कि मेरा संबंध उसके साथ बेहतर हो जाएगा, तो आपके संबंध उस व्यक्ति से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जो काम नहीं हो पा रहा है या काम होने में लगातार अड़चन आ रही है, आप लगातार अपना प्रयास करते रहें और लगातार अपने मन में विचार करते रहें कि मेरा काम बनने वाला है, मेरा काम होने वाला है। जब भी आप घर से निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, आप मन में ये सोच कर निकलिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा और आज मुझे हर काम में सफलता मिलेगी। रात को सोते समय प्रार्थना करने की आदत डालिए। दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। भगवान से प्रार्थना करिए और अच्छे विचार करते हुए सोइएगा। रात का अंतिम विचार अगले दिन के सुबह का पहला विचार होता है, तो रात में अगर आप अच्छे विचार करके सोएंगे, भगवान से प्रार्थना करके सोएंगे, तो अगले दिन की सुबह से ही आपके मन में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे।
3: और अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना

0: आएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए, वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिसपे आप मेल करके पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, अगला प्रश्न सत्येंद्र सिंह ठाकुर ने हमें लिखा है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 अप्रैल 2006, 8:55 रात को, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहा है, आगे उसे एमटेक करना चाहिए या उसे नौकरी की तरफ जाना चाहिए? सत्येंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली है तुला लग्न की और कर्क राशि की, महादशा केतु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आप इनको बीटेक पूरा करवाने के बाद एमटेक की पढ़ाई करवाइएगा, क्योंकि अभी ये उच्च शिक्षा में जा सकते हैं, आगे चल करके एमटेक कर पाना कठिन होगा, तो पहले एमटेक करवा लीजिए, उसके बाद ये नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। एक इनको पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो इनको लाभ होगा।
1: और चलिए, अब आगे बढ़ते हुए अपने चौथे सवाल की ओर। पंडित जी, चौथा सवाल आज किसका होने वाला है?
0: जी,

0: कुंदन कुमार जी ने हमें लिखा है, पटना से लिखते हैं, 25 मार्च 1991 का जन्म है, 11 बजे रात में पटना बिहार। ये पूछ रहे हैं कि मैं नौकरी के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा हूं, तो किस क्षेत्र में मेरा करियर बनेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मुकुंदन जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जून 2027 तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दुर्घटनाओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको बचना चाहिए। नौकरी पाने के लिए पटना से बाहर निकलिए, शिक्षा क्षेत्र में, मेडिकल में, लॉ में या किसी फैक्ट्री में आपको नौकरी मिलेगी इस साल के अंत में, लेकिन पटना से बाहर निकलना होगा। एक मोती बनवा के पहने, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का अगर नियमित जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 22 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 22 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर संतोषजनक बना रहेगा, इस साल स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है और विवाह के मामलों में थोड़ा विलंब होगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आगे बढ़ने का और पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि घर में कौन सा पौधा जरूर लगाना चाहिए। देखिए, घर में कोई भी पौधा आप लगाते हैं वो अपनी तरंगों से पूरे घर को प्रभावित करता है। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए, इसे घर के बीचों बीच में लगाएं या अपने सोने के कमरे के साथ वाली बालकनी में लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: अब पंडित जी से जानेंगे कि 22 अगस्त 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6:00 से 7:30 तक। इस समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ऐसा करने से आपकी रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 22 अगस्त शनिवार शाम को 6:00 से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन की कमजोरी क्या है, जीवन की दिक्कत क्या है। आज की गुड लक राशि है मेष। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है मन की चंचलता। इनको अपने मन की चंचलता पर ध्यान देना चाहिए और बेवजह की दौड़ भाग से हमेशा बचना चाहिए।
1: और चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको हल करने का महा उपाय क्या है।
0: अगर आपको बार बार बीमारी का वहम होता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे वो बीमारी हो जाएगी, अगर बेवजह बीमारी के वहम से परेशान हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे नहाइए जरूर, स्नान जरूर करें, एक चांदी का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में पहने और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय नमः शिवाय का जप करते रहें, आपके वहम की समस्या दूर होगी।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियों को पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

0: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: क्या आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना

0: इस शब्द के जहन में आते ही एक अलग ही भाव उभरता है। पुलिस थाने की छवि आमतौर पर डर, संकोच और विश्वास से जुड़ी रही है, लिहाजा सामान्य तौर पर आम लोग वहां जाने से कतराते हैं। लेकिन ये पुलिस थाना उस छवि को न सिर्फ तोड़ता नजर आता है, बल्कि वहां की व्यवस्थाएं लोगों को आकर्षित करने वाली भी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के इस थाना कोतवाली के अंदर जाने पर एक स्कूल जैसा माहौल आपको नजर आएगा। यहाँ की दीवारों पर की गई पेंटिंग, उस पर लिखे गए स्लोगन, तस्वीरों के साथ प्रेरणादायक कहानियों को दर्शाया गया है। दरअसल बड़वानी पुलिस यहाँ के हवालातों को सुधार कर पाठशाला बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रही है और उसी को लेकर ये बदलाव नजर आ रहा है। इसमें पुलिसिंग के साथ अब इंसानियत, सकारात्मक सोच और व्यवस्था को जगह दी गई है। दीवारों पर महात्मा बुद्ध की सीख के बाद डाकू उंगली माल के हृदय परिवर्तन की कहानियों को चित्रों के जरिए उकेरा गया है। इसी तरह रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने जैसी कथाओं को भी चित्रों के जरिए बताने की कोशिश की गई है, ताकि हवालात में बंद लोगों को इन सब से सीख लेते हुए खुद में बदलाव करने का मौका मिल सके। जिले के पुलिस अधीक्षक पदम विमोचन शुक्ल ने थानों को सिर्फ अपराध पर कार्रवाई करने की जगह नहीं, बल्कि सकारात्मक माहौल वाले सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल की है।
1: थाने में लोग जो आते हैं, आगंतुक आते हैं या आरोपी आते हैं, एक नकारात्मक विचार लेके ही आते हैं, तो हम सभी का ये था क्यों ना थाने का हमको ऐसा खुशनुमा माहौल बनाया जाए कि अगर इसमें आरोपी भी आ रहा है तो उसका हृदय परिवर्तन होकर यहाँ से जाए। तत्पश्चात हम सब लोगों ने कई लोगों से बातचीत की, जिसमें हमारे कुछ प्रमुख न्यायमूर्ति महोदय थे, रिटायर्ड जज साहबान थे, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी साहबान थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम सबसे पहले शुरुआत हवालात से करते हैं, क्योंकि वहाँ आरोपी आता है वो एक विचित्र सी मानसिक अवस्था से गुजरता रहता है और उसमें कुछ तब्दीली हो सके, उसके विचारों में कुछ परिवर्तन हो सके, इस कारण से हमने हवालात में सुधार करने का प्रयास किया।
0: किसी तरह अपराध के अपराधियों में सुधार के साथ ही यहाँ शिकायत लेकर आने वालों को अच्छा महसूस कराने के लिए भी तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। थाने में फरियाद लेकर आने वालों और उनके साथ अगर बच्चा भी हो तो उसका भी ध्यान रखा गया है। फरियादों के बैठने के लिए व्यवस्थित जगह बनाई गई है, तो बच्चों के लिए कॉमिक्स की व्यवस्था भी की गई है। महिला फरियादियों के लिए महिला डेस्क पर सैनिटरी पैड की व्यवस्था की गई है। वहीं छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग स्थान भी बनाया गया है। इन थानों की सजावट किसी होटल और मॉल की तरह नजर आती है। फिलहाल बड़वानी जिले में 5 थानों में बदलाव की शुरुआत की गई है।
1: यूं ही एक मन में विचार आया कि हमारे थाने में आने वाले जो आरोपी गण हैं, गिरफ्तार व्यक्ति हैं, उनमें हम अगर कुछ सुधार कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। लोगों की ये सुविधा के लिए ही हम सब लोगों ने ये चीज चालू की है, क्योंकि जैसा माहौल रहेगा वैसे ही पुलिसकर्मी का बर्ताव होता है। तो एक स्वस्थ माहौल आने से पुलिसकर्मियों के व्यवहार में भी बदलाव होगा। इस सिलावत, सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण और राजपुर, इनको उच्च गुणवत्ता के कारण इनको ISO 9000 सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। साथ ही साथ हमारे SP ऑफिस को भी ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।
0: थानों में मौजूद रिकॉर्ड को भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। फाइलों के ढेर को बॉक्स में व्यवस्थित कर उन पर पहचान संबंधित विवरण लगाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड को आसानी से तलाशा जा सके। मालखाना, शास्त्रागार समेत थाने में खड़े जब्त वाहनों पर QR कोड भी लगाए गए हैं, ताकि उनसे जुड़ी तमाम जानकारी आसानी से मिल सके। बड़वानी से जैद अहमद शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात करते हैं उस रेस्क्यू की, जिसे आप वाकई अनोखा कहेंगे। अर्जेंटीना के बंद पड़े लुजान चिड़ियाघर से 63 बिग कैट्स को नई जिंदगी मिली है। इनमें से 15 शेर और बाघ अब दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं।
3: ये तस्वीरें सिर्फ शेर और बाघों के सफर की नहीं है, ये तस्वीरें हैं कैद से आजादी तक पहुंचने की एक लंबी और भावुक कहानी की। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के पास मौजूद पूर्व लुहान चिड़ियाघर कई साल पहले बंद हो चुका था, लेकिन इसके बंद होने के बाद भी यहाँ रहने वाले जानवरों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। छोटे और भीड़भाड़ वाले बाड़े, सीमित जगह और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, हालात इतने खराब थे कि कुछ जगहों पर एक ही छोटे से स्थान पर 7 शेरों को रखा गया था। इन जानवरों को बेहतर जिंदगी दिलाने के लिए एक संगठन आगे आया और शुरू हुआ इन्हें बचाने और दूसरी जगह पहुंचाने का बड़ा अभियान।

0: We arrived to Argentina to rescue these cats. It was a former zoo abandoned over 5 years, so the animal was really not in a good condition. Some of them have health problems. They were very congested in very, very small cages. Some of them, like 7 lions, could be in one small space.
1: इस मुश्किल यात्रा से पहले करीब 1 महीने तक इनका इलाज किया गया, उनकी सेहत सुधारी गई और उन्हें लंबी यात्रा के लिए तैयार किया गया। इसके बाद शुरू हुआ इन जानवरों का लंबा सफर। 30 बड़े जानवरों को अर्जेंटीना से बाहर निकाला गया, इनमें से 15 को अमेरिका भेजा गया, जबकि 15 शेर और बाघ दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। अब इन बेजुबानों का नया ठिकाना है दक्षिण अफ्रीका की एक खास सुरक्षित जगह, जहाँ इन्हें सिर्फ रहने की जगह ही नहीं बल्कि लंबे समय तक देखभाल, इलाज और दोबारा सामान्य जिंदगी जीने की सुविधा भी मिलेगी। रेस्क्यू टीम के पशु चिकित्सकों के लिए भी इन जानवरों की हालत देखना आसान नहीं था। डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ ये बेजुबान बंद थे। वहाँ चिड़ियाघर 5 साल से ज्यादा समय से बंद था और जानवर ऐसी परिस्थितियों में रह रहे थे जहाँ उनकी बुनियादी जरूरतों का भी ख्याल रखा नहीं जा रहा था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अगस्त में ही मानसून ने देश के कई हिस्सों में रफ्तार पकड़ ली है। कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बाढ़ के हालातों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है।
3: कहीं आसमान में उमड़ घुमड़ रहे बादल तो कहीं छाई घनघोर घटा और कहीं झमाझम बरस रहे बादल। देश के बड़े हिस्से में यही माहौल बना हुआ है। मॉनसून की मेहरबानी बनी हुई है तो बादलों की ये आवाजाही अपने साथ कहीं जोरदार तो कहीं रुक रुक कर बारिश ला रही है। खासतौर से मध्य और उत्तरी भारत में मॉनसून लगातार एक्टिव है, जिसके कारण कई राज्यों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम के जानकारों के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय है। मध्य प्रदेश के ऊपर बने वेदर सिस्टम की वजह से उत्तर और मध्य भारत में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और इससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण मॉनसून लगातार एक्टिव है, जिससे आने वाले कुछ दिनों तक कई राज्यों में अभी और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा और अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी सिरा अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर की ओर बना हुआ है। कल तक कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में बना हुआ था। इसके कारण मॉनसून ट्रफ उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। मॉनसून ट्रफ जमीन पर बनने वाला लंबा लो प्रेशर एरिया होता है। इसे भारत में मॉनसूनी बारिश का मेन कॉरिडोर माना जाता है। मॉनसून की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अहम सवाल ये है कि देश के किन किन इलाकों में फिलहाल कब तक बारिश जारी रहने की संभावना है, तो इसका जवाब भी मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR में अभी बारिश लगातार नहीं होगी बल्कि रुक रुक कर ही होगी। मौसम विभाग ने 22 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन आमतौर पर दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार बने हुए हैं। उत्तर मध्य और पूर्वी भारत के दूसरे राज्यों की बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि इन इलाकों में मानसून का असर लगातार बना रहेगा। लो प्रेशर एरिया और मानसून ट्रफ की वजह से आने वाले दिनों में उत्तर मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि जोरदार बारिश के कम आसार हैं। अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सबसे ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। मौसम के जानकारों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब बारिश पूर्वी इलाकों की ओर बढ़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 से 26 अगस्त तक कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 25 अगस्त तक कहीं कहीं भारी बारिश होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में 26 अगस्त तक भारी बारिश रहने की संभावना है, जबकि ओडिशा में भी 26 अगस्त तक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। बिहार में 22 से 24 अगस्त के बीच काफी ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 26 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों की बात करें तो मॉनसून की ताज़ा स्थिति का खासा असर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में साफ साफ देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में 26 अगस्त के बीच काफी बड़े इलाके में सामान्य बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने के अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी 22 अगस्त तक काफी बड़े इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। देश के तमाम इलाकों में इन दिनों मॉनसून की जोरदार बारिश होने के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी हो रही है, लिहाजा लोगों के लिए सावधानी बरतना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: हांगकांग का आसमान मशहूर क्विक्सी फेस्टिवल के मौके पर ड्रोन की रोशनी से जगमगा उठा। इस फेस्टिवल में 2000 ड्रोन्स ने विक्टोरिया हार्बर के ऊपर चीनी लोक कथा की खूबसूरत तस्वीरें पेश की। ड्रोन से आसमान में मैगपाई ब्रिज की आकृति बनाई गई। ये वही पुल है जो चीनी लोक कथा के न्यूलांग और वीवर गर्ल को साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा ड्रोन से प्यार में डूबे जोड़ों और खिलते हुए विशाल गुलाबों की आकृतियां भी बनाई गई। आसमान में बदलती इन तस्वीरों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्विक्सी फेस्टिवल चीनी चंद्र कैलेंडर के सातवें महीने के सातवें दिन मनाया जाता है। करीब 2000 साल पुरानी ये प्रेम कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस ड्रोन शो ने सदियों पुरानी कहानी को आधुनिक अंदाज में पेश किया। आसमान पर बनी रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन गई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ वायरल वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
4: बारिश हो रही है, छत पर पानी जमा है, तो फिर मस्ती क्यों ना की जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बच्ची और छोटा सा बंदर बारिश के पानी में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्ची जिस तरह पानी में फिसल रही है, बंदर भी उसकी नकल करता दिखाई दे रहा है। दोनों की ये मासूम और मजेदार जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर यूजर्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और बच्ची बंदर की इस दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दो महीने की छुट्टी के बाद जब पापा दोबारा ड्यूटी पर लौटने लगे तो बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्मी के जवान जैसे ही बाइक पर बैठकर घर से निकलने लगे, बच्ची भी इनके पीछे दौड़ पड़े। पिता से दूर होने का दर्द बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। कुछ ही पलों का ये वीडियो रिश्ते की गहराई बयां कर रहा है। पापा को विदा करते बच्चों का ये भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं। हम भी इंडिया है, हमको चाइनीज मत बोलो। सोशल मीडिया पर वायरल इस बच्ची की मासूम अपील लोगों का दिल जीत रही है। बच्ची वीडियो में कहती है कि जो लोग उसे चाइनीज कहते हैं वो ऐसा ना करें क्योंकि इसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद बच्ची बड़े ही मासूम अंदाज में कहती है कि वो इंडिया में रहती है और इंडियन है। बच्ची की साफ गोई और मासूमियत ने इंटरनेट यूजर्स को खूब प्रभावित किया है। लोग उसके आत्मविश्वास और प्यारी बातों की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
5: हम बहुत दुखी लगते हैं चाइनीज बोलने से। हम इंडिया का है, तो आप कैसे मत बोलो प्लीज।
4: बच्चों की दुनिया भी कितनी प्यारी होती है, जहाँ खिलौने ही उनके लिए असली दुनिया बन जाते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने खिलौनों के बर्तनों के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्ची खिलौने वाले बेसिन में हाथ धोने का नाटक करती है और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी मासूम हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। बच्ची की क्यूटनेस से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी मासूम अदाओं की तारीफ कर रहे हैं। दादी का प्यार हो तो हर दर्द थोड़ा कम लगने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दादी अपनी छोटे से पोते की प्यार से मालिश करती नजर आ रही हैं। बच्चे को बैठाकर दादी हल्दी और तेल का लेप लगा रही हैं, जबकि बच्चा भी बड़े आराम से दादी से मालिश करवाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बच्चे की मासूम आवाज और दादी का स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले लोग इस प्यारे रिश्ते पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: एनसीआर में रिमझिम बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, यूपी उत्तराखंड सहित देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य झूला उत्सव का आयोजन, तीनों भाइयों सहित चांदी के हिंडोले में विराजमान हुए रामलला, श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आए साधु संत। जन्माष्टमी के मौके पर राजधानी दिल्ली में होगा मटकी फोर लीग का आयोजन, गोविंदा आलारे थीम सॉन्ग लॉन्च, तो वहीं मैस्कॉट मटकू भी तैयार, 26 गोविंदा टीम के बीच होगा रोमांचक मैच। कर्नाटक के तुमकुर में वर महालक्ष्मी उत्सव की धूम, मंदिर परिसर के फूलों से की गई भव्य सजावट, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। रसानी डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, 88.95 मीटर जावलिन थ्रो के साथ हासिल किया दूसरा स्थान, श्रीलंका के रुमेश दिमेज 9 सेंटीमीटर पीछे गिरा नीरज का भाला। हांगकांग के आसमान को 2000 ड्रोन्स ने किया रोशन, क्विक्सी फेस्टिवल पर की गई चीनी लोक कथा की प्रस्तुति, रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए बन गई यादगार अनुभव।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की।
2: बारिश और बादलों के बीच हुई दिल्ली NCR की सुबह, रिमझिम बरसात से गर्मी से मिली राहत, सुबह सुबह बारिश की फुहार से उमस में भी राहत, कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई। इस बार कूल रहेगा वीकेंड, नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम में भी मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश के कारण दिल्ली NCR की हवा में भी आया सुधार, AQI संतोषजनक श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली NCR सहित देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। चौबीस अगस्त तक हिमालय से लेकर मध्य भारत तक फुल स्पीड में दिखेगा मॉनसून, आंधी और तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, सतर्क रहने की अपील। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पंजाब में मौसम रहेगा कूल, मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चल सकती हैं हवाएं। यूपी में राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट, झांसी, जालौन, हमीरपुर और महोबा में मॉनसून दिखाएगा रंग। दिल्ली में H1N1 और फ्लू को लेकर बढ़ी सतर्कता, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने JP नड्डा के साथ बैठक की। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया दूसरा स्थान, 88.05 मीटर भाला फेंककर जीता सिल्वर मेडल। नीरज ने दूसरे प्रयास में पिछले एक साल का सबसे बेहतर थ्रो फेंका, ये उनके सीजन का सबसे अच्छा थ्रो रहा। खिताब जीतने वाले श्रीलंका के रुमेश पथिराजे से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहा नीरज का थ्रो, पथिराजे ने 88.14 मीटर दूर फेंका भाला। पथिराजे ने पिछले महीने ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जीता था गोल्ड और नीरज को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। एथलेटिसिमा के नाम से भी जानी जाती है लुसाने डायमंड लीग, 2026 एथलेटिक्स सीजन में ये नीरज चोपड़ा का तीसरा कंपेटिटिव इवेंट था। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने रचा इतिहास, चाइना की जोड़ी को हराकर पदक पक्का किया। पहला सेट हारने के बाद त्रिशा और गायत्री की शानदार वापसी हुई, मैच जीतकर सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह। BWF में आज महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सेमीफाइनल मैच, चाइना की वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी ली शेंग शू और टैन निंग से भिड़ंत। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से होगा भारत का सामना, दूसरे राउंड के पूल ई में अपना पहला मैच खेलेगी टीम। पूल ई में इंग्लैंड, नीदरलैंड और अर्जेंटीना के साथ भारत फिलहाल एक हार के साथ तीसरे स्थान पर है, अब उसके लिए दोनों मैच जीतने जरूरी हैं। कोलंबो में खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच, इस मैच में भी इंतजार में कई नए रिकॉर्ड। दो मैचों की सीरीज में भारत को पहले ही 1-0 से बढ़त, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल में 53.33% पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर है टीम। इस मैच में भारतीय कैप्टन शुभमन गिल पूरे कर सकते हैं टेस्ट में 3000 रन, इस कीर्तिमान से महज 7 रन दूर हैं गिल, फिलहाल उनके नाम 2993 रन। इसके अलावा टेस्ट में 50 छक्के भी पूरे कर सकते हैं शुभमन गिल, कोलंबो में 3 छक्के लगाते ही ये उपलब्धि हासिल कर लेंगे। टेस्ट 400 चौके पूरे करने से महज एक कदम दूर रविंद्र जडेजा, अभी उनके नाम है 399 चौके और साथ ही 49 कैच ले चुके हैं जडेजा, एक कैच लेते ही टेस्ट मैच में पूरा करेंगे 50 कैचेस। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भव्य झूलनोत्सव का आयोजन किया गया, सावन के महीने में तीनों भाइयों के साथ रामलला को झूला झूलाया। झूलनोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा रहे मौजूद, श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आए लोग। रामलला को झूला झुलाने के लिए लगी होड़, धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भजन कीर्तन करते हुए दिखे साधु संत। भगवान राम के उत्सव विग्रह को फूलों से सजे चांदी के हिंडोले से कराया गया विराजमान, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। रामनगरी में झूला उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भी दिखा उत्साह, तीनों भाइयों के साथ रामलला के दर्शन का मिला सौभाग्य। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली में होगा मटकी फोड़ यानी MPL सीजन 2 का आयोजन, लड़के और लड़कियों की कुल 26 गोविंदा टीमों के बीच होगा रोमांचक मैच। मटकी फोड़ लीग का आधिकारिक एंथम सॉन्ग गोविंदा आला रे लॉन्च किया गया, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रूमी ने एंथम को अपनी आवाज दी। मटकी फोड़ लीग के दौरान बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए आधिकारिक मैस्कॉट मटकू किया गया तैयार, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर मटकू MPL का देगा संदेश। सूरजमल बिहार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा आयोजन। मटकी फोर्ड लीग में खिलाड़ियों की ताकत, संतुलन, रणनीति और टीम वर्क की होगी परीक्षा। आधुनिक खेल प्रतियोगिता की तरह मटकी फोर्ड लीग को किया गया है डिजाइन। आयोजकों के मुताबिक आईपीएल की तर्ज पर बेची जाएंगी एमपीएल की टीमें। उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में चांदी की नई जलधारी। हैदराबाद के भक्तों ने दिया खास दान। 20 किलो चांदी से बनी है जलधारी। चांदी की जलधारी की कीमत करीब 50 लाख रुपए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बदली गई जलधारी। नई जलधारी से और भव्य हुआ मंगलनाथ दरबार। शिवलिंग पर विराजित हुई नई जलधारी। 20 साल पुरानी जलधारी को हटाया गया। पुरानी जलधारी से बनाया जाएगा नाग कलश। नई प्रतिमाओं की भी हुई प्राण प्रतिष्ठा। दरभंगा के लहेरिया सराय ऑडिटोरियम में बिहार ग्रामीण बैंक की ओर से मुख्य आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और मजबूत बिहार का लक्ष्य। ग्रामीणों तक बैंकिंग सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जानकारी। कृषि लोन, जीविका सहायता समूह लोन और एमएसएमई के जरिए स्वरोजगार की जानकारी दी गई। खराब क्रेडिट वाले लोगों के लिए लोन से जुड़ी प्रक्रिया समझाई गई। इंदौर के होटल सयाजी में फूड सेफ्टी जांच में पाई गई कई गड़बड़ियां। जिला प्रशासन ने होटल के किचन को सील किया। TCS 2026 बैच के इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा। युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में नई संभावनाओं का लाभ उठाने का संदेश दिया। अलीगढ़ के मलखान सिंह चिकित्सालय में खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा। खाने की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर कैंटीन को सील किया गया। मरीजों को परोसी जाने वाली दाल और सब्जी के नमूने आए अनसेफ। अस्पताल में खराब भोजन दिए जाने की मिल रही हैं शिकायतें। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एफडीए ने बड़ी कार्रवाई की। होटल में जांच के दौरान मिली खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां। होटल के किचन में इस्तेमाल किए के लिए रखा हुआ पनीर खराब मिला। टॉयलेट के एंट्री गेट पर काटी जा रही थी सब्जियां। एफडीए की टीम ने होटल का एफएसएसएआई लाइसेंस तत्काल रद्द किया। नियमों के उल्लंघन को लेकर होटल पर पहले भी लगाया जा चुका है जुर्माना। बिहार से 1 सितंबर को चलेगी भारत गौरव ट्रेन। धार्मिक पर्यटन पर जाने वालों के लिए सुनहरा मौका है। 1 यात्रा में 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के अलावा एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं का कराया जाएगा भ्रमण। भारत गौरव ट्रेन में स्लीपर का किराया 18,160 रुपए, थर्ड एसी का 32,550 और सेकंड एसी का 39,425 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया किराया। पैकेज में रेल यात्रा के अलावा ठहरने, स्थानीय परिवहन और बीमा जैसी सुविधाएं शामिल। यात्रा के लिए बिहार के 11 शहरों से बोर्डिंग की सुविधा। सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स का नया TI-22 कलेक्शन लॉन्च किया गया। अभिनेता हर्षवर्धन राणे को बनाया गया कैंपेन का चेहरा। हरिद्वार में 4 दिवसीय हिमालयन एमएसएमई एक्सपो शुरू। 100 से ज्यादा स्टॉल्स बने आकर्षण का केंद्र। स्थानीय उत्पादों को मिला बड़ा मंच। 6 राज्यों की कंपनियां और विभाग शामिल। सिक्किम के ऑर्गेनिक उत्पादों की भी प्रदर्शनी। तेलंगाना दिल्ली के उत्पाद शामिल। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर उत्पादों की धूम देखने को मिली। हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों ने खींचा सभी का ध्यान। फूड प्रोसेसिंग और एरोमा प्रोडक्ट्स मौजूद। हस्तशिल्प कृषि उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगी। ड्रोन और रोबोटिक्स तकनीक ने चौंकाया। छात्रों ने आधुनिक तकनीक में दिखाई रुचि। युवाओं को मिल रही नई तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी। थलाइवा के सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म जेलर 2 का पहला गाना रिलीज हुआ, जिसमें शामना कासिम के साथ नजर आ रही हैं रजनीकांत। एक्टर कुणाल खेमू की अगली डायरेक्टोरियल फिल्म वाइब का टीजर रिलीज हुआ। इस एक्शन कॉमेडी फिल्म में प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर साथ नजर आएंगे। गोविंदा के बेटे यशवर्धन हॉरर कॉमेडी हीरो की हीरोइन से करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू। साजिद खान के निर्देशन में बन रही फिल्म को शोभा कपूर, एकता आर कपूर और अमर बुटाला मिलकर कर रहे हैं प्रोड्यूस। यश की फिल्म टॉक्सिक ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में शानदार कमाई की। एक ही दिन में करीब 13 करोड़ की कमाई दर्ज। बॉक्स ऑफिस पर रोज सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है इमरान हाशमी की आवारा पंटू, अब महज 8 दिन में 120 करोड़ के बेहद करीब पहुंची मूवी। चाइना के हेनान में शुरू हुआ वाटर स्प्लैश फेस्टिवल, मस्ती में डूबे सैलानी, विदेशी पर्यटकों ने पानी में जमकर उड़ाया लुत्फ। पानी के छींटों से दिया गया आशीर्वाद, ली समुदाय की परंपरा ने लिया बड़े उत्सव का रूप, 8 देशों के पर्यटक बने फेस्टिवल का हिस्सा। विदेशी मेहमानों ने स्थानीय लोगों के साथ मस्ती की, वाटर शो ने बढ़ाई फेस्टिवल की रौनक। पारंपरिक कला ने जीता पर्यटकों का दिल, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पार्टी बनी आकर्षण, स्टैंड अप कॉमेडी ने भी खूब हंसाया। वाटर स्प्लैश फेस्टिवल ने बढ़ाया सांस्कृतिक मेल जोल, पानी के त्योहार ने विदेशी पर्यटकों को लुभाया। बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में 311 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, 26 देशों की 300 से ज्यादा कंपनियों ने भी शिरकत की। रोबोटिक मदरशिप बनी कॉन्फ्रेंस का आकर्षण, रोबोटिक मदरशिप में होंगे ह्यूमनॉइड और ड्रोन, मुश्किल हालात में रोबोट्स को मदद देगा वर्शिप। मदरशिप में बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी शामिल, रोबोट्स को मिलेगा मोबाइल कंप्यूटिंग सपोर्ट, विमान बचाव से भी काम आएगी रोबोटिक मदरशिप। अग्निमिशन आर मेडिकल रेस्क्यू में भी इस्तेमाल, इस साल के अंत तक उत्पादन होगा शुरू, जून 2027 तक व्यवसायिक इस्तेमाल का है लक्ष्य। रोबोटिक ग्लव ने खींचा दर्शकों का ध्यान, ग्लव बेहद सूक्ष्म स्पर्श की भी कर सकता है एहसास, नई तकनीक से मानव हाथ की सटीक मैपिंग। चाइना के बीजिंग में इसी रोबोटिक्स ने जताई बड़ी उम्मीद, एम्बॉडीड एआई को मिल सकता है चैट जीपीटी मोमेंट, 2027 के अंत तक बड़ा एआई ब्रेक थ्रू संभव। एसी रोबोटिक्स के चेयरमैन ने बताई भविष्य की तस्वीर, वर्ल्ड मॉडल से रोबोट होंगे ज्यादा स्मार्ट, रोबोट्स को समझ आएगा वास्तविक दुनिया का डेटा। एआई से रोबोट सीखेंगे नए काम करना, वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस ने रोबोट शेल्फ से सामान उठाते हुए दिखे, रोबोट ने ड्रिंक्स उठाकर सेल्फ चेकआउट किया। रोबोटिक आर्म ने बैग में रखा पेन खुद ही बंद की बैग की जिप, रोबोट ने कपड़े तय करने के दिया डेमो। रोबोट ने स्क्रू को अलग अलग बॉक्स में छांटा, कैट लिटर बॉक्स साफ करता हुआ दिखा रोबोट। बीजिंग में बायोनिक रोबोट्स ने सभी को चौंकाया, बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता है बायोनिक रोबोट, चेहरे के हाव भाव ने भी खींचा सभी का ध्यान। यूबीटेक यूवन में 88 मोशन जॉइंट्स बायोनिक गर्दन से और असली दिखता है रोबोट, इंसानी त्वचा जैसी सिलिकॉन कवरिंग है। यूबीटेक यूवन को मिले 13,000 से ज्यादा प्री ऑर्डर्स, बायोनिक रोबोट की शुरुआती कीमत करीब 99,000 युआन। बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में फ्यूक्सी ह्यूमनॉइड रोबोट के एंट्री हुई, खास काम के लिए तैयार किए गए हैं ये रोबोट, ग्रुप में फ्यूक्सी रोबोट्स ने दिखाया दम। बीजिंग में रोबोट बॉक्सिंग का रोमांच देखने को मिला, ह्यूमनॉइड रोबोट डोजियांग और लुजू आमने सामने आए, एक दूसरे पर बरसाए घूसे। रिंग में केक और अपकर्ट से मचा रोमांच, इंजन एआईटी 800 ने दिखाया दम, गिरकर तुरंत खड़ा हुआ ह्यूमनॉइड रोबोट। 1.73 मीटर T800 रोबोट की शानदार फुर्ती देखने को मिली, रोबोट फाइट ने दर्शकों को चौंकाया। बीजिंग में रोबोट डॉग ने दिखाया कमाल। रोबोट डॉग ने लगाई रस्सी पर छलांग, एआई ने रस्सी की चाल को तुरंत भांपा। रोबोट ने खुद बदली कूदने की रफ्तार, मल्टी रोबोट सहयोग का दिखा शानदार नमूना। रोबोट डॉग करता बना आकर्षण। चाइना के चोंगकिंग की गुफा बनी भूमिगत आकाश गंगा, लाइट और शैडो ने बदली गुफा की दुनिया। रोशनी में चमका विशाल भूमिगत परिसर, तो वहीं साइबर पंक प्रोजेक्शन ने बढ़ाया रोमांचक। तारों पर दिखे भविष्यवादी नजारे। लेजर मैपिंग से जगमगाया अंडरग्राउंड प्लांट, सुरंगों में दिखा तारों जैसा नजारा। पर्यटकों ने खूबसूरती का दीदार किया। वॉशिंगटन डीसी मेट्रो स्टेशन में पहुंची रेस कार फ्रीडम 250 के जश्न में दिखेगा रफ्तार का रोमांच। दुनिया के सबसे उम्रदराज महिला हुई 117 साल की। इंग्लैंड में एथेल कैटरहैम ने मनाया अपना जन्मदिन। 21 अगस्त 1909 को हुआ था जन्म। बर्लिन के जू में धूमधाम से मना जुड़वा पांडा बच्चों का जन्मदिन। पांडा लूनी और लॉटी हुए 2 साल के। दोनों ने बर्फ का खास केक काटा, केक गाजर चुकंदर के जूस से रंगा था। लेनी लॉटी की जोड़ी ने जीता सभी का दिल, आइस केक ने बढ़ाई जन्मदिन की रौनक। दोनों भाई बहनों में गजब की बॉन्डिंग, पांडा का जन्मदिन देखने के लिए उमड़े दर्शक। जन्म के समय महज 150 ग्राम का था पांडा का वजन, अब वजन 60 और 70 किलोग्राम पहुंचा।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
11: आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं क्या? अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं क्या? है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
2: एक दौर था जब घर घर रेडियो हुआ करता था। रेडियो पर आती आवाजें, गीत संगीत, समाचार और फरमाइशें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। वक्त बदला, टीवी आया, फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जगह बना ली, लेकिन रेडियो की वो सुनहरी यादें आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। देखिए रिपोर्ट।
19: रेडियो की सुनहरी यादें, तरह तरह के पुराने रेडियो सेट और रेडियो के प्रति श्रोताओं का दशकों पुराना जुनून, इन सब का गवाह बना छत्तीसगढ़ का शहर भिलाई, जहां दो दिनों का अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों से करीब 400 रेडियो प्रेमी और श्रोता पहुंचे। आयोजन में रेडियो के प्रति लोगों का दशकों पुराना लगाव और जुनून देखने को मिला।
20: यहाँ पर जो रेडियो श्रोता दिवस पर ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, ये बहुत ही अच्छा और एक अद्भुत सम्मेलन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं और ऐसे श्रोता आए हैं जो काफ़ी समय से, करीबन उनकी एज जो है 60 से ऊपर हो चुकी है, इसके बावजूद भी वो इतने दीवाने हैं रेडियो के कि उन्हें देखकर मन एकदम जोश से उमड़ पड़ा।
19: इस सम्मेलन में कई श्रोता अपने साथ दशकों पुराने रेडियो सेट लेकर पहुंचे। कुछ लोगों के पास 1947 के दौर के रेडियो सेट आज भी मौजूद हैं। इन पुराने रेडियो के पार्ट्स अब आसानी से नहीं मिलते, लेकिन शौकीनों ने अपनी मेहनत और लगन से इन्हें आज भी चालू हालत में संभाल कर रखा है। भारत में रेडियो प्रसारण के इतिहास में 20 अगस्त का विशेष महत्व है। साल 1921 में इसी दिन पहली बार श्रोताओं के पत्र रेडियो पर प्रसारित किए गए थे। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में साल 2006 से 20 अगस्त को रेडियो श्रोता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है।
21: विज्ञान अब तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी कुछ भारत के लोग हैं जो रेडियो को आज भी अपना जीवन यानी सांस मानते हैं। आज छत्तीसगढ़ के भिलाई में अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के कई राज्यों के जो रेडियो सुनने वाले श्रोता हैं वो आज इस सम्मेलन में भाग लिए। उन्होंने आदान प्रदान किया अपने विचार और रेडियो से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। कई लोग ने यह कहा है हमारी सांस निकलेगी तब हम रेडियो को छोड़ेंगे। रेडियो को जिंदा रखना उनका मकसद है।
19: सम्मेलन में पहुंचे श्रोताओं ने कहा कि टीवी देखने की तुलना में रेडियो सुनना उन्हें ज्यादा पसंद है। उनका मानना है कि रेडियो में आवाज, भावना और कल्पना के जरिए जो जुड़ाव पैदा होता है वह दूसरे मनोरंजन माध्यमों से अलग है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि रेडियो की धीरे धीरे कमजोर होती सुनने की संस्कृति को फिर से मजबूत करने की जरूरत है।
22: यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत से श्रोताओं से जो रूबरू मुलाकात हुई, जो सारे लिसनर्स हैं, सबका अथाह प्रेम देके हमारे को और ज़्यादा प्यार उमड़ हुआ है। लेकिन पुराना रेडियो आज भी मेरे पास चलता है। मैं टीवी के बजाय ज़्यादा रेडियो सुनना पसंद करता हूँ और सब लोगों से मैं ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि इस लुप्त होती हुई प्रथा को थोड़ा पुनः जीवित करें। रेडियो में जो आनंद है वो टीवी में या किसी और मनोरंजन के माध्यम में वो चीज़ नहीं है।
19: सम्मेलन में पुराने रेडियो सेटों के साथ आकाशवाणी और अलग अलग रेडियो केंद्रों से वर्षों पहले आए पत्रों को भी प्रदर्शित किया गया। ये चीजें सिर्फ पुराने दौर की यादें नहीं, बल्कि रेडियो और उसके श्रोताओं के बीच बने उस भावनात्मक रिश्ते की कहानी भी बयां करती है, जो दशकों बाद भी कायम है। आज जब डिजिटल और सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे समय में रेडियो के प्रति लोगों का यह समर्पण बताता है कि उसकी अपनी अलग पहचान और भावनात्मक ताकत अब भी बरकरार है। भिलाई का ये रेडियो श्रोता सम्मेलन यही संदेश दे गया कि तकनीक बदल सकती है, माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन आवाज से जुड़ा रिश्ता और उससे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। रायपुर से रघुनंदन पंडा, गुड न्यूज टुडे।
23: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। यूपी, उत्तराखंड सहित देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया, युवा वकीलों ने फैसले का स्वागत किया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य झूला उत्सव का आयोजन, तीनों भाइयों सहित चांदी के हिंडोले में विराजमान हुए रामलला, श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आए साधु संत। कर्नाटक के तुमकुर में वर महालक्ष्मी उत्सव की धूम, मंदिर परिसर के फूलों से भव्य सजावट की गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, 88.95 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ हासिल किया दूसरा स्थान, श्रीलंका के रोमेश से महज 9 सेंटीमीटर पीछे गिरा नीरज का भाला। हांगकांग के आसमान को 2000 ड्रोन्स ने किया रोशन, क्विक्सी फेस्टिवल पर की गई चीनी लोक कथा की प्रस्तुति, रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए बन गई यादगार अनुभव।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल खट्टे मीठे और पवित्र रिश्ते का सबसे बड़ा उत्सव है। वक्त भले ही बदल गया हो, हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए हों, लेकिन इस एक धागे की ताकत आज भी वैसी है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और अपने भाई की कलाई को सजाने के लिए, उसके लंबे और सेहतमंद जीवन की दुआ मांगने के लिए बहनें बेताब हैं। इसी प्यार और जज्बात से आज देश के बाजार भी सराबोर नजर आ रहे हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक सदर बाजार में अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अलग अलग डिजाइन की राखियां आपको यहां मिल जाएंगी। बच्चों के लिए खास तौर से कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां भी आपको मिलेंगी। हालांकि राखी का रूप चाहे जो भी हो, इस धागे के पीछे छिपा बहन का प्यार हमेशा अमर रहता है। तो आइए सीधे लिए चलते हैं सदर बाजार की उन गलियों में, जहां हर राखी में धड़क रहा है एक बहन का प्यार।

0: भाई और बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन, वो पर्व जब हर बहन और भाई स्नेह की एक ऐसी डोर में बंध जाता है जो उन्हें जीवन भर एक दूसरे से जुड़ कर रखती है। वो पर्व जब हर बहन अपने भाई की कलाई पर दुआओं का वो धागा बांधती है जो हर संकट से उसकी रक्षा करता है। भाई और बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बाजारों में रौनक बिखरने लगी है। ये तस्वीरें दिल्ली के सदर बाजार की हैं, जहां दुकानों पर अलग अलग किस्म, अलग अलग रंग और अलग अलग तरीके की राखियां मिल रही हैं। रंग बिरंगी राखियों से लेकर फैशनेबल और डिजाइनर राखियां बाजार की रौनक को बढ़ा रही हैं। दुकानों पर सजी रंग बिरंगी राखियां हर आने जाने वाले का मन मोह ले रही हैं। गलियों में पसरी ये चहल पहल और खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि भाई बहन के इस पावन पर्व को लेकर लोगों में किस कदर उत्साह है। कहीं बहनें अपने भाई की पसंद की राखी तलाश रही हैं, तो कहीं दुकानदार ग्राहकों को नए डिजाइन और नई वैरायटीज दिखाने में जुटे हैं। सदर बाजार की हर दुकान पर मनमोहक राखियों का अंबार है। दुकानों पर सजी अलग अलग डिजाइन की रंग बिरंगी राखियां जैसे लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। यहां हर उम्र और हर पसंद के लिए बाजार में विकल्पों की भरमार है। बात अगर इस बार के बाजार और ट्रेंड्स की जाए, तो पारंपरिक से लेकर आधुनिकता का एक बेहतरीन संगम देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां भक्ति और विश्वास का प्रतीक माने जाने वाले कलावा और रुद्राक्ष वाली राखियों की भारी डिमांड है, तो दूसरी तरफ स्टोन, बीट्स और कुंदन वर्क वाली डिजाइनर राखियों ने भी बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। बच्चों की खुशियों के बगैर रक्षाबंधन अधूरा सा लगता है, और उनके लिए सदर बाजार में खास इंतजाम भी हैं। छोटा भीम, डोरेमोन और लाइट जलने वाली कार्टून राखियां बच्चों को खूब लुभा रही हैं। इतना ही नहीं, इस बार पर्सनलाइज्ड राखियों का क्रेज भी जोरों पर है, जहां बहनें अपने भाइयों के नाम या स्पेशल मैसेज वाली राखियां बेहद पसंद कर रही हैं।
1: स्टाइलिश राखियां थोड़ी बच्चों के लिए दिखाएंगे सबसे पहले, तो कि बच्चों के लिए किस किस तरीके के कैरेक्टर्स जो है थोड़ी आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से आपको वैरायटी जो है वो यहाँ पे दिखने वाली है। तो शुरुआत मैं इन्हीं राखियों से करती हूँ कि बच्चों के लिए इस बार मार्केट में जो है क्या क्या ऑप्शन नजर आने वाला है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छी खासी वैरायटी जो है आपको वो बच्चों की राखियों की जो है वो यहाँ पर नजर आने वाली है। भैया, अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो क्या है बच्चों के लिए खास ट्रेंड, बच्चों के लिए इस वक्त क्या राखियाँ मार्केट में?
2: यही है मैडम, ये कॉपी कलम वाली है, पेंसिल वाली है।
1: मुझे कुछ नया यूनिक नजर आ रहा है कि कुछ इस तरीके के डिजाइन आपको जो है वो दिखने वाले हैं, कि एक छोटा सा आपको इसके अंदर जो है नोटबुक दिख जाएगा कि बच्चे जो है उसमें लिख सके, साथ ही साथ आपको ये राखी जो है वो नजर आ जाएगी। इस तरीके के डिजाइन जो है आपको वो नजर आने वाले, आप देख सकते हैं।
3: ये लाइटिंग की राखी आ जाएगी, फोटो मेरा नहीं।
1: अच्छा,
3: ये लाइटिंग की राखी आ जाएगी। सॉफ्ट में टेडी बियर आ जाएगा जिसमें म्यूजिक है, टेडी बियर आ जाएगा। ये आ जाएंगे सारे अलग अलग डिजाइन आ जाएंगे। ये टेडी बियर में आ जाएगा, ये म्यूजिकल है, ये सारी लाइट और म्यूजिकल है। हाँ, इसके सारे अलग अलग डिजाइन है, ये बहुत अच्छे प्यारे डिजाइन है। इसमें ये जो है मिक्की माउथ वगैरह के सारे डिजाइन आ जाएंगे।
1: हाँ,
3: कृष्णा जी दिख जाएंगे, मिक्की माउथ वगैरह दिख जाएंगे, और ये सब अलग अलग डिजाइन दिखेंगे। इस तरीके की वैरायटी पूरी दिखेगी। ये सेंसर वाली आपको जो है घड़ी दिखेंगी बच्चों की, में आपको गिफ्ट में वो दिखेंगे, पेंसिल बॉक्स दिखेगा उस तरफ लग रहा है।
1: तो आप देख सकते हैं कि कुछ आपको इस तरीके से गिफ्ट हैम्पर्स वाली राखियां भी जो है वो नजर आने वाली है, जिसमें आपको राखी तो दिखेगी लेकिन इसके साथ आपको पूरा स्टेशनरी का एक जो है वो सेटअप नजर आने वाला है। चाहे फिर वो पेंसिल्स की बात हो, स्केल हो, मतलब पूरा स्टेशनरी आइटम जो है आपको इस कॉम्बो में जो है वो दिख जाएगा। एक ये आपको अलग से यूनिक प्रोजेक्टर वाली मिलने वाली।
2: जी हाँ, इसमें अलग अलग कार्टून के करेक्टर आते हैं प्रेस करने से।
1: अच्छा, तो देखिए आपको मार्केट में किस तरीके के ऑप्शंस जो है वो इस वक्त आपको नजर आने वाले हैं। अच्छी खासी रेंज है, खास तौर पर इस तरीके के आइटम जो है वो दिखेंगे जिसके अंदर एक नोटबुक है, पेन है, और साथ ही साथ आपको राखी जो है वो दिखने वाली है। तो बच्चों के ऑप्शंस अच्छे खासे जो है वो आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है उनकी धूम जो है वो नजर आने वाली है।
0: सिर्फ राखियां ही नहीं, बाजार में रक्षाबंधन से जुड़े दूसरे सामान की भी जबरदस्त डिमांड है। सजावटी पूजा की थालियों से लेकर स्पेशल पैक्स और आकर्षक गिफ्ट पैकिंग के लिए भी काफी कुछ मौजूद है। बहनें अपने भाइयों के लिए खास सरप्राइज गिफ्ट्स और हैम्पर्स चुनने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। सदर बाजार का ये माहौल साफ बता रहा है कि त्योहार सिर्फ तारीखों का नाम नहीं बल्कि अपनों के साथ खुशियों को बांटने का बहाना है। रेशम के ये धागे एक बार फिर भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए तैयार है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार आते ही गुलाबी नगरी जयपुर में भी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। बाजारों में उमड़ी बहनों की भारी भीड़ सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रही बल्कि अपने भाई के लिए सबसे खास धागे का चुनाव कर रही है जिसमें उनके जज्बात छिपे होते हैं। यही वजह है कि इस बार जयपुर के बाजार में परंपरा और इनोवेशन का एक अनोखा मेल दिखाई दे रहा है। अपने भाई की कलाई पर राजस्थान की आन बान शान सजाने के लिए बहनें खम्मा घणी पगड़ी राखी पसंद कर रही हैं, तो भाई के जीवन में सुख समृद्धि के लिए राधा कृष्ण की जोड़ी वाली पावन राखी भी मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड है हीलिंग स्टोन थेरेपी राखी की। तो चलिए जयपुर के उन खूबसूरत बाजारों में जहां हर एक धागे में धड़क रहा है भाई बहन के अटूट प्यार का एहसास।

0: रक्षाबंधन त्योहार से ज्यादा एक संस्कार है, वो संस्कार जो हजारों साल से हमारी पहचान रहा है। हमारी संस्कृति इस पहचान के बिना अधूरी है। ऐसे में इस त्योहार की रौनक अलग ही नजर आती है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए अलग अलग तरह की राखियां तलाश करती हैं। ऐसे में रक्षाबंधन से पहले गुलाबी नगरी जयपुर के बाजार भी गुलजार हैं। बाजारों में अलग ही रौनक दिखने को मिल रही है। रंग बिरंगी पारंपरिक डिजाइन वाली राखियों से लेकर नए नए डिजाइन की बेहद आकर्षक और लुभावनी राखियां भी बाजार में मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ नई नई किस्मों की राखियों का अंबार सा लग गया है।
1: मुझे स्पेशली राधा कृष्ण जी की राखी बहुत पसंद आ रही है, बिकॉज मेरे को मेरी भाभी के लिए लेनी है एंड शी इज जस्ट गोइंग टू गेट मैरिड टू माई ब्रदर एंड आई वुड लव टू वियर सच अ ग्रेट नाइस बिग लुम्बास। आई वुड लव टू एंड इट्स सच अ प्रिटी कलेक्शन। आई वुड से आई वुड लव इट ऑन हर हैंड्स बेसिकली।
0: इस बार बाजार में राखियों की अनोखी वैरायटी देखने को मिल रही है, जिसमें परंपरा के साथ आधुनिक इनोवेशन का एक बेहद खूबसूरत मेल दिखाई दे रहा है।

लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है राजस्थानी शान के प्रतीक खम्मा घड़ी राखी। छोटे आकार की रंग बिरंगी राजस्थानी पगड़ी और मारवाड़ी अंदाज वाली ये राखियाँ भाई की कलाई पर राजस्थान की संस्कृति को जीवंत कर रही है। इसके अलावा इस राधा कृष्ण की जोड़ी वाली राखी की डिमांड भी काफी ज्यादा है, जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते में प्रेम और भक्ति का रस घोल रही है, जिसे बहनें सबसे ज्यादा पसंद कर रही हैं।

0: राखी में अब कुछ ही दिन बचे हैं और मार्केट का माहौल कुछ ऐसा है जैसे सारी बहनें अपने भाइयों के लिए, अपनी भाभियों के लिए राखियां लेने अभी से मार्केट में उमड़ चुकी हैं। और हमें वो भीड़ जयपुर के बाजारों में नजर आ रही है, जहां पे बाजारों के अलावा जगह जगह पे हर दिन एग्जिबिशंस लगाई जा रही है, जहाँ पे सिर्फ राखी नहीं पर साथ ही में गिफ्टिंग का भी काफी सारा सामान मिल रहा है। और आप राखी पे आजकल क्योंकि मिठाइयों के ऑल्टरनेटिव बहुत ज्यादा चलते हैं, तो उसकी जगह पे आप अपने भाई के लिए क्या ले जा सकते हैं, उनके ऑप्शंस भी इन एग्जिबिशन पे साथ में मिलते हैं। बहुत ही यूनिक राखियां इस बार हमें इन जगह पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे क्योंकि हम आपको जयपुर की झलक ये दिखा रहे हैं, तो जयपुर में राजस्थानी कल्चर जो है वो भी इन राखियों में देखने को मिल रहा है, जहाँ कोई राखी खम्मागणी बोल रही है तो कोई राम राम सा बोल रही है। और ये पगड़ी देख के, ये हाथ जोड़े जो राजस्थानी मनवार होता है वो देख के हर किसी को पता चलेगा कि ये जो राखी बांधी गई है ये किसी राजस्थानी ने बांधी है। और इसके अलावा भी कई सारी यूनिक राखियां यहाँ पे नजर आ रही है, जैसे राधा कृष्ण की जो राखी होती है वो इस बार बहुत ट्रेंडी हो रही है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऐसी एग्जीबिशंस में लड्डू गोपाल की जो पोशाक होती है वो मिलती है, पर इसी थीम में इस बार ये राखियां भी आई है, क्योंकि बहनों का कहना होता है कि हमारा भाई जो है वो कृष्ण समान है और उसकी अगर जोड़ी बने तो वो राधा कृष्ण की जोड़ी जैसी हो।
1: राखी अब सिर्फ एक पारंपरिक सूती डोर नहीं रह गई है, युवा पीढ़ी की पसंद को देखते हुए इस बार बाजार में क्रिस्टल राखी का जबरदस्त ट्रेंड छाया हुआ है। इसके अलावा राखी के साथ दिए जाने वाले गिफ्ट्स की भी अलग अलग वैरायटी मौजूद है।
2: इस टाइप के राजस्थानी पैटर्न के काफी सारे राखियां आई हैं अब आजकल। ये वाला पैटर्न देखो, राधा कृष्ण के पैटर्न पे, ये सब यूनिक पैटर्न्स हैं। बाकी कॉमन तो अपने को सब जगह मिल जाती, कलकत्ता टाइप की राखियां तो सब जगह मिल जाती, पर ये राजस्थानी राखियां बहुत यूनिक होती हैं और बहुत रेयर मिलती हैं। तो मुझे इस अभी क्या है, कस्टमर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कलेक्शन और काफ़ी अच्छा निकल रहा है, तो इसीलिए मैंने इस पैटर्न पे जाना चाहा।
0: इसके अलावा सबसे ज़्यादा हर एक कस्टमर क्या चाह रहा है इस बार?
2: कस्टमर्स को इस टाइप की राखियां बहुत पसंद आ रही हैं इस बार, पेयर्स में और सिंगल राखियां राजस्थानी पैटर्न में काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को और सब लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लोग।
0: एक चीज मैं जानना चाहूंगी पर्सनली आपसे कि मैम, मिनिमल चीजों का आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया, छोटी से छोटी चीज अक्सर कोई पसंद करता है, राखियां भी ऐसा होता है कि जितनी छोटी और लंबे समय तक चलती है, तो लोग ऐसी फंकी राखियों पे जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर जैसे हर चीज में मिनिमलिस्टिक चीजें चाह रहे हैं तो वैसे राखियों में भी छोटी राखियां ही पसंद की जा रही
2: है? जैसे लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, कई लोग छोटी राखियों पे भी जाते हैं, कई लोग बड़ी राखियों पे भी जाते हैं, पर ये वाला कंसेप्ट नया है, इस कंसेप्ट पे लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस कंसेप्ट को।
1: बाजार में जो सबसे अनोखा और चौंकाने वाला ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो है हीलिंग स्टोन राखी। भाई की कलाई पर सजने वाला ये धागा अब केवल एक रक्षा सूत्र नहीं बल्कि सेहत और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम भी बन गया है।
0: कि सिर्फ मीनिंगफुल गिफ्ट ही नहीं, मीनिंगफुल राखी भी देना, यानी कि क्रिस्टल्स जो हैं वो एक नया ट्रेंड बन गए हैं, कि जैसे आपकी ज़िंदगी में एक वो मीनिंगफुल तोहफा भी, तोहफा के रूप में ही वो राखी आपको मिले, जिसको आप पहने तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने लग जाए और जो भी इन चीज़ों में मानते हैं उनके लिए काफ़ी लकी ये साबित होती है। तो ऐसे में क्रिस्टल राखी और उससे जुड़े हुए जो तमाम चीज़ें हैं वो भी इस बार बहुत बड़ा ट्रेंड बन गई है। हम यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो बैंड्स हैं, ये चेन्स के रूप में, ब्रेसलेट्स के रूप में, बैंड्स के रूप में इस बार अलग अलग क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं, स्टोन्स नजर आ रहे हैं, जो कि बहनें अपने भाइयों के लिए, भाभियों के लिए ले रही हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्रिस्टल ले रहे हैं, आपको बाकायदा बताया जा रहा है कि उनके लिए, जिनके लिए भी आप ये ले रहे हैं, तो कौन सा बेहतर है, किस रूप में बेहतर है वो बताया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि कौन सा स्टोन सबसे अच्छा रहेगा, आपको मल्टीपल स्टोन्स लेने चाहिए, सिंगल स्टोन का ही लेना चाहिए। उसके अलावा भी कैंडल्स ऐसी हैं जिनकी फ्रेग्रेंस भी हीलिंग के लिए काम करती है।
1: नेचुरल क्रिस्टल्स और सेमी प्रेशियस स्टोन से बनी ये राखी

0: भाव नहीं हो, उसके साथ उसमें कुछ प्रोडक्टिव भी ऐसा मिले कि वो उनके बेटरमेंट के लिए काम आए। जैसे एक बच्ची ने मुझे बोला कि मेरे भाई को एक्सप्रेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, वो जो भी फील करते हैं बोलता नहीं है, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप लैपिस का उसको पहनाओ, इससे उसका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिवेट होगा और वो अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाएगा। जब वो बेटर एक्सप्रेस करेगा तो उसकी लाइफ ईजियर होगी और वो अपने पोटेंशियल में और ज़्यादा अच्छा कर सकेगा। हमारे देश का और इस विश्व के भविष्य के लिए ये बच्चे जो है ये हमारा फ्यूचर है, तो इनके बेटरमेंट हो। जिन लोगों को, जैसे मान लीजिए किसी को बोन्स की या ब्लड रिलेटेड इशू है, तो उनको मैं रेड जास्पर सजेस्ट करती हूँ कि आप ये पहनोगे तो आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होएगा और आपके ये इश्यूज निकलेंगे। तो राखी के धागे के साथ, बहन के प्यार के साथ अगर एक स्टोन और उसमें कुछ एड ऑन कर रहे हैं तो लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं। अभी
1: भाई की कलाई को सबसे जुदा और ट्रेंडी बनाने के लिए बहनें घंटों वक्त बिताकर इन नए डिजाइनों को चुन रही हैं। सिंपल धागे की जगह अब स्टाइलिश कड़े और फैंसी ब्रेसलेट बैंड्स ने ले ली है। इसके अलावा युवाओं के लिए क्रिस्टल राखी और कश्मीरी वॉच राखी का जबरदस्त क्रेज है, जो कलाई पर सस्ते हैं। घड़ी और राखी दोनों का एक साथ लुक देती है।

0: महिलाओं में भी वॉचेस के रूप में जो राखियां हैं, जैसे कश्मीरी चूड़ियां जो अभी हाल ही में एक ट्रेंड बनी थी, वैसे ही कश्मीरी लुक वाली जो वॉचेस हैं वो मार्केट में आ रही हैं, जिसको एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, हर महिला चाह रही है क्योंकि बहुत बजट फ्रेंडली है तो वो इसको खरीदे। और कुछ डिजाइंस ऐसी भी हैं जो महिलाएं अपने भाई या भाभी के लिए नहीं पर इस बार खुद के लिए लेना भी पसंद कर रही हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ स्टडी जयपुर।
1: रक्षाबंधन के पर्व में रंग उमंग के साथ देशभक्ति का जोश और जज्बा भी देखने को मिल रहा है। कहीं बहनों की राखियां सरहद पर तैनात जवानों के लिए देशभक्ति का संदेश लेकर रवाना हो रही हैं, तो कहीं डाक विभाग सात समंदर पार बैठे भाइयों तक बहनों का प्यार सुरक्षित पहुंचाने में जुटा है। साथ ही ये त्यौहार महिलाओं के हुनर को आत्मनिर्भरता का नया मंच भी दे रहा है। यानी इस बार राखी की कलाई पर सिर्फ प्यार का धागा नहीं बंधेगा बल्कि इसमें देश प्रेम की ताकत, भाईचारे की मिठास, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी नजर आएगा।

0: रक्षाबंधन प्यार, विश्वास और स्नेह का वो अटूट धागा है जो न केवल रिश्तों को जोड़ता है बल्कि देश प्रेम, सामाजिक सौहार्द और महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल भी पेश करता है। इस बार रक्षाबंधन का पर्व देश के कोने कोने में अलग अलग रंगों, उमंगों और देशभक्ति के जोश के साथ मनाया जा रहा है। राखी के धागे में सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं बनता, इसमें बंधा होता है प्यार, विश्वास, अपनापन और एक दूसरे की हिफाजत का वादा। लेकिन जब यही धागा घर की चौखट पार कर सरहद तक पहुंचता है तो इसका मतलब और भी बड़ा हो जाता है। कहीं बहनों की राखियां लेकर रक्षा रथ सरहद की ओर रवाना हो रहा है, कहीं डाक विभाग ने राखी को सुरक्षित विदेश तक पहुंचाने का इंतजाम किया है, तो कहीं 32 साल से एक मुस्लिम परिवार राखियां बनाकर भाईचारे की डोर को मजबूत कर रहा है, और कहीं राखी मेले में महिलाओं की मेहनत, हुनर और स्वदेशी उत्पादों की चमक दिखाई दे रही है। यानी इस बार राखी सिर्फ कलाई पर नहीं सजेगी, राखी का रंग रिश्तों से निकलकर देश प्रेम, भाईचारे, महिला सशक्तिकरण और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब तक पहुंच रहा है। त्योहार की पहली खूबसूरत तस्वीर आई है महाराष्ट्र के शिरडी से, जहां साईं दरबार से रक्षा रथ रवाना किया गया। एक राखी जवानों के नाम अभियान के तहत निकली इस विशेष रथ यात्रा में देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के लिए हजारों राखियां भेजी गईं। बहनों ने जवानों की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना के साथ इन राखियों को रथ में सौंपा, जो कच्छ और अन्य सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिकों तक पहुंचेंगे। शिरडी के स्थानीय संस्थाओं और युवाओं ने ये पहल की है ताकि सरहद पर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों तक बहनों का प्यार और सम्मान पहुंचाया जा सके।
1: राखी वीर जवानों के लिए हम यहाँ से हमारे जो जवान भाई है उनके लिए राखी भेज रहे हैं यहाँ से, और वो तो यहाँ नहीं आ सकते इसलिए हम हमारी राखी वहाँ पर भेज रहे हैं। वो हमारी रक्षा करते हैं, भारत की रक्षा करते हैं और हमारे देश के सारे वासी एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उन्हीं की वजह से करते हैं, इस वजह से हम उन्हें राखी भेज रहे हैं। हम उनकी बहनें हैं।
2: हमारे यहाँ

0: छात्रों से के माध्यम से साई दरबार के थ्रू ये जो राखियां भेजी जा रही हैं वीर जवानों को, बॉर्डर पे जो सुरक्षा कर रहे हैं हमारी 24 घंटे 12 महीने लगे रहते हैं, और इस तरह से छात्रों द्वारा ये मार्ग अगर सशक्त किया जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज है और इसका हम सबको समर्थन करना चाहिए।
1: वहीं सात समंदर पार कर अपनों का प्यार पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने भी खास तैयारी की है। हरियाणा के करनाल में डाक विभाग ने बहनों की सुविधा के लिए महज 10 रुपए में खास वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार किए हैं। इससे बारिश के मौसम में भी बहनों की भेजी राखी सुरक्षित अपने भाइयों तक पहुंचे, चाहे वे देश के किसी भी राज्य में हों या विदेश में। ये पहल सभी का दिल जीत रही है।
2: डाक विभाग भारत सरकार ने राखी के जो पावन पर्व हमारा आ रहा है 28 तारीख को, इसके लिए ये पहल की है कि हमने स्पेशल लिफाफा इसके लिए डिजाइन किया है, जिसके माध्यम से हमारी बहनें माताएं अपने भाइयों को करनाल में या दूसरे जिले में या किसी और राज्य में और विदेश में कहीं पे भी इस लिफाफे के माध्यम से राखी भेज सकती हैं। और ये मार्केट में उपलब्ध जो भी सर्विसेज में सबसे कॉम्पिटिटिव रेट में सबसे हमारा सस्ता पड़ता है, और इसमें जैसे विदेश में हमारे करनाल के काफ़ी सारे बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं जो विदेश में रहते हैं, तो इसके माध्यम से जो है विदेश में आप जो है राखी भेज सकते हैं।
3: कहना चाहूंगी डाक विभाग ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है बहन भाई के पवित्र रिश्ते पे, रक्षाबंधन के पवित्र रिश्ते पे इन्होंने 10 रुपए में वाटर प्रूफ एनवेलप चलाया है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस स्कीम में ये जो डाक विभाग पहले भी काफी स्कीमें चलाता रहा है और जो इस बार चलाई है वो रक्षाबंधन पे सबके लिए बहुत अच्छी चलाई है। जो अब हम बहुत खुश हैं बहन भाई आपस में सिर्फ 10 रुपए में कुरियर करवा सकते हैं, वो भी जहाँ भी कैनेडा ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी भिजवाना चाहे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आज मैंने भी यहाँ से पोस्ट करवाई है कैनेडा में, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ।

0: राखी का ये पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे की मिसाल भी पेश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाजारों में जहां एक तरफ भारी रौनक है, वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम परिवार पिछले 32 सालों से राखियां बना रहा है। ये परिवार न सिर्फ राखियां तैयार करता है बल्कि पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाता है, जो सामाजिक ताने बाने और गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है।
1: यहाँ पे जो योजनाएं लगाई हुई है, तो जो घर पे बैठ के जो महिलाएं अपने विकास के लिए कार्य करती है, तो महिला बाल विकास केंद्र में जो यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है, ये इसमें सारी अपनी प्रतिभाएं दिखा रही है और वो सारी प्रतिभाएं अपनी अलग अलग स्टॉल पे, जैसे कि राखी बना रही है कोई बहने ऐसे मेरे तरफ क्रिस्टल के ब्रेसलेट बना रही है, कोई हैंडमेड कपड़े का मतलब एम्ब्रॉयडरी वर्क करके बना रही है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें यहाँ पे है
2: और सरकार की अच्छी मदद है, जैसे हम स्टॉल करके हमारा काम चला सकते हो। दूसरी बात के मैं ये राखी के इससे पहले भी मैंने स्टॉल लगाया था, वहाँ भी मेरे के लिए एक महिला के लिए अच्छी बिकती थी और यहाँ भी इस 14 तारीख से यहाँ मैं स्टॉल रखा है राखी का ही, तो धीरे धीरे चला रहे हैं।
0: रक्षाबंधन का त्यौहार आज महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का जरिया भी बन रहा है। गुजरात के राजकोट में गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विशेष राखी मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का मकसद स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और महिला कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ हाथों से बनी तरह तरह की राखियाँ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए बहनों की दुआएं हो, सरहद पर भेजता डाक विभाग का विश्वास हो, रायपुर में दिखती कौमी एकता की मिसाल हो या राजकोट में झिलमिलाता महिला सशक्तिकरण, ये सब यही बता रहे हैं कि ये रक्षाबंधन हर मायने में बेहद खास है। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, रक्षा सूत्र अभी खरीद सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस हमने आपको बहुत सारे दे दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छे खबरों के लिए देखते रहिए जीएलटी।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: अंतिम पड़ाव पर पहुंची बाबा अमरनाथ की यात्रा, विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रीनगर से निकली छड़ी मुबारक 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचेगी। दिल्ली NCR में रिमझिम बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, यूपी उत्तराखंड सहित देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। निष्क्रिय अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया गया, युवा वकीलों ने फैसले का स्वागत किया। कर्नाटका के तुमकुर में वर महालक्ष्मी उत्सव की धूम, मंदिर परिसर के फूलों से की गई भव्य सजावट, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। लुसानी डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, 88.95 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ हासिल किया दूसरा स्थान, श्रीलंका के रोमेश से महज 9 सेंटीमीटर पीछे गिरा नीरज का भाला। हांगकांग के आसमान को 2000 ड्रोन्स ने किया रोशन, क्विक्सी फेस्टिवल पर की गई चीनी लोक कथा की प्रस्तुति, रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए बन गई यादगार अनुभव।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आपके विचारों की शक्ति के बारे में और जानेंगे कि विचारों के प्रयोग से आपका भाग्य कैसे चमकेगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे भाग्य बढ़ाने का एक उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर 2:49 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 2:49 तक राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर या भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि केवल आप अपने विचारों से अपने पूरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आजकल की आधुनिक बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। विचार कितने प्रभावशाली होते हैं। देखिए, ईश्वर ने दो बड़े जबरदस्त वरदान दिए हैं आपको, एक आपका मन और दूसरा आपकी सोच या विचार। तो सोच या विचार जो है वो ईश्वर का वरदान है। अगर आप अपने विचारों का सही प्रयोग करें तो आप अद्भुत शक्तियां अपने जीवन में पा सकते हैं। और अगर आपको प्रभावशाली तरीके से अपने विचार को बदलना आता है, आप अपने विचारों को कंट्रोल करना जानते हैं, तो विचार से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और एकमात्र विचार अगर प्रबल हो, अगर शक्तिशाली हो, तो जीवन की तमाम समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके विचार केवल आपके ऊपर असर डालते हैं, आपके विचार स्वयं पर, अपने ऊपर और दूसरों पर धीरे धीरे बहुत गहरा असर डालते हैं। आप अपने विचारों की शक्ति को अगर जान लें और विचारों को प्रयोग कैसे करना है ये जान लें, तो आप दूसरे व्यक्ति के मन को भी बदल सकते हैं। विचारों का विशेष प्रयोग जब शास्त्र में गया, जब साधना में गया, तो उसे कहा गया मंत्र। मंत्र क्या है? एक विशेष तरह का विचार है जो प्रकृति में और आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो आपके विचार केवल आपका जीवन नहीं बदलते। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप दूसरे की सोच को भी अपने विचारों द्वारा बदल सकते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें, काले चने का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, तनाव इस समय आपका कम होता जाएगा, करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, विचार जो है ना, ये आपके मन का रिफ्लेक्शन है। कोई भी बात, कोई भी विचार पहले मन में आता है, फिर आपके एक्शन में आता है, और इसीलिए शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आपके जो विचार हैं, देखिए, केवल आपका सोचना, केवल आपके विचार आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कैसे? लगातार किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या घटना के बारे में आप निरंतर विचार करें तो वो सत्य होने की तरफ बढ़ने लगता है, वो मूर्त रूप लेने लगता है। अगर विचार नकारात्मक हैं, आप रोज सोचते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, आपके मन में हमेशा ये चक्कर रहता है, तो याद रखिए, एक न एक दिन आप एक्सीडेंट के शिकार होंगे अपने इसी विचार की वजह से। अगर विचार नकारात्मक हैं तो अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप जिस तरह के नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, प्रकृति में फैलाते हैं, प्रकृति में आपके लिए अशुभ परिवर्तन होने लगता है। अगर आपके विचार शुभ हैं तो प्रकृति आपके जीवन में शुभ परिवर्तन करती है और चीजें आपके पक्ष में घटनी शुरू हो जाती हैं। आपके विचार का आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से बड़ा गहरा संबंध है। जॉन मर्फी की एक बड़ी फेमस किताब है, पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। वो दरअसल आपके विचारों को एक दिशा देने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अपने विचारों को अगर आप पॉजिटिव बनाते चलें, अगर अपने विचारों को शुभ बनाते चलें, तो निश्चित रूप से जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। तो आपके विचार प्रभु आपको ईश्वर तक जब पहुंचा सकते हैं तो जीवन में लाभ और हानि भी करवा सकते हैं। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, उपहार मिल सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में आपके लिए इस समय लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, छोटी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अक्सर हम अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए रत्न पहनते हैं, दान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपने विचारों से खराब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रह आपका खराब है उसकी समस्या को समझिए। मान लिया जो ग्रह आपका खराब है वो स्वास्थ्य की समस्या बता रहा है, तो आप अब लगातार विचार करना शुरू करिए कि ये ग्रह आपके लिए अनुकूल हो रहा है और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। आप कभी मत सोचिए कि आपकी खराब ग्रह की दशा चल रही है तो आपको नुकसान होगा। आप ये मान करके चलिए, ये सोचिए कि ये ग्रह मेरे लिए अनुकूल रहेगा और इस ग्रह के पीरियड में मुझे लाभ होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे आप ये विचार लगातार करेंगे तो उस ग्रह की अशुभता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको अपने आचरण को भी ठीक रखना होगा। अगर ग्रह की वजह से स्वास्थ्य की समस्या होने वाली है तो आप ये सोचिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साथ में डॉक्टर का परामर्श मानिए, खान पान में, जीवनचर्या में सुधार करिए और निरंतर विचार करिए कि आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये विचार आपके ग्रह की अशुभता को बहुत हद तक कम कर देगा। धनु राशि, धन हानि से बचाव करें, ऑफिस में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आप अपने विचारों से अपनी बहुत सारी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। कैसे? आप जब काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का, घर का, कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छे विचार रख करके करिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उस काम में मैं सफल होऊंगा। खाना बनाते समय खास तौर से हमारी बहनें, माताएं अच्छी सोच रखें, क्रोध में, तनाव में, टेंशन में भोजन ना बनाएं, मन में आनंदित रहें। देखिए, जीवन है तो कष्ट तो आएगा ही, जीवन है तो मन प्रसन्न भी होगा और अप्रसन्न भी होगा, लेकिन आप अपने मन को समझा करके मन को ठीक रखने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति से संबंध खराब है उसके बारे में अच्छा सोचिए। हालांकि इतना आसान नहीं है, जिससे आपके संबंध बिगड़े हों उसके बारे में अच्छी सोच आती नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करके उसके बारे में अच्छा सोचें और मन में ये सोचें कि मेरा संबंध उसके साथ बेहतर हो जाएगा, तो आपके संबंध उस व्यक्ति से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जो काम नहीं हो पा रहा है या काम होने में लगातार अड़चन आ रही है, आप लगातार अपना प्रयास करते रहें और लगातार अपने मन में विचार करते रहें कि मेरा काम बनने वाला है, मेरा काम होने वाला है। जब भी आप घर से निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, आप मन में ये सोच कर निकलिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा और आज मुझे हर काम में सफलता मिलेगी। रात को सोते समय प्रार्थना करने की आदत डालिए, दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, भगवान से प्रार्थना करिए और अच्छे विचार करते हुए सोइएगा। रात का अंतिम विचार अगले दिन के सुबह का पहला विचार होता है, तो रात में अगर आप अच्छे विचार करके सोएंगे, भगवान से प्रार्थना करके सोएंगे, तो अगले दिन की सुबह से ही आपके मन में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो रात को सोने के पहले उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पलंग पर बैठिए, भगवान का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। अगर आपको बार बार बीमारी का वहम होता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे वो बीमारी हो जाएगी, अगर बेवजह बीमारी के वहम से परेशान हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे नहाइए जरूर, स्नान जरूर करें, एक चांदी का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में पहने और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय नमः शिवाय का जप करते रहें, आपके वहम की समस्या दूर होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। इस बार क्या है चंद्र ग्रहण की स्थिति? चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव? चंद्र ग्रहण अलग अलग राशियों पर कैसे डालेगा असर? जानिए मेरे साथ उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: भगवान सबको कोई ना कोई कृपा दिए हुए हैं, सबके जीने का अपना अपना तरीका है, सब कुछ निश्चित है, नियति भी निश्चित है, नीति भी निश्चित है, कोई किसी का भाग बदल नहीं सकता, लेकिन मिलने वाली पीड़ा या कष्ट को हटाया तो नहीं जा सकता, घटाया जा सकता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सुपाय विधाता। कोई भी किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, सबके सुख दुख का कारण आदमी खुद है। आपको कोई दुख मिल रहा इसके कारण आप ही हैं, चाहे आपको अनजाने में मिल रहे हो या जाने में, आपने कोई काम जानबूझकर किया हो या अनजाने में, उसका कारण कुछ भी बन सकता, चाहे वो बाधा बन जाए, विपत्ति बन जाए, दैहिक बन जाए, दैविक बन जाए या भौतिक हो जाए। शरीर से पीड़ा मिल सकती, प्रेतों से पीड़ा मिल सकती, या फिर साधनों से संसाधनों से पीड़ा मिल सकती, पर असली कारण क्या है यह समझना आवश्यक। असली कारण पीड़ा का है आपका कर्म। जो जो आपने बीज बोए हैं वो आप काट रहे हैं। तो लोग हमारे पास आते कि आप क्या कर्म काटते हैं? नहीं। तो क्या आप भाग बदल देते हैं? नहीं। तो फिर हम आपके पास क्यों आए? बात सही है आपकी, हम आपके भाग नहीं बदलते, हम आपके कर्म नहीं काटते, पर इतना कर सकते हैं, आपको ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं कि जो पीड़ा आपको 10 कोड़ों की मिलनी है वो 1 कोड़े में निकल जाएगी। एक किलो रुई और 1 किलो लोहे का बांट या पत्थर, आपने कोई कर्म किया और आपके भाग्य विभाग्य में लिखा गया कि आपको 1 किलो का भार फेंक कर मारा जाए, आपने ऐसा कर्म किया कि 1 किलो का वजन आपके सिर पर फेंका जाए, तो यदि 1 किलो का पत्थर सिर पर गिरेगा तो खपड़िया फूटेगी, टांके लगेंगे, लेकिन जब तक कोई तुम्हें महात्मा मिल जाए वो आशीर्वाद दे दे कि 1 किलो का वजन का चोट तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब पत्थर की बजाय रुई से लगेगा, तो वजन बराबर होगा पर पत्थर की चोट टांके देगी, रुई की चोट में तुम्हारा ध्यान जाएगा कि कुछ गिरा कुछ लगा पर खपार ना फूटेगा। तो आपने जो कर्म किए हैं वो उतना ही आप पाओगे, बस दुख भोगने का आपका तरीका बदल जाएगा। दूसरी बात, पागलों, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया वो दुख पाएगा। जन्म लेने का मतलब यह है कि दुख पाना है, और तुम्हें सुखी आदमी कोई कर नहीं सकता सिवा तुम्हारे, सुखी होना है तो तुम ही हो सकते, तुम्हें दूसरा कोई सुखी नहीं कर सकता। अब सुखी होने का कोई हमसे मंत्र पूछे, इतना सा छोटा मंत्र हमें आता है कि शायद आप उस पर चल पाओ तो सुखी हो जाओ, शायद आप उस मंत्र को पकड़ पाओ तो सुखी हो पाओ, शायद आपको वो मंत्र याद हो जाए तो आप सुखी हो पाओगे, शायद आपके चित्त में वो बात बैठ जाए तो सुखी हो पाओगे। और वो बात बहुत छोटी सी है, इतनी सी बात है कि अपनी जिंदगी के मालिक खुद मत बनो, अपनी जिंदगी के मालिक बालाजी को बना दिया जाए। बस इतनी सी बात, किसी कंपनी का मालिक तब टेंशन में होता है जब मालिकाना हक उसका होता है। नौकरों को चिंता नहीं होती, वेतन से लेना देना, फैक्ट्री कल बंद होती हो आज हो जाए दूसरी देख लेंगे, पर टेंशन मालिक की होती। शेयर गिरने लगे तो चिंता मालिक को होती, प्रोडक्शन कम हो जाए तो चिंता मालिक को होती। वैसे ही जब तक तुम अपनी जिंदगी के मालिक रहोगे चिंता तुम्हारी रहेगी, और जिस दिन तुम अपनी जिंदगी के मालिक परमात्मा को बना दोगे तो चिंता परमात्मा की हो जाएगी। पर एक अजीब बात है, हम लोगों के जीवन में सुख अंदर है, शांति अंदर है, और खोजी बाहर जा रही। जैसे कि मृग कस्तूरी को खोजता है वन में, रहती उसकी नाभि में पर वो खोजता वन में, वैसे ही हम लोगों का हाल है। अरब की एक बहुत प्रसिद्ध महिला हुई मुसलमानों के देश में, बड़ी ऊंची महिला हुई, बड़ी फकीर हुई, उसका नाम था राबिया। राबिया नाम की जो महिला हुई अरब में, वो बहुत पहुंची हुई थी, बड़े बड़े लोग उसके पास दर्शन करने जाते थे। एक रात शाम के समय एक घटना हुई कि वो अपनी गली में घर के बाहर कुछ खोज रही थी, तो गांव के लोग आए और पूछा कि बड़ी देर से आप गली में कुछ खोज रही हो, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरी जो सुई थी वो सुई खो गई है और मैं सुई को खोज रही हूं। तो गांव वाले भी लग गए, क्योंकि गांव के लोग बड़ा प्रेम करते थे उससे, बड़ी पहुंची हुई महिला थी, बड़ा नाम था उसका, तो गांव के लोग भी सुई खोजने लगे। पर यही कोई एक घंटे हुए पर सुई ना मिली, दो घंटे हुए सुई ना मिली, और वो चिल्ला रही कि खोजो, और गांव के लोग आ गए, एक एक कोना कोना छान मारा गली का, वहां भी खोजा जहां ना खोजना चाहिए, नाले में खोजा, किनारे पर खोजा, एक एक रेत के कंकर कंकर को उठाया गया, सुई ना मिली। तो गांव वालों ने पूछा, मां आपने सुई फेंकी कहां या गिरी कहां, ऐसा कोई अंदाजा है प्रॉपरता की उसी एरिया भर में खोजा जाए ताकि मिल जाए? उसने कहा गिरी तो मकान में अंदर थी। तो गांव वाले सिर पकड़ के बैठ गए कि हमें तो लग रहा है तुम पागल हो गई हो। राबिया बोली, क्यों? बोली जब गिरी अंदर है तो खोज बाहर क्यों रहे हो, और तुम क्यों बाहर खोज रही जब अंदर गिरी? तो उसने कहा दरअसल उजाला अंदर नहीं था, बाहर था, इसलिए सोचा यहां खोज लू। गांव वाले बोले फिर तो और पागल हो, उजाला अंदर बाहर है तो अंदर की वस्तु बाहर मिलने का क्या मतलब है? उजाला बाहर है तो यहां सुई ना मिलेगी क्योंकि वो अंदर गिरी, वहां उजाला करो, सुई खोजो, वही मिलेगी। राबिया बोली यही तो तुम्हें कहना चाहते। गांव वाले बोले मतलब? बोले सुख अंदर है और तुम बाहर खोज रहे हो, जहां है ही नहीं वहां तुम कितना भी खोजो तुम्हें मिलेगी थोड़ी, सुई अंदर गिरी है बाहर ना मिलेगी चाहे जितना खोजो। वैसे ही सुख और शांति बाहर है ही नहीं, तो तुम्हें मिलेगी कहां से? है तो वो अंदर, जब अंदर खोजा जाएगा तो मिलेगी। और मेरे पागलों, उस शांति और सुख का एक नाम है, वो बड़ा प्यारा नाम है। और चाहो तो तुमसे बड़ा कोई अमीर ना होगा दुनिया में, यदि तुम बनना चाहो तो, नहीं बनना चाहते हो तो बहुत बड़ी आदमी, यदि तुम बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हो तो उसका भी हमारे पास बहुत अच्छा मंत्र है। अब वो ये है, जो भी तुम्हारे पास अभी है उसी में संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि तुम पर जो अभी है उसको पाने के लिए भी करोड़ों लोग लाइन में लगे, लाखों लोग लाइन में लगे। तुम पे आंखें हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके आंखें नहीं है। अब हुए तुम अमीर के नहीं, तुम पर परिवार है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके परिवार नहीं। तुम पर खाने के लिए थोड़ी व्यवस्था है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जो भीख मांग के खाते। तुम्हारे पास चलने के लिए पांव है, लाखों लोग ऐसे हैं जिन पर पैर ही नहीं। तुम उन्हें मत देखो जो हवा में उड़ रहे हैं, तुम उन्हें देखो जो नीचे घिसट रहे हैं। तुम पाओगे तुमसे ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं। और पूरी दुनिया में आदमी दुखी ही इसीलिए कि उसके पास जो है उसकी कद्र नहीं कर रहा, और जो है नहीं उसकी इज्जत कर रहा। पड़ोसी की घास ज्यादा हरी नजर आती, खुद की कम। पड़ोसी की गाड़ी ज्यादा चमकती, खुद की कम। दूसरों की लुगाई या दूसरों का पति बड़ा समझदार और बढ़िया लगता है, खुद की और खुद का। ये भावना ही तुमको गरीब बनाए, ये भावना ही तुमको बहुत दुखी किए, ये भावना ही तुम्हारे संकट का सबसे बड़ा कारण है। अब मेरे पागलो, आज की बात तुम एक बात घर लेके जाओ, अब वो बड़ी मजेदार बात यही है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। और तुम्हें मांगने का मौका मिले तो वस्तुओं को ना मांगा जाए, और तुम मांगते भी क्या हो भगवान से, दो कौड़ी की बात है। धन हो जाए, कद हो जाए, पद हो जाए, लुगाई मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, बस हो गया। इससे ज्यादा तुम मांगते क्या, मकान मकान मांग लेते हो। थोड़ा भक्त वाले लोग होते हैं, भक्ति भाव वाले, भजन भजन मांग लेते हैं, मति ठीक हो जाए, विचार ठीक हो जाए, इतना ही मांगते हो, बाकी ज्यादा तुम कुछ मांगते नहीं। इन सबकी कीमत दो कौड़ी की है। मांगने का तुम्हें मौका मिले तो कभी हमारे जैसा मांगना। जब हमारे गुरु हमें पहली बार मिले थे 9 साल की आयु में, सन्यासी बाबा इसी पेड़ के पास, दादाजी हमारे जिंदा थे जिन्होंने हमें साधना दी, सिद्धि दी। रात थी अंधेरी, रात के 12 या 1 बज रहे थे। हमारी मां ने गांव से हमें भेजा यहां कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, कुछ मांग लाओ। हम धन मांगने आए थे, झोपड़ी में बैठते थे, वो मंदिर के बगल में झोपड़ी थी हमारे गुरु की, लंबी जटा, आंखें लाल रहती थी, आंख चढ़ा के बात करते थे, बात बहुत कम करते थे, मुस्कुराते ज्यादा थे, चाय हर घंटे में पीते थे। जैसी आज बारिश हुई ऐसी बारिश थी, रात को बड़ी बारिश बरस रही थी, बादल चमक रहे थे, बिजली गिर रही थी, और हम यहां पगडंडी के सहारे, अंधेरा था, कोई लाइट वाइट तो यहां थी नहीं, अंधेरा था, यही मंदिर पर आकर के गए। अपने गुरु को हमने बात बताई कि 3 दिन से खाना नहीं बना, अब तो आप सन्यासी हो गए, पहले तो आप ग्रस्त थे, तो आपके ही नाती हैं हम, तुम्हारे बेटा के बेटा है, हालत खराब है, एक ही कुर्ता है, गांव में भी अब लोग भिक्षा नहीं देते हैं, गांव में भी लोग जाएं तो कई लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, पिताजी हमारे कुछ कर नहीं रहे, हमारी भी अवस्था बढ़ रही है, मां भी बड़ी परेशान हो रही है, कुछ दया करो, हमारे जीवन में कुछ हो जाए ठीक ठाक, कुछ दो। अंधेरी रातें काटती हैं। एक छोटा सा कमरा था, आप लोगों में से किसी ने जन्मभूमि पे हमारे जाकर के देखा होगा, एक छोटी सी जन्मभूमि जहां पांच लोगों का परिवार एक ही जगह रहता था, पांच लोग एक ही जगह रहते थे, तो छोटा सा कमरा है, आप दया करो कुछ। उस रात हमें क्या पता कि हमारे जीवन में घटना होने वाली है, और ठीक रात 12 बजे हमारे गुरु ने कहा, अकेले हम और वो थे, उस दिन बड़े बिजी थे हमारे गुरु, बड़े व्यस्त थे, गांव के पास हेडपंप था, यहां नहाने की कोई सुविधा नहीं थी, बोले जाओ नहा करके आओ। और हम स्नान करके आए, हाथ में बाल्टी ली, एक फटी हुई तौलिया थी हमारे पास, उसको हमने पहना, ठंड लगने लगी, तो जो धूना गुरु ने रमा रखा था उस धूना को हम तापने लगे। रात को 12-1 बजे के बाद जहां सन्यासी बाबा की समाधि है वहां पर हमारे गुरु हमें ले गए, और 40 मिनट तक दादाजी कुछ पढ़ते रहे, पता नहीं इतना याद नहीं हमें रात का, पर कुछ पढ़ रहे थे वो, बड़ी जोर से हवा चली और हमसे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें डरना नहीं, हाथ जोड़ लो, हमने हाथ जोड़ लिए, बोले डरना ना, तो इधर उधर हम देखने लगे, बच्चे ही थे, कभी पीछे देखे कभी आगे देखे, अंधेरा था, यहां इतना कुछ बना भी नहीं था, एक झोपड़ी भर थी, डरने लगे, तो देखा कि जो पेड़ लगा है अभी समाधि के पास पलास का छेवला का, वो पेड़ बड़ा हिल रहा है, हमें लगा बारिश का मौसम है, हवा चल रही है इसलिए हिल रहा होगा, पर उससे बड़ी जोर जोर की एक आवाज आई, और एक कोई 16-17 फीट का लंबी जटाओं वाला एकदम चमकती हुई त्वचा और हाथ में एक बड़ा सा चमीटा लिए हुए और पैर में बड़ी ऊंची खड़ाऊ पहने उतर रहा है, अब बड़े नीले रंग की एक लाइट गिरी, तो हम डर गए, हमने अपने गुरु को पकड़ा, रोने लगे, बच्चे थे तो रोना स्वाभाविक था, और इतनी लंबी हाइट का कोई देख ले, हम तो तुम रोने लगोगे, रोने लगे, तो हमने जोर से पकड़ा, हमारे गुरु ने थपकी मारी, डरो मत बात करो, और गए हम, थोड़ी देर में सांस आई ठीक लगा, तो पूछा डरते डरते कि कौन हो तुम। उसी रात जो पहली आवाज निकली थी हमारे गुरु की, वो बड़ी अजीब आवाज थी, आज भी हमारे कानों में वो गूंजती रहती है, वो सीधी सी आवाज थी, बड़ी करुणा से भरी हुई, मानो कोई रोता हुआ गला भरा हुआ बोल रहा हो, और सीधी सी आवाज कि मैं तुम्हारा बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर मिली, थोड़ा लगा कि हम पहचान गए, तो हमने कहा कि हम नहीं पहचाने, तब हमारे दादा ने बताया पीछे से कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के, ये तुम्हारा इंतजार थे, और तुम्हारे जन्म होने के पहले हमारे सन्यासी बाबा ने हमारे दादा को कहा था कि राम कृपाल गर्ग के जो बड़ा बेटा होगा वो जन्म के ठीक बाद हमें दे देना।

0: इस बार क्या है चंद्र ग्रहण की स्थिति, चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, चंद्र ग्रहण अलग अलग राशियों पर कैसे डालेगा असर, जानिए मेरे साथ उप छाया चंद्र ग्रहण के बारे में सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ

0: कोई तेल स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
2: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
3: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
3: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आए हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
5: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
6: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
6: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
8: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था, अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने इस उम्र में। फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का

0: मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
1: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
3: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
4: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
2: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
5: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
7: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
0: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
8: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
9: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है, ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
10: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
11: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: अंतिम पड़ाव पर पहुंची बाबा अमरनाथ की यात्रा, विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रीनगर से निकली छड़ी मुबारक, 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंची। दिल्ली NCR में रिमझिम बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया, युवा वकीलों ने फैसले का किया स्वागत। कर्नाटक के तुमकुर में वर महालक्ष्मी उत्सव की धूम, मंदिर परिसर की फूलों से की गई भव्य सजावट, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। हांगकांग के आसमान में 2000 ड्रोन से किया गया उसको रोशन, क्विक्सी फेस्टिवल पर की गई चीनी लोक कथा की प्रस्तुति, रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए बन गई यादगार अनुभव। बहुप्रतीक्षित हाईबीड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आउट, 4 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज, हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकेंगे दर्शक।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं गोल्ड यानी कि सोने की, जो एक बार फिर घोड़े पर सवार है। अरसे से सुस्त पड़ा सोना अब 1,60,000 पार जा चुका है और चांदी भी पीछे नहीं। त्योहारी सीजन में सोने चांदी की कीमतों में इस उछाल का क्या असर हो सकता है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। समझेंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में अचानक उछाल क्यों आया है, अमेरिका और डॉलर का गोल्ड से क्या कनेक्शन है। इस वक्त ग्राहकों के मन में सबसे बड़ी उलझन इस बात को लेकर है कि गहने अभी खरीदे जाएं या कीमत घटने का इंतजार किया जाए। दुविधा यह भी है कि अगर अभी चूक गए तो कहीं ज्यादा कीमत ना देनी पड़े। इन सभी सवालों पर जानकारों की राय आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोने और चांदी की कीमतों में आई अचानक तेजी से। सोने चांदी के दाम पिछले कुछ महीनों से गिर रहे थे, लेकिन अब फिर से इनमें बढ़त दर्ज की जा रही है। सोने का भाव पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा हो चुका है और जानकार मान रहे हैं कि ये तेजी अगले महीनों तक यूं ही बरकरार रहने वाली है। सभी के जहन में यह सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोना घोड़े पर सवार हो गया है। जानकार मान रहे हैं कि इसकी वजह अमेरिका है। दुनिया में इस वक्त जो अनिश्चितता का माहौल है, उसकी वजह से सुरक्षित निवेश के लिए सोना ही सबसे मुफीद है। लेकिन इस वक्त लाख टके का सवाल यह है कि क्या सोना जल्दी ही 2 लाख के आसपास चला जाएगा। चलिए जानकारों से समझते हैं।
1: हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्योंकि सिर्फ सोना ही है जिसकी चमक कभी कम नहीं होती। ना चमक घटती है और ना कीमत, बल्कि अब तो ये हाल है कि चंद रोज पहले जहां सोने की दुल्की चाल थी, अब सरपट दौड़े जा रहा है और चंचल चांदी भी सोने का खूब साथ दे रही है। सीधे शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी है। 2 दिनों में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX पर सोना 3,000 रूपए से ज्यादा चढ़ चुका है। इस तरह सोने की कीमत 1,200 रूपए चढ़कर 1,61,000 रूपए प्रति 10 ग्राम तक जा चुकी है और इसके साथ चांदी की कीमतों में करीब 10,000 रूपए की तेजी आई है, जबकि चांदी की कीमत 2,100 रूपए चढ़कर 2,45,000 रूपए प्रति किलो है। अब सवाल लाजमी है, कुछ दिन पहले जहां सुस्ती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोने की कीमत उछल गई? तो जान लीजिए कि इसका कनेक्शन अमेरिका से है। आर्थिक हालत ठीक कहने के लिए अमेरिका ने अपने बॉन्ड वापस खरीदने शुरू किए, तो इसका असर ये हुआ कि डॉलर सस्ता हो गया और जब भी डॉलर सस्ता होता है सोने की कीमत बढ़ जाती है।
2: ये जो हाल की तेजी आई, ये तेजी आने का कारण डॉलर का कमजोर होना था। और डॉलर कमजोर क्यों हुआ है, क्योंकि अमेरिका के जो 30 साल के बॉन्ड थे, उस 30 साल के बॉन्ड्स की जो एक्सपायरी थी वो बहुत लंबी थी, तो अमेरिका को लगा कि इसकी यील्ड बहुत बढ़ रही है। जब आप बहुत दूर होते हैं एक्सपायरी के नजदीक आते हैं जैसे जैसे, तो यील्ड बढ़ जाती है, कीमत कम हो जाती है। तो यील्ड बढ़ने से अमेरिका में पैसा महंगा हो रहा, और मकान नहीं बिक रहे थे, मॉर्टगेज करने में लोगों को दिक्कत आ रही थी, लोगों को पैसा बाजार से उठाने में दिक्कत आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, बिजनेसमैन है, उनको पैसा सस्ता चाहिए, तो उन्होंने अमेरिकन ट्रेजरी को कहा कि आप बॉन्ड का बायबैक करिए। तो उन्होंने बॉन्ड खरीदे जिससे वो नए बॉन्ड इशू कर सके। इससे क्या हुआ कि डॉलर मार्केट में बहुत सारा आ गया, और डॉलर के आने से जैसे जैसे डॉलर कमजोर होता है, समझने वाली बात है, वैसे वैसे सोना चांदी की कीमतें बढ़ती हैं।
1: सीधी सी बात यह है कि जब कभी डॉलर डगमगाता है, दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता आती है और तब निवेशक सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सोने का रुख करते हैं, यानी जमकर सोने की खरीदारी शुरू हो जाती है और नतीजा इसकी कीमत बढ़ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
3: अब सेफ हेवन नहीं रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसा मानते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मूव डॉलर टू गोल्ड की तरफ जाते हुए दिख रहा है, और यूएस डॉलर का लगभग जो रिजर्व में हिस्सा है वो 57.13% से लेकर के मतलब 57 से 58% के आसपास है। अभी डॉलर अभी भी प्रमुख रिजर्व मुद्रा है, लेकिन रिजर्व विविधीकरण भी जारी है और रिजर्व से डॉलर से हटकर के गोल्ड की तरफ जाने के कारण निश्चित रूप से गोल्ड के भाव बढ़े हैं।
1: ये बात तो सभी जानते हैं कि सोने से सिर्फ श्रृंगार नहीं होता, बल्कि ये पीली धातु पर दुनिया के बाजार का दारोमदार है, यानी जिस देश के पास जितना सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी उतनी ताकत। इसीलिए चीन अमेरिकी डॉलर से मुकाबला करने के लिए सोने की ताबड़तोड़ खरीदारी कर रहा है। सिर्फ चीन ही नहीं, कई देशों के केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। जाहिर है इसी से सोने के भाव बढ़ गए हैं।
4: कि चाइना वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहता है, चाइना चाहता है कि मैं डॉलर का मुकाबले मेरी करेंसी पूरे वर्ल्ड में चले, तो वो चाइना की खरीदारी है। लेकिन सभी देशों के बैंकों की, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी अगर लगातार चलती है तो सोना फिर 2 लाख रुपए के ऊपर भी पहुंच सकता है।
1: कुल जमा बात यह है कि सोने की कीमतों में उछाल भारत के बाजार से तय नहीं होती, इस पर अमेरिकी सरकार के फैसलों का बड़ा असर पड़ता है। इस वक्त जो हालात है, जैसी अनिश्चितता है, उसमें निवेशकों के सामने सोना ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। हाँ, पर चांदी की कहानी थोड़ी अलग है। सोने की तरह सरपट भाग रही चांदी की कीमत सिर्फ निवेश की वजह से नहीं है, असल में सोने के उलट चांदी का इंडस्ट्रियल यानी उद्योग धंधों में इस्तेमाल होता है। वहाँ मांग बढ़ती है तो चांदी भी उछल जाती है।
3: तो चांदी की डिमांड बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंडस्ट्रियल डिमांड। मूल कारण इंडस्ट्रियल डिमांड, तीसरा कारण जो ईवीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आने वाले समय में हम वृद्धि देखेंगे और वो मार्केट अप हो रहा है, जिससे कि चांदी की डिमांड बढ़ेगी। और जो दूसरा मूल कारण है, जो मुख्य कारण है, वो कारण है आपका जो है ना एआई सेक्टर का बढ़ता हुआ प्रभाव और एआई की इंडस्ट्री का, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मेयार अपनी जगह है। जहां तक भारत की बात है, सोने चांदी की कीमतों का असर सीधे गहनों की खरीदारी से जुड़ता है और आम आदमी के जहन में बस एक सवाल आता है कि अभी खरीदे या इंतजार करे, कीमत और बढ़ेगी या पहले की तरह घटेगी। इन सवालों का गारंटी से जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सब कुछ अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर निर्भर है। हाँ, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में कीमत 1,70,000 के पार जा सकती है, कम से कम नवंबर तक इसके कम होने के आसार नहीं।
2: इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां से मुझे 70% चांस, 70% चांस इसके ऊपर जाने का लग रहा है, 30% चांस इसके करेक्शन का भी लग रहा है। वो क्यों लग रहा है 30%, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं 93-94 डॉलर के आसपास है। मान लीजिए कच्चा तेल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से, बाबल मंदेब में बार बार बंद करने की धमकी आने से, अगर ये मान लीजिए 100, 110, 120 चला जाता है कच्चा तेल, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, काल्पनिक सिचुएशन दे रहा हूं, तो फिर थोड़ा सा सोने चांदी पर दबाव आ सकता है, क्योंकि ऐसे में फिर अमेरिकन फेड, जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, उसको रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं, महंगाई वहां पर बढ़ सकती है। पर क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म पोल्स है नवजोत, और डोनाल्ड ट्रंप को हम सब अच्छी तरह आप जान गए हैं, वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अमेरिकी जनता त्रस्त हो जाए, नाराज हो जाए, उनको वोट चाहिए, नहीं तो उनकी रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी। तो इन सब बातों को देख के मुझे लग रहा है कम से कम नवंबर तक मुझे बहुत बड़ी कोई करेक्शन आने की उम्मीद नहीं लग रही है। हाँ, एक बार इलेक्शन हो जाते हैं अमेरिका में और मान लीजिए उनके रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है, तो डोनाल्ड ट्रंप से आप कुछ अटपटे कदम की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए दर्शकों को, निवेशकों को तैयार रहना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात करी अनुराग जी ने कि सोने के साथ सो जाना चाहिए। सोना रोज रोज खरीदने बेचने की चीज नहीं है।
1: कुछ महंगा हो या कुछ सस्ता, जहां तक सोने चांदी के गहनों की बात है, जरूरत और सुविधा के हिसाब से उसकी खरीद तो लोग करेंगे ही। निवेशक कीमतों की चाल देखते हुए फैसला कर सकते हैं, क्योंकि सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: रक्षाबंधन, धनतेरस, दिवाली, यानी कि पर्व त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। जाहिर है इस दौरान शुभ माने जाने वाले सोने की खरीदारी भी होगी। उसके बाद शादी विवाह का सीजन है, लेकिन क्या सोने चांदी की बढ़ी हुई कीमतों से गहनों की खरीदारी पर असर होगा? जानकार मानते हैं कि भारत में सोने की इमोशनल बाइंग होती है, लेकिन ज्वेलर्स और ग्राहकों का क्या मानना है, चलिए सीधे उन्हीं से समझते हैं।
5: बंधन के साथ साथ ही आता है त्योहारों का सीजन, और उसी के साथ आता है शादियों का समय, जब सबसे ज्यादा खरीदारी, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, हर कोई अपने परिवार सहित खरीदारी करने पहुंच जाता है। और ऐसे में खरीदारी होती है सोने की, चांदी की, अलग अलग आभूषण की, क्योंकि वो भारतीय जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनसे काफी ज्यादा जुड़े होते हैं, शुभ माने जाते हैं। ऐसे में क्योंकि इनकी जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, चढ़ाव पर हैं, तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है आम जनता की खरीदारी पर। और बहुत फर्क पड़ रहा है इस ऐसे में जो सेलर्स हैं, जो जौहरी हैं, उनके काम पर भी। तो हम ज्वेलर से ही जानेंगे कितना कुछ फर्क पड़ा है। तो सर, रमाकांत जौहरी जी सर हमारे साथ में मौजूद है। सर, आप बताइए कि जब से सोना चांदी महंगा हुआ है तब से कितना कुछ फर्क पड़ा है?
6: एक्चुअली पिछले दो सालों से और गोल्ड की रेट में एकदम से एक्सपेंशन हाई हुआ है, उसकी वजह से मार्केट में परचेजिंग पे कम 30-40% डाउन हो गया है। इसके बाद में भी जब से मोदी जी ने अभी स्पेशली जो ये एक स्टेटमेंट दिया था कि नेशन के फेवर के लिए कि गोल्ड को कम खरीदिए ताकि अपन फॉरेन एक्सचेंज को बचाया जा सके, देश हित में काम किया जा सके, उसके लिए भी मोदी जी की अपील का बहुत ज़्यादा असर हुआ है। लेकिन जरूरत की जो जरूरत है, जैसे जिनके शादियाँ या जिसके भी प्रोग्राम है, वो आदमी तो अपना सामान खरीदें, लेकिन जो ओल्ड डेज में इन्वेस्टमेंट के लिए जो ज्वेलरी खरीदते थे उसके ऊपर काफी इम्पेक्ट है, वो लोग अभी बच करके खरीद रहे हैं।
5: तो बढ़ती कीमतों का कितना असर है? क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि नहीं खरीदना, उससे पहले भी जब ये कहा था स्टेटमेंट से पहले कीमतें चढ़ाव पे है लगातार, तो उससे कितना फर्क पड़ रहा है? क्या लोग जो क्वांटिटी है वो कम हुई है या फिर खरीदना ही कम हो गया है? किस तरीके से क्या क्या फर्क पड़ रहा है?
6: नहीं देखिए, गोल्ड के अंदर जो अमाउंट अभी, पहले क्या होता था, वेट से शादी में या प्रोग्राम में अपन वेट से डालते थे कि इसको 100 ग्राम सोना डालना है या 50 ग्राम सोना डालना है। अभी रेट एक्सचेंज बढ़ने के बाद में अभी लोगों का वॉल्यूम अमाउंट का हो गया है, तो अमाउंट का हो गया है कि मेरे को एक्स अमाउंट के अंदर मेरी ज्वेलरी लेनी, वो कितने भी ग्राम वेट आता है वो उतना वेट लेकर के उसको सेटिस्फाइड कर। लेकिन बिजनेस में क्या हुआ है, वैल्यू वाइज बिजनेस कम नहीं हुआ है, लेकिन वॉल्यूम वाइज बिजनेस कम हो गया है। जरूरत पे लोग आज भी सामान खरीद रहे हैं, लेकिन जितना जरूरत हो उतना खरीद रहे हैं। अभी ट्रेंड में चेंज हो गया, अभी हम लेटेस्ट में बॉम्बे एग्जीबिशन में जाके आए हैं तो बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंजेस हुआ है। प्रोडक्शन जो यूनिट्स है उनमें जो वेट कोई भी आइटम पहले 100 ग्राम का बनता था, वही उसी लुक के अंदर आज उसको कोशिश करके लोग 60 ग्राम में बना रहे हैं, ताकि लोगों के पास में एक फैलाव के साथ में चीज़ें दी जा सके। और मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने डिजाइन्स नए डेवलप कर रहे हैं और शोरूम भी नई नई नई चीज़ें ला करके उसको लोगों के लिए प्रिपरेशन में लग गए हैं। हमें अभी जैसे अभी बॉम्बे एग्जिस्ट में जाके काफ़ी सिलेक्शन हमने वहाँ पे लोगों से साथ में किया है, जो अगले आने वाले 10 से 15 दिन में सभी शोरूम्स पे पहुँच जाएगा। उससे आशा है कि आने वाले सीजन के अंदर लोगों को नई वेरायटी लाइट वेट में मिलेगी और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है सोने के प्रति जो लगाव है वो अपना फुलफिल कर पाएंगे।
5: जी देखिए, बिल्कुल सही बात है, लाइट वेट ज्वेलरी बहुत ज्यादा ट्रेंडी बन गई है जब से जो सोने की रेट्स हैं उसमें खास बदलाव आया है। कुछ कस्टमर्स हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं तो हम उनसे बात करेंगे। सर, आप हमें बताइए कि क्या कुछ आपने शॉपिंग की है? मैं मानती हूँ कि आपकी शायद शॉपिंग हो चुकी है, बट क्या आज आप यहाँ पे देख रहे थे, क्या पसंद आया और कितना फर्क पड़ा सोने चांदी की कीमतों के बढ़ने से?
7: फर्क तो ये है कि जैसे पहले कोई इंसान समझो या हम लोग ही हैं कि 20 ग्राम सोने की 30 ग्राम सोने की चेन लेते थे, वो अब 10 ग्राम 12 ग्राम और नीडफुल हो गया एकदम। पहले ऐसा था कि समझो 50 लाख का सोना लेना है अपन को, आजकल ऐसा हो गया कि नहीं, 25-30 जो जरूरत है जितना उतना ही।
0: सोने चांदी की बढ़ती कीमतों ने आम खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन त्योहारी और शादी के मौसम में गहनों की खरीदारी पर इसका बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। जानकारों के मुताबिक भाव बढ़ने पर लोग खरीदारी का वजन कम कर सकते हैं, लेकिन जरूरत और परंपरा के चलते खरीदारी जारी रहेगी। निवेश के लिहाज से भी सोने को लंबे समय के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है। हालांकि खरीदारी करते वक्त शुद्धता, मेकिंग चार्ज और बिल जैसी जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

0: यूँ तो छोटी सी ख्वाहिश है, माथे पर झूमर, कानों में झुमका, हाथों में कंगना और उस पर नौलखा हार। लेकिन मुश्किल यह है कि सोने की कीमत काबू में नहीं। एक गहना खरीदना भी आम आदमी के लिए आसान नहीं, तो जाहिर है कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाएंगी। अब तो ये दलील भी काम नहीं आएगी कि सोना हुआ बड़ा महंगा, मैं चांदी ले आया। चांदी की कीमत भी सोने के टक्कर की है, दोनों जरूरी पर दोनों ही महंगे। हाँ, ये अलग बात है कि गहनों की जैसी चाहत हमारे देश में, खरीदारी रुकती नहीं, दुकानों में भीड़ घटती नहीं। पर इस वक्त जब सोने चांदी की कीमत अचानक तेजी से बढ़ गई है, सवाल है कि इसका त्योहारी सीजन पर क्या असर पड़ेगा। सामने रक्षाबंधन है और उसके बाद शादी विवाह का मौसम, तो क्या इस मौसम में लोग पहले की तरह खरीदारी करेंगे?
1: ये निवेशक सोचते हैं कि आज नहीं खरीदते तो हो सकता है कल कीमत बढ़ जाएगी, ये भावना भी आएगी। हो सकता है कि दिवाली से पहले पहले, हमें लगता है अगस्त सितंबर अगस्त में, क्योंकि हम इसको इमोशनल बाइंग से देख लेकर के जोड़ते हैं, और ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट गोल्ड की मांग बढ़ेगी और बुकिंग बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से कैश नहीं रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
0: भारत में सोने के गहनों की खरीदारी भावना से जुड़ी है, यानी त्योहार होंगे, शादी विवाह होगा तो इमोशनल बाइंग होगी। हाँ, तादाद कम हो सकती है, वजन कम हो सकता है, पर जानकार मान रहे हैं कि त्योहारी सीजन में जिसे खरीदना है वो खरीदेगा, कीमतों में कोई असर नहीं पड़ता।
2: कितनी कीमत हो जाए, जिसने ज्वेलरी बनवानी है, जिसने लेनी है वो लेकर रहेगा, भले 1,40,000 हो, भले 2,00,000 हो, भले 2,50,000 हो, जिसने लेना है वो लेकर रहेगा। तो ज्वेलरी बनाने वालों की जो चाल है और तेजी है, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली।
0: एक बड़ा तबका है जो सोना शौक के लिए नहीं बल्कि निवेश के नजरिए से खरीदता है, यानी घर की महिलाओं के लिए झूमर, झुमका और कंगना भी हो जाए और भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश भी हो जाए। इस नजरिए से भी जानकार बढ़ी कीमतों पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
3: आम के दाम, उठलियों के दाम, वो जो कहावत है कि भाई आप तो ज्वेलरी खरीदो, क्योंकि ज्वेलरी एक सेंटीमेंट भी जोड़ती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर बुलियन की आपने 100 ग्राम की रख दी तो उसको जब मर्जी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज्वेलरी की फॉर्म में रख दी तो उसको बेचने के लिए पूरी होम मिनिस्ट्री हिलेगी, तब वो बिकेगा। तो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज्वेलरी ही बेटर है और ज्वेलरी ही खरीदनी चाहिए।
0: इस वक्त एक सवाल जो आम लोगों को परेशान कर रहा है वो ये कि भागती हुई कीमतों पर खरीदारी करना ठीक होगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले महीनों में कीमतें कम हो जाएं, ऐसा हुआ तो पछताना पड़ेगा। वहीं ये सोच भी है अगर आगे कीमतें बढ़ गई तो और भी पछतावा होगा। घटती बढ़ती कीमतों के बाजार में ये दुविधा हर ग्राहक के दिमाग में है, पर जानकार तो कहते हैं कि परेशान ना हो, पॉकेट के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहें।
4: अमेरिका की जो नई पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये रैली आई है। अभी कोई नई पॉलिसी उनकी अगर चेंज होती है या कोई भी नया कोई ऐसा घटनाक्रम बीच में घटता है, या ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर कोई नई पॉलिसी आ जाती है, या अन्य कोई देश कूद पड़ता है, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो हमें लगता है कि दिवाली की बात अभी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मैं एक बात श्योर करता हूँ, सोने और चांदी ने हमेशा अपने पिछले हाई को तोड़ा है, ये हाई भी टूटेगा। जो 1,80,000-85,000 रुपये तक हाई गया है वो भी जल्द ही टूटेगा, चांदी भी अपने रिकॉर्ड हाई को तोड़ेगी। सोना और चांदी ने आज तक कभी दर्शकों को निराश नहीं किया है और ना ही भविष्य में कभी निराश करेगा। आज जो भाव हुआ है वो कल वापस जाएगा, इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट ना कभी घटा है और ना घटेगा, और आम आदमी उसमें हमेशा इन्वेस्ट करता रहा है और करता रहेगा, और यही उसको सलाह है कि करते रहना चाहिए।
0: एक बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि सोने खरीदना कभी घाटे का सौदा नहीं रहा। बेशक शॉर्ट टर्म में नफा नुकसान दोनों हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म यानी 2 से 5 सालों तक के लिए अगर सोना खरीदा तो तय मानिए कि फायदा ही होगा। हाँ, पर सोना खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।
2: अभी भी हार्ड फॉर्म में सोना सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है और यही सबसे अच्छा तरीका है। आप उसकी प्योरिटी पर पूरी नजर रखिए, जब भी आप खरीदें ध्यान रखिए कि 24 कैरेट का होना चाहिए, हॉल मार्क्ड होना चाहिए। अब तो कैरेटोमीटर आ गए हैं, आप पोर्टेबल कैरेटोमीटर भी आ गए हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं। पहले तो पत्थर पे रगड़ के चेक किया जाता था, कसौटी जिसको कहते थे, अब तो आप इसको कैरेटोमीटर में चेक कर सकते हैं।
0: युद्ध, तनाव, बाजार में आगे निकलने की होड़ और दूसरे कई आर्थिक राजनीतिक वजहें, इनमें से किसी भी कारण से सोना गिरता उछलता रहता है। लेकिन गुजरे दशकों का इतिहास पलट कर देख लीजिए, सोना हर बार संभलता है और आगे ही बढ़ता रहा है। करीब एक दशक पहले सोना 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, आज ये 1,50,000 रुपए के पार पहुंच चुका है, यानी लंबी अवधि में कीमत कई गुना बढ़ी है। इसीलिए सोने को लेकर बेफिक्र रहें और निवेश के लिए सही पर नौलखा हार की फरमाइश पर गौर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और अब बात रक्षाबंधन की। राखी का त्यौहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, बाजारों की रौनक भी बढ़ती जा रही है। कहीं रंग बिरंगी और डिजाइनर राखियां आकर्षण का केंद्र बनी है, तो कहीं गिफ्ट के सामानों से बाजार पटे पड़े हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक, राजकोट से लेकर करनाल तक रक्षाबंधन का जोरदार उत्साह है। देखिए ये रिपोर्ट।
6: रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। पिंक सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान की राजधानी जयपुर में बाजारों की भव्यता देखते ही बन रही है। दुकानों पर सजी रंग बिरंगी राखियां, खरीदारी के लिए उमड़ती भीड़ और हर तरफ त्योहार की चमक साफ दिखाई दे रही है। कहीं बहनें अपने भाइयों की पसंद की राखी तलाश रही है, तो कहीं दुकानदार ग्राहकों को नई डिजाइन और नई वेरायटी दिखाने में जुटे हैं।
7: इस बार मार्केट में क्या नए ट्रेंड्स हैं उसके बारे में बताइए।
8: इस टाइप के राजस्थानी पैटर्न के काफ़ी सारे राखियाँ आई हैं अब आजकल। ये वाला पैटर्न देखो, राधा कृष्णा के पैटर्न पे, ये सब यूनिक पैटर्न्स हैं। बाकी कॉमन तो अपने को सब जगह मिल जाती, कलकत्ता टाइप की राखियाँ तो सब जगह मिल जाती, पर ये राजस्थानी राखियाँ बहुत यूनिक होती हैं और बहुत रेयर मिलती हैं। तो मुझे इस अभी क्या है, कस्टमर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कलेक्शन और काफ़ी अच्छा निकल रहा है, तो इसीलिए मैंने इस पैटर्न पे जाना चाहा।
7: इसके अलावा सबसे ज़्यादा हर एक कस्टमर क्या चाह रहा है इस
8: बार? कस्टमर्स को इस टाइप की राखियाँ बहुत पसंद आ रही हैं इस बार, पेयर्स में और सिंगल राखियाँ राजस्थानी पैटर्न में काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को और सब अच्छा। लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लोग।
7: हम देख पा रहे हैं कि कस्टमर्स की जो पसंद है वो बदल रही है। हमने यहाँ पे आपको कुछ ट्रेडिशनल राखियाँ दिखाई जो राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी है, काफ़ी इनोवेटिव लुक जो है वो इनमें आ रहा है। इसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि इन एग्जीबिशन्स में आप जो अपने भाई बहनों को, भाइयों को, भाभीियों को जो सामान देते हैं साथ ही में राखी के, चाहे वो मिठाइयों के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो या गिफ्ट्स हो, वो भी एक साथ मिल रहे हैं। पर एक चीज़ और इन राखियों के ट्रेंड में आई है, वो है कि सिर्फ मीनिंगफुल गिफ्ट ही नहीं, मीनिंगफुल राखी भी देना, यानी कि क्रिस्टल्स जो हैं वो एक नया ट्रेंड बन गए हैं। कि जैसे आपकी ज़िंदगी में एक वो मीनिंगफुल तोहफा भी, तोहफा के रूप में ही वो राखी आपको मिले, जिसको आप पहने तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने लग जाए, और जो भी इन चीज़ों में मानते हैं उनके लिए काफ़ी लकी ये साबित होती है। तो ऐसे में क्रिस्टल राखी और उससे जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं वो भी इस बार बहुत बड़ा ट्रेंड बन गई है। हम यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो बैंड्स हैं, ये चेन्स के रूप में, ब्रेसलेट्स के रूप में, बैंड्स के रूप में इस बार अलग अलग क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, जो कि बहनें अपने भाइयों के लिए, भाभियों के लिए ले रही हैं।
6: यहाँ किसी को पारंपरिक डिजाइन पसंद आ रहा है, तो कोई भाई की पर्सनालिटी के हिसाब से स्टाइलिश राखी चुन रही है।
9: रिसेंटली जो चल रहा है वो एक कश्मीरी वॉच है। जैसे लास्ट टाइम कश्मीरी वॉच और इयररिंग्स चले थे, इस बार वॉचेज आई हैं राखी के लिए। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये वॉचेज है। ये पूरा हमारा हैंडमेड है, ये मार्केट वाले डिजाइंस नहीं है, हमने खुद ने कस्टमाइजेशन पे बनाए हैं और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में यही है अभी। और अगर बॉयज़ के लिए देखना है तो रुद्राक्ष, जैसे रिसेंटली लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो उसके लिए रुद्राक्ष वाले ब्रेसलेट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं।
6: भाई के कलाई पर बंधने वाली राखी अब सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि पसंद, स्टाइल और रिश्ते की भावनाओं को जाहिर करने का जरिया भी बन गई है। राजस्थान से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे।
5: इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: JK Super Cement. Build strong.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई.
5: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर.
6: इस बार क्या है चंद्र ग्रहण की स्थिति, चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, चंद्र ग्रहण अलग अलग राशियों पर कैसे डालेगा असर, जानिए मेरे साथ उप छाया चंद्र ग्रहण के बारे में सिर्फ गुड लक स्पेशल में.
5: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें.
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.
8: अंतिम पड़ाव पर पहुंची बाबा अमरनाथ की यात्रा. विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रीनगर से निकली छड़ी मुबारक 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचेगी. दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत. उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट. निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया. युवा वकीलों ने फैसले का किया स्वागत. कर्नाटक के तुमकुर में वर महालक्ष्मी उत्सव की धूम, मंदिर परिसर की फूलों से की गई भव्य सजावट, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन. हांगकांग के आसमान को 2000 ड्रोन से किया गया रोशन, क्विक्सी फेस्टिवल पर की गई चीनी लोक कथा की प्रस्तुति, रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए बन गई यादगार अनुभव. बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आउट, 4 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज. हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकेंगे दर्शक.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है.
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयों और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग इसे बिना जांचे बिना परखे सच मान लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन पर सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे बिना समझे बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं और शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि महिला यात्री से बदसलूकी के बाद बस कंडक्टर को एक यात्री ने जमकर पीटा। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है जहां पर पुल ना होने के कारण बच्चे गोगा नदी को पैदल पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
9: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये देखा जा रहा है कि कंडक्टर पर महिला यात्री को गलत तरीके से छूता है जिसके बाद एक लड़का कंडक्टर की जमकर पिटाई कर देता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।

0: एक महिला के साथ बदसलूकी का बताकर एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें महिला एक बस में चढ़ती हुई दिखाई देती है, उसी दौरान बस कंडक्टर महिला को गलत तरीके से छूता हुआ नजर आता है। इसके बाद एक लड़का कंडक्टर को बस से नीचे उतार कर सड़क पर लाता है और उसे कई थप्पड़ मारता है। वीडियो के साथ लोग लिख रहे हैं कि महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर इस लड़के ने बस कंडक्टर को अच्छी तरह सबक सिखाया। वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला एक बस में चढ़ती हुई दिखाई देती है, उसी दौरान बस कंडक्टर महिला को गलत तरीके से छूता हुआ नजर आता है। इसके बाद एक लड़का कंडक्टर को बस से नीचे उतारकर सड़क पर लाता है और उसे कई थप्पड़ मारता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम पड़ताल में जुट गई। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा उसने और सुना। इस दौरान वीडियो में आ रही आवाजों पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो बांग्ला लगा और साथ ही वीडियो में नजर आ रहे पिलर पर भी बांग्ला टेक्स्ट देखने को मिल रहा था। मतलब वायरल हो रहा वीडियो किसी बांग्ला भाषी इलाके का हो सकता है, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सही है तो वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है? जब हमने इन सवालों की जांच की है तो क्या पाया है इस रिपोर्ट में देखिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो बांग्लादेश के चट्टोग्राम के एक फेसबुक अकाउंट की पोस्ट में मिला। इस वीडियो के आखिर में इसमें दिख रहे लोग एक साथ खड़े होते हैं और बताया जाता है कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। इसके अलावा लोगों से वीडियो को लाइक और शेयर करने की अपील भी की जाती है। इस फेसबुक पेज पर हमें कई स्क्रिप्टेड वीडियोस भी देखने को मिले। इन वीडियोस में महिला का किरदार निभाने वाला शख्स भी कोई पुरुष ही होता है। वायरल वीडियो में जिस महिला को दिखाया गया है असली वीडियो के आखिर में देखने पर वो भी एक पुरुष ही नजर आता है। साफ है कि जिस वीडियो को महिला से छेड़छाड़ के बाद बस कंडक्टर की पिटाई का बताकर शेयर किया जा रहा है वो असल में एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, यानी इसमें नजर आ रहे लोग एक्टिंग कर रहे हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है, जहां पुल ना होने के कारण बच्चे गोगा नदी को पैदल पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। लेकिन जब हमने वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया तो क्या सच और झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।

0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म पहने कुछ बच्चे एक नदी को पैदल पार करते हुए साफ दिख रहे हैं। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह नजारा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है, जहां पुल ना होने के कारण बच्चे रोज गोगा नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर है। भीम आर्मी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना की। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, ये दृश्य भाजपा सरकार के विकास के दावों की जमीनी हकीकत दिखा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है, जहां पुल ना होने के कारण बच्चे गोगा नदी को पैदल पार कर रहे हैं और स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सर्च किया, उत्तर प्रदेश के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर यह सही होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में खबरें जरूर होती, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? जब हमने जांच की है तो क्या कुछ सामने आया है इस रिपोर्ट में देखिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक फेसबुक पेज पर मिला, जहां से 16 जुलाई को पोस्ट किया गया था। यहां मौजूद कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो उत्तराखंड के टिहरी जिले का है, जहां पुल ना होने से बच्चों को इसी तरह नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है। मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया, लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें 18 जुलाई को छपी एक रिपोर्ट मिल गई। इसमें ये जानकारी दी गई थी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 25 किलोमीटर दूर विकासखंड जौनपुर में बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालते हुए सोंग नदी पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरसात के मौसम में जब सोंग नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, तब आसपास के गांवों के करीब 20-30 छात्र छात्राओं को रोज इसी तरह स्कूल जाना पड़ता है। इस दौरान बच्चों के कपड़े और जूते पूरी तरह से भीग जाते हैं। सोंग नदी पर कोई पुल ना बनने के कारण सालों से ये स्थिति बनी हुई है। जब बच्चे नदी पार करते हैं, तब कभी किसी के पिता तो कभी कोई गांव वाला मदद कर देता है। अगर किसी दिन नदी का बहाव और बढ़ जाए तो उन्हें बड़ा हादसा होने का डर भी सताता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो उत्तराखंड के टिहरी जिले का है, जहां के बच्चे सोंग नदी को पार कर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। रद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ हो रहा है, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी।
8: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है।

0: उसकी उम्र भले ही कम हो लेकिन भाई के लिए उसके व्यवहार में जिम्मेदारी और अपनापन साफ झलक रहा है। भाई की ड्रेस ठीक करने से लेकर उसे संभालने तक बहन के हर छोटे प्रयास में एक अलग ही प्यार नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने छोटे भाई की सिर्फ बहन नहीं बल्कि उसकी छोटी सी केयर टेकर भी हो। यही मासूम पल वीडियो को खास बना रहे हैं। इसमें न कोई बड़ी बात है न कोई बनावटी भावनाएं लेकिन भाई बहन के बीच दिख रहा अपनापन सीधे लोगों के दिल तक पहुँच रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है।
1: आटे को खाई
2: मैं तो नहीं करती प्यार।
0: यह एक छोटा बच्चा स्कूल में अपनी टीचर से बेहद मासूमियत से बात करता दिख रहा है। बच्चे की प्यारी बातें उसकी मासूमियत देख लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। टीचर के प्रति इस बच्चे के लगाव को देखकर लोग इस वीडियो पर खूब प्यार भी लुटा रहे हैं।
2: जब से तुम यहाँ पे नाम लिखा है तब से प्यार करती हूँ। रो नहीं, बातें मैं पूछ रही हूँ तो ढंग से बोलो। रो नहीं, मैं मारी हूँ कि रो रहे हो।
0: वीडियो ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।
2: पहले ये बताओ कि जब से नाम लिखवाया तब से प्यार करती हूँ, अब नहीं करती। बाइक चाहिए तुमको? चलो तुम्हारे बर्थडे पे मैं बाइक खरीद के दूंगी। ओके, गिफ्ट में। ओके।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर कमेंट्स करते हुए यूजर्स कह रहे हैं कि किसी को कम आंकना भारी पड़ सकता है। वीडियो में एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर दो छोटे लड़के और दो लड़कियां ग्लव्स पहनकर आमने सामने नजर आते हैं। मुकाबला शुरू होने से पहले दोनों लड़के इशारा करते हैं कि इनका तो चंद सेकंड में ही काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता है दोनों बच्चियां बिना डरे लड़कों पर मुक्कों की बरसात कर देती हैं। बच्चियों के इस आक्रामक हमले और लगातार पड़ते पंचों के आगे लड़के खुद को बचा नहीं पाते और रिंग में ही रोने लगते हैं। लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। योग से न सिर्फ तन स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी ऊर्जावान बना रहता है। इन बच्चों को जरा देखिए, अपनी फिटनेस के दम पर क्या सुंदर फॉर्मेशन बनाया है, वो भी मिनटों में, कोई चूक नहीं। इनके बीच तालमेल भी गजब का है। योगा स्टूडेंट्स का ये वीडियो देख लोग इनकी फिटनेस की तारीफ भी कर रहे हैं। खेल भी एक्सरसाइज भी, देखिए जरा इन्हें। टास्क मजेदार जो मिला है, दो अलग अलग घेरे और उनमें एक एक पांव रखना है और फिर एक हाथ गर्दन के पीछे रखनी है और एक हाथ से सामने रखी पेंसिल उठाकर पीछे के चौकोर घेरे में डालनी है। ध्यान रहे पेन बाहर नहीं ना निकल जाए। प्रतियोगिता दो बच्चों के बीच है और इसे जीतने के लिए दोनों बच्चे जिस तरह से मेंढकों की तरह उछल कूद कर रहे हैं वो देखना दिलचस्प है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना और मस्ती करना भी बेहद जरूरी है। स्कूल के मैदान में खेलकूद बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के साथ उनके मानसिक विकास में भी मदद करता है। इन तस्वीरों में बच्चे गाने की धुन पर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में बड़े ही मजेदार तरीके से छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। इस गतिविधि के जरिए बच्चों का बैलेंस और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। पढ़ाई के बीच मस्ती भरे ये पल बच्चों को तरोताजा कर दे रहे हैं। ओडिशा के रायगढ़ के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले नारायण जेना सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। जेना शरीर से दिव्यांग हैं, लेकिन वो जैसे हैं क्लासरूम में रेंगते हुए घुसते हैं वैसे ही बच्चे उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। ये नजारा दिखाता है कि संस्कार से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। वीडियो में नारायण जेनी जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं बच्चे अपनी दरी से खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर जेनी किसी तरह पीछे रखी हरे रंग की कुर्सी को आगे खींचकर उस पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद एक बच्ची उन्हें पढ़ाने के लिए किताब देती है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के प्यार और सम्मान को दिखाने वाला ये लम्हा इंटरनेट को इतना भाता है कि यूजर्स इसके दीवाने हो जा रहे हैं। किसी का जन्मदिन खास बनाने के लिए हमेशा महंगी गिफ्ट या बड़ी पार्टी की जरूरत नहीं होती। कई बार तो एक छोटा सा सरप्राइज और दिल से की गई कोशिश किसी के लिए जिंदगी भर की याद बन जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब बेंगलुरु में रहने वाली एक रूसी महिला ने अपने घर में काम करने वाली महिला के जन्मदिन पर उन्हें अचानक सरप्राइज दे दिया। जैसे ही केक सामने आया और परिवार ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, अपनी भावनाओं पर काबू रख नहीं पाई और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। इस खूबसूरत पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग

0: रूसी महिला की इस छोटी सी कोशिश की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। बेटी का जन्म हुआ है, ये सुनने के बाद अब कई परिवारों ने सामाजिक सोच को बदलते हुए नया नजरिया दुनिया को दर्शाया है। अब परिवार बेटी के जन्म पर खुशी जताते हैं, इतनी खुशी मानो उन्हें दुनिया मिल गई हो। इस खुशी से उन परिवारों की सोच बदली जा सकती है जो आज भी लड़की की पैदाइश पर खुश नहीं होते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो के कैप्शन में भी लिखा है कि घर में बेटी क्या आई, पूरा मोहल्ला सेलिब्रेशन मोड में आ गया। ये बात पूरे वीडियो में दिखाई भी देती है। वीडियो के शुरू में दुल्हन की तरह सजा हुआ घर दिखता है, ठीक इसके बाद कारें दिखती हैं जिनसे बेटी को घर लाया जा रहा था। इन कारों को भी गुब्बारों से सजाया गया था और लग रहा था कि परिवार बेटी को शान से घर ला रहा है। फिर घर के बाहर बेटी के आते ही अलग लेवल का सेलिब्रेशन शुरू हो गया। सजे हुए घर के बाहर पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा मोहल्ला डांस करता दिख रहा है। इस वीडियो को देखने वाले परिवार की खुशी को महसूस कर पा रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और खूब प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। यहाँ दादा पोती के रिश्ते की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। दादाजी का स्नेह और पोती के प्रति अपनापन देख यूजर्स इमोशनल हो रहे हैं। लोग इस प्यारे से पल को खूब पसंद और शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो में दादाजी अपनी पोती के स्कूल जाने की तैयारी में उसका साथ देते नजर आते हैं। वो बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि क्या वो उसके स्कूल बैग में किताबें रखने में मदद करें।
1: मैं डाल देता हूँ, लाओ। अच्छा, हो रहा है अभी बुक।
0: दादाजी का ये छोटा सा सवाल सुनने में भले ही सामान्य लगे लेकिन इसमें पोती के लिए उनका अपनापन और चिंता साफ दिखाई देती है। बच्चों के लिए स्कूल जाने की तैयारी रोजमर्रा की बात होती है लेकिन दादाजी के लिए पोती के साथ बिताया यही छोटा सा पल बेहद खास नजर आता है। वीडियो में दादाजी जिस सहज अंदाज में उसकी मदद करने की बात करते हैं वो लोगों को काफी भावुक कर दे रहा है। इंडोनेशियाई सेना के ट्रेनिंग प्रोग्राम का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दे रहा है। वीडियो में सेना की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवानों के लिए एक खास समारोह रखा गया था। वहां ज्यादातर युवा सैनिकों के साथ उनके माता पिता, पार्टनर या परिवार के लोग मौजूद रहे। हर तरफ खुशी और गर्व का माहौल था लेकिन इसी बीच एक जवान ऐसा भी था जो अकेला खड़ा दिखा। जहां बाकी सैनिक अपने करीबियों के साथ इस खास पल को सेलिब्रेट कर रहे थे वहीं उस जवान के पास कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। वो चुपचाप बाकी लोगों से थोड़ा अलग खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी जिसे देख शायद ही कोई अपनी भावनाएं रोक पाए। तभी वहां मौजूद एक सीनियर अधिकारी की नजर उस जवान पर पड़ी। उन्होंने उसकी स्थिति को समझने में देर नहीं लगाई। अधिकारी सीधे उसके पास पहुंचे और उसे अपने पास बुलाकर गर्मजोशी से गले लगा लिया। ये कोई औपचारिक सैन्य सलाम या बधाई नहीं थी बल्कि बिल्कुल एक पिता की तरह दिया गया अपनापन था। शुरुआत में जवान ने खुद को संभालने की कोशिश की, उसने अपनी भावनाओं को रोक कर रखने की भी पूरी कोशिश की लेकिन शायद उस पल का अकेलापन और अचानक मिला प्यार दोनों ही उसके लिए बहुत ज्यादा थे। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो अधिकारी के कंधे से लगकर रो पड़ा।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: इस बार क्या है चंद्र ग्रहण की स्थिति, चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, चंद्र ग्रहण अलग अलग राशियों पर कैसे डालेगा असर, जानिए मेरे साथ उप छाया चंद्र ग्रहण के बारे में सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: अंतिम पड़ाव में पहुंची बाबा अमरनाथ की यात्रा, विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रीनगर से निकली छड़ी मुबारक, 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचेगी। दिल्ली NCR में रिमझिम बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, यूपी उत्तराखंड सहित देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया, युवा वकीलों ने फैसले का किया स्वागत।

0: पुन्नमाड़ा झील में हुई प्रतियोगिता, 22 स्नेक बोट समेत 71 नावें हुई शामिल। हांगकांग के आसमान को 2000 ड्रोन्स ने किया रोशन, क्विक्सी फेस्टिवल पर की गई चीनी लोक कथा की प्रस्तुति, रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए बन गई यादगार अनुभव। बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आउट, 4 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज, हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकेंगे दर्शक।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में और ये चंद्र ग्रहण बहुत विशेष है क्योंकि ये पड़ रहा है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, यानी रक्षाबंधन के पावन अवसर पर। क्या है इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव, कौन से नियम, कौन सी सावधानियां रहेंगी और इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो आपको बताएंगे कि अलग अलग राशियां अगले 15 दिनों तक, अगले 1 महीने तक किन चीजों से होकर के गुजरेंगी और चंद्र ग्रहण के साथ उनको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम रोहिणीशः सुधा मूर्तिः सुधा गात्रः सुधाशन। ओम रोहिणीशः सुधा मूर्तिः सुधा गात्रः सुधाशन। विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे विधु, विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे विधु। देखिए ये चंद्र की पीड़ा को दूर करने वाला मंत्र है। अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर नहीं है और चंद्रमा की निगेटिव स्थिति की वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं, आपको समस्या हो रही है, तो रोज शाम को 108 बार मोती की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करिए। चंद्रमा संभव

हम आज बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। इस बार चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है, चंद्र ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये विशिष्ट चंद्र ग्रहण नहीं है। ये विशिष्ट चंद्र ग्रहण ना होकर एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, मालिन्य चंद्र ग्रहण है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त को हो रही है और भारतीय समय के अनुसार ये 28 अगस्त को सुबह 6:53 पर आरंभ होगा और इसका समापन पूरी तरह से 28 अगस्त को दोपहर 12:31 पर होगा। अगर ज्योतिष के हिसाब से हम समझें तो ये उपछाया ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और कुंभ राशि शनि की राशि है, यानी इस उपछाया ग्रहण में शनि और राहु का इन्वॉल्वमेंट भी होगा और ये ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा। एक बात तो ये है कि ये उपछाया ग्रहण है और दूसरी बात ये है कि ये भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा। उपछाया ग्रहण भी है और भारत में दिखाई नहीं देगा। तो देखिए, ग्रहण बहुत प्रकार के होते हैं, पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण, खग्रास, खंडग्रास, लेकिन ये वास्तव में एग्जैक्ट ग्रहण नहीं है। इसमें चंद्र के ऊपर पृथ्वी की हल्की सी छाया पड़ेगी, इसीलिए इसको मालिन्य चंद्र ग्रहण या उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। देखिए, ग्रहण आपके देश में दिखे या ना दिखे, लेकिन ग्रहण में चूंकि चंद्रमा प्रभावित हो रहा है, इसीलिए हम सब के ऊपर और देश दुनिया पर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? भारत के सीमावर्ती देश जो हैं, वहां से समस्या बढ़ सकती है, खास तौर से पाकिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान के साइड से दिक्कतें अचानक आ सकती हैं, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बन रही है। समुद्र तटीय इलाकों में वर्षा की वजह से आपदाएं आ सकती हैं, पहाड़ों पर आपदाएं आ सकती हैं और भूकंप जैसी नौबत भी आती हुई दिखाई दे रही है। वायु तत्व की राशि का ग्रहण है ये, इसीलिए वायुयान दुर्घटना और अग्नि से आपदा हो सकती है। वायुयान दुर्घटना और अग्नि से सावधान रहना होगा। जो महिला राजनीतिज्ञ हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा। जो महिला राजनेताएं हैं या जो महिलाएं उच्च पदों पर हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, कुंभ राशि, राहु का इन्वॉल्वमेंट, शनि की राशि में ग्रहण का होना,
जनता के मन में आक्रोश बढ़ाएगा, इसीलिए लगातार आंदोलन पूरे देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर इस समय बढ़ेंगे। इस समय आंदोलनों को रोक पाना थोड़ा कठिन होगा। देखिए, जब भी कोई ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे, उस ग्रहण के साथ बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। इस चंद्र ग्रहण में किस तरह के नियमों का पालन करना होगा? देखिए, ये सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं है। सामान्य चंद्र ग्रहण में बहुत सारे नियम और बहुत सारी सावधानियों का पालन करना होता है। ये उपछाया ग्रहण है जिसमें ग्रहण जैसा आभास होता है। उपछाया ग्रहण अगर भारत में दिखाई देता तो भी इसका ग्रहण जैसा मूल्य नहीं होता, इसमें केवल ग्रहण जैसा आभास होता है। और जब उपछाया ग्रहण हो, चाहे दिखाई दे चाहे दिखाई न दे, उसमें किसी तरह के नियम लागू नहीं होंगे। उपछाया ग्रहण दिखेगा तब भी कोई नियम लागू नहीं होगा, आप अपनी सामान्य दिनचर्या जी सकते हैं। कोई भी सूतक का नियम लागू नहीं होगा, मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे, खान पान सोने और जगने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। भोजन विश्राम पूजा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, उपछाया ग्रहण में कोई प्रतिबंध नहीं होता। गर्भवती महिलाओं को किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ग्रहण लगता है तो सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाएं परेशान होती हैं कि ग्रहण का प्रभाव उनकी संतान के ऊपर या उनके गर्भ के ऊपर बुरा ना पड़े। लेकिन ये उपछाया ग्रहण है, गर्भवती महिलाओं को भी किसी नियम या किसी सावधानी का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रहण में कोई सूतक नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई सावधानी नहीं है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब ग्रहण चलेगा उस समय में क्या करें कि हमें इस ग्रहण से फायदा हो, हमें इस ग्रहण से लाभ हो। ग्रहण काल में जिस समय ग्रहण होता है उस समय में मंत्र का जप करना, स्तुति करना और ध्यान करना विशेष लाभदायक होता है। अगर आप ग्रहण काल में मंत्र जपें, स्तुति करें, ध्यान करें तो आपको बहुत फायदा होगा। और ग्रहण दिखाई दे या न दिखाई दे, ग्रहण के समय में अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो आपकी पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये भी ग्रहण में करना बहुत शुभ होता है,
ग्रहण काल में मंत्र जप करना, मंत्र सिद्ध करना, किसी गुरु से दीक्षा लेना आपके लिए कल्याणकारी होगा। ग्रहण के बाद स्नान करके किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके लिए कम होगा। तो ग्रहण भले ही आपके देश में, भारत में दिखाई ना दे, लेकिन जो ग्रहण का समय हमने आपको बताया, उस समय में आप भगवान के नाम का स्मरण करिएगा, भगवान के नाम का मंत्र जप करिएगा, और ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को चंद्रमा की वस्तुओं का दान करिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। तो ग्रहण की मुख्य बातें तो हमने आपको बताई, अब आपको बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर, आपके जीवन पर अगले 15 दिन से एक महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा या कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, और ग्रहण के साथ आप अपनी राशि के अनुसार कौन सा उपाय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही अनुकूल है, और मेष वाले अगर प्रयास कर रहे हैं या अगर प्रयास करेंगे तो उनको करियर में कोई बड़ा अवसर इस समय मिल सकता है, करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। मेष वालों के स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, अगर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा, जो कुल मिलाकर आपके लिए लाभकारी होगा। देखिए, मेष वाले सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगले 15 दिन से एक महीने के अंदर यात्राओं में सावधानी रखेंगे, यात्राओं के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे, और करियर के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, करियर में जो परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, इस समय मेष वालों को उस रास्ते पर फायदा हो सकता है। जब 28 अगस्त को दोपहर में ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद शिव जी के मंदिर जाइएगा और शिव जी को जल अर्पित कर दीजिएगा। अगर आप ग्रहण के बाद शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो ग्रहण के परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे, और ग्रहण से आपको लाभ होगा, और करियर के लिए जो कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव वृषभ वालों पर कैसा दिखाई दे रहा है? वृषभ वालों के तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। अगर वृषभ वाले कोशिश करें, बड़े से बड़ी समस्या इस समय सुलझ जाएगी। अगर कोई वाद विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है, कोई मुकदमा है, तो उससे भी वृषभ वालों को छुटकारा मिलेगा, काम में सफलता मिलेगी, पुरानी समस्याएं आपकी हल होंगी।
करियर आपका बेहतर चल रहा है, करियर में आपको लापरवाही करने की जरूरत नहीं है और अभी करियर में किसी तरह का कोई जोखिम, कोई रिस्क इस समय मत लीजिएगा। आराम से काम चलने दीजिए और अपने महत्वपूर्ण काम इस समय अगर आप निपटाएं तो आपको लाभ होगा। इस 15 दिन से 1 महीने के समय में आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए, आप अपने कार्यों में सफलता पाएंगे। ग्रहण के बाद शिव जी को जल अर्पित करिएगा। 28 अगस्त को दोपहर में ग्रहण समाप्त होगा, इसके बाद एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से ग्रहण के शुभ प्रभाव आपको ज्यादा मिलेंगे। मिथुन राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके लिए बेहतर नहीं है। मिथुन राशि

0: जीवन में आ सकता है तो स्वास्थ्य, मुकदमेबाजी और वाद विवाद का ध्यान रखें। संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, संतान के करियर और उसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या आपके लिए दिखाई दे रही है, तो संतान पक्ष को आपके समस्या हो सकती है, थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए और इस समय अपनी संतान से बात करिए, उसकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करिए। यात्राओं के मामले में विशेष सावधानी बनाए रखें, अगर बहुत मजबूरी ना हो तो लंबी यात्राओं से बचाव करिएगा, यात्राओं में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो मिथुन वालों के लिए अगला 15 दिन, 1 महीने का समय अच्छा नहीं है, अपने स्वास्थ्य का, अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान दीजिएगा। ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद अगर आप दूध का दान करें, 28 अगस्त को दोपहर में ग्रहण समाप्त होगा, उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दूध का दान कर दें तो चंद्र ग्रहण की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। कर्क राशि, कर्क राशि के अष्टम भाव में ग्रहण है, कर्क के लिए ग्रहण ज्यादा निगेटिव दिखाई दे रहा है, इसीलिए कर्क वालों को अपने करियर में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी नौकरी और व्यापार को लेकर के सतर्क हो जाइए, इस समय करियर में लापरवाही मत करिए, वरना करियर में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं से और आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचिएगा, सेहत आपकी बिगड़ सकती है और बेवजह चोट चपेट या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसको लेकर के सावधानी बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य के अलावा अपनी माता के, पत्नी के, बेटी के, बहन के, यानी माता और स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान कर्क वालों को बनाए रखना होगा। कर्क वालों के लिए सारा मामला अगले 1 महीने तक स्वास्थ्य के मामले में अच्छा नहीं है और साथ ही साथ काम का प्रेशर उतना ही पालिएगा जितना आप हैंडल कर सकें। ग्रहण जब समाप्त हो जाता है 28 अगस्त को दोपहर में, तो ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को चीनी का दान करिएगा, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी मात्रा हो सकती है, अगर आप ग्रहण के बाद चीनी का दान कर देंगे तो समस्याओं से बचे रहेंगे। वैसे मैं फिर से कर्क वालों को बता दूं कि आपके लिए स्वयं भी और आपके परिवार में भी स्वास्थ्य का मामला ज्यादा निगेटिव दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी भी सेहत बिगाड़ सकता है, स्वास्थ्य में अचानक समस्या आपको हो सकती है और स्वास्थ्य में विशेषतः अपने डाइजेशन का, हड्डियों के फ्रैक्चर का ध्यान रखिएगा, एकदम से सेहत आपकी बिगड़ सकती है। करियर के मामले में कोई रिस्क मत लीजिएगा, करियर के मामले में कोई लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि करियर में आपके समस्या आ सकती है और अगर लापरवाही करेंगे और नौकरी वाले आदमी हैं तो नौकरी जा सकती है। सिंह राशि के लोग अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना बन रही है, लेकिन सिंह वालों को सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा अपनी नौकरी और अपने करियर के मामले में, क्योंकि वहां पर ज्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। ग्रहण के बाद अगर आप चावल का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को 28 अगस्त को दोपहर में, ग्रहण के बाद अगर चावल का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्या का ध्यान रखें, चोट चपेट ना लगे, दुर्घटना ना हो, उससे भी कन्या वालों को बचना चाहिए। हालांकि कन्या वालों के लिए मामला उतना गंभीर नहीं है, लेकिन लापरवाही मत करिएगा, सेहत में कान नाक गले का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिखा पढ़ी के काम में सावधानी रखिए, आप जो भी लिखा पढ़ी करते हैं उसमें थोड़ा अलर्ट रहिए, पेपर देने में, लेने में, पैसे रुपए के लेन देन में थोड़ी सतर्कता बनाए रखें। और रिश्तों के मामले में, परिवार के मामले में, पारिवारिक रिश्तों के मामले में आपको अपयश मिल सकता है, बेवजह की बदनामी मिल सकती है, उसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। कन्या वालों के लिए ग्रहण इतना नकारात्मक नहीं है, लेकिन कन्या वालों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये छोटी बातें बड़े तौर से आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ग्रहण के बाद अगर आप दूध का दान कर दें तो बहुत हद तक ग्रहण की मुश्किलों से और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। तुला राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव अचानक पैसे का नुकसान करवा सकता है, अचानक धन की हानि करवा सकता है, इसलिए धन हानि से बचें, पैसे का नुकसान ना हो जाए, इस बात को लेके सावधान रहें। और तुला वाले भी आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचें तो उनके लिए बेहतर होगा, बेवजह की चोट लग सकती है और आपके डाइजेशन में, आपके पेट में दिक्कतें आ सकती हैं। तुला वाले अपने करियर का बहुत ध्यान रखेंगे, करियर के मामले में कोई लापरवाही ना करें, और अगर नौकरी करते हैं तो उसमें गड़बड़ी मत करिएगा, वरना आपकी नौकरी जा सकती है। तुला वाले अपने खान पान को लेके सतर्क रहें और अपनी नौकरी के मामले में कोई लापरवाही ना करें। ग्रहण के बाद यानी 28 अगस्त को दोपहर के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चीनी का दान कर दें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, खास तौर से माता पिता के साथ, पति पत्नी के आपसी संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह का तनाव आपका बढ़ सकता है, धन और संपत्ति का नुकसान इस समय हो सकता है, पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में, पैसा लगाने में इस एक महीने तक शांति रखें, वरना पैसा आपका बेवजह डूबेगा, धन और संपत्ति का नुकसान आपको हो सकता है। वैवाहिक मामलों में और रिश्तों में समस्या हो सकती है, मित्रों के साथ दोस्ती यारी में रिश्ते टूट सकते हैं, इस बात को लेके वृश्चिक वाले सतर्क रहें। ग्रहण जब समाप्त होता है 28 अगस्त को दोपहर में, तो ग्रहण के बाद आपको दूध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और वृश्चिक वाले सबसे ज्यादा ध्यान दें अपने रिश्तों के मामले में, अपने संबंधों के मामले में, क्योंकि उनके पुराने संबंध, उनके नजदीकी रिश्ते इस समय टूट सकते हैं, जो उनके लिए बेहतर नहीं होगा। धनु राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है और चंद्र ग्रहण आपको एकदम से सडनली फायदा पहुंचा सकता है। जो चली आ रही रुकावटें हैं आपके काम में, आपके करियर में, आपकी चली आ रही रुकावटें इस समय दूर होंगी। खासतौर से अगर करियर का कोई काम रुका हुआ है, करियर की कोई बात रुकी हुई है, तो उसमें आपको सफलता की संभावना बन रही है। धन संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुका हुआ पैसा मिलेगा। बहुत समय से जो डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा था, वो इस समय आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि की चीजें बेहतर होंगी, करियर और पैसे के मामले में फायदा होगा। और अगर धनु वाले कोशिश करें तो उनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। लेकिन धनु राशि के लोग अपने भाई और बहन के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाई बहन के साथ रिश्तों को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, या आपके भाई या आपकी बहन की सेहत इस समय बिगड़ सकती है। तो धनु वालों के लिए अगला एक महीना बहुत अच्छा है। अगर बुद्धिमानी से चलेंगे तो चंद्र ग्रहण का पूरा फायदा उठा पाएंगे। ग्रहण के बाद शिव मंदिर चले जाइएगा 28 अगस्त को दोपहर के बाद। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा के प्रार्थना करिएगा। ग्रहण के परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। मकर राशि, सेहत को लेके बहुत सतर्क रहें। कान, नाक, गला और आंखों को लेकर, कान, नाक और गले को लेकर आपकी सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान मकर राशि वाले इस समय बनाए रखें। नौकरी या व्यापार जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। करियर में किसी तरह का कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें। और अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है कि चेंज ऑफ प्लेस करेंगे, नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, नई जगह पे जाएंगे, कोई बड़ा निर्णय अगर इस समय लेना चाहते हैं, तो बड़े निर्णय लेने में इस समय आप जल्दबाजी मत करिएगा। आपका निर्णय इस समय गलत हो सकता है। और करियर के मामले में जरा भी जोखिम मत लीजिएगा, वरना आप मुसीबत में पड़ेंगे। ग्रहण जब समाप्त हो जाए 28 अगस्त को दोपहर में, तो ग्रहण के बाद चावल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा। निश्चित रूप से ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचेंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें। जो आपके रिश्ते नाते हैं, जो आपके संबंध हैं, उनको लेकर सतर्क रहें। और महत्वपूर्ण काम जो करियर का है, जीवन का है, उसको टालिए नहीं। अगर महत्वपूर्ण काम टालेंगे, लापरवाही करेंगे, तो सारे के सारे बड़े काम आपके रुक जाएंगे। कुंभ वालों को सतर्क रहने की जरूरत है अपने स्वास्थ्य के मामले में। और रिश्ते न टूटें, क्रोध या विवाद में कोई झंझट ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। ग्रहण के बाद 28 अगस्त को दोपहर के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो चंद्र ग्रहण से मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। मीन राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके मन पर असर डाल रहा है, आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपकी टेंशन बढ़ सकती है, आपकी तनाव की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है, बेवजह की चिंता और तनाव की नौबत बन रही है। मीन राशि वालों का इस समय चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, इस समय स्थान परिवर्तन हो सकता है, ये संभावना भी मीन वालों के लिए फिलहाल दिखाई दे रही है। मीन वाले इमोशनली मेंटली अपने आप को ठीक रखें, वरना भावनात्मक रूप से समस्या होगी। और इस समय जल्दीबाजी में दौड़ भाग कर काम मत करिएगा, इस समय दुर्घटनाओं को लेकर सावधान रहें। ग्रहण के बाद अगर चीनी का दान कर दें, ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़ी सी चीनी का दान कर दीजिएगा, ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये 28 अगस्त को लग रहा है और 28 अगस्त को पूरी देश दुनिया में रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। देखिए, रक्षाबंधन के पर्व में ग्रहण का विचार नहीं किया जाता, केवल भद्रा का विचार किया जाता है। और इस बार 28 अगस्त को भद्रा प्रातः काल ही खत्म हो जाएगी, 4:30-5 बजे के आसपास, तो दिन भर कोई भी भद्रा नहीं रहेगी। तो आप दिन में शाम को जब भी चाहें रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, और ग्रहण का रक्षाबंधन से कोई लेना देना नहीं है। तो ग्रहण दिखाई दे दिखाई ना दे, उसका रक्षाबंधन के मनाने से कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये उपछाया ग्रहण है और भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए किसी तरह के तनाव चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है, आप सुबह से शाम तक रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। और ग्रहण को लेकर के रक्षाबंधन के पर्व में कोई रुकावट करने की, कोई पूजा करने की, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। पवित्र छड़ी मुबारक श्रीनगर से पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक समापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पवित्र छड़ी मुबारक 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी। पवित्र गुफा में पूजा अर्चना के साथ ही इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा का औपचारिक रूप से समापन माना जाएगा और यात्रा अगले वर्ष तक के लिए विराम लेगी। और गुजरात के सूरत में तापी नदी के किनारे एक मंदिर परिसर में मौजूद है एक अनोखा वटवृक्ष। कहा जाता है कि इस वटवृक्ष पर सालों से केवल तीन ही पत्ते रहते हैं। श्रद्धालु इन तीन पत्तों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का प्रतीक मानते हैं। इस खास पेड़ पर हमेशा सिर्फ तीन पत्ते ही रहते हैं, चौथा पत्ता आते ही एक पुराना पत्ता झड़ जाता है और ये सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहता है।

0: पेड़ छोटा है लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। सूरत में तापी नदी के तट पर स्थित एक ऐसा वटवृक्ष है जिसकी कहानी इसे बाकी पेड़ों से बिल्कुल जुदा बना देती है। ये पेड़ इसलिए खास है क्योंकि इस पेड़ पर हमेशा सिर्फ 3 पत्ते ही दिखाई देते हैं।
1: हमारे देश में चमत्कारों की कमी नहीं है। चमत्कार धर्म से जुड़ा हुआ होता है और धार्मिक जगहों पर जब हम जाते हैं तो कई तरह से भगवान की उपलब्धि के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही प्रमाण गुजरात के सूरत शहर में देखने को मिला है। बरसों से है, आदिकाल से भी कह सकते हैं, तापी नदी के तट पर एक बरगद का पेड़ जिसके सिर्फ 3 पत्ते ही हैं, चौथा पत्ता कभी नहीं उगता है।
0: मान्यता है कि पेड़ पर जैसे ही चौथा पत्ता निकलता है उसी समय एक पुराना पत्ता झड़ जाता है, यानी किसी भी हालात में सिर्फ 3 पत्ते ही पेड़ पर रहते हैं। अब श्रद्धालुओं के लिए महज पत्ते नहीं है, कोई इनमें ब्रह्मा के दर्शन करता है, कोई विष्णु के, तो किसी को महेश दिखते हैं।
2: मैं तो दूसरी बार आया हूँ, तीसरी बार आया हूँ यहाँ, लेकिन ये है कि साक्षात्कार है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी है और कर्ण का जो यहाँ अग्निदान हुआ था और साक्षात भगवान ही आए थे इधर देखने के लिए। भाई हमको भी मतलब देखना है कौन सी कुंवारी भूमि है इसे, और ये बहुत महात्मा है। इस पर महाभारत से जुड़ी कथा है बहुत, जैसे पंडित जी ने बताया, और बहुत ही अच्छा मतलब जगह है और सब मन्नतें पूरी होती है। यहाँ देखो भीड़ लगी रहती, कभी भी सुना नहीं रहता इसमें, ये बढ़िया है।
0: इस स्थान का संबंध महाभारत काल से माना गया है और कहते हैं कि ये 3 पत्तों वाला वटवृक्ष त्रिदेव का प्रतीक है, इसलिए यहाँ दिन भर दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। किसी के हाथ में पूजा की थाली है, कोई संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर यहाँ पहुँचा है। लोगों की माने तो यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी जरूर होती है।
3: मेरा जन्म 1989 में 14 तारीख और 14 के दिन सितंबर में हुआ। जब तक मुझे इस मंदिर के 3 पत्ते के पान वृक्ष के झाड़ के बारे में पता चला कि यहाँ के महिमा क्या है, मैंने अपने दोस्त को बताया कि इसका क्या क्या चमत्कार है।
0: हैरानी की बात ये कि ना तो इस पेड़ की शाखाएं फैलती हैं, ना ये विशाल बरगद का रूप लेता है, हमेशा रहते हैं सिर्फ 3 पत्ते। मानो प्रकृति ने भी इसकी पहचान को महज 3 पत्तों तक ही सीमित रखा है।
4: नहीं, एक आता है एक जाता है महाराज, थोड़ा सा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। ये वृक्ष में मतलब 5-7 पत्ते साथ में नहीं होते, जैसे डाली नहीं होता, डाली नहीं होगा तो थर्ड नहीं होगा, इस हिसाब से वो पेड़ के रूप में नहीं होता है, लेकिन ये पौधे जैसे रहता है।
1: अच्छा, मतलब पत्ता चौथा नहीं आता है, 3 ही बने रहते हैं, आता भी है तो गिर जाता है,
4: त्रिदेव रूपी 3 ही बने रहते हैं।
0: सावन के महीने में इस मंदिर में अच्छी खासी रौनक रहती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा के साथ साथ इन 3 पत्तों वाले वृक्ष के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
4: वैसे तो वट भगवान का दर्शन तो पूरे साल चलता रहता है, लेकिन यह है कि श्रावण में अपने यहाँ शिव जी भी प्रतिष्ठित है, तो भक्तों का जो है सैलाब थोड़ा बढ़ जाता है। श्रावण का जो महिमा है वो तो है ही, और लोग दोनों का लाभ लेने के लिए मतलब उनका भक्ति मतलब सैलाब थोड़ा बढ़ता है।
0: सूरत के इस अनोखे वटवृक्ष की कहानी जितनी रोचक है उतनी ही गहरी है यहाँ के लोगों की आस्था भी। यही वजह है कि इस छोटे से पेड़ के दर्शन के लिए साल भर श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने सुधार की एक नई और सकारात्मक पहल की है। थाने के हवालात में बंद आरोपियों को सजा के साथ साथ खुद को बदलने और बेहतर बनाने की प्रेरणा दी जा रही है। कोशिश है कि अपराध से दूर होकर आरोपी समाज की मुख्य धारा में लौट सके। थाने पहुंचने वाले फरियादियों के लिए भी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे शिकायत लेकर आने वाला हर व्यक्ति खुद को सहज और सम्मानित महसूस करे।

थाना इस शब्द के जहन में आते ही एक अलग ही भाव उभरता है। पुलिस थाने की छवि आमतौर पर डर, संकोच और विश्वास से जुड़ी रही है, लिहाजा सामान्य तौर पर आम लोग वहां जाने से कतराते हैं। लेकिन ये पुलिस थाना उस छवि को न सिर्फ तोड़ता नजर आता है, बल्कि वहां की व्यवस्थाएं लोगों को आकर्षित करने वाली भी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के इस थाना कोतवाली के अंदर जाने पर एक स्कूल जैसा माहौल आपको नजर आएगा। यहाँ की दीवारों पर की गई पेंटिंग, उस पर लिखे गए स्लोगन, तस्वीरों के साथ प्रेरणादायक कहानियों को दर्शाया गया है। दरअसल बड़वानी पुलिस यहाँ के हवालातों को सुधार कर पाठशाला बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रही है और उसी को लेकर ये बदलाव नजर आ रहा है। इसमें पुलिसिंग के साथ अब इंसानियत, सकारात्मक सोच और व्यवस्था को जगह दी गई है। दीवारों पर महात्मा बुद्ध की सीख के बाद डाकू उंगली माल के हृदय परिवर्तन की कहानियों को चित्रों के जरिए उकेरा गया है। इसी तरह रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने जैसी कथाओं को भी चित्रों के जरिए बताने की कोशिश की गई है, ताकि हवालात में बंद लोगों को

0: थाने में लोग जो आते हैं, आगंतुक आते हैं या आरोपी आते हैं, एक नकारात्मक विचार लेके ही आते हैं। तो हम सभी कहता कि क्यों ना थाने का हमको ऐसा खुशनुमा माहौल बनाया जाए कि अगर इसमें आरोपी भी आ रहा है तो उसका हृदय परिवर्तन होके यहाँ से जाए। तत्पश्चात हम सब लोगों ने कई लोगों से बातचीत की, जिसमें हमारे कुछ प्रमुख न्यायमूर्ति महोदय थे, रिटायर्ड जज साहबान थे, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी साहबान थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम सबसे पहले शुरुआत हवालात से करते हैं, क्योंकि वहाँ आरोपी आता है वो एक विचित्र सी मानसिक अवस्था से गुजरता रहता है और उसमें कुछ तब्दीली हो सके, उसके विचारों में कुछ परिवर्तन हो सके, इस कारण से हमने हवालात में सुधार करने का प्रयास किया।
1: किसी तरह अपराध के अपराधियों में सुधार के साथ ही यहाँ शिकायत लेकर आने वालों को अच्छा महसूस कराने के लिए भी तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। थाने में फरियाद लेकर आने वालों और उनके साथ अगर बच्चा भी हो तो उसका भी ध्यान रखा गया है। फरियादों के बैठने के लिए व्यवस्थित जगह बनाई गई है, तो बच्चों के लिए कॉमिक्स की व्यवस्था भी की गई है। महिला फरियादियों के लिए महिला डेस्क पर सैनिटरी पैड की व्यवस्था की गई है। वहीं छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग स्थान भी बनाया गया है। इन थानों की सजावट किसी होटल और मॉल की तरह नजर आती है। फिलहाल बड़वानी जिले में 5 थानों में बदलाव की शुरुआत की गई है।
0: यूं ही एक मन में विचार आया कि हमारे थाने में आने वाले जो आरोपी गण हैं, गिरफ्तार व्यक्ति हैं, उनमें हम अगर कुछ सुधार कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। लोगों की ये सुविधा के लिए ही हम सब लोगों ने ये चीज चालू की है, क्योंकि जैसा माहौल रहेगा वैसे ही पुलिसकर्मी का बर्ताव होता है। तो एक स्वस्थ माहौल आने से पुलिसकर्मियों के व्यवहार में भी बदलाव होगा। इस इलावा सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण और राजपुर, इनको उच्च गुणवत्ता के कारण इनको ISO 9000 सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। साथ ही साथ हमारे SP ऑफिस को भी ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।
1: थानों में मौजूद रिकॉर्ड को भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। फाइलों के ढेर को बॉक्स में व्यवस्थित कर उन पर पहचान संबंधित विवरण लगाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड को आसानी से तलाशा जा सके। मालखाना, शास्त्रागार समेत थाने में खड़े जब्त वाहनों पर QR कोड भी लगाए गए हैं, ताकि उनसे जुड़ी तमाम जानकारी आसानी से मिल सके। बड़वानी से जैद अहमद शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब बात रेस्क्यू की कर लेते हैं, जिसे आप वाकई अनोखा कहेंगे। अर्जेंटीना के बंद पड़े लुजान चिड़ियाघर से 63 बिग कैट्स को नई जिंदगी मिली है। जी हां, बिग कैट्स को एक नई जिंदगी मिली है। इनमें से 15 शेर और बाघ अब दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट।
3: ये तस्वीरें सिर्फ शेर और बाघों के सफर की नहीं है, ये तस्वीरें हैं कैद से आजादी तक पहुंचने की एक लंबी और भावुक कहानी की। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के पास मौजूद पूर्व लुहान चिड़ियाघर कई साल पहले बंद हो चुका था, लेकिन इसके बंद होने के बाद भी यहां रहने वाले जानवरों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। छोटे और भीड़भाड़ वाले बाड़े, सीमित जगह और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, हालात इतने खराब थे कि कुछ जगहों पर एक ही छोटे से स्थान पर 7 शेरों को रखा गया था। इन जानवरों को बेहतर जिंदगी दिलाने के लिए एक संगठन आगे आया और शुरू हुआ इन्हें बचाने और दूसरी जगह पहुंचाने का बड़ा अभियान।
4: We arrived to Argentina to rescue these cats. It was a former zoo abandoned over 5 years, so the animal was really not in a good condition. Some of them have health problem. They were very congested in very, very small cages. Some of them, like 7 lions, could be in one small space.
3: इस मुश्किल यात्रा से पहले करीब एक महीने तक इनका इलाज किया गया, उनकी सेहत सुधारी गई और उन्हें लंबी यात्रा के लिए तैयार किया गया। इसके बाद शुरू हुआ इन जानवरों का लंबा सफर। 30 बड़े जानवरों को अर्जेंटीना से बाहर निकाला गया, इनमें से 15 को अमेरिका भेजा गया, जबकि 15 शेर और बाघ दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। अब इन बेजुबानों का नया ठिकाना है दक्षिण अफ्रीका की एक खास सुरक्षित जगह, जहां इन्हें सिर्फ रहने की जगह ही नहीं बल्कि लंबे समय तक देखभाल, इलाज और दोबारा सामान्य जिंदगी जीने की सुविधा भी मिलेगी। रेस्क्यू टीम के पशु चिकित्सकों के लिए भी इन जानवरों की हालत देखना आसान नहीं था। डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ ये बेजुबान बंद थे। वहाँ चिड़ियाघर 5 साल से ज्यादा समय से बंद था और जानवर ऐसी परिस्थितियों में रह रहे थे जहाँ उनकी बुनियादी जरूरतों का भी ख्याल रखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: अंतिम पड़ाव पर पहुंची बाबा अमरनाथ की यात्रा, विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रृंगार से निकली श्रीनगर से छड़ी मुबारक, 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचेगी। दिल्ली NCR में रिमझिम बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, यूपी उत्तराखंड सहित देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया, युवा वकीलों ने फैसले का स्वागत किया। केरलम में 72वीं रोमांचक नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का मुकाबला, तो वहीं पन्नुमाड़ा झील में हुई प्रतियोगिता, 22 स्नेक बोट समेत 71 नावें शामिल हुई। हांगकांग के आसमान को 2000 ड्रोन्स ने किया रोशन, क्विक्सी फेस्टिवल पर की गई चीनी लोक कथा की प्रस्तुति, रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए बन गई यादगार अनुभव। बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आउट, 4 दिसंबर को फिल्म रिलीज होगी, हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकेंगे दर्शक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रीनगर से निकली छड़ी मुबारक, अनुष्ठान के साथ ही अंतिम पड़ाव पर पहुंची बाबा अमरनाथ की यात्रा। इस मौके पर महंतों और साधुओं के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भक्तिमय हुआ माहौल। श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना हुई पवित्र छड़ी मुबारक, जहां रात्रि विश्राम और अनुष्ठान के बाद चंदनबाड़ी के लिए निकलेगी यात्रा। 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचेगी छड़ी मुबारक, सभी होगा बाबा अमरनाथ की यात्रा का औपचारिक समापन। इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई थी 57 दिवसीय अमरनाथ यात्रा, अब तक 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। पूरी श्रद्धा और आस्था से जारी है प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, धार्मिक यात्रा के 5वें जत्थे ने दर्शन पूजन किए। यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, श्रद्धालुओं का फूल मालाएं पहनाकर हुआ भव्य स्वागत, गूंजे जयकारे। स्थानीय लोग भी पेश कर रहे हैं सेवा, सहयोग और भाईचारे की मिसाल, श्रद्धालुओं के लिए जलपान भोजन पेयजल समेत सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकल रहा जत्था, भक्तों की यात्रा सुगम और सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है प्रशासन। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की ये यात्रा, रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भव्य झूलनोत्सव का हुआ आयोजन, सावन के महीने में 3 भाइयों के साथ रामलला को झुलाया गया झूला। झूलनोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा मौजूद रहे, श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आए लोग। रामलला को झूला झुलाने के लिए लगी होड़, धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भजन कीर्तन करते हुए दिखे साधु संत। भगवान राम के उत्सव विग्रह को फूलों से सजे चांदी के हिंडोले में कराया गया विराजमान, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। रामनगरी में झूला उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह, तीनों भाइयों के साथ रामलला के दर्शन का मिला सौभाग्य। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली में होगा मटकी फोड़ यानी एमपीएल सीजन 2 का आयोजन, लड़के और लड़कियों की कुल 26 गोविंदा टीमों के बीच होगा रोमांचक मैच। मटकी फोड़ लीग का आधिकारिक एंथम सॉन्ग गोविंदा आला रे लॉन्च हुआ, तो वहीं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रोमी ने एंथम को अपनी आवाज दी। मटकी फोड़ लीग के दौरान बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए आधिकारिक मैस्कॉट मटकू का को तैयार किया गया, दिल्ली के अलग अलग झूलों में जाकर मटकू एमपीएल का देगा संदेश। सूरजमल बिहार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा आयोजन, मटकी फोड़ लीग के खिलाड़ियों की ताकत संतुलन रणनीति और टीम वर्क की होगी परीक्षा। आधुनिक खेल प्रतियोगिता की तरह मटकी फोड़ लीग को किया गया डिजाइन, आयोजकों के मुताबिक आईपीएल की तर्ज पर बेची जाएंगी एमपीएल की टीमें। मंत्री असीम अरुण ने शीतला देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, देश की समृद्धि के लिए मंगल कामना। तमिलनाडु के वेल्लूर पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, श्रीपुरम गोल्डन टेंपल में किए दर्शन पूजन। इस दौरान उनका पारंपरिक पूर्ण कुंभ स्वागत किया गया, मंदिर के अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित भी किया। कर्नाटक के तुमकुर में वर महालक्ष्मी उत्सव की धूम देखने को मिली, मंदिर परिसर के फूलों से की गई भव्य सजावट। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन, देवी महालक्ष्मी से लिया सुख समृद्धि का आशीर्वाद। केरला में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किया गया, पुन्नमाड़ा झील में हुई प्रतियोगिता। मुकाबले में 22 स्नेक बोट समेत 71 नावें शामिल हुई। भारी संख्या में शानदार बोट रेस देखने के लिए आए दर्शक। केरला की सबसे मशहूर सांस्कृतिक और खेल परंपराओं में से एक है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। 1952 में हुई थी इसकी शुरुआत। बस्ती में बेटे के अफसर बनने पर दिखा पिता का बादशाही अंदाज। हाथी पर बैठाकर बेटे का भव्य स्वागत किया। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हुआ है अविनाश पांडे का चयन। इस उपलब्धि की खुशी में उनके पिता ने गाजे बाजे के साथ स्वागत का आयोजन किया। महाराष्ट्र में पुलिस फोर्स के साथ रह सकेंगे रिटायर हो चुके पुलिस डॉग्स। महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी। गृह विभाग उठाएगा खर्च। निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया गया। युवा वकीलों ने फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह शानदार पहल। इसके तहत आयोजित 3 दिन की स्पेशल लोक अदालत के पहले दिन किया 400 से ज्यादा मामलों का निपटारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किए निर्देश। विधानसभा और सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। अधिकारियों कर्मचारियों और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर। तो वहीं बिना पुष्टि की गई पोस्ट या टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिहार से 1 सितंबर को चलेगी भारत गौरव ट्रेन। धार्मिक पर्यटन पर जाने वालों के लिए सुनहरा मौका। एक यात्रा में 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के अलावा एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं को कराया जाएगा भ्रमण। भारत गौरव ट्रेन में स्लीपर का किराया 18,160 रुपए, थर्ड एसी का 32,550 और सेकंड एसी का 39,425 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया। पैकेज में रेल यात्रा के अलावा ठहरने, स्थानीय परिवहन और बीमा जैसी सुविधाएं शामिल। यात्रा के लिए बिहार के 11 शहरों से बोर्डिंग की सुविधा। सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स का नया TI22 कलेक्शन लॉन्च। अभिनेता हर्षवर्धन राणे को बनाया गया कैंपेन का चेहरा। अलीगढ़ के मलखान सिंह चिकित्सालय में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। खाने की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर कैंटीन को सील किया। मरीजों को परोसी जाने वाली दाल और सब्जी के नमूने आए अनसेफ। अस्पताल में खराब भोजन दिए जाने की मिल रही थी शिकायतें। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में FDA की बड़ी कार्रवाई। होटल में जांच के दौरान मिली खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां। होटल के किचन में इस्तेमाल के लिए रखा पनीर मिला खराब। टॉयलेट के एंट्री गेट पर काटी जा रही थी सब्जियां।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है।
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
10: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूँ और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: अंतिम पड़ाव पर पहुंची बाबा अमरनाथ की यात्रा, विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रीनगर से निकली छड़ी मुबारक 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचेगी। निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया गया, युवा वकीलों ने फैसले का स्वागत किया। केरल में 72वीं रोमांचक नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन, पुन्नामाड़ा झील में हुई प्रतियोगिता, 22 नेक बोट समेत 71 नामें हुई शामिल। बस्ती में बेटे के अधिकारी बनने पर पिता ने किया अनोखा स्वागत, हाथी पर सवार होकर घर पहुंचा युवक, ढोल नगाड़े बजाकर गांव वालों ने बधाई दी। हांगकांग के आसमान को 2000 ड्रोन्स ने किया रोशन, क्विक्सी फेस्टिवल पर की गई चीनी लोक कथा की प्रस्तुति, रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए बन गई यादगार अनुभव। बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आउट, 4 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज, हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकेंगे दर्शक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट।
11: वॉलेट, ये देखिए कितनी छोटी सी चीज है लेकिन है कितने काम की। इसमें रखते हैं हम अपने कैश, आईडी, सिक्के, रिसीट्स, और बिल्कुल ऐसा ही है हमारे शो सास बहू और पेटिया में आपके लिए एंटरटेनमेंट का वॉलेट, जहां है आपके फेवरेट शोज का हर अपडेट, वेब और फिल्मों की हलचल, रियलिटी शोज की झलक, आपके फेवरेट सितारों से आपकी मुलाकात और बहुत सारी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो चलिए फिर खोलते हैं आज आपके लिए एंटरटेनमेंट का वॉलेट हेडलाइंस के साथ।
12: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटिया के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए नौनिका के ससुराल में आएगा शादी का ट्विस्ट, होगा तमाशा भी। ससुर के आगे मजबूर होगी रूहानी, क्या जला देगी अपनी डॉक्टर की डिग्री। रंग लाएगी अभिरा की कोशिशें, सुधरेंगे पापा बेटे के रिश्ते। आकाश के आने से भड़केंगे ईशा और सूरज। आखिर क्यों ससुराल छोड़कर आश्रम चली वसुधा। और अस्पताल में होगी संजय और स्वाति की सगाई।

0: सूरज और ईशा की ये कहानी भी खोलती है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का वॉलेट। पति ब्रह्मचारी, जब से शुरू हुई है ना ये कहानी, कहानी का लेखक हम सबको इस कहानी से बांध कर रखता है। देखिए कितनी बेसब्री से रहता है हमें इसके हर नए एपिसोड का इंतजार। तो चलिए फिर जानकर आते हैं इस कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आप सबको सूरज और ईशा के पास।
1: आकाश पर फूटा सूरज का गुस्सा, बिगड़ी मिहिका की तबीयत, ईशा की बेबसी।
2: ईशा को मेरे पांव के नाक में रखी है और मेरी वर्दी वापस दिलाने में मेरी पूरी मदद है।
1: आकाश की जानलेवा चेतावनी,
2: तो बताइए।
1: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में घर में चल रही हैं काव्या की शादी की तैयारियां। ऐसे में काव्या की शादी में ढोल बजाते हुए हो जाती है आकाश की एंट्री, वो भी ईशा के घर में। जरा देखिए आकाश अपनी खुशी कैसे जाहिर कर रहा है।
2: मेरी बहन की दूसरी शादी होने, पर इस घर में रौनक ही नहीं। कोई बात नहीं, अब इस बहन का भाई आ गया है, धूमधाम से तैयारी।
3: देखिए घर पे जो है सूरज और ईशा नहीं है, और मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी जो मेरी बेटी है मीका, उसको उठा के ले जाऊं अपने पास, अपने पोजीशन में रख लूं। तो और बाकी जो घर वाले हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स वो डर भी रहे हैं क्योंकि मैं साथ में लोग भी लाया हूं, और यू नो कहीं मैं करंट दिखा रहा हूं, स्पार्क्स दिखा रहा हूं, हथौड़ा चला रहा हूं, कहीं उनके फोन तोड़ रहा हूं, तो काफी हाई ड्रामा चल रहा है।
1: भाई आकाश का इस तरह से आना ताई माँ को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा, और तो और ताई माँ डरी हुई है क्योंकि घर में ना तो सूरज है और ना ही ईशा। बस फिर क्या, मौके का फायदा उठाता है आकाश, और देखिए कैसे वो ताई माँ को डराने लगता है। इतना ही नहीं, वो तो जानलेवा खेल भी खेलता है। लाइट्स की लड़ियों को ताई माँ के हाथों में रख देता है, और फिर घर वाले कुछ बोल ना पाए इसीलिए उनका मोबाइल भी ले लेता है, और फिर शुरू करता है ताई माँ को डराना। जरा देखिए कैसे वो वायर को डायरेक्टली स्विच बोर्ड से ज्वाइन करता है ताकि ताई माँ को करंट लग सके और घर वाले डर सके। लेकिन पूरन नाराज होता है और वो लाइट्स की लड़ियाँ खुद लेकर आकाश पर चिल्लाने लगता है, पर आकाश उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर मिहिका को लेने आया है और उसे लेकर ही जाएगा। जरा देखिए कैसे वो मिहिका को जबरन उठाकर लेकर जाने की कोशिश करता है।
2: बच्ची क्या हो गया तुम्हें? माना मैं तुम्हारा सुतेला भाई, तुम्हारी शादी की डेकोरेशन ही तो करा रहा हूँ।
1: भाई आकाश मेहका को ले जाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हो जाती है ईशा की एंट्री, और देखिए कैसे ईशा आकाश का कॉलर पकड़कर खींचकर बाहर ले जाती है और उसे लगा देती है हथकड़ी गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आकाश खेलता है डबल गेम और करने लगता है इमोशनल अत्याचार।
2: मैं बताऊं तो सबको कि आज मैं यहाँ क्यों आया था? अब अगर एक बाप को अपनी बेटी से मिलना भी जुर्म है, फिर मुझे सूली पे ही चढ़ा देना चाहिए। और ये भी बताऊंगा मैं कि आज कैसे आईपीएस ऑफिसर ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक बाप को उसकी बेटी से मिलने से रोका है। फिर देखते हैं,
3: कुछ चेंजेस किए हैं। पहले हम जो थे काफी कूल एक वो रखते थे कि यू नो ज्यादातर विलन होते हैं कि वो आएगा, गुस्से से देखेगा, मारेगा। वो हमने नहीं किया था आकाश के साथ, एंड आई थिंक ये लोगों का प्यार ही है कि यू नो उनको वापस देखना, तो दैट्स व्हाई दो महीने बाद जो है मेरे कैरेक्टर को वापस लिखा गया है और लेके आया गया है। इस बार हम उसको थोड़ा सा शरीफ दिखा रहे हैं क्योंकि एक बार वो जेल जा चुका है, तो वो और उस समय उसके पास पावर थी, वो आईपीएस था। लेकिन अब जैसे कि समय का चक्र घूमता है, अब ईशा के पास वो पावर है, वो आईपीएस है, मैं एक कॉमन मैन हूँ। लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल जो है उसके लिए आपको कोई टाइटल नहीं चाहिए, इसलिए मैं अपनी बेटी के थ्रू जो है जो इतने टाइम से इनके साथ थी स्टोरी में 2 साल से, तो अब उन्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ बेसिकली।
1: भाई ईशा के हाव भाव देखकर आकाश के तेवर बदल जाते हैं और उसे लगता है कि उसका पलड़ा भारी हो गया है। ऐसे में वो खुद हथकड़ी निकालता है और चल पड़ता है मेहिका की ओर। लेकिन तभी हो जाती है सूरज की एंट्री, जो आते ही आकाश को लगाता है एक मुक्का और गिरा देता है जमीन पर। इससे पहले कि सूरज आकाश पर अपना गुस्सा उतारता, ईशा रोक लेती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं, आ जाता है कहानी में एक और ट्विस्ट, क्योंकि अचानक बिगड़ जाती है मेहिका की तबीयत।
3: सोच क्या रही हो ईशा? लगता है तुम्हें भी मेरी तरह इस बच्चे से। अभी जो है मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ जो मेरी बेटी है उनके पास 2 साल से रह रही है। अब क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, मैं अब IPS नहीं हूँ, वो पावर अब ईशा के पास है। मेरे ऊपर केस हुए इसलिए मेरी जॉब जो है वो जा चुकी है। तो मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ कि या तो मेरी बेटी दे दो या फिर मेरी जॉब मुझे वापस दे दो। जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट वापस लोगी, मैं जो है लोगों के सामने इनोसेंट हो जाऊँगा, मेरी जॉब वापस मिल जाएगी, फिर मैं आपसे बदला लूँगा। तो ये अभी माइंड गेम्स चल रहे हैं
1: भाई। अब तो सूरज और ईशा दोनों ही बेबस और लाचार पड़ जाते हैं। ऐसे में ईशा फैसला करती है और पहुंचती है आकाश के पास। इतना ही नहीं, वो तो घुटनों के बल बैठ भी जाती है। अपनी नाक टकड़ने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी सूरज सही समय पर आकर आकाश के हाथों को झटक देता है, जिसके चलते वो इनहेलर ईशा के हाथों में आ जाता है और ईशा दौड़ कर जाकर मेहिका को वो इनहेलर देती है, जिसके चलते मेहिका की तबीयत ठीक होने लगती है। ऐसे में मेहिका की तबीयत ठीक होते ही सूरज की जान में जान आती है और वो अपना गुस्सा आकाश पर उतारने के लिए आगे बढ़ता है।
2: अरे नहीं नहीं, मेरी क्या मजा है कि मैं कुछ करूँ? अपनी शादी का पहले
3: साइको बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, कई तरह के साइको हो सकते हैं। और अब हम ट्राई कर रहे हैं कि मेंटली प्ले करें रादर देन एक्चुअल पावर्स है। हाँ, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्योंकि एक बार जब आप गलत हो जाते हैं पता चल जाता है सोसाइटी में कि ये, तो इसलिए लोगों को कि ऐसा लगे कि बदलाव हो गया है, इसलिए यू नो थोड़े बाल चिपका के और हाफ स्लीव्स की शर्ट, जैकेट वैकेट नहीं, थोड़ा सिंपल, शूज नहीं, चप्पल बूट्स नहीं। तो ये एक परसेप्शन है, जैसे कि ज्यादातर लोग जो साइकोपैथ होते हैं वो एक आपको पहले माइंड गेम से यू नो ट्रैप करते हैं। तो वही कह रहा है
1: भाई, बातों ही बातों में आकाश ने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि वो अब घर पर खतरा बनकर मंडराएगा और वो ऐसी चाल चलेगा कि किसी की जान भी जाएगी और उस पर इल्जाम भी नहीं आएगा। वहीं दूसरी ओर सूरज की बहन रिया और उसका दोस्त बंटी पहुंच गए हैं मंदिर करने के लिए शादी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और कहीं न कहीं मंदिर में वो खड़े तो हैं, लेकिन डर भी रहे हैं कि इनके रिश्ते के बारे में जब घर वालों को पता चलेगा तो घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। अब देखना होगा कि आकाश कैसे इनके रिश्ते का फायदा उठाएगा और फिर से घर में एंट्री कर लाएगा नया ट्विस्ट। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: जब बात करें हम वॉलेट्स की, तो देखिए इनमें है कितनी सारी वैरायटी, कितने सारे पैटर्न्स, कितने सारे ब्रांड्स। और बिल्कुल ऐसी है हमारे पास भी आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी। हमारी अगली खबर जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट का हर रंग, यानी एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा सब कुछ एक साथ। मैं जानती हूँ आपसे नहीं हो रहा है इंतजार, फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
1: मिलकर भी ना मिल सके संजय और वृंदा, की तबीयत को लेकर परेशान संजय,
4: मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी
1: अस्पताल में संजय और स्वाति की अनोखी सगाई,
4: तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक मेरी इश्क खुमारी।
1: जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में अस्पताल में पहुंच गई है संजय की माँ, और उसे लाने वाली कोई और नहीं बल्कि वृंदा है जो उसकी देखरेख कर रही है, कि तभी उसी वार्ड में भर्ती दूसरे आदमी की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसे देखने के लिए वृंदा सरिता को छोड़ उस तरफ आ जाती है, और तभी कमरे में हो जाती है संजय की एंट्री, जो आया है अपने पूरे परिवार और अपनी होने वाली मंगेतर स्वाति के साथ। और किस्मत का खेल तो देखिए कि उसी कमरे में संजय और वृंदा मौजूद तो है लेकिन मिलकर भी एक दूसरे को देख नहीं पाए, और वृंदा एक पल के लिए सोचती है कि जाकर वापस सरिता को देख ले, लेकिन उसे एहसास होता है कि सरिता का पूरा परिवार आ गया है। ऐसे में वृंदा चुपचाप वहाँ से चली जाती है, वो भी सभी से बिना मिले, और संजय का परिवार सरिता को इस हाल में देखकर बेहद परेशान हो रहा है, और सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है संजय।
5: अच्छा हुआ कि ये टाइम तो हॉस्पिटल
6: आया, बट शी इज बेटर। डॉक्टर, इन्हें हॉस्पिटल कौन लेके आया था? मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ।
7: जी एक्चुअली मेरा एक बहुत ही बड़ा सा सीन, बहुत ही बड़ा सा सीक्वेंस जाता है नरेंद्र जी और धनकोर के साथ, जिसमें वो वापस मेरे साथ शादी करने की कोशिश करते हैं और बाद जैसे तैसे आके मुझे बचाते हैं। मैं बहुत डिसेबल होके वहाँ से भागती हूँ, भाग के टेम्पो में बैठती हूँ, वहाँ पे रास्ते में मुझे काकी बेहोश होते हुए दिखते हैं, और वो निकलते हैं कि सरिता काकी है जो मुझे मंदिर में मिली थी, तो मैं उन्हें वापस बचाती हूँ गिरने से, उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आती हूँ, और एक काफ़ी एक माँ जैसा बॉन्ड है मेरा उनके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि जो सरिता काकी का जो चेहरा है ना, वो एकदम बहुत ही शीतल सा, बहुत ही कूलिंग सा, सूदिंग सा, कि अगर मेरी माँ होती तो उनका भी चेहरा शायद से इतना ही सुंदर, इतना ही मतलब अच्छा सा, प्यारा सा होता, उनके फीचर्स बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो मैं अगर किसी को इमेजिन करती हूँ अपनी माँ के रूप में तो उनको करती हूँ, तो मैं उनके लिए काफ़ी इमोशनल होती हूँ। मैं बहुत यहाँ पर कोशिश कर रही होती हूँ हॉस्पिटल में ढूंढने की कि डॉक्टर मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। बट फिर आते हैं संजय, जब मैं अपनी माँ ने मुझे एक माता की चुनरी दी होती है कि ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा, वो बांध के मैं निकल रही होती हूँ, तब आते हैं संजय। बट एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर मैं फिर संजय को नहीं देख पाती।
1: भाई डॉक्टर ने तो संजय और पूरे परिवार को बता दिया है कि अब सरिता ठीक है, और तो और स्वाति ने भी सरिता की रिपोर्ट देख ली है। इसी बीच डॉक्टर वहां से चली जाती है, और बाहर उसकी मुलाकात होती है वृंदा से। वृंदा सरिता का हालचाल पूछती है, ऐसे में डॉक्टर उसे बता देती है कि सब ठीक है, और वृंदा दरवाजे पर आती है और सरिता को उसके पूरे परिवार के साथ देख कर बिना मिले ही चली जाती है। तो वहाँ अपनी माँ के इस हाल को लेकर संजय बेहद परेशान हो रहा है।
6: कह रहा मेरा दिल मान नहीं रहा था कि मेरी माँ सगाई छोड़ के ऐसे। फिक्र मत कर बेटा, अम्बे माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारी सरिता के ऊपर रहेगा।
1: फिलहाल तो सरिता बेहोश है और उसकी तबीयत को लेकर सभी परेशान हैं। इसी बीच डॉक्टर ने आकर सरिता की दूसरी रिपोर्ट दे दी, जिसे देखकर स्वाति खुश हो गई है क्योंकि रिपोर्ट अच्छी आई है। ऐसे में तभी आ जाता है सरिता को होश भी, और उनके होश में आते ही संजय अपनी परेशानी बताता है और उनकी चिंता जताता है।
6: क्यों चली गई थी? इसे बिना बताए इन्फॉर्म किया बस चली। क्या जरूरत थी? किसी और को भेज देती।
8: हाँ कभी सगाई छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी आपको, अगर मुझे बता देती तो मैं किसी और को भेज देती चुनर लाने के लिए।
6: क्यों, कहाँ चली गई थी आप ऐसे बिना बताए चली गई? चुनर लाने के लिए किसी और को भेज देता क्यों भैया?
8: हाँ भाभी, क्या जरूरत थी जाने की सगाई छोड़ के, किसी और को भेज देती ना चुनर लाने के लिए। खैर वो चुनर वाली रस्म बाद में भी तो हो सकती थी ना एंगेजमेंट के।
6: बेटा हम सब तुझे मिस कर रहे थे, कितने परेशान हो गए थे तो, क्यों किया है सब? हाँ तुम्हारे अपने बेटे की सगाई थी।
1: अब सरिता तो माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहती थी ताकि उसके बेटे और बहू की जिंदगी में खुशहाली आए, और तभी सगाई सुनते ही वो अपने बेटे और अपनी होने वाली बहू की उंगलियां देखने लगी, और ऐसे में अंगूठी न पाकर वो परेशान हो गई, क्योंकि अब 3 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। ऐसे में उसकी परेशानी को देखते हुए स्वाति के पापा ने दे दिया सभी को सरप्राइज।
5: अंकल व्हाट अ कोइंसिडेंस, अभी 5 मिनट और बाकी है, रिंग्स आर विद मी, तो अगर हम सब ओके है तो एंगेजमेंट अभी हो सकती है।
6: हाँ बिल्कुल, तुम भी हो, रिंग्स भी हैं, बच्चे भी हैं।
5: हाँ हो जाए।
8: पर मम्मा,
5: मम्मा को बेटा वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, आशीर्वाद उसमें ही ले लेना है कि?
7: अपने एक्सेप्टेंस दे रही है कि मुझे ये, मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट करती हूँ। तो काफ़ी प्यारा सा मोमेंट था उस माता की चुनरी में, एक रोली है जो सरिता जी लगाएंगी। अब आपको देखने में बहुत मजा आएगा।
1: अब नेकी और पूछ फटाफट माधवी को कॉल लगाया गया, और ऐसे में स्वाति ने अपनी माँ को मनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, संजय ने भी वीडियो कॉल पर अपनी होने वाली सासू माँ को आश्वासन दिया कि वो उनकी बेटी को खुश रखेगा। ऐसे में वो भी मान गई, और देखिए कैसे अस्पताल में संजय और स्वाति की अनोखी सगाई हो रही है जिसमें संजय का पूरा परिवार शामिल है। फिलहाल दोनों की सगाई तो हो गई है, अब देखना होगा कि किस्मत क्या खेल खेलेगी संजय और स्वाति की जिंदगी के साथ, और क्या वृंदा संजय की जिंदगी में आ जाएगी।

0: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुरु और रूहानी की कहानी का ये वॉलेट भी लेकर आता है हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट, इश्क जुनूनी। तो चलिए फिर पता कर आते हैं क्या यहाँ पर है इश्क का जुनून या फिर किसी नए ट्विस्ट का। क्या फिर से आएगा कहानी में कोई ऐसा मोड़ जो लेकर आएगा हमारे लिए कोई गुड न्यूज, या फिर ये नया मोड़ लेकर आएगा कहानी में कोई नया ड्रामा। चलिए लेते हैं अपने सवालों के जवाब, लेकर चलते हैं आप सबको सीधा इश्क जुनूनी के सेट पर।
1: शेर का बच्चा है, दहाड़ ही मारेगा। अरे वो तो तुम्हारा दिल ना दुखे, ये मुर्गे बोल नहीं पाया कि वो पाऊ बन गए, नाम से भी और काम से भी।
0: नागेश्वर की हुई जीत।
2: डिग्री और एक शरीफों वाली जिंदगी दोनों से रात।
0: रूहानी हुई बेबस और लाचार। क्या पापा के आगे गुरु की होगी हार। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज गुरु थोड़ा सा डरा हुआ है। असल में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ तो गया है, लेकिन गुरु जो सबके साथ शामिल तो है, लेकिन उसकी नजर सामने रखी आम की पेटी पर है। तभी तो देखिए कैसे कभी वो पेटी देखकर पानी का ढसा लग जाता है, तो कभी वो परेशान होने लगता है, लेकिन अपनी परेशानी किसी के सामने जाहिर होने नहीं दे सकता। ऐसे में रूहानी उसे खाना परोसती है और चुपचाप वो खाना खाने के लिए बैठा तो है, लेकिन नजरें आम की पेटी पर और खाना आधा मुँह के अंदर तो आधा प्लेट में गिर रहा है। और ये नज़ारा बगल में बैठा भाई बंटी देख रहा है और हैरान हो रहा है। ऐसे में देखिए कैसे उसकी परेशानी जानने के लिए बंटी ने नीचे चम्मच गिरा दी और चम्मच

0: हमारे दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो डाइनिंग टेबल पे हुआ उसका यह है कि हमने गुरु को बोला कि हथियार पुलिया के पार पहुंचा के आओ, तो वो आम की पेटी में छुपा के ले जा रहे हैं, तो समाओ गुरु भूल जाता है और वो आम की पेटी घर में आ जाती है, तो जब वो आम की पेटी देखते हैं तो दोनों की हालत ख़राब हो जाती है, तो बंटी और दौड़ के जाते हैं, बोले आज हम काटेंगे, तो सब लोग हैरान है कि भाई गर्दन काटने वाले आज आम कैसे काट रहे हैं, तो वो लोग आम काट के ले आते हैं, तो जब तक हमें कुछ पल्ले पड़ा नहीं तो हम देखते हैं कि रूहानी मुस्कुरा रही है, सब हंस रहे हैं, तो हम रूहानी पे तंज कसते हैं कि देखना एक दिन ये तुम्हारी हंसी मातम में बदल जाएगी, तो ये ऐसा कुछ सीन चल रहा है।
1: अब नागेश्वर के सामने ये बात छिपाने के लिए गुरु और बंटी दोनों आम काट कर ले तो आए, लेकिन प्लेट में रखे कटे हुए आम देखकर गुरु की माँ हैरान हो रही है, क्योंकि आम की हालत बिगड़ जो गई है। खैर, नागेश्वर को लगता है कि गुरु ने उनका कहा मान लिया है, ऐसे में अब गुरु बाहुबली बनना चाहता है, इसलिए देखिए कैसे उन्हें लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। और तो और वो रूहानी का डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी ले आए, क्योंकि शर्त के मुताबिक रूहानी अपनी डॉक्टरी जो छोड़ेगी।
2: कहा जाना हमने कि शेर का बच्चा है दहाड़ ही मारेगा, अरे हमने गुरु ने तो बाहुबली बनने का रास्ता चुना, तुमको क्या लगता है कि हम अपने गुरु को जबरदस्ती बाहुबली बनाना चाहते हैं? अरे वो तो तुम्हारा दिल ना दुखे इसलिए खुल के बोल नहीं पाया कि वह पाऊ बन गए नाम से भी और काम से भी। हमने सुना है कि तुम अपने वादों की बड़ी पक्की हो, तो चलो शर्त के हिसाब से। और ये शरीफों वाली जिंदगी दोनों चला दो।
0: ये हमारा एक ही मकसद है कि गुरु को बाहुबली बनाना, और रूहानी अगर मानती है तो ठीक है, नहीं तो उसके उसको गुरु की जिंदगी से बाहर निकाल देना। तो हमारी शर्त लगी थी, जैसे देखा होगा दर्शकों ने, कि हम जीते तो बंदूकें बहा देंगे, अगर वो और सॉरी अगर वो जीती तो हम बंदूकें बहा देंगे, और हम जीते तो वो अपना कोट और डिग्री जला देगी। तो ये जो चल रहा है, तो अब हमारी पूरी कोशिश यही है कि ये अपने कोट और डिग्री जला दें, ठीक है, और इनकी कोशिश है कि हम सारी बंदूकें बहा दें, तो यही कशमाकश चल रही है हम दोनों के बीच में।
3: ऑफ कोर्स वो मेरे ससुर जी का ही है, उसे गलत रास्ते पर चलाने की शिक्षा देना, वेरी बैड ससुर जी।
4: गलत रास्ते नहीं चला रहे, बाहुबली बना रहे हैं।
3: बाहुबली दूसरों की जान ले रहे हैं वो बाहुबली?
4: अरे धंधा है पर गंदा है।
3: वेरी बैड ससुर जी, मैं डॉक्टर हो के लोगों की जान बचाती हूँ, उसको जान नहीं लेने दूंगी किसी की।
1: बेचारी रूहानी के इरादे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज वो बेबस और लाचार हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी हार हो गई है। तभी तो देखिए कैसे चुपचाप आंखों में आंसू लिए वो अपना सर्टिफिकेट तो ले ही रही है, साथ ही अपने ससुर जी का कहा भी मान रही है, उसने तो माचिस की तिली भी जला दी। अपना सर्टिफिकेट जलाने के लिए, लेकिन तभी आ गई रूहानी की सासू माँ रूहानी को रोकने और ये बताने कि रूहानी की माँ की तबीयत खराब है। बस फिर क्या, ये सुनते ही रूहानी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने माचिस और सर्टिफिकेट दोनों ही वहाँ रख दिए और चुपचाप वहाँ से चली गई।
3: ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगी, वो तो पहले से ही था, हम लोग क्या अपने फोटोज में देखा होगा, हम जो बंदूक ताने खड़े हैं, क्या पता बेटा बाहुबली ना बने बहुरिया ही बन जाए।
0: लेकिन ऑफ द स्क्रीन तो हम यही चाहते हैं कि यही जीते, लेकिन ऑन स्क्रीन है जैसे हमने कहा कि गंदा है पर धंधा है वाली बात जो है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम ही जीते।
3: लेट्स सी ससुर जी कौन जीतेगा, क्यों चलेगी, ऐसे थोड़ी चलने दूंगी डिग्री।
0: डिग्री जलेगी या बहुत धूमधाम से जलेगी,
3: लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, किसकी डिग्री जलती है और किसकी बंदूकें जलती है।
1: फिलहाल तो ससुर और बहू के बीच कड़ी टक्कर चल रही है, दोनों एक दूसरे को चैलेंज पर चैलेंज दे रहे हैं। अब देखना होगा कि गुरु किसकी शर्तों पर खरा उतरेगा और कौन गुरु के चलते जीत जाएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: या मेरी मम्मी को दे दीजिएगा।
2: अपने अपमान का बदला तो हम लेकर रहेंगे, तुमने

0: शेर को जगाया नीति की बेटी, आज रात मिलेगा तो मैं हमारा दोहरा वार।
1: इसे देखिए, एक रियलिटी शो भी तो होता है एक वॉलेट की तरह, जिस तरह हम अपने वॉलेट में रखते हैं कैश, सिक्के, आईडीज, रिसीट्स, कार्ड्स, उसी तरह ये जो एक रियलिटी शो होता है उसमें भी होता है एंटरटेनमेंट का हर रंग। देखिए, एक रियलिटी शो में होता है ड्रामा, डांस म्यूजिक, कॉमेडी, थ्रिल, डेंजर, चैलेंजेस, यानी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ। तभी तो बेसब्री से करते हैं हम सब अपने अपने फेवरेट रियलिटी शोज का इंतजार। लेकिन कैसे एंटरटेनमेंट के रंग हैं इस अगले रियलिटी शो में, चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
2: आप सभी का स्वागत है इस यूनिवर्स के सबसे बड़े गेम शो में, जिसका नाम है इंडियन गेम शो। भारती की मम्मी ने चश्मा उतारा ही नहीं। लोगों को लगा सेट की सारी वेल्डिंग तेरी मम्मी ने की।
3: तेरे डैडी ने ब्लैक के अंदर ऊपर व्हाइट शर्ट पहनी है, तो एनाकोंडा उनके हैं सारे। अरे भाई, हाथ हटाओ ना, भागोगे थोड़ी हो।
4: तो मैं ऐसे बम लेके खड़ा होऊंगा, तीन मार के निकल जा, उसको कुछ मत को भाई। लो,
3: अरे बम है किधर? लेकिन
5: ये

0: नीता ने ऐसे से करके गाय से दूध निकाला है, चंदन पाजी फ्रेश चाह हो जाए।
1: इधर किसी के फट्टे में टांग लाने को नहीं आया है, चंदन चंदन की लकड़ी लेने के लिए आया हूँ। इन दोनों चंदन में क्या फर्क है?
2: क्या
1: मेरे वाला चंदन चाय नहीं बना पाता? वो चंदन कितना महंगा है।
3: मुझे गाना आ रहा है, धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे।
2: एक बार दिखाइए आप लोग,
4: ये किसने लाल की है? क्या उतार मेरे को नीचे।
0: चंदन पाजी साडा शो है,
3: और ऊपर लेकर जाओ और ऊपर।
4: ओ भाई नीचे हेलो हेलो,
5: ये ढोल घुमा के आजा मेरी फ्लोर पे। दिल वाले से तू
4: मेरी बात सुनो, पहला बंदा नथनी वाला,
2: हाँ
4: दूसरा बंदा बिरयानी भाई, तीसरा बंदा इधर कर रहा यार।
6: एक भाई मिला था मेरे को, वो बोल रहा था कि लोगों को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है, पर इन्होंने दादा साहब फाल्के को अवार्ड।
0: सिंगर कॉमेडियन बन चुके हो। आपको नंबर बोलना कि मैं कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाऊं और आपके लिए अच्छा सा ड्रिंक बनाऊं।
2: अच्छा।

0: हमारी टीम सास बहू और बेटिया ही खोल रही है आपके लिए एंटरटेनमेंट का ये वॉलेट। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारी इस अगली खबर की ओर। वेल, ये खबर तो है आपके फेवरेट सितारे से जुड़ी, जिनसे की है हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने ये प्यारी सी मुलाकात। हमने तो जाना है इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल, और इन्होंने बताया है हमें अपनी जिंदगी के बारे में। तो चलिए फिर जानते हैं इनकी जिंदगी का सफर, लेकर चलते हैं आप सबको सीधा यहाँ। जी हाँ, आपका फेवरेट सेगमेंट सितारे से मुलाकात।
1: जैसी लव हेट ड्रामा एक्शन इमोशन,
2: जब मोहब्बत हर लम्हे को खूबसूरत बना दे, तब लगता है बस यही खुशी हमेशा रहे।
3: हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ हैं कैसे कलाकार जिनका मैं कहूंगा कि ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क है, कि चाहे टीवी शोज हो, किस्म किस्म के इन्होंने टीवी शोज किए हैं, लेकिन आज मैं इनकी जर्नी आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे शुरुआत हुई थी। शुरुआत एक ऐसे शो से हुई थी जो अपने जमाने में बिल्कुल ऊंची शो था। तो मेरे साथ हैं हर्ष राजपूत। वैसे आपको नजर और बहुत सारे शो से जानते हैं, लेकिन मैं आपको लेके चलने वाला हूँ 2007 में, जहां मेरी हर्ष से मुलाकात हुई थी। तो देजा को फीलिंग कि मैं हर्ष से 2007 में मिला था बड़ौदा में, जहां उस वक्त एक शो आया करता था, बहुत ही वो मैं कहूंगा कि उस जमाने का बहुत पॉपुलर शो था, पृथ्वीराज चौहान। और उसमें हर्ष एक मुझे याद है कि छोटी
1: सी का कैरेक्टर प्ले करता
3: है। He was very young, I remember as a small kid and now I see him as a grown up man doing all but I remember Harsh as a kid in that show Prithviraj Chauhan. So take us back to the time which was your first show on television.
1: Well, actually मेरा first show was in 2004.
3: Okay.
1: जिसका नाम था गायत्री महिमा।
4: आप किस सन्यासी की बात कर रही थी?
5: खुश रहो।
1: ओके, डीडी पे आता था।
3: ओके,
1: सो हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे लेट श्री धर्मेश तिवारी जी,
3: जी,
1: जो सिंडा के प्रेसिडेंट भी,
3: और उन्होंने बहुत सारे माइथोलॉजिकल शोज़,
1: यस,
3: पितामह ऑफ
1: माइथोलॉजी, यस। तो मेरा फर्स्ट शो वो था गायत्री महिमा।
4: ओम भूर्भुवस्वः
6: ओम भूर्भुवः।
1: उसके बाद स्लोली स्लोली एक हंगामा टीवी आता था उस वक्त, तो हंगामा टीवी पे एक शो आया था, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान हैपेंड।
7: पृथ्वी तुम्हें ये हुआ था।
1: सो लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग जर्नी, वेरी ग्रेटफुल। स्टार्टिंग फ्रॉम नवसारी, नवसारी एक छोटा शहर है गुजरात में, वहां से मैं मुंबई आया था, पढ़ाई कर रहा था साथ में, और उसी के साथ साथ यू नो बनने तो हीरो आया था, बट एज आई से नाउ व्हेन आई सिट हियर, मुझे लगता है कि मैं हीरो नहीं, मैं एक्टर बनने आया था, क्योंकि हीरो तो मैं अपनी लाइफ का हूँ। सो कमिंग टू द जर्नी, काफी रिजेक्शन, काफी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैं नवसारी से मुंबई आया, आई हैड लॉट ऑफ लैंग्वेज बैरियर, मतलब कि मैं इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाता था। और भले ही मैं स्टडीड इन अ कॉन्वेंट, बट वहां पे एटमॉस्फेयर वैसा होता
3: है, लैंग्वेज रहता है थोड़ा
1: लिंग्विस्टिक, नहीं वहां पे ज्यादातर लोग गुजराती में ही बात करते।
3: ओके,
1: सो ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश आती नहीं, बट मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इंग्लिश में किसी के साथ बात कर सकूं। जैसे कॉलेज में भी, जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ, तो यहाँ पे सारे ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन किया करते थे, तो मैं दूर खड़ा होके मैं सिर्फ सुनता था उनको कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। तब एक नया व्हाट्सएप शुरू हुआ था, ये व्हाट्सएप,
3: यस,
1: वैसा, मतलब उनके कहने का, पूछने का मतलब है कि क्या हालचाल है बेसिकली, बट आई डिड नो हाउ टू रिप्लाई इट। सो एक इंस्टेंस बताता हूँ कि मैं कॉलेज में हूँ और कॉलेज में मेरे सामने एक बंदा आया, उसने बोला व्हाट्सएप, मैं ऐसे ही चुपचाप ऐसे खड़ा रहा, मैंने बोला इसका क्या जवाब दूं। अब दूसरा बंदा जो आया, उसने व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप किया, तब मुझे समझ आया कि भाई इसका जवाब भी ये हो सकता है।
8: कपड़े इंसान का स्टाइल दिखाते हैं, पर असली स्टाइल तो तब आती है जब आपका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और मेहनत साथ खड़ी।
1: किसी को सवाल पे सवाल भी जवाब हो सकता है, तो तब से मैंने सीखा कि व्हाट्सएप।
3: मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि हमारे देश में छोटे छोटे गांव, देहात से लोगों के सपने होते हैं, बस इस कॉन्फिडेंस की कमी के कारण पूरा नहीं हो पाते हैं, जो शायद जो बड़े शहर के लोग थोड़े प्रिविलेज होते हैं। बट आई थिंक यू आर इंस्पिरेशन टू दोस पीपल कि हम अगर चाहे तो हर चीज पॉसिबल है। तो फिर कैसे आपने अपना कॉन्फिडेंस डेवलप?
1: सो धीरे धीरे धीरे मेट फ्रेंड्स, मेरे दोस्त बने, एंड दे मेड मी रियलाइज कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द लैंग्वेज, इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस यू कैरी। और हमारी हिंदी में कोई तकलीफ नहीं।
6: जो
1: आप हिंदी में भी कॉन्वर्जेशन करो, आप अगर अपना इमोशन रख पा रहे हो, आप अपनी बात कह पा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में ही, हिंदी में भी वो चीज कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ स्लोली स्लोली कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. और कहीं ना कहीं जाके फिर यू नो लोगों के साथ रहना, लोगों को ऑब्जर्व करना और लोगों से सीखना, सीखते सीखते ये बात अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि यू नो मैं आई कैन मेक अ गुड कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश ऑल्सो, और मैं हिंदी में भी उतनी ही स्वच्छ भाषा में बात कर सकता.
8: सूट सिर्फ तन पर पहना जाता है पर असली क्लास.
3: तो हर्ष, आपकी लाइफ का जो, जैसे हमने कहा कि सबसे बड़ा मोड़ था पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि वो शो आजकल की जनरेशन शायद ना समझ पाए, पर मुझे वो याद है 2007 में लोग पागल थे उस शो के लिए, उस पर चिट्ठियां आती थी हमारे दफ्तर में, लोग पागल थे रजत टोकस के लिए, उसके दोस्तों के लिए, दैट होल द फैंडम जो था वो अनइमेजिनेबल था. और बहुत कम लोग शायद जानते उसकी शूटिंग बड़ौदा में होती थी, तो हम लोग स्पेशली बड़ौदा जाते थे जस्ट टू मीट रजत टोकस फैंस एंड टू मीट दिस थिंग. तो टेल अस उस जमाने का फैंडम जो आज की सोशल मीडिया के डीएम से अलग होता था.
1: उस वक्त के जो फैंस होते थे सबसे पहले बहुत लॉयल, क्योंकि क्या था कि एंटरटेनमेंट का जरिया मतलब प्लेटफॉर्म्स इतने हुआ नहीं करते थे. सो कुछ चैनल्स थे जिसपे शो चलते थे, उन्हीं को वो देख पाती. सो लॉयल्टी बहुत क्रेजी हुआ करती थी और वो फैंस आज भी है. ऐसा नहीं है कि 20 साल पुराने फैंस चले गए, वो लॉयल फैंडम आज भी है और आज भी वो लोग हमसे बात करते हैं. मतलब मुझे आज भी है. इनफैक्ट वो टैग भी करते हैं पृथ्वीराज चौहान की कुछ क्लिप्स, मैंने कल ही एक क्लिप देखी.
3: ओके,
1: सो वो लॉयल्टी आज के दिन पे नहीं मिल सकती, वो दैट इज फॉर श्योर. और ऑनेस्टली कहूँ तो उस वक्त ना मैं बहुत छोटा भी था, तो मुझे वो रियलाइज नहीं हुआ कि वो कैसे यू नो इतना फैन फॉलोइंग है या फिर कैसे उनसे इंटरेक्शन आना चाहिए. तो जनरली रियलाइज नहीं हुआ तब मुझे कि इतना अच्छा काम, लोगों को इतना पसंद आ रहा है मेरा काम. बट वो चीज नजर के वक्त मुझे ज्यादा रियलाइज. So if I would say कि अगर मैं किसी दिन अपने आप पर किताब लिखूं तो it will be pre नजर एरा and post नजर एरा.
3: Yes, नजर एक ऐसा शो था, मतलब it changed the genre of supernatural on television because it was a very sleekly made supernatural show जिसने सच में एक अलग ही definition दी, और उसके बाद तो उसके बस permutation combinations आते चले गए.
5: मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का.
1: बेंचमार्क है, आई वुड से कि इट्स अ कल्ट शो. बेंचमार्क है कि अगर इंडियन टेलीविजन में सुपरनेचुरल शोज बने हैं तो ये बेंचमार्क से ही बनते हैं, ये ऐसा कुछ बना रहा है.
3: तो रियूनियन हो रहा है पूरी टीम का, नजर का, मतलब आप, मोना और नियति फतनानी एक साथ, हमने आपको हमेशा लड़ते बिड़ते प्यार में अलग अलग रूप लेते, लेकिन इस शो में ये जो नया शो है
1: लव
3: टू हेट यू,
9: एनिवर्सरी के दिन लेट आए हो, सजा तो जरूर मिलेगी.
10: आ गया तू तो मेरी कैद में.
3: तो इसमें आप कौन लव कर रहा है, कौन हिट कर रहा है, और क्या इसमें डायन चुड़ैल सांप बिच्छू नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं. नो डायन, नो चुड़ैल, नो सांप, नो बिच्छू, कुछ नहीं है इसमें. ये एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी है और जो इमोशंस है इसमें वो बहुत ही रियल है, आज के है. जैसे कि हमारे परिवार के झगड़े होते हैं, हमारे दोस्तों में झगड़े होते हैं, दोस्तों में प्यार होता है, परिवार में प्यार होता है. इट्स एग्जैक्टली सेम, रिलेटेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है. अगर मैं शो देखूंगा या कोई ऑडियंस शो देखेगी वो खुद को कनेक्ट कर पाएंगे इससे. ऐसा नहीं है कि कुछ भी अननेचुरल या सुपरनेचुरल हो रहा है. जो इमोशन है वो प्योरली ह्यूमन इमोशन है. जेलसी, लव, हेट, यू से जेलसी, लव, हेट, ड्रामा, एक्शन, इमोशन, एवरीथिंग इज गोना कंबाइन एंड गिव यू लॉट ऑफ सरप्राइजेस.
3: हर्ष, मैं आपको एक और आपके शो के बारे में एक ट्रिविया बताना चाहूंगा. तो हर्ष ने एक और शो किया था बड़ौदा में ही, और उस शो ने मुझे लगता है कि हमारे बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा अभिनेता दिया. एंड वो जो शो था, मैं बात कर रहा हूँ विक्रांत बैसी की, और विक्रांत बैसी के साथ इन्होंने एक शो किया था धर्मवीर. तो ये बहुत कम लोग जानते हो कि विक्रांत बैसी भी हमारी टीवी की देन है. नाउ
1: नेशनल
3: अवार्ड विनिंग विक्रांत मैसी. एंड बिकॉज मैं विक्रांत को इसलिए दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने टेलीविजन को जो एक परसेप्शन था कि नहीं टीवी एक्टर्स कैन नॉट बी फिल्म स्टार्स, ही हैज ब्रोकन इट वेरी ब्यूटीफुली एंड कार्व्ड अ नीश, एक अच्छी जगह बना ली.
1: He's a very dear friend. मतलब कहते हैं ना कि लोग ऊपर पहुंचते हैं तो थोड़े बदल जाते, बट विक्रांत के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आज भी हम धर्मवीर में रूम शेयर करते हैं, सो वी हैव स्टेड फॉर अ ईयर टुगेदर, और वो जो बॉन्ड है वो आज भी वैसे का वैसा है। आज भी हम जब भी मिलते हैं उसी वॉर्म से मिलते हैं, उसी प्यार से मिलते हैं। एंड ही इज एन इंस्पिरेशन टू ईच एंड एवरी एक्टर दैट इज इन टेलीविजन इंडस्ट्री, कि हाउ यू गो अहेड इन लाइफ एंड हाउ यू पाथ, यू नो, मतलब अपनी एक जगह बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। सो ही इज अ वंडरफुल पर्सन, ही इज अ यू नो बेहतरीन अदाकार तो है ही, उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं वो।
11: विक्रांत मैसी राष्ट्र फिल्म पुरस्कार ग्रहण करते हुए।
1: एंड आज भी जब भी बात होती है तो समटाइम्स वी यू नो वी गो बैक टू दोस बरोडा डेज, कि कैसे हम एक कमरे में यू नो रहते थे और कैसे चीजें होती थी। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड यू नो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नो नोन विक्रांत फॉर इयर्स।
3: बड़ौदा में शूटिंग करना मुझे याद है कि उस पर आजकल की तरह फैसिलिटी नहीं होती थी, देखो तो एसी रूम्स है, दैट टाइम भयानक गर्मी में आप लोग शूट करते थे। एक्शन सीन्स मैंने लाइव क्योंकि देखा इसलिए बता रहा हूँ, तो वो जमाना बहुत अलग था,
1: बहुत ही डिफरेंट था। देखिए पहले तो ये जो वैनिटी का कॉन्सेप्ट था ना, वो वैनिटी का कॉन्सेप्ट तब तक बड़ौदा पहुंचा नहीं था, बॉम्बे में आ गया था बट बड़ौदा पहुंचा नहीं था। तो हमें ऐसे एक चेयर डाल के हम लोग बैठ जाते थे, पूरा पूरा दिन जंगल में बैठे रहते थे। देयर वर यू नो नो वॉशरूम्स, तो हम कहीं दूर जाके जंगल में, अगर यू नो वॉशरूम यूज करना है तो कहीं पे जंगलों में जाके बैठ जाते थे। सो दैट वॉज अ वेरी डिफरेंट एरा, बट एट द सेम टाइम आई फील कि वो जो स्कूलिंग हुई हमारी, उससे आज हमें ये सारी चीजें इतनी आसान लगती है कि भाई
3: गुरुकुल था बहुत के लिए।
1: हाँ वो गुरुकुल था, एक्चुअल गुरुकुल था, कि हमने वहां पे जो ट्रेनिंग हुई हमारी, हमने इतना कुछ सीखा कि अब बहुत ही ऐसे मक्खन लगती है ये सारी चीजें। कि जैसे पृथ्वीराज की ट्रेनिंग हेल्प मी एग्जीक्यूट नजर इन अ वेरी इजी वे, इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। और उस वक्त में क्या है, वो आई फील तब सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था, तो लोग काफी नेचुरल भी थे, वो एक अलग सा अटायर कैरी नहीं करते थे जो आजकल सोशल मीडिया के आने से कर रहे हैं। एक फेक लाइफ जो बनी है वो तब नहीं था, तब जेन्युइननेस ज्यादा हुआ करती थी लोगों में, एंड विच एक्चुअली हेल्प मी अलॉट इन माई करियर।
3: फिर जब मुंबई वापस आए बड़ौदा के बाद, फिर करियर का नया फेज शुरू हुआ, आपने काफी सारे शोज ऑफ कोर्स नजर से पहले की नजर की बात भी की, तो कैसा था डेली सोप में वापस आने करना, बिकॉज मैं तो उससे शुरुआत की थी आपने मिली।
1: वेल एक्चुअली जब मैं वापस मुंबई आया, आई डिड अ लॉट ऑफ एड्स, मतलब मैंने कुछ 2 साल तो सिर्फ एड्स ही किए हैं, जिसमें अराउंड ऑल बिगेस्ट ब्रांड्स उसमें कवर हुई है, अराउंड 90 एड्स आई हैव डन, 95 एड्स। तो वो एक अलग फेस था, यू नो एक अलग मीडियम है, वेर वेरी शॉर्ट स्पैन में, 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में आपको पूरी कहानी कहें। सो इट एक्चुअली वॉज अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस, कि अगर आपको 15 सेकेंड दे जा रहा है उसमें इमोशन आपको कन्वे करना है तो कैसे कर सकते हो, ये मैंने सीखा है एड से। एड के बाद मैंने कपल ऑफ फिल्म्स भी की विच डिडंट टर्न आउट वेल, बट अगेन यू नो मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि एवरीवेयर और एनी वेयर यू गो यू जस्ट लर्न, यू नेवर लूज। सो ये एक सीखने की यू नो एक अपॉर्चुनिटी थी जिससे मैं काफी कुछ सीखा, और यू नो आई पुट इट इन माई रियल लाइफ एंड देन यू नो ब्लेंड इट नाइसली एंड मूव अहेड इन लाइफ।
3: जो आजकल हमारा युवा है थोड़ा सा बड़ा एंक्शियस रहता है, सोशल मीडिया पे लाइक मिली तो परेशान हो जाता है, कुछ हुआ, बट एक कलाकार की जर्नी होती है उसमें वो बहुत कुछ सिखाती है
1: जी।
3: तो जैसे एक धैर्य रखना बहुत जरूरी है, खासकर जब एक्टर बनने आते हैं, क्योंकि सफलता असफलता एक थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है। तो आजकल के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मेरे को सपने देखना, तो मेरे लिए सपनों के लिए ये धैर्य होना बहुत जरूरी है।
1: मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यू नो इट्स नॉट अबाउट हाउ यू फॉल, हर कोई गिरता है, हर कोई गिरेगा, इट्स अबाउट हाउ यू राइज, खड़े वापस कैसे होते वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि लोग कैसे गिरते उसको ज्यादा अंडरलाइन। सो यू नो अब जीतना हारना ये तो चलता ही रहेगा, इट इज नेवर गोइंग टू एंड, बट कीपिंग योर सेल्फ इंटैक्ट, बिलीविंग इन गॉड एंड बिलीविंग इन योर ओन सेल्फ एंड हार्डवर्क इज द ओनली वे यू कैन मूव अहेड।
3: आपने माइथोलॉजिकल शोज किए, आपने सुपरनैचुरल शोज किए, आपने सो कॉल्ड ड्रामा ड्रामा शोज किए, तो सास बहू जैसे चौरण जीते, इन तीनों की एक्टिंग में एज ए कलाकार क्या कुछ फर्क होता है?
1: नॉट रियली मैंने
3: ओवर द टॉप एक्टिंग थोड़ी करनी पड़ सकती
1: है. नहीं नहीं नहीं ये बहुत ही गलत थॉट है आई फील कि यू नो लोग अलग अलग जॉनर को अलग अलग तरीके से इमोशन तो सेम है. आप डरते हो तो नॉर्मल लाइफ
3: नौ रसों का मिश्रण नहीं है सब.
1: हाँ पर करेक्ट सारी जो नौ रस में ही आपका कंप्लीट होता है. ये बात अलग है कि अब कुछ कुछ एग्जीक्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा
3: जी.
1: बट इमोशन तो सेम ही है ना. मतलब मैं अगर कहूँ कि आज मैं टीवी कर रहा हूँ तो मैं टीवी के लिए अलग एक्टिंग करूंगा या फिल्म कर रहा हूँ तो फिल्म के लिए अलग एक्टिंग करूंगा तो वो मुझे समझ नहीं आता है. यू नो इमोशन इज इमोशन. अब मैं जब हंस रहा हूँ रो रहा हूँ वो घर पे भी सेम ही रोता हूँ टीवी पे भी सेम ही रोता हूँ. क्योंकि अगर आप जेन्युइनली इमोशन फील कर रहे हैं तो उसमें कोई ये नहीं आएगा कि इसमें ज्यादा करना है इसमें कम करना है. जेन्युइनली आप जब फील करते हो तब. अगर आप सिर्फ और सिर्फ यू नो कि आप ये सोच के आ रहे हो कि अच्छा अब ये वाला प्लेटफॉर्म है तो मुझे यहाँ पे ज्यादा एक्टिंग करनी है तो वो गलत थॉट है. ये प्रोसेस ही गलत है मुझे ऐसा लगता.
3: आपने एक ऐसा शो किया है जिसे सास बहू शो को डिफाइन किया जाता साथ में बना साथ दिया.
12: इतनी धूल मिट्टी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है.
3: जो कहते हैं ड्रामा का स्कूल था आज भी उसके जैसा सास बहू शो नहीं बना. तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एनी कोई ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ साथ निभाना साथ है जो अभी भी इस जॉनर का सबसे कल्ट शो माना जाता
1: है. वेल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और जो मेरा कैरेक्टर था प्रकाश.
13: अच्छा सर मैं चलती हूं कुछ देर बात नहीं करना.
1: कैरेक्टर हुआ करता था मेरा वो बहुत ही डिफरेंट था उस वक्त पे जब मतलब मैं जितना मेरा बॉडी ऑफ वर्क है उस हिसाब से बहुत डिफरेंट था. तो मुझे ना बहुत मजा आया. यू नो इवन उसमें थोड़ा गुजराती टोन डालना था. सो सिंस आई एम गुजराती इट वाज अ बिट इजियर फॉर मी के अरे कैसा है भाई सब सही चल रहा है ऐसे करके यू नो गुजराती टोन बहुत अच्छे से आ गया था मुझे. सो वंडरफुल एक्सपीरियंस वी हैड. मैंने ज्यादा तो काम नहीं किया साथ ही हार्डली टू एंड हाफ मंथ्स छोटा सा कैमियो था. बट वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद सच यू नो बिग एक्टर्स अराउंड यू नो सच इंडस्ट्री के इतने खूंखार एक्टर्स थे शो पे. सो इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस आई.
3: गुजराती सिनेमा की बात करूं तो अभी हाल ही में गुजराती सिनेमा में काफी अच्छा कंटेंट आ रहा है चाहे लालो हो छिलो दिवस हो या फिर पशो ये जो कंटेंट गुजराती सिनेमा इज आल्सो इवॉल्व. सो हाउ यू सी द गुजराती सिनेमा एंड डू यू थिंक इट्स लाइक अ वेरी गुड फेस
1: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स नो गुजराती सिनेमा इज इवॉल्व फ्रॉम वेयर टू वेयर कहां पहुंच गया है. इनफैक्ट आजकल जितने भी मैंने जितने फिल्म्स देखी है they all talk about real issues. They all talk about real problems of life. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करते
14: हैं.
1: सो यू नो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट मुझे मिले गुजराती फिल्म में वेयर आई कैन यू नो शो माई कैपेबिलिटी एंड माई एक्टिंग टैलेंट जिससे यू नो लोग रिलेट कर पाए.
3: तो मैं आपको लेके चलता हूँ आपके होम टाउन में. तो नवसारी के स्पेशल अगर हम जाएं तो खाने के लिए क्या है वहाँ पे.
1: वेल खाने के लिए सबसे फेमस चीज जो है तो एक पाव बटाका बोलते हैं उसको.
3: ओके
1: पाव बटाका बहुत फेमस है वहाँ की. सिंह चने बहुत फेमस है.
3: सिंह चने
1: एक्सपोर्ट होते हैं.
3: ओके अच्छा सिंह का नाम तो मूंगफली. ओके
1: सो
3: भरूच और
1: नवसारी.
3: अच्छा
1: सिंह चने भरूच इज ओनली सिंह.
3: अच्छा ओके
1: यहाँ पे सिंह एंड चना बहुत. सो वो बहुत फेमस है नवसारी के. ऑल दिस सूरती यू नो सिंस सूरत से बहुत पास में तो सूरत का इन्फ्लुएंस टिक फाफड़ा खमण इदड़ा ढोकड़ा देन देयर इज लोचो. देयर इज अ डिश कॉल्ड इज लोचो.
3: मैंने अहमदाबाद में एक बार खाई थी.
1: इट्स प्री फॉर्म ऑफ खमण. सो ऑल दिस वेरी इंटरेस्टिंग वानगी.
3: आल्सो पारसी पॉपुलेशन
1: लाइक सेंटर इज
3: देयर. उदवाड़ा भी फाइन पास में.
1: उदवाड़ा थोड़ा दूर पड़ता है बट नवसारी में अ लॉट ऑफ पारसी. इनफैक्ट यू नो मैं पला बड़ा हूँ पारसियों के साथ. सो
3: लोग आपको पारसी भी समझ लेते हो बिकॉज़ यू हैव टू स्लाइड टाइट
1: लाइक. हां और मैं इनफैक्ट पारसी लिंगुअल में बात भी कर.
3: अच्छा यू अंडरस्टैंड
1: द लैंग्वेज. मैं बात भी कर सकता हूँ. सो जो छे मजेनो छे सुख खा दू सो बोनो की दू बोनो की तरह क्या खाना खाया.
3: ओके
1: सो यू नो आई एम वेरी ग्रेटफुल के आई गेट टू एक्सप्लोर सो मेनी डाइवर्स कल्चर एट द सेम टाइम. So yes, Navsari is beautiful, man. No, I miss Navsari.
3: चलिए हम कोशिश करके अपने दर्शकों को वहां लेके चले एक दिन. तो ये बताओ कितनी भाषाएं बोल लेते हैं.
1: भाषा उतनी ज्यादा नहीं बोल लेता हूँ मैं. हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी. That's it.
3: ये जो भी पश्चिम है
1: वो दैट इज दिस इज गुजराती हाँ गुजराती मतलब बट मोर ऑफ अ लिंगुअल डिफरेंस इन इट एंड आल्सो सी इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एवरी 40 किलोमीटर्स सेम लैंग्वेज का लिंगुअल बदल जाता
3: है जी पोस्ट पोस्ट पर बदले पानी पोस्ट पोस्ट पर बदले
1: करेक्ट करेक्ट सो गुजराती में भी इफ आई सी की गुजराती बॉम्बे की गुजराती अलग है जो मैं बोल सकता हूँ नवसारी की गुजराती अलग है जो बोल सकता हूँ और थिएटर जो होते हैं गुजराती थिएटर उसकी अलग गुजराती है जो कम्प्लीटली शुद्ध है जो श स श में बहुत क्रेजी डिफरेंस होता है वो भी बोल सकता हूँ मैं सो वन लैंग्वेज थ्री डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग इट
3: सो बस क्या कहना चाहिए फैंस को जैसे आपने कहा पृथ्वीराज चौहान में नजर अभी भी वो भूले नहीं है
1: यस
3: सो व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड एनीथिंग यू टू सी
1: वेल गाइस थैंक यू सो मच कि इतने साल तक यू नो आप ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ इतना प्यार देते हैं आप मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग के लव टू हेट यू की नई सीजन के साथ आप वो प्यार थोड़ा और बढ़ा देंगे और देखना ना भूलिए लव टू हेट यू फोर्थ से रिलीज हो रहा है 4th August को And it will air on Tuesday, Thursday, Saturday, 8 p.m. on All Right TV app.

0: डांसिंग
1: मैं एक्चुअली बचपन से करते आ रहा हूँ. आई हैव डन भरतनाट्यम ऑल्सो. मैंने भरतनाट्यम की रिटर्न एग्जाम्स भी लिखी है गंधर्व महाविद्यालय से. एंड फोक डांसिंग मैंने किया है फॉर कॉलेज. आई रिप्रेजेंटेड मुंबई यूनिवर्सिटी एंड जोनल्स एंड नेशनल्स फॉर फोक डांसिंग. वेस्टर्न डांसिंग आई टू डू फॉर मिठीबाई कॉलेज जहाँ से मैं पढ़ा. सो आई वॉज ऑलवेज एक्चुअली बचपन से ही आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स डांसिंग एंड आर्ट फॉर्म. माई मदर इज एक्चुअली अ कमर्शियल आर्टिस्ट. तो उन्होंने ही मतलब बचपन से उनका खून है जो आया है. एंड आई हैव आल्सो बीन वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स आर्ट्स.
0: जी तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हर्ष इसी तरह लोगों के जीवन में हर्ष फैलाते रहे अपने परफॉर्मेंस से अपने किरदारों से. आपको नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि द शो ऑलवेज गोज ऑन विद हर्ष राजपूत. सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू.
1: सेम यस सर. सेम.
0: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू.
2: आज तो वॉलेट के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें और हमारे शो सास बहू और बेटिया में हम तो रोजाना खोलते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का वॉलेट. तभी तो लेकर हाजिर हैं आपके लिए ये अगली खबर जिसमें है एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ. मैं जानती हूं अब आपसे नहीं हो रहा है इंतजार, तो चलिए करते हैं सस्पेंस को खत्म. फटाफट लेकर चलते हैं आपको इसकी ओर.
3: जी टीवी पर आया है एक नया शो जिसका नाम है रामलीला. कहानी है अमीरी और गरीबी की, दो ऐसे किरदारों की जो अलग अलग जगहों से आते हैं लेकिन फिर एक हो जाते हैं.
4: हाँ पता था.
5: अरे तो बताया क्यों नहीं?
4: आपने बताने कहा दिया मैडम.
3: लीला के किरदार में है आस्था और राम के किरदार में मिशकत वर्मा. तो आइए आपको मिलाते हैं लीला यानी आस्था की फैमिली से. लीला सहगल के भाई हैं वीरेंद्र सहगल जो इस फैमिली का बैकबोन है. वो एक मिनिस्टर हैं और बेहद गुस्से वाले हैं. एजाज खान अपने करियर में पहली बार एक पिता का रोल निभा रहे हैं और एक खड़का सा ग्रे कैरेक्टर है.
6: मुझे छोड़ गई थी, इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दी.
3: तो कहानी विजेंद्र और लीला के बाप बेटी के प्यार और नफरत की है. महादेवन सन्स के बाद मानसी सालवे एक बार फिर से नजर आएंगी एज विजया इन रामलीला. इस बार भी मानसी का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो विजेंद्र की बहन है और इस लव स्टोरी में उनका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है.
7: वीरेंद्र सहगल, तेरा सब कुछ जीत लूंगी.
3: सहगल परिवार के बाकी लोग हैं. तो आइए मिलते हैं लीला की फैमिली से जिसमें लीला है, उनके पापा है, उनकी बुआ है और बुआ की फैमिली है और साथ में है उनके कुछ फ्रेंड्स. तो मिलते हैं रामलीला की लीला यानी आस्था से और उनकी फैमिली से.
8: लीला तो बहुत ही प्यारी लड़की है. आप लोगों को शो देख के बहुत मजा आने वाला है. और लीला एक ऐसी लड़की है जिसको सबसे बड़ा जो उसके लाइफ में उसको चाहिए अपने पापा का प्यार. उसको उसके पास सब कुछ है दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि उसकी फैमिली में उसको हर कंफर्ट मिला है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है लेकिन उसको प्यार की कमी है. तो वो प्यार को वो क्रेव करती है अपने फादर के जो इमोशनल सपोर्ट है, इमोशनल गाइडेंस उसको कभी मिली नहीं. तो लीला को लगता है कि भाई जो वो कर रही है वो सही कर रही है. ऑफन वो इसीलिए भी होता है क्योंकि उसको कोई गाइडेंस नहीं मिली. और उसी कॉन्ट्रास्ट में राम है जो उसका एक पंचिंग बैग है, जो सारे इमोशंस जो लीला के हैं वो राम पर निकलते हैं. तो ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड ऑफ लीला. और जैसे राम की फैमिली है वहाँ पर मे भी मटीरियलिस्टिकली इतनी रिच ना हो बट रिश्तों में वो बहुत रिच है. तो लीला वो डिफरेंस को फील करती है. सो बेसिकली लीला क्रेज फॉर फादर्स लव एंड द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली.
3: अब मिलते हैं एजाज खान से जो बने हैं वीरेंद्र सहगल और एक ऐसा रोल जो वो पहली बार अपने करियर में कर रहे हैं.
9: ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने मिलते हैं टेलीविजन पर भी. जो आपने प्रोमो में देखा उससे कई ज्यादा उतार चढ़ाव रिश्तों में आएंगे और कुछ कुछ सीन्स मैं करता हूं तो मुझे ऐसे लगता है यार ऐसे ये सीन को मैं कैसे करूं, कैसे जस्टिफाई करूं कि इतना कभी कभी अजीब लगता है. अमीर घर का अमीर घर की लड़की है, एक छोटे घर का लड़का है. लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अमीर घर में इतना सब सब कुछ होने के बाद भी शायद सुकून नहीं है, शायद उतना प्यार नहीं है जितना दूसरे घर में.
3: अब मिलते हैं मानसी सालवे से, जो बनी है विजया। भाई मानसी सालवे का एक स्ट्रॉन्ग रोल है जो बुआ बनकर आज तक के जीवन में और उसकी प्रेम कहानी में कभी फूल तो कभी कांटा बनकर आती है।
5: एंगल की बहन का किरदार निभा रही हूँ मैं, आस्था की बुआ हूँ और एक अथॉरिटी फिगर है घर में। और वीरू अपनी बहन को अपनी माँ का दर्जा देता है और उसकी हर बात मानता है। और कभी कभी बुआ थोड़ी कड़वी हो जाती है लीला की तरफ, लेकिन जब भाई की बात आती है सो शी इज वेरी प्रोटेक्टिव। लेकिन बुआ भी एक एजुकेटेड लेडी है और उसे भी अपने करियर से काफी लगाव है, सो कभी कभी थोड़ी कभी सेल्फिश भी हो जाती है। बाकी यू हैव टू वॉच रिलीव्ड की कोई कैरेक्टर पूरी तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। हम एज ह्यूमंस वी आर सेल्फिश पीपल, सो कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रे है, वेरी रियल है। और लीला से प्यार भी करती है पर बुआ ये मानती है कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। यस, मैं चाहती हूँ कि मैं वीरू के बहुत नजदीक रहूं, लेकिन राम आके वो जगह ले लेता है। तो जो टकराव राम और वीरू में आप सोच रहे थे वो टकराव शायद राम और विजया में है। बट यस, जैसे कि एजाज ने कहा, कुछ घर में हर चीज मौजूद होती है लेकिन वहां प्यार नहीं होता, और कुछ घरों में कुछ नहीं होता है लेकिन वहां सिर्फ प्यार होता है।
3: टीवी की सीरियल रामलीला के साथ लौटकर आ रहे मिशकत वर्मा इस बार राम बनके। राम भले ही एक गरीब फैमिली से हो लेकिन वो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता है और साथ में लीला का भी, जो एक अमीर नेता की फैमिली से है। मिशकत वर्मा ने इससे पहले कई किरदार निभाए हैं और लगता है कि राम का रोल उनपे बहुत सूट कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं मिशकत वर्मा से और मिलते हैं उनकी फैमिली यानी राम के परिवार से।
10: राम एक बहुत ही इमोशनली मैच्योर इंसान है एंड ग्राउंडेड है, सिंपल है। उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लेकिन इन फुलफिलिंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही फील्स नो प्रेशर। ही इज एब्सोल्युटली होल हार्टेडली इन लव विद हिज फैमिली, तो वो करता है वो सब। ही रिस्पेक्ट्स एंड वर्शिप्स वीरेंद्र सहगल, तो आउट ऑफ लव फॉर हिम ही लव्स हिज फैमिली एज वेल। एंड लीला और राम के बीच जो रिश्ता है, Honestly, I haven't found a word for it. कैसे उसे फ्रेंडशिप नहीं कह सकते, लव तो डेफिनेटली नहीं कह सकते। इट इज़ समथिंग अनसेड, इट इज वी कम फ्रॉम टू डिफरेंट सोशल स्टेटस एंड एक बाउंड्री है जो कभी राम क्रॉस नहीं कर सकता बिकॉज ही वर्क्स फॉर हर, ही वर्क्स फॉर अ फादर। बट उसके बावजूद एक बॉन्ड है, एक वॉर्म्थ है, एक अफेक्शन है जिसे सो फार आई कांट डिस्क्राइब इट। आई होप द ऑडियंस डिस्क्राइब्स इट। And yeah, this is my family, जो खुद अपना introduction देंगे।
3: कहानी का एक नया ड्रामा पेश करने वाला है जो दिखेगा ZTV के नए सीरियल रामलीला में और जिसके लॉन्च के सारे नजारे हम आपके लिए लेकर आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: ईशान और नौनिका, बताइए इनकी जिंदगी के वॉलेट में क्या है?
11: वेल, ढेर सारा प्यार, और हम तो यही चाहते हैं कि इनकी ये जोड़ी यूं ही बनी रहे और ना लगे इन्हें किसी की भी बुरी नजर। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये जो बुरी नजर है ना, ये लग ही जाती है, और कोई ना कोई कहानी में फिर ऐसा ट्विस्ट लेकर आती है कि हम सब भी हो जाते हैं इनकी तरह परेशान। तो किस तरफ रुक कर रही है आज ये कहानी, क्या आ रही है यहाँ से कोई गुड न्यूज या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा? लेट्स फाइंड आउट। लेकर चलते हैं आप सबको सैराब के सेट पर।
12: और आदिनाथ की 50th एनिवर्सरी।

हुआ दादा दादी का पुनर्विवाह। देखी घर वालों की खुशी। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में आ गया है मौसम खुशियों का। भाई मौका है दादा दादी की 50th एनिवर्सरी पर और घर वालों ने मिलकर प्लान किया है कि वो उन्हें कुछ ऐसे सरप्राइज देंगे, यानी उनकी दोबारा शादी कराकर। तभी तो देखिए आज दोनों ही यानी कि इंद्राणी और आदिनाथ सजे धजे हैं, दुल्हन और दूल्हा बने हैं। भाई जहाँ इंद्राणी फिर एक बार बंगाली दुल्हन बनी है, सजी धजी है और शगुन का लाल जोड़ा इन्होंने पहना है, तो वहीं दूल्हे राजा आदिनाथ भी तैयार है। दोनों मंडप में बैठ चुके हैं और रीति रिवाजों के साथ फिर एक बार इनकी शादी हुई जिसमें पूरा घर शामिल हुआ। लेकिन इस शादी से अगर कोई नदारद है तो वो है नयनिका, क्योंकि टिन्नी ने नयनिका को इस शादी से दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सेलिब्रेशन में कोई भी ड्रामा हो। तो आइए देखते हैं किस तरह से इनकी रीति रिवाजों के साथ शादी हो रही है।

0: आदिनाथ ने इंद्राणी के मांग में सिंदूर भरा। शादी की सारी रस्में निभाई गई, जिसमें टिन्नी और पूरा परिवार शामिल है, सिर्फ नयनिका को छोड़कर।
1: टम्मी और बौर दादा के 50 एनिवर्सरी है और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर से धूमधाम से एक बार फिर से उन दोनों की शादी करवाई जा रही है, लेकिन नयनिका प्रेजेंट नहीं है बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वो आए, और मैंने बोल दिया है कि आप मत आओ, अगर आप आओगे तो मैं नहीं आऊँगी। और इसीलिए नयनिका अपने कमरे से देख रही होती है सारे सेलिब्रेशन, जितने भी सब खुश है, बट नयनिका पीछे से देख रही होती है, वो बहुत दुखी होती है और वही चल रहा है।

वैसे आज टिन्नी भी काफी खुश है, तभी तो देखिए ऑन स्क्रीन हो या हो बिहाइंड द सीन, ये डांस कर रही हैं, बना रही हैं रील और बांट रही हैं खुशियाँ।

0: अभी हम तो फोटोज खींच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक पार्टी सीक्वेंस आया है और हम इतने अच्छे तरह से सज धज कर रेडी हो गए, तो क्यों वीडियो ना बनाए तो यस।
1: लेकिन जल्दी ही इन खुशियों पर ट्विस्ट का ग्रहण लग गया, शगुन में अपशगुन हो गया जब शुरू हुए ताने। असल में जो मेहमान शादी में और इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए हैं वो नयनिका को पूछ रहे हैं, और ऐसे में घर वाले देखिए नयनिका के यहाँ मौजूद ना होने पर भी उसके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि टिन्नी भी अपनी माँ का साथ नहीं देती, हालांकि घर के बाकी बच्चे नयनिका के साथ खड़े हैं और उनके लिए बोल रहे हैं, लेकिन बाकी घर वाले नयनिका के खिलाफ हैं और इसी बात को लेकर शुरू हो गया है नया तमाशा।
2: हाँ हाँ जेठू मनी, हमें सब समझ आ गया है, लेकिन जब तक मामा हमारे साथ नहीं होती ना, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमारा कुछ मन ही नहीं करता है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, और आज तक तो ये सब मामा ने करती आई है ना डेकोरेशन।
3: काकी ने ये सब पहले कभी किया और अभी भी ये सब भी उसी वजह से कर रही है क्योंकि इनको मम्मा की जगह चाहिए, इसीलिए हमें ये सब अजीब लगता है।
2: मॉम, मैं भी अभी करती हूँ मम्मा की बात से, जो कुछ भी कह रहा है ठीक कह रहा है। पहले तो आप ये कुछ नहीं करती थी, अब आप मम्मा की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो, और आप सब लोग मिलके मम्मा को इतना बॉयकॉट क्यों कर रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। मिनी,
4: अभी मम्मा अगर आना चाहती तो आ सकती थी, और किसने बोला कि हमने उसको बॉयकॉट किया हुआ है? घर में इतना बड़ा काम हो रहा है तो उसके लिए सबको अलग अलग न्योता देना पड़ेगा क्या? अभी भी अगर वो आना चाहती है तो खुदा जाए।
2: पहले तो आप मम्मा की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अब तो आप भी इन लोगों जैसे हो गए हो।
4: तो बेटा, जब वो इज्जत करने लायक थी तो मैं उनकी इज्जत करता था, और अब जब वो इज्जत करने लायक नहीं
5: तो यहाँ आकर के यही सब सुनना पड़ेगा।
2: हाँ दादा, आप ही बताइए, हमारी कोई गलती है? हम क्या ही कर सकते? आपकी बहन की जो हरकतें हैं, जो काम वो कर रही है आजकल, उसके बाद ना सिर्फ हमें नहीं आपको भी बातें सुननी होगी, सबसे ज्यादा टिन्नी को बातें सुननी। खुद की बेटी उनके खिलाफ हो गई है, अभी तो वो बदल नहीं रही है, वही के वही जिद पे अड़ी हुई है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कल के बारे में? कल क्या हुआ था? कल भी हॉस्पिटल में ईशान के सम्मान में प्रोग्राम था और वो चली गई। वो अवॉइड कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, उनको परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। एक इंसान अगर खुद को बदलना नहीं चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बोल रही है मानी। सिर्फ शादी करने के बाद ही बोटी को शांति मिलेगी क्या? उनकी लाइफ में और कुछ नहीं है, बेटी है, परिवार है, जॉब भी तो है, उन सब की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है।
1: ऐसे में शादी का माहौल खराब हो गया है, क्योंकि आए हुए मेहमान भी देखिए कैसे परिवार पर ताने कस रहे हैं, और इन सब का इल्जाम आ गया है नयनिका पर।
0: ताने तो ऑब्वियसली सुनने पड़ेंगी, क्योंकि मुझे टिन्नी को लगता है कि मॉम ने काम ही ऐसा किया है कि सब लोग मॉम के बारे में ऐसे बुरी बातें कर रहे हैं, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत बुरी बातें कर रहे थे जब मैं कॉलेज में थी, और अभी तो पड़ोसी आए हैं शादी में, वो भी अजीब तरह से बातें कर रहे हैं, लेकिन टिन्नी कुछ बोलती नहीं है, टिन्नी को लगता है कि मॉमी गलत है। तो या
1: वैसे इसी के साथ घर में माहौल नॉर्मलाइज तब होता है जब आ जाता है टिन्नी का फ्रेंड शीर्षो, लेकिन वो भी आते ही नयनिका के बारे में ही पूछता है, लेकिन घर वाले बात को टालकर रस्में शुरू कर देते हैं और साथ ही शुरू कर देते हैं सेलिब्रेशन भी।
6: ये तेरी का दोस्त नहीं, इसका पति होने वाला पति है, हमें पसंद है। ये पढ़ा भी जितना अच्छा है उतना ही सुंदर सुशील और शरीफ भी है।
7: शिशो बोलता है
6: बेटा अपने माँ बाबा को कभी लेकर आओ मिलने। क्यों हम सुशील का राज्य नहीं मिलता? शिशो माँ और बाबा के एनिवर्सरी पर आए हो ना, इनसे भी बातें कर लो।
1: तो भाई फिलहाल तो सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि कैसे नयनिका घर वालों को समझाती है और अपने रिश्तों को सुधारती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: वसुधा, वैसे आप भी ना अपनी कहानी वाले वॉलेट को संभाल के रखें, क्योंकि आपकी कहानी में तो होने वाली है ट्विस्ट की बौछार। अरे सच में, अब देखिए ना, आपकी कहानी का लेखक बिल्कुल आपको भी नहीं लेने देता है चैन की सांस। अब एक ट्विस्ट खत्म होता है तो दूसरा रहता है तैयार, वो भी खत्म होता है तो एक नई सिचुएशन आ जाती है, वो भी खत्म हो जाती है तो टूट जाती है आपके सर पर एक नई परेशानी। तो किस हाल में है आज हमारी वसुधा, कैसे आगे बढ़ रही है आज ये कहानी, चलिए पता कर आते हैं। लेकर चलते हैं आप सबको वसुधा के सेट पर।
1: वसुधा की विदाई। देव हुआ परेशान, सास बनी बहू का सहारा।

जी टीवी के सीरियल वसुधा में घरवाले सभी परेशान हो रहे हैं क्योंकि पंडित जी ने देव और वसुधा की कुंडली देखकर ये बताया है कि वसुधा की कुंडली में दोष है, जिसके चलते अब वसुधा को देव से कम एक साल के लिए दूर रहना होगा। बस इस बात को लेकर वसुधा ने तैयारी कर ली है जाने की, लेकिन देव वो हो रहा है बेहद परेशान। ऐसे में वसुधा अपनी बात पर अटल है और देखिए कैसे बैग पैक कर ले आई है जाने के लिए, वो भी आश्रम में। ऐसे में चंद्रिका भी आरती की थाल ले आती है और अपने बहुरानी की आरती करती है, क्योंकि वो चाहती है कि जल्द से जल्द वसुधा का ये एक साल बीत जाए और वसुधा सही सलामत वापस घर आए।

0: वह सास और बहू के बीच का ये रिश्ता मजबूत हो गया है और वसुधा उसने भी चंद्रिका की खुशी के लिए जाने का फैसला तो लिया है। ऐसे में हनुमंत अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जा रहा है कि तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके चलते चंद्रिका पंडित जी को फोन लगा देती है और उनसे सुझाव पूछती है और वो सुझाव जानने के बाद देव को आदेश देती है वसुधा को आश्रम में छोड़ने का।
1: उसने कहा है कि पिता या तो पति में से कोई भी एक जाता है

0: भाई दिल पे पत्थर रखकर देव वसुधा को छोड़ने जा तो रहा है और तो और उसे आश्रम में छोड़कर आ भी गया है, लेकिन अचानक उसे वसुधा अपनी कार के पास खड़ी दिखाई देती है, जिसके चलते देव तड़प उठता है और पहुंच जाता है उसे मिलने के लिए। इतना ही नहीं, वो तो उसे गले लगाने के लिए आगे भी बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक वसुधा हो जाती है गायब। असल में देव वसुधा को बहुत याद कर रहा है और उसे खुली आंखों से हर जगह सिर्फ अपनी वसुधा दिखाई दे रही है। अब देखना होगा क्या किस्मत इन्हें दूर रख पाएगी, वो भी एक साल के लिए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: दुनिया में सबसे वजनदार खाली जेब होती है, चलना मुश्किल हो जाता है। वैसे यहाँ मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं अभीरा और अरमान की भी। ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज, चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। एक्चुअली कहानी का लेखक ना हमें बिल्कुल भी बोर होने नहीं देता, लेकर आता है इसमें इतने इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और ऐसा ऐसा ड्रामा कि हम सब इस कहानी से बंधे रहते हैं। लेट्स चेक इट आउट।
0: मिट गई पापा और बेटे के बीच की दूरियां।
2: पापा मेरी जान, मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम।
0: कामयाब हुई अभीरा, दादी सा और विद्या।

स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा दादिसा और विद्या तीनों ने मिलकर ऐसा खेल खेला है कि उसके चलते बाप और बेटे यानी कि माधव और अरमान दोनों ही पहुंच गए हैं रसोई में और देखिए कैसे दोनों बना रहे हैं चाय। भाई अभीरा चाहती है कि पापा और बेटे के बीच की दूरियां कम हो जाए और देखिए कैसे आज उनकी मेहनत रंग भी ला रही है। अचानक माधव की कमर में दर्द होने लगता है और उसका दर्द देखकर अरमान से रहा नहीं जाता और देखिए कैसे अरमान पहुंच जाता है अपने पापा को गले लगाने। ऐसे में अरमान को इमोशनल देख माधव भी परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे को गले लगा लेते हैं।

0: इतना ही नहीं, वो तो अरमान से माफी भी मांगते हैं कि उन्होंने अरमान की मदद नहीं ली। लेकिन अरमान आज उसने अपनी भी गलती मान ली है और तो और वो भी अपने पापा से माफी मांग रहा है। दोनों के बीच की दूरियां मिट गई है। और ये देख, अभीरा, दादी सा और विद्या तीनों खुश हो रहे हैं।
1: तो मुझे परेशान देखकर परेशान तो हो रहा था ना, भले ही मैं उस फ्रॉडस्टर को खुद पकड़ता, पर तुझे बता तो सकता था कि मैं क्यों टेंशन में। आई एम सॉरी बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चे। तेरे जैसा बेटा अगर किसी का भी होना तो हर बाप का सीना 6 इंच चौड़ा हो जाएगा।
2: थैंक गॉड आपने ये नहीं कहा कि आपकी हाइट चेंज लंबी हो
3: जाती, किसी में बात नहीं।
1: इतने सीरियस माहौल में तुझे जोक सुन रहा है।
4: हर मील का पत्थर।
5: कुछ नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए।
0: पापा और बेटे के बीच कितनी भी बहस हो, लेकिन इनके बीच दूरियां कभी नहीं आएंगी, क्योंकि इनके साथ अभीरा, दादी सा और विद्या जो है। खैर, एक परेशानी खत्म हुई नहीं कि दूसरी परेशानी अरमान और अभीरा के सामने आ गई, वो भी एक काले बैग के रूप में, जिसे देखकर अरमान और अभीरा दोनों हैरान हो रहे हैं और उसे खोल कर देख रहे हैं, जिसके अंदर निकला है महंगा कैमरा। इसी बीच मायरा और मुक्ति भी दौड़ी चली आती हैं, इस डर से कि कहीं अरमान को ये पता ना चल जाए कि ये कैमरा कबीर दमानी का है। ऐसे में मायरा डरी हुई है और अरमान वो कैमरा देखकर ना सिर्फ हैरान है, बल्कि मायरा और मुक्ति से सवाल भी कर रहा है कि आखिर ये कैमरा आया कहाँ से। ऐसे में डरी मायरा कुछ और कह पाती, मुक्ति उसकी रक्षक बन गई और देखिए कैसे उसने बातों को घुमा दिया।
5: वो ये कैमरा सेल करना चाहता था, बंदर के लिए भी मुझे सेम कैमरा लेना था, तो सोचा सेकंड हैंड ले लेती हूँ, फोटोग्राफी प्रैक्टिस कर लेगी।
0: भाई, मुक्ति ने झूठ बोलकर मायरा को बचा तो लिया, लेकिन अरमान के सवाल मुक्ति और मायरा दोनों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका डर तब और बढ़ जाता है जब अरमान वो कैमरा ऑन करता है और उसमें कबीर की तस्वीरें देखता है। ऐसे में अरमान और अभीरा दोनों को ही नहीं बल्कि मुक्ति और मायरा उन दोनों को भी झटका लगता है, लेकिन यहाँ पर मुक्ति फिर से मायरा का साथ देती है और बन जाती है उसकी ढाल, वो भी झूठ बोलकर। अब मुक्ति ने अरमान को बुद्धू बनाने की कोशिश तो की, लेकिन अरमान वो कबीर दमानी की तस्वीर देखकर चिढ़ गया है। इतना ही नहीं, उसने तो मुक्ति को ये कैमरा वापस देने को कह दिया। ऐसे में मायरा और मुक्ति वो कैमरा लेकर वहाँ से चली जाती है। फिलहाल अरमान और अभीरा दोनों को अपनी बेटियों पर शक हुआ तो नहीं है। लेकिन जल्द ही उनके सामने एक और राज आएगा और वो राज अरमान और अभीरा की डेट पर खुलेगा। असल में अरमान अभीरा के लिए लेकर आया है अपनी पसंद की ड्रेस, क्योंकि दोनों रोमांटिक डेट पर जाने वाले हैं। ऐसे में अभी भी ये बात सुनकर बेहद खुश हो रही है।
2: खैर शर्मा जी, आप मुझे ऐसे देखते रहे तो आपको फिर मुझसे प्यार हो जाएगा।
5: फुली सरप्राइज, तुम सच में मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो?
2: अरे तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो रही हो?
6: दमानी इसकी फोटो देख के तुम्हारा मूड ऑफ नहीं हुआ?
2: अभीरा, हम सब एक ही शहर में रहते हैं, उनका जिक्र सोशल इवेंट्स पे उनसे टकराना ये सब तो चलता ही रहेगा, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरा बिल्ली का बच्चा अब उनके बेटे के टच में है।
0: वही अरमान को लगता है कि मायरा कबीर के टच में नहीं है। ऐसे में अभीरा भी अरमान की बात से सहमत तो हो जाती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है अपनी रोमांटिक डेट के लिए।
6: अच्छा, ये ड्रेस भजन क्लबिंग के लिए ठीक रहेगी ना?
2: तुम्हें कैसे पता? तुम कभी गई नहीं हो। मैं शाम के लिए अपने कपड़े रेडी कर लूंगा। बड़ी खूबसूरत लड़की के साथ डेट पे जा रहा हूँ, विश मिला।
6: खड़ूसमान तुम पागल हो।
2: और तुम क्या हो शाम को बता।
0: अब अरमान और अभीरा तैयार होकर रोमांटिक डेट के लिए निकलेंगे तो सही, लेकिन उन्हें क्या पता कि वहाँ पर मायरा मिलेगी, वो भी कबीर के साथ, और इस चीज का सामना मुक्ति कैसे करेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: तू उस कबीर के साथ फायरफ्लाई फेस्टिवल में जा रही है?
8: ब्रो कबीर के साथ नहीं, मैं भी वहाँ जा रही हूँ और वो कबीर भी वहाँ आ रहा है, पर तू प्लीज किसी को बताना मत। ओके
6: बेबी गर्ल, आज बड़े दिनों के बाद तेरे पापा और मैं एक डेट पर जा रहे हैं। तू और मंकी प्लीज कुछ ऐसा मत करना कि मेरा हस्बैंड फिर से पॉपकॉर्न पापा बन जाए।
7: ओके माँ, पर आप दोनों जहाँ कह रहे हो?
6: वो कोई नया फायरफ्लाई फेस्टिवल है ना वहाँ।
7: पापा, बंदर, माँ और वो कबीर सब एक जगह, मर गए।
9: आपने फाइनली अपनी सेविंग से खरीदा एक लिमिटेड एडिशन डिजाइनर वॉलेट। ओ माय गॉड, दिस इज सो रॉकिंग। लेकिन अगर वो वॉलेट हो जाए गलती से आपसे गुम या उसे कोई चोरी कर ले तो डेफिनेटली

अब लेकर आने वाली है हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम होगा हीरो की हॉरर नी। इस फिल्म को डायरेक्ट करते नजर आएंगे साजिद खान और तो इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी आ रही है ये फिल्म बड़े पर्दे पर 7 जनवरी 2027 को रिलीज होगी। सलमान खान से जुड़ी एक शॉकिंग न्यूज सामने आई है। सलमान खान की आने वाली फिल्म मॉन्स्टर में उनके बॉडी डबल जो स्टंट परफॉर्म करते थे, शूटिंग के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया है जिसके चलते उन्हें भर्ती किया गया है। और अब खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म में जितने भी स्टंट परफॉर्म होंगे वो सलमान खान खुद करेंगे।

फिल्म एक्ट्रेस कुब्रा सेठ ने आने वाली फिल्म फर्जी 2 की शूटिंग शुरू कर दी है और इस बात की जानकारी खुद उन्होंने वैनिटी वैन के बाहर फोटो खिंचवाकर अपने फैंस को दी है और साथ ही ये भी जाहिर किया है कि उसमें उनका किरदार का नाम होगा सायरा।

0: कलर्स के सीरियल आरंभी में आने वाला है ट्विस्ट, क्योंकि आरंभी का बेटा पड़ने वाला है मुसीबत में। देख लीजिए सीरियल का प्रोमो।
1: अब मैंने अभी अभी बहन बाबा को बाहर जाते हुए देखा अकेले।
2: बयान भी मिल जाएगा आरंभी।
3: मैं अकेली नहीं, आप हो मेरे साथ, हम ढूंढ लेंगे उसे।
0: वेदिका पिंटो ने मुसाफिर कैफे से शेयर की हैं कुछ BTS तस्वीरें अपने फैंस के लिए और याद किए हैं शूटिंग के लम्हे।

प्रियवदा कांत ने अपने पूरे परिवार के साथ मनाया ओणम का त्योहार और शेयर की है तस्वीरें। वेब सीरीज मिस मैच सीजन 4 की शूटिंग चल रही थी राजस्थान में और अब उस शूटिंग का रैप अप हो गया है, जिसका एक वीडियो दर्शकों के सामने आया है, जहां पर सभी कलाकार मिलकर अपने क्रू के साथ केक कटिंग कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं एक दूसरे का।

0: अब देख लीजिए बरेली के बच्चन का ये फनी वीडियो, जहां पर पूरी टीम को मिल गया है मौका एक मस्ती भरा वीडियो बनाने का। कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस का ऐलान होते ही सीरियल महादेव एंड सन्स में मोगरा का किरदार निभाने वाली सानिया खेरा ने अपनी इच्छा जाहिर की है और वो मैनिफेस्ट कर रही हैं कि वो बिग बॉस के घर के अंदर जाएं। और वैसे भी जल्द ही सीरियल में इनके किरदार का अंत होने वाला है, हो सकता है इनकी दुआ रंग लाए।
1: और बाबा के भरोसे को भी तोड़ दिया।
2: आज फाइनली पूरे परिवार के सामने तेरा सच बेनकाब हो ही गए। आज तुम सबने हमें घर से बाहर निकाला है, कल हम तुम सबको बेघर कर देंगे। हम ढाल हैं इस परिवार की, सोच समझ कर वापस आना और टकराना। गेट आउट।
0: पीटी जिंटा और कुणाल खेमू की आने वाली फिल्म वाइब का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। देख लीजिए इस फिल्म का ये ट्रेलर, जहां पर एक्शन के साथ साथ कॉमेडी भरपूर है।

0: देश को तुम्हारी जरूरत है।
1: अगर इस देश को मेरी जरूरत है तो बात ऑलरेडी हाथ से निकल चुकी है। मैं ढंग से अपनी हिफाजत नहीं कर पाता हूँ। आप लोगों को पठान टाइगर जैसे एजेंट्स को भेजो ना, मैं कबाब में कुछ बोलना।
2: मैम, इफ यू रियली बिलीव इन अस एंड कैन प्रॉमिस अस सेफ्टी, देन आई एम रेडी टू स्टैंड विद माय कंट्री एंड डू व्हाटएवर इज नीडेड।
1: क्या कह रहा है मैडम? ये क्या, मैं इसमें शामिल नहीं हूं।
3: लेट्स गेट देम रेडी।
4: अलग ही लाइफ, अलग ही स्टाइल, अलग ही हाइट, मेरी अलग ही वाइब, मेरी वाइब।
0: देश को तुम्हारी जरूरत है हार्दिक।
1: आई नो,
0: कम ऑन, बी अ सोल्जर।
1: कैसा सोल्जर बनूंगा? ये बॉबी डॉल हूं क्या मैं?
5: Amazon MX Player पर आने वाले रियलिटी शो प्लेग्राउंड सीजन 5 में खास मेहमान बनकर आई हैं फराना भट्ट। देख लीजिए प्रोमो, जहां पर वो तेजस्वी प्रकाश के सामने सवाल कर रही हैं और तेजस्वी ऑल सेट रेडी है जवाब देने के लिए।
6: वायरल हो रहा है, लेकिन रिसेंटली एक ऐसी रील आई है सोशल मीडिया पे जो आप लोगों ने बनाई ही नहीं, लेकिन वो वायरल हो गई।
7: पर फरहाना, जिस शो में आप अपनी रील भी ठीक से कटवा के नहीं आई, वो शो हम दोनों जीत के आए हैं।
6: मेंटर्स आपके लिए और आपके प्लेयर्स के लिए एक और क्योस है। इस हफ्ते का एलिमिनेशन इसी वक्त होगा।
8: ओह माय गॉड।
6: और आज प्लेग्राउंड के घर से एक नहीं, दो प्लेयर्स एलिमिनेट होंगे।
5: बीती रात दिलनाज ईरानी, हर्षवर्धन राणे, हेमा शर्मा, तरुण खन्ना और भी कई कलाकार साथ में नजर आए हैं एक ज्वेलरी के लॉन्च के मौके पर, और ये ज्वेलरीज खास कर हैं आदमियों के लिए।

आरती सिंह खास मेहमान बनकर पहुंच गई हैं एक रक्स के शोरूम के लॉन्च के मौके पर, और देखिए कैसे वहां की डिजाइन देखकर ये बेहद खुश नजर आ रही हैं।

0: अब तो वक्त आ गया है एंटरटेनमेंट के इस वॉलेट को बंद करने का। मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। और हाँ, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। ये दिल्ली हमारी है, इसलिए सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। सॉल्यूशन बताएंगे, पॉल्यूशन की जंग को लड़ेंगे। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ। अब मिलकर हवा बदलेंगे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी।
10: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
9: आपको कितने लगेंगे।
2: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
11: There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we've listening and our esteemed jury is going to judge that. The chief minister will adopt that.
2: अब मिलकर हवा बदलेंगे।
12: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट। रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट। यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान। बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
15: गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा रिसर्च, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की रिपोर्ट, इलाज का भी होगा आसान। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी बैन हुआ एनालॉग पनीर, 1 साल तक इसके भंडारण, बिक्री और सप्लाई पर लगी रोक, लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया। युवा वकीलों ने फैसले का किया स्वागत। बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आउट। 4 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज। हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकेंगे दर्शक। चीन के चोंगकिंग में पहले फ्लासी लालटेन फेस्टिवल की दिखी रौनक। 68 आकृतियों से जगमग हुआ पूरा इलाका। 1000 साल के इतिहास की दिखी झलक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
15: विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रीनगर से निकली छड़ी मुबारक। अनुष्ठान के साथ ही अंतिम पड़ाव पर पहुंची बाबा अमरनाथ की यात्रा। इस मौके पर महंतों और साधुओं के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भक्तिमय हुआ माहौल। श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना हुई पवित्र छड़ी मुबारक, जहां रात्रि विश्राम और अनुष्ठान के बाद चंदनवाड़ी के लिए निकलेगी यात्रा। 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचेगी छड़ी मुबारक। सभी का होगा बाबा अमरनाथ की यात्रा का औपचारिक समापन। इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई थी 57 दिवसीय अमरनाथ यात्रा। अब तक 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। पूरी श्रद्धा और आस्था से जारी है प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा। धार्मिक यात्रा के 5वें जत्थे ने किए दर्शन पूजन। यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं का फूल मालाएं पहनाकर हुआ भव्य स्वागत, गूंजे जयकारे। स्थानीय लोग भी पेश कर रहे हैं सेवा, सहयोग और भाईचारे की मिसाल। श्रद्धालुओं के लिए जलपान, भोजन, पेयजल समेत सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकल रहा है जत्था। भक्तों की यात्रा सुगम और सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है प्रशासन। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की ये यात्रा। रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भव्य झूलनोत्सव का हुआ आयोजन। सावन महीने में तीनों भाइयों के साथ रामलला को झूलाया गया झूला। झूलनोत्सव के दौरान में बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा रहे मौजूद। श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आए लोग। रामलला को झूला झुलाने के लिए लगी होड़। धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भजन कीर्तन करते दिखे साधु संत। भगवान राम के उत्सव विग्रह को फूलों से सजे चांदी के हिंडोले में कराया गया विराजमान। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। रामनगरी में झूला उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भी दिखा उत्साह। तीनों भाइयों के साथ रामलला के दर्शन का मिला सौभाग्य। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली में होगा मटकी फोड़ यानी MPL सीजन 2 का आयोजन। लड़के और लड़कियों की कुल 26 गोविंदा टीमों के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। मटकी फोड़ ली का आधिकारिक एंथम सॉन्ग गोविंदा आला रे लॉन्च। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रोमी ने एंथम को दी अपनी आवाज। मटकी फोड़ली के दौरान बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए आधिकारिक मैस्कॉट मटकू किया गया तैयार। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जमकर मटकू MPL देगा संदेश। सूरजमल बिहार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा आयोजन मटकी फोड़ लीग में। खिलाड़ियों की ताकत, संतुलन, रणनीति और टीम वर्क की होगी परीक्षा। आधुनिक खेल प्रतियोगिता की तरह मटकी फोड़ लीग को किया गया डिजाइन। आयोजकों के मुताबिक IPL की तर्ज पर बेची जाएंगी MPL की टीम। मंत्री असीम अरुण ने शीतला देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। देश की समृद्धि के लिए की मंगल कामना। तमिलनाडु के वेलूर पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। श्रीपुरम गोल्डन टेंपल में दर्शन पूजन किए। इस दौरान उनका पारंपरिक पुण्य कुंभ स्वागत किया गया। मंदिर के अधिकारी ने उन्हें सम्मानित भी किया। कर्नाटक के तुमकुर में वर महालक्ष्मी उत्सव की धूम। मंदिर परिसर की फूलों से की गई भव्य सजावट। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। देवी महालक्ष्मी से लिया सुख समृद्धि का आशीर्वाद। केरल में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन, पुन्नमाडा झील में हुई प्रतियोगिता। मुकाबले में 22 स्नेक बोट समेत 71वें नाव हुए शामिल, भारी संख्या में शानकर बोट रेस देखने आए दर्शक। केरल की सबसे मशहूर सांस्कृतिक और खेल परंपराओं में से एक है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, 1952 में हुई थी इसकी शुरुआत। बस्ती में बेटा के अफसर बनने पर दिखा पिता का बादशाही अंदाज, और देखिए किस तरह से हाथी पर बिठाकर बेटे का किया गया भव्य स्वागत। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हुआ है अवनीश पांडे का चयन, इस उपलब्धि की खुशी में उनके पिता ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। मुरादाबाद के सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए बड़ा कदम, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब्स की स्थापना। प्रदेश में कुल 300 विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम और 48 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम। बच्चों को एनिमेटेड वीडियो और इंटरैक्टिव स्क्रीन के जरिए आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई में रुचि बनाए रखने के लिए सरकार की पहल। टीबी की जांच और इलाज में गोरखपुर एम्स को बड़ी सफलता, अब 6 हफ्ते नहीं सिर्फ 2 घंटे में मिलेगी टीबी की जानकारी। नई जांच तकनीक के जरिए करीब 2 घंटे में की जा सकती संवेदनशील और दवा प्रतिरोधी टीबी की पहचान, जल्द शुरू किया जा सकेगा मरीजों का सटीक इलाज। महाराष्ट्र में पुलिस फोर्स के साथ रह सकेंगे रिटायर हो चुके पुलिस डॉग्स, महाराष्ट्र सरकार ने दी मंजूरी, गृह विभाग उठाएगा खर्च। निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया गया, युवा वकीलों ने फैसले का किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह की शानदार पहल, इसके तहत आज 3 दिन की स्पेशल लोक अदालत के पहले दिन 400 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किए निर्देश, विधानसभा और सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। अधिकारियों कर्मचारियों और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर, बिना पुष्टि की गई पोस्ट या टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। बिहार से 1 सितंबर को चलेगी भारत गौरव ट्रेन, धार्मिक पर्यटन पर जाने वालों के लिए सुनहरा मौका। एक यात्रा में 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के अलावा एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं का कराया जाएगा भ्रमण। भारत गौरव ट्रेन में स्लीपर का किराया 18,160 रूपये, थर्ड एसी का 32,550 रूपये और सेकेंड एसी का 39,425 रूपये प्रति व्यक्ति रखा गया किराया। पैकेज में रेल यात्रा के अलावा ठहरने, स्थानीय परिवहन और बीमा जैसी सुविधाएं भी शामिल, यात्रा के लिए बिहार के 11 शहरों से बोर्डिंग की सुविधा। सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स का नया TI-22 कलेक्शन लॉन्च, अभिनेता हर्षवर्धन राणे को बनाया गया कैंपेन का चेहरा। दरभंगा के लहेरिया सराय ऑडिटोरियम में बिहार ग्रामीण बैंक की ओर से मुखिया आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और मजबूत बिहार का लक्ष्य, ग्रामीणों तक बैंकिंग सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दी गई जानकारी। कृषि लोन, जीविका सहायता समूह लोन और MSME के जरिए स्वरोजगार की दी गई जानकारी, खराब क्रेडिट वाले लोगों के लिए भी लोन से जुड़ी प्रक्रिया समझाई गई। इंदौर के होटल सयाजी में फूड सेफ्टी जांच में पाई गई गड़बड़ियां, जिला प्रशासन ने होटल के किचन को सील कराया। TCS 2026 बैच के इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में नई संभावनाओं का लाभ उठाने का संदेश दिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। ये दिल्ली हमारी है, इसलिए सॉल्यूशन भी हम बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, पॉल्यूशन की जंग को लड़ेंगे। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ। अब मिलकर हवा बदलेंगे।
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी।
5: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
4: आपको कितने लगेंगे?
6: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
7: There you go. That's the QR code. If you've got a solution, we've listening. And our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that.
6: अब मिलकर हवा बदलेंगे।
8: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है? घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए? क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा रिसर्च, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की रिपोर्ट, इलाज भी होगा आसान। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी बैन हुआ एनालॉग पनीर, 1 साल तक इसके भंडारण, बिक्री और सप्लाई पर लगी रोक, लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। केरलम में 72वीं रोमांचक नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का मुकाबला, पुन्नमाडा झील में हुई प्रतियोगिता, 22 स्नेक बोट समेत 71 नावें हुई शामिल। बहुप्रतीक्षित आइवरी लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आउट, 4 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज, हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकेंगे दर्शक। चीन के चोंगिंग में पहले फ्लारसी लालटेन फेस्टिवल की दिखी रौनक, 68 आकृतियों से जगमग हुआ पूरा इलाका, 1000 साल के इतिहास की दिखी झलक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
12: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। देवों के देव महादेव का पावन महीना सावन हिंदुओं के लिए बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस महीने में कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं और इन्हीं में से एक है सावन महीने की पुत्रदा एकादशी। कहते हैं कि पूरे विधि विधान से इस व्रत को करने से ना सिर्फ घर के आंगन में किलकारी गूंज सकती है बल्कि संतान की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान भी कर देगा एकादशी का ये व्रत। ये एक ऐसा शुभ दिन है जब कान्हा की कृपा से संतान के सुख का वरदान मिल सकता है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी क्यों मानी गई है इतनी शुभकारी।

0: सावन में हो सकती है संतान की प्राप्ति। पुत्रदा एकादशी का व्रत दिलाएगा पापों से मुक्ति। श्री कृष्ण की कृपा से आंगन में गूंजेगी किलकारी। पुत्रदा एकादशी की तिथि दूर करेगी पीड़ा सारी। माना जाता है कि सावन में आने वाली पुत्रदा एकादशी की तिथि पर न सिर्फ आपको महादेव की कृपा मिल सकती है, बल्कि लड्डू गोपाल की उपासना से आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द दूर हो सकता है, क्योंकि संतान प्राप्ति की हर बाधा का समाधान है पुत्रदा एकादशी का व्रत।
1: श्रावण शुक्ल में जो एकादशी पड़ती है उसको पुत्रदा एकादशी माना जाता है और कहा जाता है। भगवान विष्णु को यह समर्पित एकादशी होती है। संतान संबंधी जो समस्याएं होती हैं वह दूर होती हैं और मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है। इसमें संतान सुख, स्वास्थ्य, परिवार के उज्जवल भविष्य की भी कामना की जाती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए अमोघ माना जाता है। पंचांग कहता है कि साल में दो बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक बार पौष माह में जबकि दूसरी सावन मास में। माना जाता है कि ये तिथियां पुत्र के सर्व कल्याण के लिए जानी जाती हैं। इसीलिए पुत्रदा एकादशी आपकी संतान संबंधी हर परेशानी का अंत कर देगी, क्योंकि नारायण की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। श्रीहरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है।
1: श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी विष्णु पूजा के साथ साथ शिव और विष्णु दोनों की ही पूजा की जाती है। दोनों के लिए यह पुत्रदा एकादशी समर्पित है। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और इसके बाद अपनी मनोकामनाएं जो हैं उस मनोकामनाओं को भगवान विष्णु और भगवान शिव के समर्पित बोलना चाहिए। अब साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप किया जाता है और उसको जप करने से आपको संतान का सुख प्राप्त होता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी की तिथि पर श्री हरि संग माता लक्ष्मी की उपासना की जाए तो इससे निश्चित ही निसंतान दंपतियों के आंगन में किलकारी गूंज सकती है। भविष्य पुराण कहता है कि इस पावन तिथि पर संतान की अभिलाषा तो पूर्ण होती ही है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही विकारों से मुक्ति संभव है। तो चलिए आपको बताते हैं सावन की इस परम सौभाग्यशाली पुत्रदा एकादशी की महिमा। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी ये व्रत संतान और उससे जुड़ी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। चलिए आपको इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। कहते हैं कि संतान सुख के लिए राजा ने अनेक जतन किए, लेकिन राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। कहते हैं कि तब राजा ने राज्य के सभी ऋषि मुनियों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। तब राजा की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे और आपने सावन माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से जल पीती हुई एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण उस गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। हे राजन, यदि आप और आपकी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, जिसके बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये सुनकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। इसके बाद न केवल राजा श्राप से मुक्त हो गए बल्कि उन्हें संतान की प्राप्ति भी हो गई।
1: एक राजा रहते थे जो कि जिनको संतान नहीं थी तो बहुत परेशान थे, और उन्होंने उनको बताया गया कि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन करिए तो उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो उसी समय से वह राजा पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन और उसकी जो विधियां हैं वह सब किए, उसके पश्चात उनको संतान की प्राप्ति हुई।
0: कहते हैं कि तब से इस व्रत की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी और निसंतान दंपतियों के लिए ये व्रत वरदान बन गया। चलिए आपको शास्त्रों और ज्योतिषियों के नजरिए से बताते हैं कि क्यों एकादशी की तिथि परम फलकारी मानी गई है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, मनोरोग दूर होते हैं। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है, ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर अगर जरूरतमंदों को कुछ दान किया जाए तो ये पुण्यकारी उपाय भी आपको लाभ पहुंचा सकता है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं आपका उद्धार करेंगे, इसलिए आज हम आपको बताएंगे वो महा उपाय जिसके जरिए पूरी हो सकती है आपकी उत्तम संतान की कामना। तो तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: पुराणों में पुत्रदा एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना करके संतान प्राप्ति का वरदान मांगा जा सकता है, यानी एकादशी की इस दिव्य तिथि पर श्री कृष्ण की कृपा से संतान से संबंधी हर समस्या का अंत संभव है। आज अगर आपने संतान की कामना के लिए रखा है उपवास तो किन बातों का ध्यान रखें, आइए आपको बतवाते हैं।

0: मनवांछित फल देने वाली है सावन की पुत्रदा एकादशी। श्री कृष्ण की कृपा से आपको मिलेगी संतान की खुशी। पुत्रदा एकादशी की तिथि पर करें ज्योतिषीय महाप्रयोग। बाल गोपाल की कृपा से बनेंगे संतान प्राप्ति के योग। यशोदा के लाल हैं बाल गोपाल और यशोदा नंदन की कृपा से ही भर सकती है आपकी सोनी गोद, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति का वरदान पाने का सबसे सरल उपाय है।
1: संतान की तरक्की के लिए, उस संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी सफलता के लिए भगवान विष्णु को पीले फूल तुलसी अर्पित करें और संतान का नाम जो भी है उसको किसी भी उसका नाम ले करके और उसके जरूरतमंद लोगों को अन्न वस्त्र भोजन पानी जो भी उचित हो आपकी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से उसको अर्पित करना चाहिए।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि विपदा या परेशानी कैसी भी हो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान ही हर समस्या का समाधान कर सकता है। संतान का सुख ऐसा होता है जिसकी चाहत हर दंपति को होती है, लेकिन कुछ कारणों से कई बार लोग इस सुख से वांछित रह जाते हैं। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत आपके घर की बगिया को महका सकता है। मान्यता है कि अगर नियम पूर्वक इस व्रत को करें तो इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल जाती है।
1: यह पुत्रदा एकादशी का विधान यह है कि एक दिन पहले, एकादशी के एक दिन पहले दसवीं तिथि आती है, उस दिन आप सात्विक भोजन करें, एकादशी के दिन आप स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें, पीले वस्त्र धारण करें और भगवान को तुलसी दल और फल फूल पंचामृत से स्नान कराएं और उनको पूजा करें। यह पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं व उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
0: ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या श्री हरि की उपासना करें। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से स्वस्थ और पराक्रमी संतान की प्राप्ति होती है। वहीं जिनकी पहले से संतान है उनके हर संकट दूर कर देते हैं मधुसूदन। माना जाता है कि इस व्रत के प्रताप से संतान को ऐश्वर्य और तरक्की मिलती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए अब आपको बताते हैं संतान की प्राप्ति के लिए ज्योतिष में कौन से महा उपाय बताए गए हैं।
1: इस तिथि को संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की तरक्की के लिए सर्वप्रथम आप सुबह उठें, स्नान करें शुद्ध जल से और विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा में 21 11 11 21 तुलसी के दल भगवान विष्णु को भगवान लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए।
0: पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। श्री कृष्ण को पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा पाने का सबसे दिव्य दिन है पुत्रदा एकादशी, लेकिन कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
1: अन्न नहीं खाना है उस दिन, चावल नहीं खाना है, मसूर नहीं खाना है, चने की दाल नहीं खाना है और भोजन से परहेज करना है। सात्विक फल फूल करना है, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए उस दिन। इस प्रकार वह नियम पूर्वक कार्य करना चाहिए। किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। सात्विक रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप यह व्रत को करें, उससे आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
0: घर में लहसुन प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें, ईश्वर में श्रद्धा रखें, सात्विक रहें और झूठ बिल्कुल ना बोलें। संतान की प्राप्ति और उन्नति के लिए पुत्रदा एकादशी को कल्याणकारी माना गया है। कहा जाता है कि जो भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है तो उसे सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है, ये व्रत कर लेने मात्र से उसका भव सागर पार हो सकता है। तो आप भी कान्हा को प्रसन्न करके मांग लीजिए मनचाही संतान का वरदान। आगे हम आपको संतान गोपाल मंत्र के बारे में बताने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: इस पुत्रदा एकादशी पर वासुदेव कृष्ण की कृपा से आपको मनचाही संतान का सुख मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा एक विशेष मंत्र का जाप। तो आइए जान लेते हैं कि कौन से मंत्र के जाप से नंद गोपाल होंगे प्रसन्न।

0: पुत्रता एकादशी की तिथि पर करें दान। दान से होगी आपकी उन्नति और गुणगान। कान्हा के मंत्रों से संतान में आएंगे संस्कार। महाउपाय से दूर हो जाएंगे सारे विकार। धर्मग्रंथ कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नारायण के अवतार हैं। ब्रह्मांड में श्री कृष्ण ही सत्य का प्रमाण है। इसीलिए जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए उसे भला जीवन में किसी चीज की कमी रहेगी, क्योंकि श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी पर एक मंत्र के जाप से प्रसन्न हो जाते हैं वासुदेव कृष्ण और देते हैं संतान का वरदान। इस शुभ फलदायी एकादशी पर कौन से मंत्र से मिलेगी हरि कृपा, गौर से देखिए।
1: अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही में तनयम कुरु त्वाम अहम शरण।

0: तनय कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो उत्तम नियम का ध्यान रखते हुए व्रत का पालन करें और इस दिव्य मंत्र का भी जाप कीजिए। अगर मुमकिन हो तो व्रत के अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान भी दें, तब और भी फलदायी हो जाएगा पुत्रदा एकादशी का ये व्रत। किसी जरूरतमंद को अनाज दान करें, इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी, दुखों से छुटकारा मिलेगा। पुत्रदा एकादशी पर पीले लाल नारंगी वस्त्र दान कीजिए, श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी, जीवन की बाधाएं दूर होंगी, साथ ही रोग विकारों से राहत मिल सकती है, दांपत्य जीवन की समस्याएं कम होंगी। इस तिथि पर सोना या तांबा दान करते हैं तो इससे संतान की समस्याएं दूर होने की मान्यता है। माना जाता है कि इस तिथि पर अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान किया जाए तो ईश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो संतान संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए, जीवन में खुशी और आनंद पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए, इन बातों का ध्यान रखें और पुत्रदा एकादशी पर कृष्ण उपासना करें। संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण स्वयं कर देंगे नंदलाल।
1: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है, घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए, क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी है।
7: लंदन को 15 लगे अपनी हवा को साफ करने का,
6: आपको कितने लगेंगे।
8: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
9: There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we're listening. And our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that.
8: Ab milkar hawa badlenge.
10: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
11: Aur durbhagya kehta hai
10: ki bhagya kahin dur nahi.
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: मुझे तकरीबन 21 हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। पवित्र छड़ी मुबारक श्रीनगर से पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक समापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पवित्र छड़ी मुबारक 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी। पवित्र गुफा में पूजा अर्चना के साथ ही इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा का औपचारिक रूप से समापन माना जाएगा और यात्रा अगले वर्ष तक के लिए विराम लेगी। केरला में आज प्रसिद्ध 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किया गया। पुन्नमाड़ा झील में आयोजित इस दौड़ में लोगों ने पूरे उत्साह और रोमांच के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कई तरीके की नावों को शामिल किया गया, लेकिन सर्प नौकाओं ने लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। इस साल प्रतियोगिता में करीब 70 से 71 नौकाओं ने हिस्सा लिया, जिनमें 21 से 22 चुंडन नौकाएं शामिल हैं। छोटी नौकाओं के मुकाबले की शुरुआत की गई, तो इसी के साथ इसकी शुरुआत हुई और बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने नौका चालकों का खूब उत्साह बढ़ाया। बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आज रिलीज हो गया है। फिल्म में महाभारत के महान योद्धा कर्ण की कहानी को भव्य अंदाज में दिखाया गया। महावीर कर्ण 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खास बात यह है कि फिल्म को हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाएगा, यानी देश भर के दर्शक इस फिल्म को अपनी पसंदीदा भाषा में देख सकेंगे और महान योद्धा कर्ण की कहानी को महसूस कर सकेंगे।
2: ये संसार हमारी संपत्ति भूल जाएगा, लेकिन हमारे खोए हुए साम्राज्य का हमेशा स्मरण करेगा। कर्ण के लिए उसका प्राण, कर्ण के प्राण देना, अपने कवच कुंडल उतार।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं चीन में रोशनी के उत्सव की शानदार तस्वीरें। दक्षिण पश्चिमी चीन के चोंगकिंग के फुलिंग जिले में पहला फ्लावर्सी लांटन फेस्टिवल मनाया गया। इस दौरान यहां पर जगह जगह से 68 ऐसी आकृतियां लगाई गई जिनसे पूरा इलाका जगमग हो गया। खासतौर से सीढ़ीदार फूलों के खेत, झील के किनारे और जंगल के रास्ते पर रोशन इन आकृतियों से बेहद शानदार और खूबसूरत नजारा नजर आया। ये फेस्टिवल इलाके की खास पहचान और इसके हजारों साल पुराने इतिहास को इस तरह की सजावट के जरिए पेश करता है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि 100 से ज्यादा कारीगरों ने इन्हें पूरी तरह से हाथ से बनाया है। इन आकृतियों को बनाने में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सिचुआन की अनोखी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक विरासत दिखाता है। इस लाइट डिस्प्ले में पत्थर की मछली, अलग अलग दौर के विद्वानों के शिलालेख और पानी से जुड़ी नक्काशी के पैटर्न को दिखाया गया है। और हांगकांग का आसमान मशहूर क्विक्सी फेस्टिवल के मौके पर ड्रोन की रोशनी से जगमगाया। इस फेस्टिवल में 2000 ड्रोनों ने विक्टोरिया हार्बर के ऊपर चीनी लोक कथा की खूबसूरत तस्वीरें पेश की। ड्रोन से आसमान में मैगपाई ब्रिज की आकृति बनाई गई। ये वही पुल है जो चीनी लोक कथा के न्यूलांग और वीवर गर्ल को साल में एक बार मिलाता है। इसके अलावा ड्रोन से प्यार में डूबे जोड़े और खिलते हुए विशाल गुलाबों की आकृतियां भी बनाई गई। आसमान में बदलती इन तस्वीरों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्विक्सी फेस्टिवल चीनी चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने के 7वें दिन मनाया जाता है। करीब 2000 साल पुरानी ये प्रेम कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस ड्रोन शो ने सदियों पुरानी कहानी को आधुनिक अंदाज में पेश किया। आसमान पर बनी रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन गई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी है।
1: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
0: आपको कितने लगेंगे?
2: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
3: There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we're listening. And our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that.
2: अब मिलकर हवा बदलेंगे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा रिसर्च, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की रिपोर्ट, इलाज भी होगा आसान। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी बैन हुआ एनालॉग पनीर, 1 साल तक इसके भंडारण, बिक्री और सप्लाई पर लगी रोक, लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। केरलम में 72वीं रोमांचक नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का मुकाबला, पुन्नमाड़ा झील में हुई प्रतियोगिता, 22 स्नेक बोट समेत 71 नावें हुई इसमें शामिल।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। देखिए, भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली गया के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन गया के गांव में होने वाले कुदरती करिश्मे के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। दरअसल गया में स्थित हंसराज पर्वत की तलहटी में बसे छोटे से गांव में रत्नों की बारिश होती है। जी हाँ, जिन्हें रत्नों को पाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों से गहरी खुदाई करनी पड़ती है, वही रत्न गया के इस गांव में सड़कों पर बिखरे हुए मिल जाते हैं। ये सुनकर जरूर आपके मन में ये जिज्ञासा जगी होगी कि आखिरकार ये गांव कहाँ पर है और इस गांव को मुझे देखना है। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं गया के उस अद्भुत गांव में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: हमारी धरती का नाम रत्नगर्भा है। रत्नगर्भा इसलिए क्योंकि धरती ने अपने भीतर हीरा, पन्ना, नीलम, माणिक्य, पुखराज और गोमेद जैसे बेशकीमती रत्नों का अकूत भंडार सहेज रखा है। पर धरती के गर्भ में कुदरत की ओर से सहेज कर रखे गए इन रत्नों को पाना आसान नहीं है। इसके लिए भारी मशीनों की मदद से संभावित पहाड़ों या जमीनों में काफी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। फिर एक्सपर्ट की मदद से उनकी पहचान कर रत्नों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली बिहार के गया जिले के एक गांव के लोगों को इन्हीं रत्नों को पाने के लिए न तो माइनिंग करनी पड़ती है और न ही कोई दूसरी मशक्कत करनी पड़ती है। इन्हें करना होता है तो बस मानसून का इंतजार। मानसून की बारिश के बाद ये बेशकीमती रत्न इनके रास्तों में अपने आप ही आकर बिछ जाते हैं और जिन्हें पाकर इनकी जिंदगी से दूर हो जाता है गुर्बत का मनहूस साया। ये बात सुनकर आपको जरूर हैरानी हुई होगी। इस बात पर आसानी से यकीन कर लेना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम आपको पूरी सच्चाई से रूबरू कराएंगे तो आपको न सिर्फ इस बात पर पक्का यकीन हो जाएगा बल्कि गांव वालों की किस्मत पर रश्क भी होने लगेगा। तो सुनिए साहब, बिहार के गया जिले के वजीरगंज ब्लॉक में मौजूद है हसरा गांव। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हसरा गांव हंसराज पर्वत की तलहटी में बसा है। इस गांव के लोग हर साल मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं और अच्छी बारिश होते ही गांव के खुशकिस्मत लोग निकल पड़ते हैं हंसराज पर्वत पर, जहां मोती, मनिया जैसे कीमती पत्थर रास्ते में पड़े मिलते हैं। दरअसल बारिश के बाद हंसराज पर्वत पर कुदरती रूप से मौजूद बेशकीमती पत्थर लुढ़क कर पहाड़ की पगडंडियों तक पहुंच जाते हैं और कई बार तो गांव के खेत खलियानों तक भी आ जाते हैं।
1: बारिश जब पूरा बारिश होगा तो अपने आप पहाड़ी से ढल के जमीन में चला जाता है फिसल के,
2: फिर लोग
1: उसका जानवर उमर चढ़ता है खुड़ी से, कहीं कहीं से कुछ कुछ से अपना धोवा के अपना निकलता है तो ही ले जाते हैं।
2: बहुत सारे बच्चे भी खोजते रहते हैं।
1: जी हाँ सर, बच्चे जो गरीब का आदमी है, तत्व के बाल बच्चे हैं, वो जो घर में कुछ काम नहीं है, जो पैसा का लोभ है तो कुछ भी कोई भी खोज सकता है सर।
0: हंसराज पर्वत की तलहटी में बसे हसरा गांव के लोग बेहद सहज, सरल और भोले भाले हैं। गांव पर बरसने वाली कुदरत की बेशकीमती नेमत के महत्व से ये आज भी कमोबेश अनजान ही हैं। मॉनसून की बारिश के बाद मूंगा, मनिया जैसे पत्थर हंसराज पर्वत से लुढ़क कर जब इनके कदमों तक पहुंचते हैं तो ये उसकी असली कीमत से अनजान ही रहते हैं। गया या दूसरे शहरों से आने वाले जौहरी इन्हें उसकी जो भी कीमत बता दें उसे सही मानकर वो सौदा कर लेते हैं। गांव के भोले भाले बच्चों के लिए पत्थर ढूंढना बाल सुलभ खेल से ज्यादा कुछ नहीं होता। इन बच्चों के लिए रत्न ढूंढना आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, एक कौतूहल होता है।
2: खोजने के लिए ज्यादातर बच्चा लोग वर्षा होने के बाद दौड़ जाता है, वही लोग लेता है, उसी को मिलता है, जो ढूंढता उसको मिलता है, बेच देता है लोग। बोध गया से कुछ लोग आते हैं, जानते हैं कि वहाँ पर वर्षा होने के बाद मिलता है कुछ, आके लोग ले जाता है, बढ़िया कीमत भी देता है।
3: क्या कीमत लगाते होंगे?
2: कुछ जैसा साइज रहता है मूंगा को, उस प्रकार से वो लोग देते हैं।
3: किस तरह का मूंगा रहता है?
2: काला उजला रहता है, रेड भी रहता है, गुलाबी जैसा भी होता है, अलग अलग प्रकार है सब।
0: कुदरत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। कुदरत की मेहर का कोई बना बनाया फॉर्मेट नहीं होता। कब, कहां, किस पर और क्यों कुदरत की मेहरबानी हो जाए ये किसी को नहीं पता। मानसून के दौरान सहज ही मिलने वाले बेशकीमती रत्नों ने गया जिले के हसरा गांव के लोगों की जीवन शैली में बड़ा बदलाव ला दिया है। करीब 150 घरों और 1000 की आबादी वाला ये गांव आज अगर खुशहाल है तो उसकी वजह है हंसराज पहाड़ से लुढ़क कर आने वाले अनमोल पत्थर। कुछ दशक पहले तक इस गांव में मुफलिसी का आलम ये था कि यहां के ज्यादातर घर कच्चे हुआ करते थे, लेकिन बेखुदी में मिले पत्थरों को बेचकर अब ज्यादातर परिवारों ने पक्के मकान बनवा लिए हैं। दरअसल यूं ही रास्तों में पड़े मिले पत्थर कई बार 2.5 से 3 लाख तक की कीमत दे जाते हैं।
1: हाँ, मूंगा मूंगा टाइप मिलता है,
4: जैसे छोटा मूंगा बड़ा मूंगा जो जिसका जैसा नसीब है वह अनुसार अगर छोटा मिल गया तो कम बेनिफिट हुआ, जड़ी बड़ा मिल गया तो ज़्यादा बेनिफिट हुआ, वो साहब बड़ा मिल गया तो 2.5 लाख 3-3 लाख तक के यहाँ बिका है मूंगा।
5: कब वो रत्न मिलता है, कैसे मिलता है?
4: जब पानी पड़ गया तो लोग निकल जाते हैं, जिसका नसीब आता है उनका मिल जाता है, कम से कम तो 100 आदमी से ऊपर है, 100 आदमी ऊपर। पर की साल की कहानी कहते हैं, गाय खोल के आया, जस्ट पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं और ये घरवा के आपसे नीचे उतर भर रोडवा किनारे में, रोड के किनारे में, अरे मूंगा में हमको मिल गया शंकर जी मिल गया, तुरंत उसको 1,55,000 में एकदम हैंड टू हैंड कहते कहते बिक गया।
0: शुरुआती वर्षों में जब ये बेशकीमती पत्थर गांव वालों को मिलने लगे तो उन्हें नहीं पता था कि ये इतने कीमती है, लिहाजा तब गांव वाले इन पत्थरों को कुछ 100 या कुछ 1,000 रुपयों में बेच देते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्हें इन पत्थरों की वैल्यू पता चली, गांव वालों ने मोल भाव करना शुरू कर दिया। मोल भाव करने की वजह से सीधे साधे गांव वालों को पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत मिलने लगी। हालांकि अभी भी इन्हें नहीं पता कि जो जौहरी इन रत्नों के बदले 1-2 लाख रुपए देते हैं वो अपने ग्राहकों से उसके लिए कितना पैसा वसूलते हैं। बहुत मुमकिन है कि जो पत्थर ये शहरों से आने वाले जौहरी को 1 या 2 लाख में बेच देते हैं, जौहरी अपने ग्राहकों से उस पत्थर के 40 से 50 लाख रुपए वसूलते हो। दरअसल दुनियादारी से बेखबर गांव वाले रत्नों के पारखी तो है नहीं, वो तो बस पत्थरों की चमक देखकर उसे उठा लेते हैं और फिर इंतजार करते हैं जौहरी का।
6: चमकता है ना, जैसे मिल जाता है उसे, जिसे लड़कन के खोता है 100 के मिलता है, हमको मिलता है।
5: जब आपको मिला था तब कैसा लगा?
6: कैसा लगता है, वो रख ले है, अभी नहीं बेचा, उसी के दे रहा 10-20 ने, हम कहीं नहीं बेचेगा, जम कहा ऐसे रख ले है मूंगा के, उसी के दाम ज्यादा है। मिला तो हम कहते जैसे आ रहा है ना, वो नहीं है फूल जता मिला हमको,
5: क्या था?
6: हीरा है।
0: हंसराज पर्वत से लुढ़ककर आने वाले इन बेशकीमती पत्थरों का एक गहरा धार्मिक कनेक्शन भी है। गांव वालों को ये पत्थर आमतौर पर सावन के महीने में मिलते हैं। सावन को भगवान शिव का मनभावन महीना माना जाता है और संयोग ये कि हंसराज पर्वत पर भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर भी है। गांव वाले कहते हैं कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया बल्कि ये स्वयं प्रकट हुआ है। जाहिर है गांव वाले हंसराज पर्वत से मिलने वाले पत्थरों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ही मानते हैं।
2: हंसरा पहाड़ी है, खासियत तो ऊपर में बाबा हैं, सबसे बड़ा खासियत तो वही है, 1934 से यहाँ विराजमान है।
0: काबिले गौर है कि हंसराज पर्वत पर स्थित भोलेनाथ के मंदिर की कहानी सोनपुर के राजा से भी जुड़ी है। गांव वालों के अनुसार पहाड़ के आसपास आज भी कुछ पुराने राजा महाराजाओं के महलों के खंडर और अवशेष दबे हुए हैं। गांव वाले कहते हैं कि साल 1934 में हंसराज पर्वत पर सोनपुर के राजा निरसू नारायण सिंह ने 4 फीट ऊंचे शिवलिंग वाले एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया था। सावन महीने और पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में जलाभिषेक करने आते हैं। मंदिर से जुड़ी कुछ चमत्कारिक कथाएं गांव वालों के इस विश्वास को और पुख्ता कर देती हैं।
4: यहाँ अपरूपी शंकर जी का मूर्ति निकला है जो हम लोग जन्म के पहले से ही है, 1934 में ही बना हुआ मंदिर है, हम लोग जानते हैं, हम लोग देखे उखे नहीं थे कि कैसे शंकर जी यहाँ उत्पत्ति हुए से, लेकिन पूर्वज लोग कहते थे कि जब यहाँ खुदाते थे मालिक थे, सोनपुर के मालिक के हम लोग क्षेत्र में पड़ते हैं, निरसू नारायण सिंह उनका नाम था, तो खुदवा के यहाँ से ले जाना चाहते थे सोनपुर, लेकिन जन बन लगवा खुदवाते थे, जैसा जलधरी है वैसा जलधरी 7 जलधरी तक शाम तक खुदाता था कि तो, और फिर रात भर में उसी जस के तस हो जाते थे।
0: क्या ये वाकई भगवान शिव की कृपा का असर है या फिर हंसराज पर्वत की भूगर्भीय संरचना का कमाल? इस सवाल का जवाब तो कोई आध्यात्मिक विभूति या फिर भूगर्भ शास्त्री ही दे सकते हैं। हालांकि गया के वन पदाधिकारी का कहना है कि जिन लावा से पहाड़ों का निर्माण होता है उनमें कुदरती रूप से रत्न भी होते हैं।
7: ये मैं भी ये पूर्व में लावा से जो पहाड़ का निर्माण हुआ है तो उसमें कुछ ऑर्नामेंटल एलिमेंट जो होते हैं लाइक जो पत्थर होते हैं बेसिकली ये पत्थर का टाइप है, ठीक है, डिफरेंट कलरफुल पत्थर के टाइप हैं और वो मे भी वो निकल रहा होगा।
0: वन पदाधिकारी चाहे जो कारण बताएं, भोले भाले गांव वालों के लिए तो ये साक्षात शिव जी की कृपा का ही कमाल है। कारण चाहे जो हो पर सच्चाई यही है कि धरती के भीतर दबे रत्नों को निकालने के लिए जहां एक ओर करोड़ों रुपए खर्च कर वैज्ञानिक तरीके से माइनिंग करनी पड़ती है वहीं रत्न इन गांव वालों को सहज ही उपलब्ध हैं। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गया के गांव में सहज ही मिलने वाले रत्नों के बाद आपके मन में रत्नों की पहचान और उनके कीमत निर्धारण से जुड़े सवाल भी जरूर उठ रहे होंगे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता मनीष रसिया ने रत्नों के विशेषज्ञ से हर पहलू पर खास बातचीत की। आइए विशेषज्ञ से ही जानते हैं कि कैसी होती है रत्नों की पहचान, कैसे तय होती है इनकी कीमतें।
9: बहुत सारे लोग जीवन का सुख दुख रत्न के हिसाब से तय करते हैं। ऐसे में रत्न की डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है और जितनी डिमांड होती है उतना ही रत्न के साथ कई तरह के खेल भी होते हैं, असली नकली का खेल। कैसे पहचाने, क्या चीज़ें हो सकती हैं, मेरे साथ अमरजीत जी हैं जो कि पीपी ज्वेलर्स भाई पवन गुप्ता से हैं। सर, आप रत्न तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं, किसी ऑथेंटिक शॉप से लेना एक बात है, लेकिन अगर कोई हाथ में लेकर आया है क्या उसको पहचानना मुमकिन है?
10: देखिए, ऐसा जनरल आदमी के लिए पहचानना कि स्टोन रियल है या फेक है बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी ये है कि स्टोन कभी भी आप देखें, जैसे कोई भी स्टोन आप रियल स्टोन देख रहे हैं, जैसे ये नीलम है, तो स्टोन जो रियल आएगा उसका एक तो थोड़ा वेट हैवी रहता है, अगर सिंथेटिक स्टोन है आर्टिफिशियल स्टोन है तो थोड़ा हल्का रहेगा, और सेकेंड है कि कट थोड़ा अच्छा आता है, अगर रियल स्टोन है तो उस पर थोड़ी मेहनत करी जाती है, खर्चा करा जाता है उसको अच्छा बनाने के लिए, तराशा जाता है तो उसके ऊपर कट बहुत अच्छा दिया जाता है। फेक स्टोन के ऊपर उतनी मेहनत नहीं कर सकता आदमी, क्योंकि इतना सस्ता होता है वो, उसकी ना तो इतनी अच्छी कटिंग आती है ना बहुत अच्छी पॉलिश होती है, और वजन में भी वो काफ़ी हल्का रहता है। बाकी आजकल के टाइम पे तो काफ़ी लैब हैं, गवर्नमेंट लैब हैं, वहाँ जाके आप अपना स्टोन चेक करा सकते हैं, या किसी अच्छे ज्वेलर्स पे जो अच्छा कोई स्टोन का काम कर रहा है एक बार आप उसका सजेशन ले सकते हैं या उसके पास दे सकते हैं, तो जो एक अच्छा काम कर रहा है मार्केट में जिसका नाम है तो जनरल उस पर चीज़ अच्छी ही मिल जाती है।
9: मोटा मोटी ये है कि थोड़ा सा वो भारी होगा
10: जी,
9: उसके कट बहुत फाइन होंगे और उसमें चमक होगी,
10: चमक आएगी। बिल्कुल ठीक बात है जी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं स्टोन से पहले, और बाकी किसी भी अच्छे रेप्यूटेड शॉप से लो तो मेरे हिसाब से चीज़ अच्छी ही मिल रही है मार्केट में, अभी काम सही चल रहा है।
9: कीमत कैसे तय होती है स्टोन की? जैसे मान लीजिए कोई कहीं कुछ पड़ा हुआ पा गया तो उसकी कीमत कैसे तय कर सकते हैं?
10: देखिए, कीमत तो स्टोन के वजन के ऊपर है कि स्टोन का साइज कितना बड़ा है, वजन कितना है, और स्टोन के अंदर क्लैरिटी कितनी है। स्टोन जितना ज़्यादा अच्छा साफ होगा, अंदर से ट्रांसपेरेंट आएगा, तो स्टोन की वैल्यू ज़्यादा होती है। वहीं स्टोन के अंदर धुंधलापन है, क्लैरिटी नहीं आ रही या पीस छोटा है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी।
9: ठीक है, जो अलग अलग स्टोन है, जैसे कई लोग नहीं पहचानते हैं, हम स्टोरी ये कर रहे हैं कि एक गांव में कुछ लोग स्टोन उनको मिलते हैं बारिश के बाद बहुत सारे, तो वो नहीं पहचानते हैं कि ये कौन सा है, ये गुमद है कि ये नीलम है कि ये क्या है, थोड़ी सी उनकी जानकारी लगा दिखाते हुए बताएं कि ये है और इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए।
10: जी जी, देखिए स्टोन जो है, जो रियल स्टोन है वो आप जनरल देखेंगे तो इस तरीके से आते हैं, जैसे पन्ना हो गया जो जनरल आप देखेंगे हरे रंग का ही पाया जाता है, और नीलम है जैसे नाम से ही नीलम है, नीले रंग का है। इसी के अंदर एक मूंगा स्टोन आता है, ये वाला, ये भी समुद्र के अंदर से निकलता है, ये मोस्टली रेड कलर का या वाइट कलर का पाया जाता है, और एक मोती इस तरीके से जो मोती आ रहा है वाइट, जनरल सब ने देखा ही होगा। और स्टोन के अंदर और काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे गोमेद है ये वाला, तो काफ़ी चीज़ें हैं स्टोन के अंदर। बाकी जो जनरल महंगे स्टोन देखे जाएंगे आप तो पुखराज महंगा आता है, नीलम महंगा आता है, पन्ना महंगा आता है, और कई स्टोन काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं जो रियल होते हैं लेकिन सस्ते मिल जाते हैं।
9: किसकी कितनी कीमत होती है मोटा मोटी?
10: देखिए, अच्छा स्टोन जैसे सपोज कोई भी मान के देखते हैं हम, पन्ना है या पुखराज है या नीलम है, तो जनरल अगर हम देखेंगे तो ये आपको स्टार्टिंग जो अच्छा स्टोन अगर आपको चाहिए 10-15 हज़ार रुपये रत्ती आपको कम से कम मिलेगा ही, और 6-7 रत्ती, 8 रत्ती, 10 रत्ती, सब लोग अपने अपने एक वजन के हिसाब से शरीर के, या जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है उसके हिसाब से स्टोन पहना जाता है। कोई 4 रत्ती पहन रहा है, कोई 6 रत्ती पहन रहा है, कोई 8 रत्ती पहन रहा है।
8: रत्नों का हमारी जिंदगी में बहुत गहरा महत्व है और ये नया नहीं है। हमारे पुराणों और शास्त्रों में भी अनमोल रत्नों का जिक्र मिलता है। समुद्र मंथन के बाद कौस्तुभ मणि निकालने का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में आसानी से मिल जाता है। आज हमारे बीच 9 रत्नों का बड़ा महत्व है क्योंकि ये 9 रत्न हमारे 9 ग्रहों से संबंधित बताए जाते हैं। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि कौन सा रत्न किस ग्रह से जुड़ा हुआ है और उन रत्नों का प्रभाव और असर आखिर क्या है।

0: धरती के गर्भ में मिलने वाले रत्नों की तासीर बड़ी अद्भुत होती है। प्रकृति ने जो खजाना अपनी आगोश में सहेज कर रखा है वो ग्रह नक्षत्रों की विपरीत चाल से परेशान इंसान की विपत्तियों का समाधान बन जाता है। तो ज्योतिष विज्ञान में बाधाओं का परिहार माना जाता है। वही रत्न जब जौहरियों के पास पहुंचता है तो उनके लिए टकसाल बन जाता है। इन्हीं रत्नों का मोल भाव कर जौहरी धन कुबेर बन जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर रत्न का अपना एक साइंटिफिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और उसका अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों को आप कोई न कोई रत्न धारण किए हुए पाएंगे। कई लोग शौक से तो कई ज्योतिषीय सलाह के मुताबिक रत्नों को धारण करते हैं।
1: वैदिक ज्योतिष में रत्नों का विशेष महत्व है क्योंकि हर रत्न किसी न किसी ग्रह की कॉस्मिक एनर्जी को डिनोट करता है। ये रत्न आपको माता पृथ्वी या समुद्र के गर्भ से मिलते हैं और वहां से मिलने वाली ये दिव्य वस्तुएं कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाती हैं, आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी लाती है, अमुक ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी को आपके जीवन में संतुलित करती है, चैनलाइज करती है।
0: ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को हमेशा से ऊर्जा और शक्ति का अजस्त्र स्रोत माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रत्नों में कॉस्मिक एनर्जी समाहित होती है। हर रत्न की अपनी अलग एनर्जी होती है, अलग प्रभाव क्षेत्र होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नौ ग्रह का जिक्र किया गया है और हर ग्रह का हमारे जीवन में खास स्थान होता है। हर ग्रह को एक खास रत्न के माध्यम से दर्शाया जाता है जिसकी वजह से इन्हें नौ रत्न कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर रत्न में विशेष गुण होते हैं जो सही समय पर सही विधि से और सही उंगली में धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब आइए ये जानते हैं कि किस रत्न में कौन सा गुण होता है और उसे कब और कैसे और क्यों धारण करना चाहिए। पुखराज का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है तथा इसे सोने के साथ तर्जनी उंगली में धारण किया जाता है। मान्यता है कि पुखराज धारण करने से धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं। इसके साथ ही शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसे गुरुवार को धारण करने की ज्योतिषीय सलाह दी जाती है। पुखराज दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में मदद करने वाला रत्न भी माना जाता है। पन्ना का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। पन्ना को सोने के साथ कनिष्ठिका उंगली में धारण किया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक पन्ना धारण करने से निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि बढ़ती है। आईटी, मीडिया और लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये विशेष तौर पर लाभकारी माना जाता है। इसे बुधवार के दिन धारण करना विशेष लाभकारी बताया गया है। पन्ना से लोक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी की बात भी कही जाती है। साथ ही शेयर बाजार में निवेश के लिए इसे लाभकारी माना जाता है।
1: पन्ना जो एमरल्ड वो बुध को डिनोट करता है। ये विशेष रूप से जो मिथुन राशि और वर्गो साइन कन्या राशि के लॉर्ड होते हैं, आपकी एक्यूमन, बिजनेस एक्यूमन, आपकी ऑरेटरी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी अकाउंटिंग स्किल्स, मैथमेटिक्स, वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। आप इसको धारण करिए अपनी सबसे स्मॉल फिंगर में। ग्रीन कलर का स्टोन होता है, बहुत वाइब्रेंट कलर्स इसमें आते हैं और ग्रीन कलर में ही आप इसको पंच धातु
0: नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। माणिक्य को राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता का कारक माना जाता है। माणिक्य को रविवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। माणिक्य को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रत्न भी माना जाता है। नीलम को शनि ग्रह से जुड़ा रत्न माना जाता है। इसे मध्यमा यानी मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है। नीलम काफी संवेदनशील रत्न माना जाता है। माना जाता है कि इसे धारण करने के बाद अचानक या तेजी से धन लाभ होता है। नीलम के प्रभाव से करियर का ग्राफ तेजी से चढ़ता है। धारण करने वाले जातक में कर्मठता बढ़ती है। नीलम को शनिवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि नीलम साढ़े साती के दुष्प्रभाव को भी कम करता है।
1: शनि को स्ट्रांग करने के लिए आपको नीलम धारण करना है, लेकिन प्लैटिनम में, व्हाइट गोल्ड में, आप इसको गोल्ड में धारण नहीं करेंगे। और शनि आपके जीवन में कहीं ना कहीं करियर को बूस्ट करता है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि आपकी काल पुरुष की कुंडली में शनि दशम भाव मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी, आपके जीवन के लाभ के मार्ग को प्रशस्त करता है। जो लोग बिजनेस में, बिजनेस बेसिकली लैंड का बिजनेस कर रहे हैं, लोहे का बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और आपकी कुंडली में शनि वीक है और वेल प्लेस्ड, वेल हाउसेस को, गुड हाउसेस को दिखाता है, आप इसको पहन सकते हैं।
0: हीरा को शुक्र ग्रह से जुड़ा रत्न माना जाता है, इसे भी मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। हीरा विलासिता, फैशन और ब्यूटी व्यवसाय में सफलता का कारक माना जाता है। कला और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये विशेष तौर पर लाभकारी माना जाता है। हीरा को शुक्रवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। हीरा धारण करने से सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन स्तर में बढ़ोतरी की भी मान्यता है। मोती को चंद्रमा से जुड़ा रत्न माना जाता है, इसे कनिष्ठिका उंगली में धारण किया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक मोती मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करने वाला रत्न है। मोती धारण करने वाले जातकों की मानसिक स्थिरता बढ़ने की वजह से लोक व्यवहार में सुधार होता है। मोती को सोमवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि मोती जनसंपर्क और लोकप्रियता में बढ़ोतरी का कारक है। मूंगा का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है, इसे अनामिका यानी रिंग फिंगर में धारण किया जाता है। मूंगा साहस और पराक्रम बढ़ाने वाला रत्न माना गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक मूंगा धारण करने से भूमि, संपत्ति और रियल एस्टेट के कारोबार में सफलता मिलती है। मूंगा को मंगलवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मूंगा वर्दी वाली नौकरी में उत्थान और खेल जगत में सफलता दिलाने वाला रत्न भी माना जाता है। गोमेद का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है, इसे मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक गोमेद धारण करने से अचानक धन लाभ का योग बनता है। विदेश व्यापार या शेयर बाजार में सफलता मिलती है। गोमेद को शनिवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि राहु की महादशा में गोमेद धारण करने से अनिष्ट दूर हो जाते हैं। लहसुनिया का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है, इसे मध्यमा यानी मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है। लहसुनिया आध्यात्मिक उथल पुथल के दौर में विशेष लाभकारी माना जाता है। इसे धारण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और दुर्घटना का दुर्योग नष्ट होता है। लहसुनिया को मंगलवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोगों के लिए लहसुनिया रत्न विशेष तौर पर लाभकारी सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रत्न का प्रभाव या असर दिखाने का समय एक दूसरे से अलग होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ रत्न धारण करने के 5 से 7 दिनों के भीतर असर दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ रत्नों को अपना असर दिखाने में 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। रत्न काम कर रहा है कि नहीं, इसकी पहचान धारण करने वाले जातक को कई संकेतों के जरिए होने लगती है। रत्न अगर सही काम कर रहा है तो सबसे पहले मन शांत होने लगता है, तनावों में मन विचलित नहीं होगा, नींद बेहतर होगी, बड़े से बड़ा फैसला लेने में दिक्कत नहीं महसूस होगी, मानसिक और शारीरिक स्तर पर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी है।
1: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
0: आपको कितने लगेंगे?
2: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
3: There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we're listening. And our esteemed jury is going to judge that. The chief minister will adopt that.
2: Ab milkar hawa badlenge.
4: Khabrein kabhi raftaar se daudti hain to kabhi dheeme-dheeme pak rahi hoti hain. Khabrein kuch samaj ki soch dikhati hain to kuch

0: दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट। रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट। यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान। बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। ये दिल्ली हमारी है, इसलिए सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। सॉल्यूशन बताएंगे, पॉल्यूशन की जंग को लड़ेंगे। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ। अब मिलकर हवा बदलेंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा रिसर्च, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की रिपोर्ट, इलाज भी होगा आसान। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी बैन हुआ एनालॉग पनीर, 1 साल तक इसके भंडारण बिक्री और सप्लाई पर लगी रोक, लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। केरलम में 72वीं रोमांचक नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का मुकाबला, पुन्नमाड़ा झील में हुई ये प्रतियोगिता, 22 स्नेक बोट समेत 71 नावें हुई इसमें शामिल। बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइफ एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आउट, 4 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज, हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकेंगे दर्शक। चीन के चोंगकिंग में पहले फ्लावर सी लैंटर्न फेस्टिवल की दिखी रौनक, 68 आकृतियों से जगमग हुआ पूरा इलाका, 1000 साल के इतिहास की दिखी झलक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली

0: कम से कम।
1: विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रीनगर से निकली छड़ी मुबारक अनुष्ठान के साथ ही अंतिम पड़ाव पर पहुंची बाबा अमरनाथ की यात्रा। इस मौके पर महंतों और साधुओं के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भक्तिमय हुआ माहौल। श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना हुई पवित्र छड़ी मुबारक, जहां रात्रि विश्राम और अनुष्ठान के बाद चंदन वाड़ी के लिए निकलेगी यात्रा। 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचेगी छड़ी मुबारक, तभी होगा बाबा अमरनाथ की यात्रा का औपचारिक समापन। इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई थी 57 दिवसीय अमरनाथ यात्रा, अब तक 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। पूरी श्रद्धा और आस्था से जारी प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, धार्मिक यात्रा के 5वें जत्थे ने किए दर्शन पूजन। यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, श्रद्धालुओं को फूल मालाएं पहनाकर हुआ भव्य स्वागत, गूंज जयकारे। स्थानीय लोग भी पेश कर रहे हैं सेवा, सहयोग, भाईचारे की मिसाल, श्रद्धालुओं के लिए जलपान, भोजन, पेयजल समेत सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकल रहा जत्था भक्तों की यात्रा सुगम और सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है प्रशासन। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की यात्रा, रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भव्य झूलन उत्सव का हुआ आयोजन, सावन महीने में तीनों भाइयों के साथ रामलला को झुलाया गया झूला। झूलन उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा रहे मौजूद, श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आए लोग। रामलला का झूला झुलाने के लिए लगी होड़, धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भजन कीर्तन करते दिखे साधु संत। भगवान राम के उत्सव विग्रह को फूलों से सजे चांदी के हिंडोले में कराया गया विराजमान, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। रामनगरी में झूला उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में दिख रहा है खासा उत्साह, तीनों भाइयों के साथ रामलला के दर्शन का मिला सौभाग्य। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली में होगा मटकी फोड़ यानी MPL सीजन 2 का आयोजन, लड़के और लड़कियों की कुल 36 गोविंदा टीमों के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। मटकी फोड़ लीग का आधिकारिक एंथम सॉन्ग गोविंदा आला रे लॉन्च, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रोमी ने एंथम को दी है अपनी आवाज। मटकी फोड़ लीग के दौरान बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए आधिकारिक मैस्कॉट मटकू किया गया तैयार, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर मटकू MPL का देगा संदेश। सूरजमल बिहार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा इसका आयोजन, मटकी फोड़ लीग में खिलाड़ियों की ताकत, उनका संतुलन, रणनीति और टीम वर्क की होगी परीक्षा। आधुनिक खेल प्रतियोगिता की तरह मटकी फोड़ लीग को किया गया है डिजाइन, आयोजकों के मुताबिक IPL की तर्ज पर बेची जाएंगी MPL की टीमें। मंत्री असीम अरुण ने शीतला देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की समृद्धि की पूजा अर्चना। तमिलनाडु के वेल्लूर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, श्रीपुरम गोल्डन टेंपल में किए दर्शन पूजन। इस दौरान उनका पारंपरिक पूर्ण कुंभ स्वागत किया गया, मंदिर के अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित भी किया। कर्नाटक के तुमकुर में वेहमा लक्ष्मी उत्सव की धूम, मंदिर परिसर के फूलों से की गई भव्य सजावट। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन, देवी महालक्ष्मी से लिया सुख समृद्धि का आशीर्वाद। केरल में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का हुआ आयोजन, पुनमाड़ा झील में हुई है प्रतियोगिता। मुकाबले में 22 स्नेक बोट समेत 71 नावें हुई शामिल, भारी संख्या में शानदार बोट रेस देखने आए लोग। केरल की सबसे मशहूर सांस्कृतिक और खेल परंपराओं में से एक है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, 1952 में हुई थी इसकी शुरुआत। बस्ती में बेटे के अफसर बनने पर दिखा पिता का बादशाही अंदाज, हाथी पे बिठाकर बेटे का किया भव्य स्वागत। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे हुआ है अवनीश पांडे का चयन, इस उपलब्धि की खुशी में उनके पिता ने गाजे बाजे के साथ किया स्वागत का आयोजन। मुरादाबाद के सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए लिया गया बड़ा कदम, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब्स की स्थापना। प्रदेश में कुल 300 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और 48 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया ये विशेष कदम। बच्चों को एनिमेटेड वीडियो और इंटरैक्टिव स्क्रीन के जरिए आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई में रुचि बनाए रखने के लिए सरकार की पहल। टीबी की जांच और उसके इलाज में गोरखपुर एम्स को बड़ी सफलता, अब 6 हफ्ते नहीं सिर्फ 2 घंटे में मिलेगी टीबी की जानकारी। नई जांच तकनीक के जरिए करीब 2 घंटे में की जा सकती है संवेदनशील और दवा प्रतिरोधी टीबी की पहचान, जल्द शुरू किया जा सकेगा मरीजों का सटीक इलाज। महाराष्ट्र में अब पुलिस फोर्स के साथ रह सकेंगे रिटायर हो चुके पुलिस डॉग्स, महाराष्ट्र सरकार ने दी इसके लिए मंजूरी, गृह विभाग उठाएगा इसका खर्च। निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकालत के अनुभव को 3 साल से घटा के 1 साल किया, युवा वकीलों ने फैसले का किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह की शानदार पहल, इसके तहत आयोजित 3 दिन की स्पेशल लोक अदालत के पहले दिन किया 400 से ज्यादा मामलों का निपटारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किए निर्देश, विधानसभा और सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। अधिकारियों कर्मचारियों और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर, बिना पुष्ट की गई पोस्ट या टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। बिहार से 1 सितंबर को चलेगी भारत गौरव ट्रेन, धार्मिक पर्यटन पर जाने वालों के लिए सुनहरा मौका। एक यात्रा में 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के अलावा एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं का कराया जाएगा भ्रमण। भारत गौरव ट्रेन में स्लीपर का किराया 18,160 रूपए, थर्ड एसी का 32,550 रूपए और सेकेंड एसी का 39,425 रूपए प्रति व्यक्ति रखा गया है किराया। पैकेज में रेल यात्रा के अलावा ठहरने, स्थानीय परिवहन और बीमा जैसी सुविधाएं हैं शामिल। यात्रा के लिए बिहार के 11 शहरों से बोटिंग की सुविधा। सेनको गोल्ड एवं डायमंड्स का नया TI-22 कलेक्शन लॉन्च, अभिनेता हर्षवर्धन राणे को बनाया गया कैंपेन का चेहरा। दरभंगा के लहरिया सराय ऑडिटोरियम में बिहार ग्रामीण बैंक की ओर से मुखिया आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों ने लिया इसमें हिस्सा। सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और मजबूत बिहार का लक्ष्य, ग्रामीणों तक बैंकिंग सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दी गई जानकारी। कृषि लोन, जीविका सहायता समूह लोन और एमएसएमई के जरिए स्वरोजगार की दी गई उन्हें जानकारी, खराब क्रेडिट वाले लोगों के लिए भी लोन से जुड़ी प्रक्रिया समझाई गई। इंदौर के होटल सयाजी में फूड सेफ्टी जांच में पाई गई गड़बड़ियां, जिला प्रशासन ने होटल किचन को किया सील। TCS 2026 बैच के इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम में समापन समारोह में शामिल हुए त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में नई संभावनाओं का लाभ उठाने का दिया संदेश। रीवा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए, देवदूत बनी SDRF की टीम, 1,000 से ज्यादा लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। SP कलेक्टर ने किया बोट से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, हर मुमकिन मदद का दिया आश्वासन। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, पानी में डूबे सभी घाट, बंद की गई बोट सेवा। पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण बड़ा रामगंगा नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट मोड पर। दिल्ली में H1N1 और फ्लू को लेकर बड़ी सतर्कता, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने JP नड्डा के साथ की बैठक। बारिश और बादलों के बीच हुई दिल्ली NCR की सुबह, रिमझिम बरसात से गर्मी से मिली राहत। सुबह बारिश के फुहार से उमस से मिली राहत, कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार थमी। बार कुल

रहेगा वीकेंड। नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम में भी मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा में भी सुधार, एक्यूआई संतोषजनक श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली एनसीआर सहित देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। फिल्म आवीर कर्ण का टीजर जारी, 4 दिसंबर को हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी भव्य लाइव एक्शन फिल्म। वीर पहाड़ी और अपार शक्ति खुराना की फिल्म प्रेम कीटाणु का पहला गाना रिलीज, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी ये फिल्म। सिनेमाघरों में फिर लौटेगी एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स डूम्सडे से सीधे कनेक्ट करने के लिए नए सीन और फुटेज के साथ री रिलीज होगी 4 मिनट लंबी फिल्म। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज होगी बॉबी देओल की फिल्म बंदर, 28 अगस्त से Z5 पर होगी स्ट्रीम। अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड गैब्रियला संग रचाई शादी, गोवा में कराया मैरिज रजिस्ट्रेशन। सलाइव सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म जेलर 2 का पहला गाना हुआ रिलीज, जिसमें शामना कासिम के साथ नजर आ रहे हैं रजनीकांत। एक्टर कुणाल खेमू की अगली डायरेक्टोरियल फिल्म वाइफ का टीजर रिलीज, इस एक्शन कॉमेडी फिल्म प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर आएंगे नजर। गोविंदा के बेटे हर्षवर्धन हॉरर कॉमेडी हीरो की हीरोइन से करेंगे बॉलीवुड में अपना डेब्यू, साजिद खान के निर्देशन में बन रही फिल्म को शोभा कपूर, एकता आर कपूर और अमर बुटाला मिलकर कर रहे हैं प्रोड्यूस। यश की फिल्म टॉक्सिक ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में की शानदार कमाई, एक ही दिन में करीब 13 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज की। बॉक्स ऑफिस पर रोज सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है इमरान हाशमी की आवारापन 2, अब मैज 8 दिनों में 120 करोड़ रुपए के बेहद करीब पहुंची है फिल्म। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया दूसरा स्थान, 88.05 मीटर भाला फेंक कर जीता सिल्वर मेडल। नीरज ने दूसरे प्रयास में पिछले एक साल का सबसे बेहतर थ्रो फेंका, ये उनके सीजन का भी सबसे अच्छा थ्रो रहा। खिताब जीतने वाले श्रीलंका के रुमेश पथराजी से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहा नीरज का थ्रो, पथरागी ने 88.14 मीटर दूर फेंका भाला। पथरागी ने पिछले महीने ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जीता था गोल्ड और नीरज को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। एथलेटिक्स एमा के नाम से भी जानी जाती है लुसाने डायमंड लीग, साल 2026 एथलेटिक्स सीजन में यह नीरज चोपड़ा का तीसरा कॉम्पिटेटिव इवेंट था। कल कोलंबो में खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच, इस मैच में भी इंतजार में कई नए रिकॉर्ड्स। दो मैचों की सीरीज में भारत को पहले ही 1-0 से बढ़त, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकिल में 53.33% पॉइंट के साथ 5वें स्थान पर टीम। इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पूरे कर सकते हैं टेस्ट में 3000 रन, इस कीर्तिमान से महज 7 रन दूर है गिल, फिलहाल उनके नाम 2993 रन। इसके अलावा टेस्ट में 50 छक्के भी पूरे कर सकते हैं गिल, कोलंबो में 6 छक्के लगाते ही उपलब्धि हासिल कर लेंगे गिल, फिलहाल उनके नाम है 47 सिक्स। टेस्ट 400 चौके पूरे करने से महज एक कदम दूर रविंद्र जडेजा, अभी उनके नाम 399 चौके, साथ ही 49 कैच ले चुके जडेजा, एक कैच लेते ही टेस्ट मैचों में पूरे करेंगे 50 कैच। चीन के हेनान में शुरू हुआ वाटर स्प्लैश फेस्टिवल, मस्ती में डूबे सैलानी, विदेशी पर्यटकों ने पानी में जमकर उठाया लुत्फ, पानी की छींटों से दिया गया आशीर्वाद, ली समुदाय की परंपरा ने लिया बड़े उत्सव का रूप, 8 देशों के पर्यटक बने फेस्टिवल का हिस्सा, विदेशी मेहमानों ने स्थानीय लोको संघ की जमकर मस्ती, वाटर शो ने बढ़ाई फेस्टिवल की रौनक, सड़कों पर पिचकारी में पानी भरकर निकले लोग, पारंपरिक कला ने जीता पर्यटकों का दिल, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पार्टी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, स्टैंड अप कॉमेडी ने भी खूब हंसाया। What is

फ्लैश फेस्टिवल ने बढ़ाया सांस्कृतिक मेल जोल, पानी के त्योहार ने विदेशी पर्यटकों को भी लुभाया। बीजिंग वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में 311 नए प्रोडक्ट्स किए गए लॉन्च, 26 देशों के 300 से ज्यादा कंपनियों ने की इसमें शिरकत, प्रदर्शनी में 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रदर्शित। रोबोटिक मदरशिप बनी कॉन्फ्रेंस का आकर्षण, रोबोटिक मदरशिप में होंगे ह्यूमनॉइड और ड्रोन, मुश्किल हालात में

0: मदद देगी मदरशिप। मदरशिप में बैटरी स्वैपिंग की सुविधा उपलब्ध, रोबोटों को मिलेगा मोबाइल कंप्यूटिंग सपोर्ट, विमान बचाव में भी काम आएगी रोबोटिक मदरशिप। अग्निशमन और मेडिकल रेस्क्यू में भी इसका किया जा सकेगा उपयोग, इस साल के अंत तक उत्पादन होगा शुरू, जून साल 2027 तक व्यावसायिक इस्तेमाल का लक्ष्य। रोबोटिक ग्लव ने खींचा दर्शकों का ध्यान, ग्लव बेहद सूक्ष्म स्पर्श को भी कर सकता है महसूस, नई तकनीक से मानव हाथ की सटीक मैपिंग। चीन के बीजिंग में एस रोबोटिक्स ने जताई बड़ी उम्मीद, एम्बॉडीड एआई को मिल सकता है चैट जीपीटी मोमेंट, साल 2027 के अंत तक बड़ा एआई ब्रेक थ्रू संभव। एस रोबोटिक्स के चेयरमैन ने बताई भविष्य की तस्वीर, वर्ल्ड मॉडल से रोबोट होंगे ज्यादा स्मार्ट, रोबोट्स को समझ आएगा वास्तविक दुनिया का डेटा। एआई से रोबोट सीखेंगे नए काम करना, वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में रोबोट शेल्फ से सामान उठाते हुए नजर आए, रोबोट ने ड्रिंक्स उठा के सेल्फ चेकआउट किया। रोबोटिक आर्म ने बैग में रखा पेन, खुद ही बंद की बैग की जेब रोबोट ने कपड़े तह करने का दिया डेमो। रोबोट ने स्क्रू को अलग अलग बॉक्स में छाटा, कैट लिटर बॉक्स साफ करता हुआ दिखा रोबोट, रोबोट ने पैकिंग और सामान रखने का भी काम किया। बीजिंग में बायोनिक रोबोट्स ने सभी को किया हैरान, बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं बायोनिक रोबोट, चेहरे के हाव भाव ने खींचा सभी का ध्यान। यूबीटेक U1 में 88 मोशन जॉइंट्स, बायोनिक गर्दन से और असली दिखता है ये रोबोट, इंसानी त्वचा जैसी सिलिकॉन कवरिंग। यूबीटेक U1 को मिले 13,000 से ज्यादा प्री ऑर्डर्स, बायोनिक रोबोट की शुरुआती कीमत करीब 99,000 युआन। बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में फ्यूजी ह्यूमनॉइड रोबोट की हुई एंट्री, खास कामों के लिए तैयार किए गए हैं ये रोबोट्स, ग्रुप में फ्यूजी रोबोट्स दिखाया अपना दम, इंसानों की पहचान भी कर सकते हैं फ्यूजी रोबोट्स, असामान्य गतिविधि पर देंगे अलर्ट, इंटेलिजेंस पेट्रोलिंग में होंगे काफी मददगार साबित।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: कैसे हुआ ड्रोन का विकास, किस ड्रोन में क्या है खास, भारतीय सेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं, खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है, ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: तो चलिए बाबा अमरनाथ की बात कर लेते हैं, जिसकी वार्षिक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है, पवित्र छड़ी मुबारक श्रीनगर से पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी है, इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक समापन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। देखिए, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पवित्र छड़ी मुबारक 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी। पवित्र गुफा में पूजा अर्चना के साथ ही इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा का

0: औपचारिक रूप से समापन भी माना जाएगा और यात्रा अगले वर्ष तक के लिए अब विराम लेगी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरलम की। केरलम में आज प्रसिद्ध 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किया गया। पुन्नमाड़ा झील में आयोजित इस दौड़ में लोगों ने पूरे उत्साह और रोमांच के साथ हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रतियोगिता में कई तरीके की नावों को शामिल किया गया, लेकिन सर्प नौकाओं ने लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया और लोगों ने सबसे ज्यादा इन्हीं को पसंद किया। इस साल प्रतियोगिता में करीब 70 से 71 नौकाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें 21 से 22 चुंडन नौकाएं भी शामिल हैं। छोटी नौकाओं के मुकाबले की शुरुआत की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने नौका चालकों का खूब उत्साह भी बढ़ाया और ये तस्वीरें आपको आपका मन मोह जरूर लेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट की भी यहां पे बात कर लेते हैं। तो बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आज रिलीज हो गया है। फिल्म में महाभारत के महान योद्धा कर्ण की कहानी को बड़े भव्य अंदाज में दिखाया गया है। महावीर कर्ण 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि फिल्म को हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। यानी देश भर के दर्शक इस फिल्म को अपनी पसंदीदा भाषा में देख सकेंगे और महान योद्धा कर्ण की कहानी को महसूस भी कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीन की बात कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं चीन में रोशनी के उत्सव की शानदार तस्वीरें। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग के फुलिंग जिले में पहला फ्लावर सी लैंटेन फेस्टिवल मनाया गया है। इस दौरान यहां पर जगह जगह 68 ऐसी आकृतियां लगाई गई जिनसे पूरा इलाका जगमग हो गया। खास तौर से सीढ़ीदार फूलों के खेतों, झील के किनारे और जंगल के रास्तों पर रोशनी इन आकृतियों से बेहद शानदार और खूबसूरत नजारा देखने को मिला। ये फेस्टिवल इलाके की खास पहचान और इसके हजारों साल पुराने इतिहास को इस तरह की सजावट के जरिए पेश करता है। और देखिए, खास बात यह भी है कि इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि 100 से ज्यादा कारीगरों ने इन्हें पूरी तरह से अपने हाथों से बनाया है। इन आकृतियों को बनाने में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सिचुआन की अनोखी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इस लाइट डिस्प्ले में पत्थर की मछली, अलग अलग दौर के विद्वानों के शिलालेख और पानी से जुड़े नक्काशी के पैटर्न्स को दिखाया गया है। तो चलिए, हांगकांग का आसमान मशहूर क्विसी फेस्टिवल के मौके पर ड्रोन की रोशनी से जगमगा उठा। इस फेस्टिवल में 2000 ड्रोनों ने क्विटोरिया हार्बर के ऊपरी चीनी लोक कथा की खूबसूरत तस्वीरें पेश की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ड्रोन से आसमान में मैगपाई ब्रिज की आकृति बनाई गई। ये वही पुल है जो चीनी लोक कथा के नियोलांग और वीवर गर्ल को साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा ड्रोन से प्यार में डूबे जोड़ों और खिलते हुए विशाल गुलाबों की आकृतियां भी इसमें खास तौर पर बनाई गई हैं। आसमान में बदलती इन तस्वीरों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कुछ लोगों को तो यह भी लग रहा है कि एआई जनरेटेड है, लेकिन हम आपको बता दें ये बिल्कुल रियल है। क्विक्वी फेस्टिवल चीनी चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने से 7वें दिन मनाया जाता है। करीब 2000 साल पुरानी ये प्रेम कहानी आज भी लोगों को काफी पसंद आती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है? घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए? क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी।
9: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
8: आपको कितने लगेंगे?
10: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
11: There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we've listening. And our esteemed jury is going to judge that. The chief minister will adopt that.
10: अब मिलकर हवा बदलेंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
13: गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा रिसर्च, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की रिपोर्ट, इलाज भी होगा आसान। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी बैन हुआ एनालॉग पनीर 1 साल तक, इसके भंडारण बिक्री और सप्लाई पर लगी रोक, लोगों के हेल्थ और ध्यान को रखते हुए लिया गया फैसला।

0: भारत समेत 71 नावें हुई शामिल। बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आउट, 4 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज। हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकेंगे दर्शक। चीन की चोंकिंग में पहले फ्लारसी लांटिंग फेस्टिवल की दिखी रौनक, 68 आकृतियों से जगमग हुआ पूरा इलाका, 1000 साल के इतिहास की दिखी झलक।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।

0: नए दौर का सबसे घातक हथियार। युद्ध की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखता है। रण क्षेत्र में जब यह उतरता है तो सरहदें छोटी लगने लगती हैं। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने की ताकत है इसके पास। मॉडर्न वॉरफेयर का यह हथियार है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे दुनिया ड्रोन के नाम से जानती है।
1: हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से इसराइल ने हुती हमास और ईरान पर अपनी ड्रोन ताकत का इस्तेमाल किया। रूस और यूक्रेन वॉर में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए ड्रोन का ही सहारा ले रहा है और अब भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत भी ऐसे ऐसे ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है जिनके सामने दुश्मन का टिक पाना नामुमकिन होगा।
0: ड्रोन साइज में छोटे होते हैं, इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। साथ ही दुर्लभ इलाकों में भी ये गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं और यही वजह है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है। ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका यह है कि ड्रोन में हथियार या फिर विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देते हैं। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में तब्दील कर दिया जाए, यानी खुद ही विस्फोटक के साथ टारगेट से टकरा जाए, जिसे कैमिकेज यानी कि सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है।
2: आज ड्रोन बहुत ही आधुनिक हो गए हैं और ड्रोन एक घातक हथियार है। इसके अंदर आपके पास कामिकाजी ड्रोन भी हैं जो कि सुसाइडल ड्रोन माने जाते हैं, और इसके अंदर सर्विलेंस वाले ड्रोन भी हैं जो रेकी एंड सर्विलेंस करते हैं। इसके पास वो ड्रोन भी हैं जो जाके डीप इनसाइड दुश्मन के इलाके में एक प्रकार से सटीक वार कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है, ड्रोन जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वेपन है आज मॉडर्न वर्ल्ड वॉर में।
0: भारत के पास कई एडवांस किस्म के ड्रोन मौजूद हैं जो दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकते हैं। इसमें केमिकल ड्रोन की ताकत सबसे खास है, इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। दहशत गर्दों के ट्रेनिंग सेंटर पर बारूद बरसाने से लेकर घात लगाए बैठे दुश्मनों को हमेशा के लिए खामोश करना केमिकल ड्रोन के लिए बाएं हाथ का काम है। आकार में छोटा होने के बावजूद ये बड़ी तादाद में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। भारतीय सेना के पास हार्पी ड्रोन की ताकत है जिसे इसराइल से लिया गया है। हार्पी सुसाइड ड्रोन है जिसे इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। साल 1989 में पहली बार हार्पी ड्रोन का परीक्षण किया गया था जिसमें यह हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज ये भारतीय सेना की ताकत का हिस्सा बन चुके हैं। हार्पी को दुश्मन के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एंटी रेडिएशन सीकर लगाया गया है जिसकी मदद से रेडिएशन के स्रोतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये रेडियो सिग्नल्स का पता लगाकर हमला करता है। इसे ऑटोनॉमस और मैनुअल दोनों मोड पर ऑपरेट किया जा सकता है।
2: वो बहुत ही आधुनिक है, वो एक प्रकार इसराइल का बना हुआ है, भारत के पास है, और वो एयर डिफेंस सिस्टम को जो है एक प्रकार चकमा दे देता है, उसको एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता इन एनी वे। क्योंकि ये सच्चाई है कि जो ये ड्रोन भारत ने लिया इसराइल से, बहुत ही सटीक हमला करता है और एक ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, लो हाइट पे चलता है और रडार इसको पकड़ नहीं पाते।
0: आरपी ड्रोन तो ट्रक और जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, ये खुद टारगेट को डिटेक्ट कर उसे तबाह कर देता है। हार्पी ड्रोन लगातार 6 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर तक है, जिससे सेना को बिना किसी जोखिम के दुश्मन को निशाना बनाने में मदद मिलती है। स्पीड की बात की जाए तो ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है और ये अपने साथ 32 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। दिन हो या रात किसी भी समय हमला करने में सक्षम ये ड्रोन हमले के बाद दुश्मन के हाथ नहीं आता, क्योंकि ये अपना मिशन पूरा करने के बाद खुद ही नष्ट हो जाता है और यही वजह है कि इसे फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी में रखा जाता है।
1: भारत के पास इजराइल से आया एक और ड्रोन है जिसका नाम है हेरोन और हेरोन का असली काम है निगरानी करना, जानकारी जुटाना और युद्ध के मैदान में ये दुश्मन की हर खुफिया जानकारी का पता लगा सकता है, सर्वेलेंस का काम भी आसानी से कर सकता है।
0: हेरोन इतना शक्तिशाली है कि इसका इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक तक में किया जा सकता है। अभी भारत के पास हेरोन मार्क 2 है और ये करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक बार में लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रेंज करीब 3000 किलोमीटर है और ये 250 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है।
2: देखो हेरोन ड्रोन भी इजराइल का है, बहुत ही अच्छा ड्रोन है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी इंड्योरेंस ज्यादा है और ये जो है सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रेकी के लिए भी किया जाता है और दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है।
0: सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाला ड्रोन है जो हर मौसम में अपना मिशन पूरा करने में सक्षम है। इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जिससे हेरोन ड्रोन को किसी भी तरह से जैम नहीं किया जा सकता। हेरोन ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरा लगे होते हैं, जैसे कि थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में अंधेरे में देखने में इसकी मदद करता है। इसके अलावा विजिबल लाइट एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस जो कि दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है, साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के रडार सिस्टम मौजूद हैं। हेरोन ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक या फिर इंफ्रारेड सीकर मिसाइल को दे सकता है, यानी सीमा के इस पार से ड्रोन से मिले सटीक टारगेट पर हमला किया जा सकता है।
1: हाल के सालों में रक्षा क्षेत्र में ऐसी छलांग लगाई है जिसने न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन को बदला है बल्कि इंटरनेशनल भी भारत की इमेज और ज्यादा अच्छी हो गई है। भारत अपने ही देश में ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे ड्रोन की ताकत को बना रहा है जो दुश्मन को मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकते हैं।
0: अब भारत सिर्फ रक्षा ही नहीं करता बल्कि आसमान पर नियंत्रण भी रखता है। भारतीय सेना ने खरगा कामिकेज ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये ड्रोन खुफिया और निगरानी भूमिकाओं में अहम है। भारतीय सेना ने इस ड्रोन को मदर ड्रोन का नाम दिया है जिसके साथ दो छोटे ड्रोन भी अटैच किए जाएंगे। ये ड्रोन एमुनेशन यानी कि RDX 7 लेकर उड़ने में सक्षम है। दिन हो या रात, तूफान हो या बरसात, हर हालात में अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम है भारत का खरगा कैमिकेज ड्रोन। GPS नेविगेशन सिस्टम और हाई डेफिशिएंसी कैमरा से लैस खरगा ड्रोन 700 ग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है।
3: देखिए 700 ग्राम का जो एक्सप्लोसिव होता है वो काफी कारगर होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। अगर जिस इलाके में वो गिरेगा वहां पे तबाही मचाएगा और तकरीबन 20 से 25 मीटर के दायरे में जो भी कुछ होगा उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। देखिए इसमें एक बख्तरबंद गाड़ी या एक ट्रूप जो टैंक होता है वो नुकसान हो सकता है। अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी तो वो बिल्डिंग धाराशाही हो सकती है। अगर ट्रूप सेन ओपन है, अगर वहां गिरता है तो पूरे पूरे जो प्लटून है, जो सेक्शन है, वो वहां तबाह हो सकता है।
0: में के ड्रोन आर्मी के ग्राउंड ऑपरेशन के समय दुश्मन की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ये ड्रोन लंबे समय तक टारगेट वाले इलाके में उड़ सकता है। करगा की रेंज करीब 1.5 किलोमीटर है और ये 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। खड़गा के एमिकेस ड्रोन की खासियत है कि ये वजन में बेहद हल्का है, क्विक लॉन्च और हवाई टारगेट करने में भी आसान है।
3: जो खड़गा कामिकोजी ड्रोन है वो एक हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन है। ये लो फ्लाइंग करता है जिससे रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसमें HD कैमरा लगा रहता है। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और सर्वेलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
0: करगा केमिकल्स ड्रोन की और खास बात यह है कि यह रडार की रेंज में आए बगैर दुश्मन या उसके ठिकानों को तबाह कर सकता है। अगर दुश्मन ने इसे देख भी लिया तो वो इसके पास दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग के लिए जवाबी उपाय भी है।
3: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग की जब हम बात करते हैं तो वो उस फ्रीक्वेंसी बैंड को जैम करता है जिसपे ये ड्रोन ऑपरेट करता है। और इसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि इसमें उसका काउंटर मेजर अवेलेबल है। ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कर सकता है स्पेक्ट्रम टेक्निक द्वारा, या इसका एंटीना जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो जैमर को बरखिलाफ काम किया जा सकता है। और तमाम तरीके के एंटी जैमिंग मेजर्स हैं उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर दुश्मन चाहे इसको डिस्ट्रॉय करना या इसको मिसगाइड करना तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि रडार इसको कैच नहीं कर सकता, जैमर इस पे इफेक्टिव है नहीं।
0: युद्ध के मैदान में ड्रोन ने एंट्री लेते ही अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ड्रोन को किसने तैयार किया और कब तैयार किया। ड्रोन बनाने का क्रेडिट इराकी मूल के अमेरिकी इंजीनियर इब्राहिम करीम को जाता है। इब्राहिम करीम ने पहला ड्रोन इजरायली सेना के लिए साल 1973 में योम कपूर वॉर के समय तैयार किया था। आज ये ड्रोन कई कैटेगरी की तरह कई रूप ले चुका है। सबसे पहले ड्रोन की कैटेगरी और उनके इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। पहला है नैनो ड्रोन। 250 ग्राम क्षमता वाले इस ड्रोन का इस्तेमाल हॉबी टॉय से लेकर स्पाई कैमरा के लिए होता है। अगला है माइक्रो ड्रोन। इसकी क्षमता 2 किलो तक की होती है। इसका इस्तेमाल मैपिंग और सर्वे के लिए किया जाता है। स्मॉल ड्रोन की क्षमता 2 किलो से 25 किलो तक है। इसका इस्तेमाल ज्यादा दूरी तक मैपिंग और सर्वे करने में होता है। वहीं मीडियम ड्रोन की क्षमता 25 किलो से लेकर 150 किलो तक होती है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में सामान की डिलीवरी करने में होता है। हैवी ड्रोन की बात करें तो ये 150 किलो से ज्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में होता है। ड्रोन अपने छोटे आकार और लो फ्लाइंग की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आते, लिहाजा सवलान से लेकर अटैक में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। रक्षा जानकारों का मानना है कि आने वाले सालों में युद्ध का तौर तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। यहाँ पर सैनिकों की जगह रोबोट्स लेंगे, यानी कि तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। रोबोट्स का इस्तेमाल होगा, हवाई हमलों का इस्तेमाल होगा। ड्रोन की ताकत आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि युद्ध इसी तरीके से लड़े जाएंगे। और इसी को समझते हुए भारत भी अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। भारत खुद को तकनीकी रूप से इतना सशक्त बना रहा है कि वो युद्ध के मैदान में दुश्मन को पटखनी दे सके।
1: दुनिया के ज्यादातर देश समझ चुके हैं कि ड्रोन ही वो हथियार है जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, यानी जिसका ड्रोन जितना ताकतवर होगा युद्ध में जीत उसी की सुनिश्चित होगी। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत तैयार है और वो अपनी तैयारियों को धार दे रहा है।
0: भारतीय सेना को लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी कि आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 मिल चुका है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारत ने इसे लिया है और अब ये हमारी सेना का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
1: भारत में तैयार पहला स्वदेशी लॉयटर म्यूनिशन नागास्त्र 1 ड्रोन है,
0: इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि आसानी से सीमा पर पनपती साजिशों को राख में मिला सकता है। आत्मघाती ड्रोन को साइलेंट मोड में 1200 मीटर की ऊंचाई से ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। नागास्त्र एक अपने साथ करीब 2 किलो एक्सप्लोसिव लेकर उड़ सकता है, जो 15 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। लॉजिंग मेनुएशन एक एरियल वेपन सिस्टम है। ये ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और कमांड मिलते ही आत्मघाती हमला कर देते हैं। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ड्रोन अपने साथ 2 से ज्यादा ग्रेनेड लेकर उड़ते हैं। अब जरा सोचिए कि बॉर्डर पर दुश्मन घात लगाए बैठा हो और घुसपैठ की फिराक में नागास ड्रोन हमला कर दुश्मन के परखचे उड़ा दे।
2: देखो, नागशस्त्र ड्रोन जो है ये एक भारत ने अपने इंडिजिनियसली बनाया है और इसके अंदर जो सामान इस्तेमाल किया गया 75% जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत बना है और ये एक कामिकाजी ड्रोन है और एक ये गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर। ये एक छोटा ड्रोन है जो कि मिक्सचर है एक प्रकार से आपका मिसाइल और यूएवी का। ये 30 kg के करीब है, ये पैक्ड ले जाया जा सकता है और इसकी 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट खसूसियत हैं। एक तो ये ऑलमोस्ट 100% अपने टारगेट को हिट करता है और ये लॉटरिंग अम्यूशन है। ये एक प्रकार डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है दुश्मन से, बिकॉज ये जमीन के बहुत नजदीक उड़ता है और ये 15 किलोमीटर तक जो वार कर सकता है और जो 30 किलोमीटर का इसका दायरा है और ये एक प्रकार से उस इलाके के अंदर लॉटर करता है और उसके बाद जब टारगेट को जीपीएस की तरह से सिलेक्ट कर लेता है।
0: नागास ड्रोन एक सुसाइडल ड्रोन है जिसकी ताकत और नजरों से बचना दुश्मन के लिए आसान नहीं होता। ये ड्रोन खुद को खत्म कर दुश्मन का सर्वनाश कर सकता है।
2: कामिकाज़ी ड्रोन बोलते हैं जिसको सुसाइडल ड्रोन भी बोलते हैं। तो ये ड्रोन जो है एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है कि ये एक प्रकार अपने टारगेट को जाके हिट करता है, अपने आप भी बर्बाद हो जाता है और टारगेट को भी बर्बाद करता है। देखो, ये चली थी प्रथा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस प्रकार से जापानीज थे वो अपना छोटा एयरक्राफ्ट लेके बड़ी बड़ी शिप है उसके ऊपर हमला करते थे, जाके उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, खुद तो एक्सप्लोड हो जाते थे मगर पूरे शिप को बर्बाद कर देते थे। तो ये सच्चाई है, इसीलिए इसका नाम कामिकाज़ी ड्रोन पड़ा है। और ये एक जो कामिकाज़ी ड्रोन है वो बहुत ही ज्यादा पुख्ता है और वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और वो 100% अपने टारगेट को हिट करके खुद भी जो है बर्बाद होते हैं मगर टारगेट को बर्बाद कर देते हैं।
0: नागास ड्रोन को युद्ध क्षेत्र में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। इसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर सिस्टम या फिर हाथ से भी लॉन्च किया जा सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन का वजन करीब 10 किलो है जो आसानी से 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है और अगर टारगेट न मिले तो ये वापस भी आ जाएगा। पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सकती है।
2: ड्रोन्स हैं, अगर वो सुसाइडल हैं, अगर वो अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम नहीं है या टारगेट जो है मूव कर जाता है तो उसके बाद उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सकता है पैराशूट की मदद से, तो उसको रिट्रीव किया जाता है। हम बात कर रहे थे नागशस्त्र की, उसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि उसके अंदर वो अपने टारगेट को खुद सेलेक्ट करता है, वो जो एरिया है उस पर लॉयटर करता है और उसके बाद जब वो जीपीएस से टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है तो फिर जाके टारगेट को हिट करता है और टारगेट जो है 100% के करीब बर्बाद हो जाता है। इसकी एक्यूरेसी 2 मीटर तक की है। तो ये है कि जो सुसाइडल बॉम्ब्स हैं इनको जो कामिकाज़ी ड्रोन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर ये इनका मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है या मिशन अबॉर्ट हो जाता है तो इसको वापिस भी बुलाया जा सकता है।
0: जीपीएस एनेबल नागास ड्रोन 2 मीटर की सटीकता के साथ किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है।
4: Once we manually feed the target area, or it can automatically also acquire the target, it dives onto the target and it destroys the target along with itself. The accuracy of this particular equipment is less than 2 meters that we were able to achieve.
0: Ground control system aur ground data terminal ki madad se Nagastra ko control kiya jayega. Dushman dikha nahi ki uski tabahi ka countdown shuru.
1: नागास्त्र दरअसल एक फिक्स विंग ड्रोन है जिसके मिडल में विस्फोटक रख के इसे दुश्मन पर हमला किया जा सकता है और इसे ट्राइपॉड या फिर हाथ से भी उड़ाया जा सकता है। फिलहाल नागास्त्र 2 पर भी काम चल रहा है जो नागास्त्र 1 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। नागास्त्र की अगर बात की जाए तो ये 25 किलोमीटर तक और 90 मिनट तक उड़ान भर सकता है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम श्वेता झा के साथ, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: दशकों बाद बन रहा है विशेष संयोग, राखी पर चंद्र ग्रहण, क्या होगा असर, रक्षाबंधन का ग्रहण योग, देखिए शाम 7:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है, घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए, क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: मैचिंग म्यूनिशन या आत्मघाती ड्रोन को केमिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। सुसाइड ड्रोन को केमिकेज कहे जाने की भी एक दिलचस्प कहानी है। केमिकेज ड्रोन का नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जापानी केमिकेज पायलट से लिया गया था, जिन्होंने जानबूझकर विस्फोटक से भरे विमान को दुश्मन के ठिकानों पर गिराकर आत्मघाती हमले किए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के करीब 19% केमिकेज हमले पूरी तरह से सफल रहे। जापान ने मित्र देशों के हवाई हमलों को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया था। केमिकेज दरअसल ऐसा सटीक हमला करता है कि जिससे दुश्मन का पूरी तरह से खात्मा हो सके। जापान की केमिकेज दस्तों को बनाने की भी एक खास वजह थी। दूसरे विश्व युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही जापान की सेना जब कई अहम युद्ध हार चुकी थी, जापानियों के कई बेहतरीन पायलट्स मारे जा चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के कई विमान पूरी तरह से तबाह हो चुके थे और उस समय जापान के पास इतना समय नहीं था कि वो अपने पायलट्स को फाइटर जेट की ट्रेनिंग देता और ऊपर से उनकी औद्योगिक क्षमता भी काफी कम हो चुकी थी और यहीं से शुरुआत हुई केमिकेज रणनीति की। हार, कब्जा और शर्म की जगह मौत की परंपरा जापानी सैन्य संस्कृति में गहराई से समाई है। समुराई जीवन और बुशिडो कोड ये कहता है कि हार से बेहतर है कि मौत को गले लगा ले। ऐसी मृत्यु को वफादारी और सम्मान माना जाता है। केवल केमिकेज ही नहीं, जापान ने आत्मघाती गोताखोरों का भी इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि जापान का पहला केमिकेज ड्रोन मिशन 13 सितंबर 1944 को हुआ था। नोग्रोस द्वीप पर जापानी सेना ने 31वें फाइटर स्क्वाड्रन के पायलट के एक समूह ने आत्मघाती हमला करने का फैसला किया। इसके लिए लेफ्टिनेंट ताकेशी कोसाई और एक सार्जेंट को चुना गया। दो लड़ाकू विमानों में 200 किलोग्राम के बम लगाए गए। पायलट्स ने सुबह सबसे पहले उड़ान भरी ताकि वो अपने टारगेट से टकरा सके। मिशन पर निकला आत्मघाती विमान और पायलट भी कभी वापस नहीं लौटे।
1: सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर आप देखें कि जो बड़ी बड़ी शिप थी वो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा थी समुद्र की लड़ाई में और उनको बर्बाद करना इतना आसान नहीं था। और जो जापान ने एक नई स्ट्रेटजी निकाली थी जिसको बोलते थे कामिकोजी, वहीं से नाम आया था कि एक छोटे एयरक्राफ्ट में जो जापानीज पायलट थे वो अपना जहाज ले जाके और जो बड़ी शिप थी उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, तो खुद तो बर्बाद हो जाते थे मगर पूरे बड़े शिप को उन्होंने बर्बाद किया। इस प्रकार से अगर आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जापानीज के ने काफी नुकसान किया था बड़े बड़ी शिप, और एक डर पैदा हो गया था जापान का कि वो कामिकोजी जो कारण जिसको बोलते हैं वहीं से नाम इसका पड़ा कि सुसाइडल, जिस प्रकार से एक छोटे एयरक्राफ्ट में उड़ के और वो शिप के जो इंजन था उसके अंदर घुस जाते थे, उधर अटैक करके अंदर अपने आप को भी तो बर्बाद कर लेते थे मगर पूरा का पूरा शिप बर्बाद हो जाता।
0: आज रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मिडिल ईस्ट तक केमिकेज ड्रोन का इस्तेमाल होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कम लागत में विध्वंसक ताकत वाला हथियार आत्मघाती ड्रोन। ये सारी जरूरतें पूरी करता है। भविष्य के इस गेम चेंजर की ताकत जिसके पास भी होगी रण क्षेत्र में उसी का पलड़ा ज्यादा भारी होगा और भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, समझता है और इसीलिए मेक इन इंडिया के तहत भारत अपने यहां ही इस तरह की टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित कर रहा है ताकि युद्ध के मैदान में वो दुश्मन के आगे टिका रहे और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। आज दुनिया के कई देश ड्रोन शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। उन्हें पता है कि दुर्गम इलाके में दुश्मनों पर नजर रखना हो या फिर उसकी गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देना हो, इसमें ड्रोन एक कारगर हथियार साबित होगा। लिहाजा भारत भी अपनी सेना के तरकश में ताकतवर ड्रोन का जखीरा जमा करने में जुटा हुआ है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज भारत का खुद का केमिकेज ड्रोन बना रहे हैं। दावा यह है कि मेड इन इंडिया केमिकेज ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम होगा, जो अपने साथ 25 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकेगा। और इसकी उड़ान क्षमता करीब 9 घंटे होगी, यानी कि एक बार लॉन्च करने के बाद यह आसमान में लगातार मंडराता रहेगा। करीब 120 किलो वजनी कैमिकेज ड्रोन को दूर बैठा कोई भी व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। विस्फोटक लगा होने की वजह से इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ी तक को तबाह कर सकते हैं। स्वदेशी कैमिकेज ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें 30 हॉर्स पावर वाला वेंकल इंजन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिससे ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होगा। कैमिकेज ड्रोन को झुंड में यानी कि कई ड्रोन एक साथ भी भेजे जा सकते हैं। इससे दुश्मन के रडार और डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट पर हमला कर सकते हैं।

0: ने पिछले साल ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला फ्लाइट टेस्ट किया था, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को पेश करता है। ये भारत का स्टेल्थ ड्रोन है जो भविष्य में पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर देगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक था। इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और आसानी से लैंडिंग की, जो ड्रोन सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है।
1: जो ड्रोन ऑपरेट करता है ये बड़े ही हाई स्पीड से लॉन्च करता है। इस कहने का मतलब यह है कि ये रडार को चकमा देता है, इसमें बहुत ही हाई एवियोनिक्स होता है, इसका जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है वो बहुत एडवांस होता है, साथ में ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। कहने का मतलब यह है कि ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ये हाई एंड टेक्नोलॉजी किसी किसी देश के पास है। हिंदुस्तान ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया और हिंदुस्तान ऐसे इलीट ग्रुप में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है।
0: ताकतवर ड्रोन एक्सपोर्ट के साथ साथ भारत देश में ही अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग क्षमता के ड्रोन विकसित कर रहा है, जिसमें एक नाम है वेपनाइज्ड हेक्सोकॉप्टर, जिसे रुद्रास्त्र भी कहा जाता है। रुद्रास्त्र ड्रोन 5 किलो का बम लेकर उड़ने में सक्षम है। इसमें 1-1 किलो के 4 बम भी एक साथ लगाए जा सकते हैं, यानी कि इसमें एक साथ अलग अलग टारगेट्स पर हमला करने की ताकत है। रुद्रास्त्र ड्रोन लगातार 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। ये एक बार में 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और साथ ही इस ड्रोन में लगे बॉम्ब GPS से कनेक्टेड होंगे, जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकेगा। रुद्रास्त्र में हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा है, जिससे आसानी से टारगेट को लोकेट किया जा सकता है और फिर दुश्मन का काम तमाम। रुद्रास्त्र ड्रोन जहां हमला करता है उसके 20 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचाता है।
1: जो है वो भी एक शॉर्ट रेंज ड्रोन है। ये इसका जो मारक क्षमता है वो 10 से 15 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में जा सकती है। ये एक शोल्डर फायर ड्रोन है जो कि आगे जो ट्रूप्स इन कांटेक्ट है वो इसकी मदद से यूज करते हैं। इसका भी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है और इसको भी डिफरेंट डिफरेंट पेलोड में आप यूज कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 10 से 15 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इमीडिएट टारगेट जो विसिनिटी में है 10 से 15 किलोमीटर उस पर लॉन्च किया जा सकता है।
0: भारत में रुद्रास्त्र, नागास्त्र और तपस जैसे स्वदेशी ड्रोन की एक फौज तैयार हो रही है। भारतीय सेना तपस BH-201 का इस्तेमाल आर्म्ड मिशन और सीमा पर निगरानी के लिए करेगी। तपस BH-201 ड्रोन एक अटैकिंग ड्रोन है जो 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर ये 1000 किलोमीटर की रेंज में सर्विलांस और अटैक कर सकता है। तपस ड्रोन की दूसरी खूबियों की बात की जाए तो ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे तक उड़ान भर सकता है।
1: इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है जितनी हाइट पे जा, ये 30,000 फीट की हाइट तक जा सकता है और इसका पेलोड 500 से 6 किलोग्राम होता है और इसका इंड्योरेंस 17 से 18 घंटे के आसपास का होता है। डिपेंड करता है आप कहां से लॉन्च करें। अगर आप बॉर्डर एरिया से लॉन्च करेंगे तो यह दुश्मन के इलाके में जाएगा और वहां से देखिए जो इसके जो प्रिसीजन गाइडेड एम्युनिशन इसमें जो लोड होता है, जो इसका पेलोड है, उससे वो स्ट्राइक कर सकता है। तो लिहाजा आप इसको हवा में लॉन्च करके वेट कर सकते हैं टारगेट के अपीयर होने के।
0: तपस ड्रोन को भारतीय कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। इस ड्रोन को अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया गया है। तपस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था और तपस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह खुद ही लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है और रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज और ताकतवर बनाने की मुहिम के तहत दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन में शुमार MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने का रास्ता साफ हो चुका है। भारत अमेरिका की MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन डील ने चीन और पाकिस्तान की हलक को सुखा दिया है। ये ऐसा आसमानी योद्धा है जो दूसरे ड्रोन से ताकत और तकनीक के मामले में कोसों आगे है। अमेरिका से जो 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन लिए जाएंगे उनमें 15 MQ-9B सी गार्जियन और 16 स्काई गार्जियन होंगे। 15 सी गार्जियन भारतीय नौसेना को मिलेंगे, वहीं भारतीय थलसेना और एयरफोर्स को 8-8 स्काई गार्जियन मिलेंगे। प्रेडेटर ड्रोन तालिबान और आईएसएस के खिलाफ अमेरिका का सबसे कामयाब हथियार साबित हुआ है। ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन ऐसी ताकतवर मिसाइलों से लैस हैं जो कि दुश्मन के ठिकाने पर एकदम सटीक वार करते हैं।
2: ये एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है, ये 30 घंटे से ज्यादा देर उड़ सकता है और 40,000 फीट तक ये एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। ये एयरक्राफ्ट 2,000 से ज्यादा नॉटिकल माइल दूर जा सकता है, जिससे कि हमारा पूरा भारत इंडियन ओशन रीजन कवर होता है और कोई भी गतिविधि जो कि इंडियन ओशन रीजन में हो रही है उसकी हमें तुरंत खबर पता चलती है, जो कि तुरंत लाइव वीडियो फीड हम हेडक्वार्टर को दे देते हैं।
0: प्रेडेटर ड्रोन भारत के पास आने के बाद देश की सरहद और हिंद महासागर के बीच पूरी निगरानी रखी जा सकेगी। जमीन और समंदर दोनों में किसी भी मिशन को इससे अंजाम दिया जा सकता है।
3: कि ये पायलटलेस एयरक्राफ्ट है, फुल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो दिस कैन बी वेरी इफेक्टिवली यूज्ड अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर एरियाज, वेयर आप अपने एयरक्राफ्ट नहीं भेज सकते हैं दूसरे के वायु सीमा के अंदर। और ये जो ड्रोन होते हैं इनका साइज बहुत कम होता है, इनके सिग्नेचर्स बहुत छोटे होते हैं, तो इनको डिटेक्ट करने में एनिमी रेडार्स की बहुत मुश्किल होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग एंड बिफोर द वॉर दीज ड्रोन्स कैन बी फ्लोन अक्रॉस द बॉर्डर एरियाज, अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल।
0: प्रेडेटर ड्रोन को हंटर किलर यूएवी भी कहते हैं। ये एक पायलटलेस विमान की तरह है जिसे रिमोट से उड़ाया जाता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन दो वर्जन में है, पहला स्काई गार्जियन और दूसरा सी गार्जियन। स्काई वर्जन किसी भी मौसम में 40 घंटे से ज्यादा उड़ान भर सकता है, सी गार्जियन 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। दोनों ड्रोन में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ पानी और जमीन के हिसाब से लगाई गई मशीनरी अलग अलग है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें वाइड एरिया मैरिटाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और एक सेल्फ कंटेन्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि ASW किट से इसे लैस किया गया है, जिसे भारतीय वायुसेना के अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं।
3: रडार का काम होता है किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करना, तो ये जो ड्रोन है इसके ऊपर लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, तो जब ये हवा में उड़ता है सो इट कैन डिटेक्ट एनिमी टारगेट्स और जो भी टारगेट्स डेजिग्नेट किए हुए हैं और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एनिमी की तरफ से रडार चल रहा है या कोई और एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न है तो उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पिकअप कर सकता है। सो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ड्रोन वेपन सिस्टम।
0: MQ-9B प्रेडेटर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह दुश्मन पर चुपके से नजर रखता है और जरूरत पड़ते ही जमीन पर मिसाइल से हमला कर देता है। पनडुब्बियों को ढूंढकर उसे भी तबाह करने की ताकत है इसमें। 2721 किलोग्राम की मिसाइल को अटैच किया जा सकता है, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल शामिल है। प्रेडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें दो लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। 40,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ भी नहीं पाएगा।
2: अभी इस एयरक्राफ्ट में केवल कैमरा और रडार है, जब ये इंडक्ट होगा तब इस एयरक्राफ्ट में बोला जा रहा है कि इसमें मिसाइल, बॉम्ब, एंटी सबमरीन किट और इसमें आपके कोलिजन अवॉइडेंस किट्स भी ऐड होंगी।
0: भारत के लिए प्रेडेटर ड्रोन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन पाकिस्तान को ड्रोन ताकत से लैस कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जो पाकिस्तान को ड्रोन दिए हैं वो 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकते हैं और 20 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकते हैं। लेकिन भारत के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की अगर बात की जाए तो ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ज्यादा देर तक हवा में रहने की वजह से इसकी ताकत और निगरानी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, जासूसी और सैन्य कार्रवाई में कई तरह के कामों में हो सकता है, जैसे कि एंटी सर्फेस वॉरफेयर यानी कि नौसेना इसे जमीन पर रखे हथियार को तबाह कर सकती है। वहीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर में MQ-9B ड्रोन के जरिए नौसेना दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह कर सकती है। प्रेडेटर ड्रोन के जरिए लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा सकती है, सवलान हो सकता है, हवाई हमलों को रोकने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपदा के समय राहत कार्यों में भी प्रेडेटर ड्रोन काफी काम आते हैं। साल 2020 में भारतीय नौसेना को अमेरिका की तरफ से 2 MQ-9BC गार्जियन ड्रोन लीज पर मिले थे और जरूरत के मुताबिक इसकी लीज को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया। पानी की सतह के ऊपर और अंदर दोनों ही जगहों की निगरानी या फिर छानबीन के लिए प्रेडेटर ड्रोन एक बेहतर विकल्प है। इसमें 80 से ज्यादा जी साइज के सोनोबॉय लगाए गए हैं। सोनोबॉय वो डिवाइस है जो कि रेडियो सिग्नल के जरिए पानी के भीतर हो रही आवाजों को डिटेक्ट करता है। इसे गहरे पानी में छिपी पनडुब्बियों को प्रेडेटर आसानी से ढूंढ लेता है और मिसाइल से उन्हें अटैक कर सकता है। प्रेडेटर ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है और इसकी मदद से LAC से लेकर LOC तक दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है। वहीं समुद्री निगरानी में भी प्रेडेटर काफी मददगार साबित होता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन में लगे 360 डिग्री कैमरे से समंदर से लेकर आसमान और फिर जमीन तक पर निगरानी रखी जा सकती है। हिंद महासागर इलाके में PLA युद्धपोतों समेत चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन बेहद कारगर साबित होंगे। क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: दशकों बाद बन रहा है विशेष संयोग, राखी पर चंद्र ग्रहण क्या होगा असर, रक्षाबंधन का ग्रहण योग, देखिए शाम 7:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।
5: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है, घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए, क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। ये दिल्ली हमारी है, इसलिए सॉल्यूशन भी हम बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, पॉल्यूशन की जंग को लड़ेंगे। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ। अब मिलकर हवा बदलेंगे।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9:00।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और अब आपको दिखाते हैं परदेश में होली जैसे उत्सव के रंग। चीन के एक इलाके में रंगों से तो नहीं, लेकिन केवल पानी से अनोखी होली खेलने की परंपरा है। देखिए खास रिपोर्ट।
7: रेनकोट पहने हुए इन लोगों के हाथों में बंदूक नहीं, पिचकारियां हैं, और इन पिचकारियों से पानी की जोरदार फुवारे छोड़ी जा रही है। माहौल कुल मिलाकर वैसा ही है जैसा भारत में होली के उत्सव में होता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भला रेनकोट पहनकर कौन होली खेलता है। तो आपको बता दें कि यहाँ असल में होली नहीं खेली जा रही, लेकिन होली जैसा ही त्योहार मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें चीन के हैनान की हैं। यहाँ पर खेली जा रही इस अनोखी होली में रंगों का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन हुड़दंग की कमी नहीं है, क्योंकि ये होली सिर्फ पानी से खेली जा रही है। चीन के हैनान के बोटिंग ली और मियाओ इलाके में हर साल की तरह इस बार भी जल की फुवारों के साथ इस अनोखे उत्सव वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल का शानदार आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और जमकर मस्ती की।
8: 我感觉就是那个泼水就是新年的意思吧，所以我从这里这几天开始，那个泼水以后，我变成了一个很好的很快乐，还有很快乐，还有从我认识了很多朋友，还有这里的人也很幽默，所以我感觉温暖的感觉。到了几个活动有，但是没有机会，是第一次我来，但是真的特别特别好玩。我看到了很多视频，我觉得哇，好玩，酷，我来这里一分钟，衣服都湿了，开心。
7: मान्यता है कि पिचकारियों से निकली शीतल जल की फुवारे प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतीक है। हैनान में ली जनजातीय समूह के लोग पीढ़ियों से इस उत्सव को मनाते आ रहे हैं, और अब विदेशी सैलानी भी इसमें बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। 4 दिन के उत्सव में इस बार 8 देशों के सैलानियों के समूहों ने हिस्सा लिया। म्यूजिक और मनोरंजक माहौल के बीच लोगों ने इस उत्सव का खूब आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: केरला में आज प्रसिद्ध 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किया गया। पुन्नमाड़ा झील में आयोजित इस दौड़ में लोगों ने पूरे उत्साह और रोमांच के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कई तरीके की नावों को शामिल किया गया, लेकिन सर्प नौकाओं ने लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। इस साल प्रतियोगिता में करीब 70 से 71 नौकाओं ने हिस्सा लिया, जिनमें 21 से 22 चुंडन नौकाएं शामिल हैं। छोटी नौकाओं के मुकाबले की शुरुआत की गई, तो इसी के साथ इसकी शुरुआत हुई, और बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने नौका चालकों का खूब उत्साह बढ़ाया।

0: बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आज रिलीज हो गया है। फिल्म में महाभारत के महान योद्धा कर्ण की कहानी को भव्य अंदाज में दिखाया गया। महावीर कर्ण 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खास बात यह है कि फिल्म को हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। यानी देश भर के दर्शक इस फिल्म को अपनी पसंदीदा भाषा में देख सकेंगे और महान योद्धा कर्ण की कहानी को महसूस कर सकेंगे।
1: यह संसार हमारी संपत्ति भूल जाएगा, लेकिन हमारे खोए हुए साम्राज्य का हमेशा स्मरण करेगा। कर्ण के लिए उसका प्राण, कर्ण के प्राण देना, अपने कवच कुंडल उतार।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं चीन में रोशनी के उत्सव की शानदार तस्वीरें। दक्षिण पश्चिमी चीन के चोंकिंग के फुलिंग जिले में पहला फ्लावर्सी लांटन फेस्टिवल मनाया गया। इस दौरान यहां पर जगह जगह से 68 ऐसी आकृतियां लगाई गई जिनसे पूरा इलाका जगमग हो गया। खासतौर से सीढ़ीदार फूलों के खेत, झील के किनारे और जंगल के रास्ते पर रोशन इन आकृतियों से बेहद शानदार और खूबसूरत नजारा नजर आया। ये फेस्टिवल इलाके की खास पहचान और इसके हजारों साल पुराने इतिहास को इस तरह की सजावट के जरिए पेश करता है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि 100 से ज्यादा कारीगरों ने इन्हें पूरी तरह से हाथ से बनाया है। इन आकृतियों को बनाने में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सिचुआन की अनोखी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक विरासत दिखाता है। इस लाइट डिस्प्ले में पत्थर की मछली, अलग अलग दौर के विद्वानों के शिलालेख और पानी से जुड़ी नक्काशी के पैटर्न को दिखाया गया है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: दशकों बाद बन रहा है विशेष संयोग, राखी पर चंद्र ग्रहण, क्या होगा असर? रक्षाबंधन का ग्रहण योग देखिए शाम 7:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है? घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए? क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: दशकों बाद बन रहा है विशेष संयोग, राखी पर चंद्र ग्रहण, क्या होगा असर? रक्षाबंधन का ग्रहण योग देखिए शाम 7:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है? घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए? क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी है।
7: लंदन को 15 लगे अपनी हवा को साफ करने का,
6: आपको कितने लगेंगे?
8: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
9: That's the QR code. If you've got a solution, we're listening. And our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that.
8: Ab milkar hawa badlenge.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
12: गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा रिसर्च, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की रिपोर्ट, इलाज भी होगा आसान। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी बैन हुआ एनालॉग पनीर, 1 साल तक इसके भंडारण, बिक्री और सप्लाई पर लगी रोक, लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया ये बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की कालीन नगरी बदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने, सरकारी योजना बनी संजीवनी, एक जिला एक उत्पादन योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नहीं रफ्तार। केरलम में 72वीं रोमांचक नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का मुकाबला, पुनमाड़ा झील में हुई प्रतियोगिता, 22 नेक बोर्ड समेत 71 नावें हुई इसमें शामिल। बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आउट, 4 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज, हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकेंगे दर्शक। चीन के चोंगकिंग में पहले फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल के दिखे रौनक, 68 आकृतियों से जगमग हुआ पूरा इलाका, 1000 साल के इतिहास के दिखे झलक।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का दमदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं उसकी एक फिनोमिनल मूवी 26 अगस्त को दुनिया भर के सिल्वर स्क्रीन्स पर दस्तक देने के लिए तैयार है। एक ऐसी मूवी जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े बजट वाली फिल्म माना जा रहा है। उसी फिल्म के लीड एक्टर की जिंदगी की दास्तान लेकर हम हाजिर हुए हैं। एक ऐसा हीरो शुरुआती दिनों में जिसके पास एक्टिंग का कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे,

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वंडर बॉय रॉकिंग यश हैं। जी हाँ, यही यश, वो यश जिसकी केजीएफ ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। 26 अगस्त को यश की एक और दमदार फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। एडवांस बुकिंग का विंडो ओपन होने के बाद टॉक्सिक को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म केजीएफ की कामयाबी को भी पीछे छोड़ने जा रही है। ये वही यश हैं जिनके पास कभी एक्टिंग कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे लेकिन आज वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे हीरो में शुमार हो चुके हैं।

0: कुदरत का आईन भी बड़ा अजीब होता है। बागबां की सरपरस्ती में सींचे गए दरख्त फलने फूलने से पहले दम तोड़ देते हैं, लेकिन दूर निर्जन बयाबा में पहाड़ों का सीना चीर कर उगने वाले देवदार आसमान की ऊंचाइयों में हवाओं के साथ मिलकर बेफिक्र अटखेलियां करते नजर आते हैं। हालात की दुश्वारियों को मात देकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के आसमान में नक्षत्र की तरह चमचमाने वाला ऐसा ही एक नायाब नगीना है, नाम है नवीन कुमार गौड़ा। सिने प्रेमी जिसे यश के नाम से जानते हैं, जी हाँ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वंडर बॉय रॉकिंग यश। कितना अजीब इत्तेफाक है कि जिस बच्चे को विरासत में गुर्बत का साया मिला, समाज से ताने मिले, अपने भविष्य को लेकर जब परिजनों की आंखों में झांका तो चिंता की लकीरें मिली, अभिनय के शैशवावस्था में इंडस्ट्री से हिकारत मिली, वही बच्चा आज इतना बड़ा स्टार बन चुका है कि उसके स्टारडम के दम पर निर्माता निर्देशक पानी की तरह पैसा बहाने से जरा भी परहेज नहीं करते। 26 अगस्त को रिलीज होने वाली यश स्टार टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोनअप्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म मानी जा रही है। 800 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनी टॉक्सिक में यश डबल रोल में है, जो इस बात का प्रमाण है कि निर्माता ने इतने भारी भरकम बजट का रिस्क इसी कन्नड़ सुपरस्टार के भरोसे पर ही लिया है।
1: If a man is driven by his passion, defined by hard work, powered by discipline, inspired by a vision, pushing all the time the benchmarks and the boundaries, we all call him as what? We all call him as RSY. Rocking star, yes sir. This film wouldn't have been possible without him. I have heard of him, I had known his work. This is the first time I worked very closely with him, witnessing everything that he does that close is like passion in motion and hard work in action.
0: बेंगलुरु में 8 अगस्त को पूरे फैनफेयर के साथ जब टॉक्सी का ट्रेलर रिलीज किया गया तो उसका रिस्पांस देकर निर्माता वेंकट के नारायण और निर्देशक गीतू मोहनदास को भरोसा हो गया कि केजीएफ फिल्म यश पर खेला गया दांव उल्टा पड़ने वाला नहीं है। इसकी पहली झांकी तो तब दिख गई जब 7 समंदर पार अमेरिका में टॉक्सी की एडवांस बुकिंग का विंडो ओपन हुआ। अमेरिका में एडवांस बुकिंग के पहले ही दिन टॉक्सिक ने 204 लोकेशंस और 589 शोज के लिए 1,16,00,000 रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर दिया।
2: कोई आखिरी ख्वाहिश?
3: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के।
0: टॉक्सिक के ट्रेलर को जिस तरह सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, इस बात की पूरी उम्मीद है कि यश स्टारर ये फिल्म सबसे बड़े बजट के साथ ही सबसे बड़े कलेक्शन का भी कीर्तिमान स्थापित करेगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस गोवा की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म जबरदस्त पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जो यश के दोनों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है।
4: I was hoping to have a civilized course.
0: ट्रेलर देखकर पता चलता है कि टॉक्सिक में 1940 से 1970 के बीच गोवा के ड्रग माफिया, उनके बीच होने वाले गैंगवार, रोंगटे खड़े कर देने वाली हिंसा, अपराध, पिता पुत्र के संबंध, वफादारी, विश्वासघात और इंतकाम की भावना के साथ प्यार और रोमांस का डबल डोज है। जाहिर है इस फिल्म में वो सब कुछ है जिसे देखने के लिए सिने प्रेमी थिएटर्स का रुख करते हैं।
5: So this movie is a very tough one because the kind of decisions on the surface level, it was not easy. It is not a perfect commercial package film where you can just say that, okay, this is a film of hero, he's made KGF, this is a number, and then director who has done this film, okay, they can gauge what can happen. But this was a very unique combination and it was a very unique attempt.
0: टॉक्सी का फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स की रिलीज की तारीख भी अपने आप में कई इत्तेफाक समेटे हुए है। फिल्म की रिलीज डेट है 26 अगस्त 2026, यानी 26/8/26। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसका न्यूमेरिक्स 888 आता है। इत्तेफाक से यश का जन्मदिन भी 8 जनवरी है। इतना ही नहीं, फिल्म का बजट भी 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। काबिले गौर है कि टॉक्सिक में लीड रोल निभाने के साथ ही यश इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। यश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनकी सोच का कैनवास बहुत बड़ा है। इस अर्थ में वो इस देश के करोड़ों युवाओं की अनूठी प्रेरणा हैं। सोचिए कि यश के पिता कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर थे, सरकारी बस चलाते थे, माँ एक हाउसवाइफ हैं। इनके दूर दूर के रिश्ते में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, लेकिन बचपन से ही इनकी सोच बड़ी थी, इरादा मजबूत था, हौसला आसमानी था, आत्मविश्वास प्रगाढ़ था। सफलता की राह में आने वाली दुश्वारियों से लड़ने का मादा था और इन सब के साथ नाकामी में विचलित नहीं होने का धैर्य भी था। तभी तो एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि में पला बढ़ा लड़का आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नगीना बन चुका है कि निर्माता निर्देशक इनके नाम पर कितना भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं।

0: यश का भी साफ मानना है कि कुछ भी नहीं है नामुमकिन अगर ठान लिया जाए।
1: So what I believe is, when you want to do something in life, nothing should stop you. Most of us listen to people who say bad things about us, what you can't do, what is wrong. I think I'm somebody who doesn't listen to anybody. If somebody is telling me that you can't do this, I'll only see their lack of imagination or their stupidity. Because if I can see it clearly, there's nothing in life, if you are able to put in effort and time and required energy or actions towards something, there's nothing in life which you cannot achieve, is what I believe.
0: यश के इसी अदम्य इच्छा शक्ति को देखकर निर्माता निर्देशक इन पर कोई भी दांव खेलने को तैयार हो जाते हैं। यश की इसी साल एक और फिनोमिनल बजट वाली मूवी रिलीज होने वाली है, रामायण। दो पार्ट में बनने वाली रामायण का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नजरिए से देखेंगे तो ये बजट फैंटेसी लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा हैं, जबकि टॉक्सी की तरह यश इस फिल्म के भी को प्रोड्यूसर हैं। रामायण में यश रावण का किरदार निभा रहे हैं।
2: प्रतिशोध लिया जाएगा सुपर्ण का। राम की
0: वो चाहते तो राम की भूमिका में भी आ सकते थे, लेकिन यश का साफ कहना है कि उन्होंने राम की बजाय रावण की भूमिका इसलिए चुनी क्योंकि जब तक खलनायक का किरदार दमदार नहीं होगा, नायक का नायकत्व निखर कर सामने नहीं आ पाएगा। रामायण का फलक कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत तैयार कर रहे हैं। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड के एक्शन डायरेक्टर गॉय नॉरिस फिल्म के युद्ध के दृश्यों को डिजाइन कर रहे हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वार फिल्म टेरी नोटरी फिल्म में परफॉर्मेंस और मोशन कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। द मैट्रिक्स फेम डैन ग्लास के पास फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की कमान है। रामायण की तरह टॉक्सी को भी ग्लोबल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको बता दें कि हॉलीवुड की जानी मानी फिल्म जॉन विक और फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्शन डायरेक्टर जे.जे. पेरी ने टॉक्सी के लिए भारत में 45 दिनों तक रहकर बेहद खास एक्शन शेड्यूल शूट किया है। इतना ही नहीं, टॉक्सी को दुनिया भर के 12,000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज करने की तैयारी है और इसके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हॉलीवुड के दिग्गज स्टूडियो 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ पार्टनरशिप की गई है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर ही टॉक्सी को कन्नड़ के साथ अंग्रेजी भाषा में भी शूट किया गया है। टॉक्सिक और रामायण से पहले यश की साल 2018 में आई KGF चैप्टर 1 और साल 2012 में आई KGF चैप्टर 2 ने हिंदुस्तान के साथ ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। KGF में यश द्वारा निभाया गया रॉकी भाई का करिश्माई और विद्रोही किरदार दुनिया भर के सिने प्रेमियों के बीच एक आइकॉनिक हीरो के रूप में सामने आया। साफ है कि कर्नाटक के हासन जिले के गुमनाम गांव में जन्मे बच्चे ने बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट और बिना किसी गॉडफादर के अपनी इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन के दम पर न सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कद्दावर और पहचान बनाई, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर भी पूरी ठसक के साथ मजबूत पहचान दिलाई।
3: यश के एक्टर बनने की दास्तान अत्यंत मर्म स्पर्शी है। इनका जन्म कर्नाटक के हासन जिले के एक साधारण से गांव में हुआ था। यश के पिता बस ड्राइवर थे, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि गृहस्थी मुश्किल से ही चलती होगी। लेकिन उसी साधारण परिवार में जन्मे यश के मन में बचपन से ही ये हसरत कुलाचे मारने लगी थी कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना है। शुरुआती दिनों में यश अपनी हसरत जब दोस्तों के बीच बताते थे तो दोस्त इन पर चुटकी लेते थे, लेकिन साथियों की चुटकियों से विचलित हुए बगैर वो अपने मिशन में काफी कम उम्र से ही जुट गए थे। यश के जीवन की हकीकत भी किसी परी कथा से कम थ्रिलिंग नहीं है।
0: इमेजिनेशन, एनालाइजेशन और एग्जीक्यूशन, अंग्रेजी के इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द ही सफलता और असफलता का चक्र घूमता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इमेजिनेशन ना करता हो। हसीन ख्वाब देखना इंसान की बुनियादी फितरत है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमेजिनेशन को एनालाइज करते हैं। एग्जीक्यूशन के लेवल तक तो कोई विरला ही पहुंचता है, लेकिन जो पहुंच जाता है वो ही इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराता है। साउथ के सुपरस्टार यश उन्हीं विरले लोगों में शुमार हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वंडर बॉय और रॉकिंग स्टार के नाम से पहचान बना चुके यश के शुरुआती जीवन की सच्चाई से जब आप रूबरू होंगे तो जेहन में सवाल उठेगा कि इतनी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला एक शख्स इतना रॉकिंग स्टार कैसे बन गया। कर्नाटक के हासन जिले के छोटे से गांव भुवन हल्ली में 8 जनवरी 1986 को जन्मे यश ने जब से होश संभाला तभी से दिल में रुपहले पर्दे पर स्टार बनकर चमकने की हसरत पलने लगी। घर वाले यश की इस हसरत को कम उम्र की नादानी मानकर बस इतना चाहते थे कि पढ़ लिख कर उनका बेटा एक सरकारी नौकरी पकड़ ले, पर पेरेंट्स को क्या पता था कि यश की एक्टर बनने की ख्वाहिश बाल सुलभ नादानी नहीं बल्कि वास्तविक जुनून है।
1: My father is from Mysore, so I grew up in Mysore. Most of my childhood was in Mysore. My father was a BMTC bus driver and my mother was a housewife. So just like any other middle class, this thing, we were leading a happy life, and then I want to become an actor. From childhood, I've been inclined towards this, extra attention we get as an actor, no? For that, maybe all the CT Marna, all this I used to like. I used to participate in a lot of fancy dress, mono acting and all of that. And I used to dance. So that used to give me a lot of happiness. So that's how it started and I got into, it's a long story.
0: हासन जिले के गुमनाम गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मे बच्चे के इंटरनेशनल स्टार बनने की दास्तान वाकई बहुत लंबी है। नवीन कुमार गौड़ा से रॉकिंग यश बनने की कहानी दिल को छू लेने वाली है। हीरो बनने की हसरत सजोई यश बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के स्वयं की प्रेरणा से स्कूल के नाटकों और डांस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे, और उनके परफॉर्मेंस पर जब साथी बच्चे तालियां बजाते तो उन्हें उसी उम्र में रॉक स्टार वाली फीलिंग होने लगती। उधर स्कूल के साथी यहां तक कि टीचर्स भी यश को हीरो कहकर संबोधित करने लगे। दूसरी ओर यश को बचपन में कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन जैसा जरूर है।
1: I never realized how difficult it is or this. It's just that I believed it at a very young age because all my teachers, they started calling me, kya hero, how are you? Matlab, jab baat karte the na, even then they used to be like hero bulate the. Because I'd done some small mono acting this thing where I told that, you know, I'll catch Veerappan and all of that when I was young. So they used to tease me with that thing. If Veerappan's any news used to come out, they used to question me, saying, "Hey, you used to kidhar hai, pakda nahi abhi tak." So they used to make fun of those things. And I believe that one day, jaake main actor ban jaunga. I didn't know how difficult it is or how much dedication or lot of things go into becoming an actor or anybody who wants to achieve something. I had no clue about that, but I just wanted to be an actor.
0: रुपहले पर्दे का स्टार बनने की धुन के साथ ही यश ने स्कूलिंग पूरी कर ली। लेकिन प्री यूनिवर्सिटी करने के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आई तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल के स्टेज पर परफॉर्म करने और प्रोफेशनल एक्टिंग में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे में उन्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए एक्टिंग का कोर्स करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन घर वालों के पास इतने पैसे थे कहां कि यश को किसी एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिलवा सकें। पर यश के पास तो दूसरा विकल्प था ही नहीं, लिहाजा एक दिन घर वालों से कह दिया कि वो बेंगलुरु जाएंगे और वहीं एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमाएंगे। यश के पिता इसके लिए कतई राजी नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद देखकर आखिरकार मान गए, पर जाने से पहले एक शर्त रख दी कि अगर वापस लौटने की नौबत आई तो हीरो बनने की हसरत की तिलांजलि दे देनी होगी। यश ने पिता की शर्त मान ली और महज 300 रुपए लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए।
4: I just went and I joined theater and I did lot of backstage work. Eventually, while doing backstage work, I used to practice for other roles also. Where some actor is late, then I used to give that dialogue cue bolte usko. Like that, I used to rehearse, and then I was an emergency actor. If somebody is ill or if some actor is not, I used to just go and do that. That's how it started, and then I started getting big roles.
0: थिएटर में काम मिलने के बाद तो जैसे यश के अरमानों को पंख लग गए। काम इतनी मेहनत से किया कि उनकी एक्टिंग के चर्चे होने लगे। साल 2004 में यश की किस्मत ने बड़ी करवट ली और उन्हें कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल में विजय सिंह का किरदार मिल गया। नंदा गोकुल में विजय सिंह के किरदार को यश ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर इतना जीवंत कर दिया कि दूसरे सीरियल्स के लिए भी ऑफर आने लगे। 3 साल में ही यश छोटे पर्दे के इतने बड़े एक्टर बन गए कि उसकी गूंज फिल्म इंडस्ट्रीज तक सुनाई देने लगी। फिर आया साल 2007 जब यश को बड़े पर्दे पर भी एंट्री मिल गई। इसी साल उन्होंने कन्नड़ फिल्म जम्बडा हुदगी में बड़े पर्दे पर बतौर सेकेंड लीड डेब्यू किया। अगले ही साल यानी 2008 में कन्नड़ फिल्म मोगीना मानासु में यश को लीड रोल निभाने का मौका भी मिल गया। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। बतौर लीड हीरो यश की पहली ही फिल्म मोगीना मानासु सुपरहिट हो गई। रोमांटिक ड्रामा मोगीना मानासु के लिए यश को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। मोगीना मानासु के बाद यश ने राजधानी, गजकेसरी और मास्टरपीस जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी बेहतरीन अदाकारी के दम पर ज्यादातर फिल्में हिट होती चली गईं। हालांकि जिंदगी में खूबसूरत और शानदार मोड़ तब आया जब साल 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई। केजीएफ चैप्टर 1 में उन्होंने रॉकी का किरदार निभाया जो दर्शकों के दिलों में ऐसे उतर गया कि बॉक्स ऑफिस पर बवंडर आ गया। साल 2022 में केजीएफ का सीक्वल केजीएफ चैप्टर 2 आया जिसने पहले चैप्टर से भी ज्यादा तहलका मचा दिया। केजीएफ चैप्टर 1 और 2 वर्ल्ड वाइड करीब 1500 करोड़ का कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाले फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। अपने 19 साल के फिल्मी सफर में यश एक दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दे चुके हैं। टॉक्सिक और रामायण जैसी मेगा बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या करिश्मा कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों फिल्मों का रिलीज से पहले जैसा बच क्रिएट हो चुका है इसकी पूरी उम्मीद है कि केजीएफ वाला करिश्मा एक बार फिर दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि यश बचपन से ही अपने एक्टिंग करियर को लेकर जिस तरह से कमिटेड थे वैसे ही अपने शरीके हयात राधिका पंडित को लेकर भी हैं। दोनों की पहली मुलाकात कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल की शूटिंग के दौरान 2007 में हुई थी और पहली मुलाकात में ही आंखें चार हो गईं। उसके बाद यश ने किसी दूसरे विकल्प पर कभी विचार ही नहीं किया। दोनों ने साल 2016 में शादी कर ली। आज यश और राधिका की जोड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सर्वाधिक कमिटेड कपल में शुमार की जाती है।
3: बंदे में है दम में आज आपने अभिनेता यश के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

दशकों बाद बन रहा है विशेष संयोग। राखी पर चंद्र ग्रहण, क्या होगा असर? रक्षाबंधन का ग्रहण योग।

0: दशकों बाद बन रहा है विशेष संयोग। राखी पर चंद्र ग्रहण, क्या होगा असर? रक्षाबंधन का ग्रहण योग देखिए शाम 7:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: घोड़े की नाल का
0: दशकों बाद बन रहा है विशेष संयोग। राखी पर चंद्र ग्रहण, क्या होगा असर? रक्षाबंधन का ग्रहण योग देखिए शाम 7:04

0: चार मिनट पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: घोड़े की नाल का
2: दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा शोध, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की जांच रिपोर्ट, इलाज भी होगा अब आसान। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी बैन हुआ एनालॉग पनीर, 1 साल तक इसके भंडारण, बिक्री और सप्लाई पर लगी रोक, लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह बड़ा फैसला। कालीन नगरी भदोही में बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने, सरकारी योजना बन रही संजीवनी, एक जिला एक उत्पादन योजना से उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। केरला में 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन, पुन्नमाड़ा झील में हुई रेस में 22 स्नेक बोट समेत कुल 71 नावें हुई शामिल। हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आउट, 4 दिसंबर को हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी ये फिल्म। चीन के चोंगकिंग में फ्लावर सी लैंटेन फेस्टिवल की दिखी रौनक, 68 आकृतियों से जगमग हुआ इलाका, 1000 साल के इतिहास की दिखी झलक।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
6: विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रीनगर से निकली छड़ी मुबारक, अनुष्ठान के साथ ही अंतिम पड़ाव पर पहुंची बाबा अमरनाथ की यात्रा। इस मौके पर महंतों और साधुओं के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना हुई पवित्र छड़ी मुबारक, जहां रात्रि विश्राम और अनुष्ठान के बाद चंदनवाड़ी के लिए निकलेगी यात्रा। 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचेगी छड़ी मुबारक, सभी तभी होगा बाबा अमरनाथ की यात्रा का औपचारिक समापन। इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई थी 57 दिवसीय अमरनाथ यात्रा, अब तक 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। पूरी श्रद्धा और आस्था से जारी प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, धार्मिक यात्रा के 5वें जत्थे ने किए दर्शन पूजन। यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, श्रद्धालुओं का फूल मालाएं पहनाकर हुआ भव्य स्वागत, गूंज जयकार। स्थानीय लोग भी पेश कर रहे सेवा, सहयोग और भाईचारे की मिसाल, श्रद्धालुओं के लिए जलपान, भोजन, पेयजल समेत सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकल रहा जत्था, भक्तों की यात्रा सुगम और सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है प्रशासन। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की यात्रा, रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भव्य झूलनोत्सव का हुआ आयोजन, सावन महीने में तीनों भाइयों के साथ रामलला को झुलाया गया झूला। झूलनोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा रहे मौजूद, श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आए लोग। रामलला को झूला झुलाने के लिए लगी होड़, धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भजन कीर्तन करते दिखे साधु संत। भगवान राम के उत्सव विग्रह को फूलों से सजे चांदी के हिंडोले में कराया गया विराजमान, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। रामनगरी में झूला उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भी दिख रहा खासा उत्साह, तीनों भाइयों के साथ रामलला के दर्शन का मिला सौभाग्य। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली में होगा मटके फोड़ यानी एमपीएल सीजन 2 का आयोजन, लड़के और लड़कियों की कुल 26 गोविंदो टीम के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। मटके फोड़ लीग का आधिकारिक एंथम सॉन्ग गोविंदा आलारे लॉन्च, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रोमी ने एंथम को दी है अपनी आवाज। मटके फोड़ लीग के दौरान बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए आधिकारिक मैस्कॉट मटकू किया गया तैयार, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाके मटकू एमपीएल का देगा संदेश। सूरज मल बिहार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा इसका आयोजन, मटके फोड़ लीग में खिलाड़ियों की ताकत, उनका संतुलन, रणनीति और टीम वर्क की होगी परीक्षा। आधुनिक खेल प्रतियोगिता की तरह मटके फोड़ लीग को किया जाएगा डिजाइन, आयोजकों के मुताबिक आईपीएल के तर्ज पर बेची जाएंगे एमपीएल की टीमें। मंत्री असीम अरुण ने शीतला देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की समृद्धि के लिए की मंगल कामना। तमिलनाडु के वेल्लूर पहुंचे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल में किए दर्शन पूजा, इस दौरान उनका पारंपरिक पूर्ण कुंभ स्वागत किया गया, मंदिर के अधिकारी ने उन्हें सम्मानित भी किया। कर्नाटक के तुमकुर में वरम महालक्ष्मी उत्सव की धूम, मंदिर परिसर के फूलों से की गई भव्य सजावट। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन, देवी महालक्ष्मी से लिया सुख समृद्धि का आशीर्वाद। केरलम के अलपुझा में 72वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का हुआ भव्य शुभारंभ, रेस में 71 बड़ी बोटों ने लिया हिस्सा। 22 स्नेक बोट बने मुख्य आकर्षण का केंद्र, पुनमाड़ा झील दर्शकों से हुई गुलजार, नाविकों का हौसला बढ़ाते हुए दिखे दर्शक। झील पर तेज रफ्तार से दौड़ी नावें, हजारों लोग देखने के लिए पहुंचे रोमांचक मुकाबला, नाविकों ने तालमेल के साथ लगाई अपनी पूरी ताकत। चप्पू की रफ्तार ने बढ़ाया बोट रेस का रोमांच, रंग बिरंगी नावों ने बढ़ाई झील की खूबसूरती, केरल की समुद्री परंपरा की दिखी झलक। पंडित नेहरू की अलपुझा यात्रा से जुड़ा बोट रेस का इतिहास, 1952 में हुई थी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की शुरुआत। मुरादाबाद के सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए बड़ा कदम, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब्स की भी स्थापना। प्रदेश में कुल 300 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और 48 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया ये बड़ा कदम। बच्चों के एनिमेटेड वीडियो और इंटरैक्टिव स्क्रीन के जरिए आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई में रुचि बनाए रखने के लिए सरकार की पहल। टीवी की जांच और इलाज में गोरखपुर एम्स को मिली बड़ी सफलता, अब 6 हफ्ते नहीं सिर्फ 2 घंटे में मिलेगी टीवी की जानकारी। नई जांच तकनीक के जरिए करीब 2 हफ्ते में की जा सकती है संवेदनशील और दवा प्रतिरोधी टीवी की पहचान, जल्द शुरू किया जा सकेगा मरीजों का सटीक इलाज। गोरखपुर में राप्ती रिवर फ्रंट की तैयारी, 1,303 करोड़ रूपये की लागत से बदलेगी तस्वीर, 3.5 किलोमीटर में दिखेगा शानदार नजारा। राप्ती नदी का किनारा बनेगा आकर्षण का मुख्य केंद्र, राजघाट से डोमिनगढ़ तक होगी विकास, गोमती साबरमती की तर्ज पर होगा राप्ती रिवर फ्रंट का विकास। करीब 150 मीटर चौड़ाई में होगा काम, सड़क तक बनेगी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट, अर्बन हार्ट की होगी इसमें सुविधा, पर्यटन को भी मिलेगा सिद्धावा। बस्ती में बेटे के अफसर बनने पर दिखा पिता का बादशाही अंदाज, हाथी पे बिठाकर बेटे का किया भव्य स्वागत। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे हुआ है अवनीश पांडे का चयन, इस उपलब्धि की खुशी में उनके पिता ने गाजे बाजे के साथ किया स्वागत का आयोजन। महाराष्ट्र में अब पुलिस फोर्स के साथ रह सकेंगे रिटायर हो चुके पुलिस डॉक्स। निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया। सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह की शानदार पहल, इनके तहत आयोजित 3 दिन के स्पेशल लोक अदालत के पहले दिन किया 400 से ज्यादा मामलों का निपटारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किए निर्देश, विधानसभा और सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। अधिकारियों कर्मचारियों और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर, बिना पुष्टि की गई पोस्ट या टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। बिहार से 1 सितंबर को चलेगी भारत गौरव ट्रेन, धार्मिक पर्यटन पर जाने वालों के लिए सुनहरा मौका। एक यात्रा में 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, श्रद्धालुओं के लिए ये काफी अच्छा मौका। भारत गौरव ट्रेन में स्लीपर का किराया 18,160 रुपए, थर्ड एसी का किराया 32,550 रुपए और सेकेंड एसी का 39,425 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है किराया। पैकेज में रेल यात्रा के अलावा ठहरने, स्थानीय परिवहन और बीमा जैसी सुविधाएं भी हैं शामिल। सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स का नया TI-22 कलेक्शन हुआ लॉन्च, अभिनेता हर्षवर्धन राणे को बनाया गया कैंपेन का चेहरा। रीवा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, देवदूत बनी SDRF। SP कलेक्टर ने किया बोट से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, हर मुमकिन मदद का दिया आश्वासन। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण बढ़ा रामगंगा नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट। दिल्ली में H1N1 और फ्लू के बढ़ रहे मामले, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट। बारिश और बादलों के बीच हुई दिल्ली NCR की सुबह, रिमझिम बरसात से ह्यूमिडिटी से मिली राहत। बारिश से उमस से मिली राहत, कई जगह ट्रैफिक की थमी रफ्तार। कूल रहेगा वीकेंड, नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम में भी मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश के कारण दिल्ली NCR की हवा में भी होगा सुधार, AQI संतोषजनक श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली NCR सहित देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। फिल्म महावीर कर्ण का टीजर हुआ आउट, 4 दिसंबर को कई भाषाओं में रिलीज हो रही फिल्म। वीर पहाड़ी और अपार शक्ति खुराना की फिल्म प्रेम कीटाणु का पहला गाना हुआ रिलीज, लोग कर रहे हैं इसे पसंद। सिनेमाघरों में फिर लौटेगी एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स डूम्सडे के साथ कनेक्ट करने के लिए नए सीन और फुटेज के साथ री रिलीज होगी ये फिल्म। सिनेमाघरों के बाद OTT पर रिलीज होगी बॉबी देओल की फिल्म बंदर, 28 अगस्त से होगी स्ट्रीम। अर्जुन रामपाल ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गैब्रियला के साथ रचाई शादी पोस्ट की तस्वीर। सलाइवा सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म जेलर 2 का पहला गाना हुआ रिलीज, दर्शक कर रहे पसंद। एक्टर कुणाल खेमू की अगली डायरेक्टोरियल फिल्म वाइफ का टीजर हुआ रिलीज। गोविंदा के बेटे यशवर्धन हॉरर कॉमेडी हीरो की हीरोइन से करने जा रहे हैं बॉलीवुड में एंट्री। यश की फिल्म टॉक्सिक ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में की शानदार कमाई, एक ही दिन में करीब 13 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज की। बॉक्स ऑफिस पर रोज सफलता की सीढ़ी चढ़ रही इमरान हाशमी की आवारापन 2, 8 दिनों में 120 करोड़ रुपए कमाए। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया दूसरा स्थान, 88.05 मीटर भाला फेंक कर जीता सिल्वर मेडल। नीरज ने दूसरे प्रयास में पिछले एक साल का सबसे बेहतर थ्रो फेंका, ये उनके सीजन का भी सबसे अच्छा थ्रो रहा। खिताब जीतने वाले श्रीलंका के रुमेश पथिराजे से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहा नीरज का थ्रो, पथिराजे ने 88.14 मीटर दूर फेंका भाला। पथिराजे ने पिछले महीने ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जीता था गोल्ड और नीरज को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। एथलेटिक सिमा के नाम से भी जाने जाते हैं लुसाने डायमंड लीग, साल 2026 एथलेटिक सीजन में ये नीरज चोपड़ा का तीसरा कॉम्पिटेटिव इवेंट था। कल कोलंबो में खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच, इस मैच में भी इंतजार में कई नए रिकॉर्ड्स। दो मैचों की सीरीज में भारत को पहले ही 1-0 से बढ़त। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकिल में 53.33% पॉइंट के साथ पांचवें स्थान पर टीम। इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पूरे कर सकते हैं टेस्ट में 3000 रन। इस कीर्तिमान से महज 7 रन है दूर गिल। फिलहाल उनके नाम 2993 रन। इसके अलावा टेस्ट में 50 छक्के भी पूरे कर सकते हैं गिल। कोलंबो में 3 छक्के लगाते ही उपलब्धि हासिल कर लेंगे गिल। फिलहाल उनके नाम है 47 रन। टेस्ट 400 चौके पूरे करने से महज एक कदम दूर रविंद्र जडेजा। अभी उनके नाम है 399 चौके। साथ ही 49 कैच ले चुके जडेजा एक कैच लेते ही टेस्ट मैचों में पूरा करेंगे 50 कैच। चीन का डोंगुआन बना खिलौनों का बड़ा हब। टॉय से सजे बाजार रंग बिरंगे खिलौनों की भरमार। बाजारों में दिखे ट्रेंडी और अनोखे टॉयज। ब्लाइंड बॉक्स खिलौनों का बड़ा क्रेज। फ्लश टॉयज ने भी खींचा सभी का ध्यान। मेटल मॉडल और कलेक्टेबल्स की धूम। एनिमे कैरेक्टर वाले टॉयज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय। हर उम्र के लोगों के लिए खिलौने की रेंज। डिजाइन मोल्ड और पैकेजिंग की सुविधा साथ चीन के करीब 85% ट्रेंडी टॉयज यही बनते हैं। टॉयज की बिक्री में उछाल। खिलौनों में दिख रही चीनी संस्कृति की झलक। पारंपरिक विरासत से प्रेरित टॉयज भी तैयार। दुनिया भर में हो रहा है इसका एक्सपोर्ट। चीन के चोंगकिंग में रोशनी का शानदार उत्सव। फ्लावर्स सी लालटेन फेस्टिवल से जगमगाया पूरा शहर। 68 विशाल लालटेन इंस्टॉलेशन ने बढ़ाई रौनक। फूलों के खेत रोशनी से जगमगा उठे। झील किनारे दिखा अद्भुत नजारा। जंगल के रास्ते भी रोशनी से चमके। लालटेनों ने इतिहास को जीवंत किया। लालटेन में दिखे पत्थर के मछलियां। पानी से जुड़े नक्काशी पैटर्न आए नजर। हजारों साल पुराना ज्वल इतिहास दिखा। रोशनी और परछाई ने मोहा सभी का मन। रोशनी के बीच इतिहास का खूबसूरत संगम। प्राचीन संस्कृति का अनोखा प्रदर्शन। फेस्टिवल ने दिखाई चोंगकिंग की पहचान। रोशनी से चमका हांगकांग का आसमान। 2000 ड्रोन ने किया शानदार शो। विक्टोरिया हार्बर बना रोमांस का कैनवस। आसमान में बना मैकपाई ब्रिज। ड्रोन से दिखी चीनी प्रेम कथा। आसमान में दिखे प्यार में डूबे जोड़े। ड्रोन से बने विशाल गुलाब। आसमान में रंग बिरंगी आकृतियों ने मोहा सभी का मन। ड्रोन शो देखकर दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। चीन में रोबोटिक डॉग्स बने सामान ढोने वाले। होंगझोउ की झेयांग यूनिवर्सिटी में देखा अनोखा नजारा। रोबोट डॉग्स ने उठाया छात्रों का सामान। रोबोट्स में शानदार मोशन कंट्रोल। छात्रों के बीच बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। स्कॉटलैंड के डॉक्टर के क्लिनिक में रोबोट मरीजों के हेल्थ चेक कर रहे हैं। रोबोट तेमी मरीजों को चेकअप के स्टेप्स बताता है। रोबोट हाइट और वजन नापने में करता है मदद। ब्लड प्रेशर भी चेक करता है रोबोट। ऑक्सीजन लेवल की भी करता है जांच। स्विट्जरलैंड के एंडिंग में स्विस एपिक के तीसरे स्टेज में रोमांचक रेस। डी कॉस्मो और डोरी गोनी ने मारी बाजी। जीत का फैसला स्प्रिंग फिनिश में हुआ। महिलाओं के रेस में भी जबरदस्त मुकाबला। अन्ना वाइनबीर और क्लाउडिया पेरेटी ने फिर जीता स्टेज। दोनों की जीत का सिलसिला लगातार जारी। स्पेन में डेंजर डेमफ्रीस को मिली 24 नवंबर की जर्सी। 30 साल के डेमफ्रीस से 4 साल का करार। रियल मैड्रिड क्लब ने टीम को मजबूत करने पर दिया जोर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: दशकों बाद बन रहा है विशेष संयोग। राखी पर चंद्र ग्रहण क्या होगा असर। रक्षाबंधन का ग्रहण योग। देखिए शाम 7:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है.
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
2: गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से
6: गुजरात के सूरत में तापी नदी के किनारे एक मंदिर परिसर में मौजूद है एक अनोखा वट वृक्ष. देखिए कहा जाता है कि इस वट वृक्ष पर सालों से केवल 3 ही पत्ते रहते हैं. श्रद्धालु इन 3 पत्तों को ब्रह्म विष्णु महेश यानी त्रिदेव का प्रतीक मानते हैं. इस खास पेड़ पर हमेशा सिर्फ 3 पत्ते ही रहते हैं. चौथा पत्ता आते ही एक पुराना पत्ता झड़ जाता है और ये जो सिलसिला है ये लगातार ऐसे ही जारी रहता है.

0: पेड़ छोटा है लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। सूरत में तापी नदी के तट पर स्थित एक ऐसा वटवृक्ष है जिसकी कहानी इसे बाकी पेड़ों से बिल्कुल जुदा बना देती है। ये पेड़ इसलिए खास है क्योंकि इस पेड़ पर हमेशा सिर्फ 3 पत्ते ही दिखाई देते हैं।
1: हमारे देश में चमत्कारों की कमी नहीं है। चमत्कार धर्म से जुड़ा हुआ होता है और धार्मिक जगहों पर जब हम जाते हैं तो कई तरह से भगवान की उपलब्धि के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही प्रमाण गुजरात के सूरत शहर में देखने को मिला है। बरसों से है, आदिकाल से भी कह सकते हैं, तापी नदी के तट पर एक बरगद का पेड़ जिसके सिर्फ 3 पत्ते ही हैं, चौथा पत्ता कभी नहीं उगता है।
0: मान्यता है कि पेड़ पर जैसे ही चौथा पत्ता निकलता है उसी समय एक पुराना पत्ता झड़ जाता है, यानी किसी भी हालात में सिर्फ 3 पत्ते ही पेड़ पर रहते हैं। अब श्रद्धालुओं के लिए महज पत्ते नहीं है, कोई इनमें ब्रह्मा के दर्शन करता है, कोई विष्णु के, तो किसी को महेश दिखते हैं।
2: मैं तो दूसरी बार आया हूँ, तीसरी बार आया हूँ यहाँ, लेकिन ये है कि साक्षात्कार है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी है और कर्ण का जो यहाँ अग्निदान हुआ था और साक्षात भगवान ही आए थे इधर देखने के लिए। भाई हमको भी मतलब देखना है कौन सी कुंवारी भूमि है इसे, और ये बहुत महात्मा है इसका। महाभारत से जुड़ी कथा है बहुत, जैसे पंडित जी ने बताया, और बहुत ही अच्छा मतलब जगह है। और सब मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ, देखो भीड़ लगी रहती, कभी भी सुना नहीं रहता इसमें। ये बढ़िया है।
0: इस स्थान का संबंध महाभारत काल से माना गया है और कहते हैं कि ये 3 पत्तों वाला वटवृक्ष त्रिदेव का प्रतीक है, इसलिए यहाँ दिन भर दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। किसी के हाथ में पूजा की थाली है, कोई संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर यहाँ पहुँचा है। लोगों की माने तो यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी जरूर होती है।
3: मेरा जन्म 1989 में 14 तारीख और 14 के दिन सितंबर में हुआ। जब तक मुझे इस मंदिर के 3 पत्ते के पान वृक्ष झाड़ के बारे में पता चला कि यहाँ के महिमा क्या है, मैंने अपने दोस्त को बताया कि इसका क्या क्या चमत्कार है।
0: हैरानी की बात ये कि ना तो इस पेड़ की शाखाएं फैलती हैं, ना ये विशाल बरगद का रूप लेता है, हमेशा रहते हैं सिर्फ 3 पत्ते। मानो प्रकृति ने भी इसकी पहचान को महज 3 पत्तों तक ही सीमित रखा है।
4: नहीं, एक आता है एक जाता है महाराज, थोड़ा सा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। ये वृक्ष में मतलब 5-7 पत्ते साथ में नहीं होते, जैसे डाली नहीं होता, डाली नहीं होगा

0: थर्ड नहीं होगा इस हिसाब से, वो पेड़ के रूप में नहीं होता है लेकिन ये पौधे जैसे रहता है।
1: अच्छा, मतलब पत्ता चौथा नहीं आता है, तीन ही बने रहते हैं, आता भी है तो गिर जाता है,
0: त्रिदेव रूपी तीन ही बने रहते हैं।
2: सावन के महीने में इस मंदिर में अच्छी खासी रौनक रहती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा के साथ साथ इन तीन पत्तों वाले वट वृक्ष के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
0: वैसे तो वट भगवान का दर्शन तो पूरे साल चलता रहता है, लेकिन यह है कि श्रावण में अपने यहाँ शिव जी भी प्रतिष्ठित है तो भक्तों का जो है सैलाब थोड़ा बढ़ जाता है। श्रावण का जो महिमा है वो तो है ही, और लोग दोनों का लाभ लेने के लिए मतलब उनका भक्ति मतलब सैलाब थोड़ा बढ़ता है।
2: सूरत के इस अनोखे वट वृक्ष की कहानी जितनी रोचक है उतनी ही गहरी है यहाँ के लोगों की आस्था भी। यही वजह है कि इस छोटे से पेड़ के दर्शन के लिए साल भर श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी है।
13: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
12: आपको कितने लगेंगे?
14: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
15: There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we've listening and our esteemed jury is going to judge that. The chief minister will adopt that.
14: अब मिलकर हवा बदलेंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
17: गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा रिसर्च, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की रिपोर्ट, इलाज भी होगा आसान। के बाद कर्नाटक में भी बैन हुआ एनालॉग पनीर। एक साल तक इसके भंडारण, बिक्री और सप्लाई पर लगी रोक। लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की कालीन नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने। सरकारी योजना बनी उनके लिए संजीवनी। एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। केरलम में 72वीं रोमांचक नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का हुआ मुकाबला। पुनमाड़ा झील में हुई है प्रतियोगिता। 22 नई बोट समेत 71 नावें हुई इसमें शामिल। बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन महावीर कर्ण का टीजर हुआ आउट। 4 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज। हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकेंगे दर्शक। चीन के चोंगकिंग में पहले फ्लावर सी लैंटर्न फेस्टिवल के देखे रौनक। 68 आकृतियों से जगमग हुआ पूरा इलाका। 1000 साल के इतिहास के देखे झलक।
16: Co powered by JK Super Cement. Build strong. Designs crafted for natural diamonds to sparkle the brightest. Maruti Suzuki Brezza. Lead every play. Sona kharidna ho ya bechna ho, hamara Joy Alukas the best hai.
17: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, रक्षाबंधन का सभी भाई बहनों को बेसब्री से इंतजार है और राखी सिर्फ कलाई पर बंधने वाला एक धागा नहीं बल्कि भाई बहन के प्यार, उनके भरोसे और जीवन भर के साथ निभाने के संकल्प का पर्व भी है। पूरे साल बहनों को जिस दिन का इंतजार रहता है वो घड़ी अब बस आने ही वाली है। बाजारों में राखियों की रौनक देखने को मिल रही है। भाई बहन एक दूसरे के लिए तोहफे चुन रहे हैं। हर घर में 28 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन की कहानी थोड़ी अलग है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल क्योंकि सावन पूर्णिमा के दिन जहां एक ओर भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा बंधेगा, वहीं आसमान में एक बड़ी खगोलीय घटना भी घटेगी। जी हाँ, दरअसल 28 अगस्त को ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि रक्षाबंधन पर क्या होगा ग्रहण का असर।

0: इस बार सावन पूर्णिमा पर 5 घंटे 39 मिनट का चंद्र ग्रहण। तो सवाल ये कि क्या इस बार रक्षाबंधन पर मंडराएगा ग्रहण का साया। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट विश्वास, स्नेह और सुरक्षा के संकल्प का वो पावन पर्व जिसका इंतजार हर बहन को पूरे साल रहता है। रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा का बंधन, जिसमें बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा है, जिसे भाई बहन के प्रेम और पवित्र रिश्ते के प्रतीक के रूप में बेहद खास माना जाता है। ये दिन रिश्तों के मिठास और खुशियों की सौगात लेकर आता है, लेकिन इस बार का रक्षाबंधन आम सालों जैसा नहीं है। इस बार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो पूरे 5 घंटे 39 मिनट तक रहेगा।
1: रक्षाबंधन का पर्व एक खास खगोलीय संयोग के साथ आ रहा है। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन है और इसी तारीख को आंशिक चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में ये सवाल है कि ये ग्रहण रक्षाबंधन के पर्व को प्रभावित करेगा।
0: सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के लिए घर घर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों से पट चुके हैं। बहने भाई की कलाई सजाने के लिए राखी चुनने में लगी हैं, भाई बहनों के लिए उपहार तैयार करने में लगी हैं। सबको इंतजार है 28 अगस्त का, जब शुभ घड़ी में बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधेगी। लेकिन इस बार रक्षाबंधन की पूर्णिमा कुछ अलग है। जिस दिन देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनेगा, उसी दिन आसमान में एक बड़ा खगोलीय संयोग भी बन रहा है।
1: ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा को मन, भावनाओं और संवेदनाओं और पारिवारिक संबंधों से जोड़ा जाता है, और रक्षाबंधन भी भाई बहन के प्रेम और भावनात्मक रिश्ते का एक पर्व है, इसलिए दोनों का एक ही दिन होना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संयोग है।
0: 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी एक तरफ कलाई पर राखी का धागा तो दूसरी तरफ आसमान में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया। इसी संयोग ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में कोई बदलाव होगा? क्या ग्रहण के साए में राखी बांधना शुभ होगा? क्या ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में दिखाई देगा रक्षाबंधन वाला चंद्र ग्रहण? क्योंकि पंचांग में ग्रहण का समय सुबह से दोपहर तक बताया जा रहा है और इसी दौरान रक्षाबंधन की पूर्णिमा भी रहेगी, तो क्या सचमुच राखी के शुभ पर्व पर ग्रहण का साया पड़ने वाला है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो यहाँ सूतक काल मान्य होगा। अगर सूतक मान्य नहीं होगा तो राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा? अगर ग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण चरण उसी वक्त होगा जब भारत में बहनें राखी बांध रही होंगी, तो फिर आखिर दोनों घटनाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले समझना होगा कि इस साल रक्षाबंधन की पूर्णिमा कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 तक रहेगी। इसी वजह से उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। यानी 28 अगस्त की सुबह एक बेहद खास समय होगा, पूर्णिमा भी रहेगी, राखी का त्योहार भी होगा और उसी दौरान चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी चल रही होगी। 28 अगस्त को राखी बांधने का समय सुबह 5:58 से 9:48 तक बताया गया है। वहीं 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने की स्थिति बन रही है। ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू होकर दोपहर 12:30 खत्म होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू हो जाएगा तो बहनों के पास राखी बांधने के लिए कितना समय बचेगा? ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन जैसे पवित्र विधान को लेकर श्रद्धालुओं के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, जिनका समाधान जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: 28 अगस्त 2026, सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन और आसमान में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी। एक तरफ भाई की कलाई पर सजने वाला प्रेम और विश्वास का धागा, तो दूसरी तरफ चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया। यानी इस बार की पूर्णिमा से भाई बहन के पवित्र रिश्ते की वजह से खास नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाला ये खगोलीय संयोग भी इसे काफी ज्यादा खास बना रहा है। देखिए, इस बीच सवाल ये है कि क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, भारत में विजिबल होगा? क्या रक्षाबंधन के दिन ग्रहण का सूतक काल भी लगेगा? रक्षाबंधन पर ग्रहण की पूरी उलझन का जवाब जानना भी जरूरी है।

0: 28 अगस्त 2026, एक तरफ सावन की पूर्णिमा, एक तरफ भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन, और इसी दिन आसमान में होने जा रही है साल की आखिरी चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना। यानी इस बार की पूर्णिमा सिर्फ राखी के त्योहार के लिए ही खास नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाले एक बड़े खगोलीय संयोग की वजह से भी चर्चा में है। 28 अगस्त को लगने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़ी सबसे अहम और राहत देने वाली बात ये है कि ये ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देख सकेंगे।
1: वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति के कारण होने वाली एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। वही ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के प्रभावों का आंकलन ग्रहों की स्थिति, राशि और नक्षत्र आदि के आधार पर किया जाता है। दुनिया के जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहां लोग इसका प्रत्यक्ष खगोलीय अनुभव कर पाएंगे।
0: अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। यानी एक ही समय में दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग आसमान में ग्रहण देख रहे होंगे, जबकि भारत में उसी दौरान रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। सवाल ये कि जब भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो क्या इसका सूतक काल यहाँ मान्य होगा, क्योंकि आम तौर पर ग्रहण का नाम आते ही सूतक की चर्चा शुरू हो जाती है।
1: यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसे लेकर वही ग्रहण संबंधी धार्मिक प्रभाव नहीं माने जाएंगे जो किसी दिखाई देने वाले ग्रहण के समय माने जाते हैं। ऐसे में केवल ये संयोग को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन का मूल भाव प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का है, इसलिए इस दिन रिश्तों को मजबूत करना और सकारात्मक भाव रखने पर ध्यान देना चाहिए। रक्षाबंधन के सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं मानी जाएगी।
0: धार्मिक मान्यताओं और वैदिक ज्योतिष में ग्रहण के सूतक काल की गणना लोकल विजिबिलिटी यानी स्थानीय दृश्यता से तय होती है। शास्त्रों में कहा गया है यस्य दृश्यम तस्य फलम, मतलब ग्रहण जहां आंखों से दिखाई देता है सूतक काल, धार्मिक निषेध और उसके अशुभ प्रभाव केवल वही मान्य होते हैं। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिर के कपाट बंद करने, भोजन वर्जित रखने या शुभ कार्यों को रोकने जैसे नियम भी लागू नहीं होंगे।
1: इस बार सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर है कि अगर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है तो क्या रक्षाबंधन से पहले भारत में सूतक काल लग जाएगा। सामान्य भारतीय धार्मिक पंचांग परंपरा के अनुसार भारत में इस चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रक्षाबंधन के दिन केवल ग्रहण के नाम पर पूजा पाठ रोकने, मंदिर बंद करने या सामान्य धार्मिक गतिविधियों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
0: मतलब साफ है, भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा इसलिए रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया नहीं माना जाएगा। बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, राखी की थाली सज सकती है, रोली और अक्षत से भाई का तिलक हो सकता है, आरती उतारी जा सकती है, मिठाई खिलाई जा सकती है और भाई बहन एक दूसरे को उपहार देकर इस रिश्ते की मिठास को और बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राखी की तारीख तय है, 28 अगस्त को पड़ रही है, ग्रहण को लेकर तस्वीर भी साफ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल देखिए इस बीच ये है कि 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा है, यानी मुहूर्त जो लोग पूछते हैं अक्सर किस मुहूर्त पर राखी बांधनी चाहिए वो कौन सा है, जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। अगर सुबह राखी नहीं बांध पाए तो दिन में, शाम को और रात के समय कौन से शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है, आइए चलिए आपको ये भी बता देते हैं।

0: चंद्र ग्रहण को लेकर तस्वीर साफ होने के बाद अब बारी है उस सवाल की जिसका इंतजार हर भाई और बहन को है। आखिर 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा? इस बार रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण का संयोग जरूर बना है, लेकिन भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ऐसे में ग्रहण का सूतक मान्य नहीं माना जा रहा है।
1: ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए ग्रहण को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर संवेदनशील समय माना जाता है। ऐसे में अनावश्यक डर, तनाव, गुस्सा या किसी रिश्ते में गलतफहमी बढ़ने से बचना चाहिए। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रक्षाबंधन का ये पर्व नकारात्मक हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के कारण रक्षाबंधन प्रेम, सुरक्षा, विश्वास और पारिवारिक जुड़ाव का पर्व है, इसलिए इस दिन भाई बहन के बीच प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है।
0: रक्षाबंधन पर सिर्फ ग्रहण ही नहीं, भद्रा को लेकर भी विशेष सावधानी बरती जाती है। हिंदू पंचांग में भद्रा को ऐसे समय के रूप में देखा जाता है जिसमें मांगलिक और शुभ कार्य करने से बचने की परंपरा रही है। इस बार 27 अगस्त को भद्रा का प्रभाव सुबह 9:08 से रात 9:32 तक रहेगा, यानी 27 अगस्त की रात तक भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए किसी भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। यही वजह है कि बहनें 28 अगस्त को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मना सकती हैं। अब बात करते हैं राखी बांधने के सबसे शुभ समय की। 28 अगस्त की सुबह 6:23 से 9:48 तक का समय राखी बांधने के लिए सबसे शुभ बताया गया है।
2: सूर्योदय से लेकर 9:48 तक पूर्णमासी का समापन होने तक पूर्णतया सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त है। इस बीच में रक्षा सूत्र अपनी भाई को बांध सकती है बहन।
0: यानी सुबह का ये समय भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बेहद खास रहेगा। इस दौरान बहनें पूजा की थाली सजाकर भाई को तिलक लगा सकती हैं, आरती कर सकती हैं, मिठाई खिला सकती हैं और इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। अगर किसी वजह से सुबह के मुहूर्त में राखी नहीं बांधी जा सकी तो दिन में भी दूसरे शुभ मुहूर्त मौजूद हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:05 तक रहेगा। अगर सुबह और दोपहर में राखी बांधना संभव नहीं है तो शाम को भी शुभ समय उपलब्ध रहेगा। शाम के समय गोधूली मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:57 से 7:19 तक रहेगा। इस दिन चौघड़िया के अनुसार शुभ, लाभ और अमृत वेला में राखी बांधी जा सकती है। चौघड़िया के हिसाब से देख लें तो दिन में कई अच्छे समय मिल रहे हैं। लाभ चौघड़िया सुबह 7:57 से 9:31 तक रहेगा। इसके बाद अमृत चौघड़िया सुबह 9:31 से 11:05 तक रहेगा। दोपहर में शुभ चौघड़िया 12:40 से 2:14 तक रहेगा। शाम को चर चौघड़िया 5:22 से 6:57 तक रहेगा। रात में लाभ चौघड़िया 9:48 से 11:14 तक रहेगा।
3: सबसे जरूरी है कि अपने घर में जो आपके ठाकुर जी हैं, आप उनको पहले रक्षा सूत्र बांधें, भगवान से आज्ञा लेकर के तब अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें, क्योंकि हमारे इस घर में जो ईश्वर विराजमान है उसका प्रसाद स्वरूप लेकर के राखी हम बांधेंगे। और जिस कामना से हम रक्षाबंधन करने जा रहे हैं, बहने रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, वह उनकी कामना फलीभूत होगी और उनका भाई आयुष्यमान होगा, दीर्घायुष्य होगा। यह मंगल कामना के साथ इस त्योहार को हम बनाए।
0: रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, ये पर्व भावनाओं, विश्वास और आत्मिक रक्षा के उस पवित्र धागे का नाम है जो काल और परिस्थितियों से परे है। शास्त्रों में विधान है कि जिन बहनों के सगे भाई नहीं है वो जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं।
2: सामान्यतया ये माना जाता है कि अगर अपना सगा भाई ना हो तो अपने चचेरे भाई आदि, ममेरे भाई आदि को बांधते, पर अगर किसी प्रकार के मन में कामना नहीं है तो गणेश जी को अपना भाई बनाने का विधान है। या भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधने पर वो भाई के समान आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये माना जाता है।
0: पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में रक्षाबंधन का विशेष महत्व बताया गया है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से सबसे भावुक कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया तो युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि समय आने पर वो आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे, और द्रौपदी के चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने इस वचन को निभाया।
2: तीसरी कथा एक और आती है जो कि हमने भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का अभय वर देने का था। इस प्रकार से हम मानते हैं ये केवल भाई बहनों का ही त्योहार नहीं, ये रक्षा सूत्र है। पुरोहित अपने जजमानों को बांधते हैं उनकी मंगल कामना के लिए, और वर्ष पर्यंत उनकी सुरक्षा, आयु, धन संपत्ति आदि की सुरक्षा होती रहती है।
0: इसीलिए रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधा धागा नहीं है, ये विश्वास का बंधन है। एक बहन जब राखी बांधती है तो वो सिर्फ भाई की कलाई नहीं बांधती, वो अपने विश्वास को बांधती है। और भाई जब उस राखी को स्वीकार करता है तो वो सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि बहन की रक्षा, सम्मान और साथ निभाने का संकल्प स्वीकार करता है। रक्षाबंधन का त्योहार संदेश देता है कि रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं रिश्तों की भी होती है, साथ सिर्फ सुख में नहीं संकट में भी होता है, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त आने पर एक एक वचन का कर्ज चुका देते हैं। यही वजह है कि सदियों बाद भी कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता याद दिलाता है कि राखी का धागा छोटा जरूर होता है लेकिन उसमें बंधा विश्वास बहुत बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेएनटी के साथ।
5: दशकों बाद बन रहा है विशेष संयोग, राखी पर चंद्र ग्रहण, क्या होगा असर? रक्षाबंधन का ग्रहण योग देखिए शाम 7:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है? घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए? क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने सुधार की एक नई और सकारात्मक पहल की है। थाने की हवालत में बंद आरोपियों को सजा के साथ साथ खुद को बदलने और बेहतर बनाने की प्रेरणा दी जा रही है। देखिए, कोशिश यह है कि अपराध से दूर होकर आरोपी समाज की मुख्य धारा में एक बार फिर से लौट सके। थाने पहुंचने वाले फरियादियों के लिए भी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे शिकायत लेकर आने वाला हर व्यक्ति खुद को सहज और सम्मानित महसूस कर सके।

0: थाना इस शब्द के जहन में आते ही एक अलग ही भाव उभरता है। पुलिस थाने की छवि आमतौर पर डर, संकोच और विश्वास से जुड़ी रही है, लिहाजा सामान्य तौर पर आम लोग वहां जाने से कतराते हैं। लेकिन ये पुलिस थाना उस छवि को न सिर्फ तोड़ता नजर आता है, बल्कि वहां की व्यवस्थाएं लोगों को आकर्षित करने वाली भी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के इस थाना कोतवाली के अंदर जाने पर एक स्कूल जैसा माहौल आपको नजर आएगा। यहाँ की दीवारों पर की गई पेंटिंग, उस पर लिखे गए स्लोगन, तस्वीरों के साथ प्रेरणादायक कहानियों को दर्शाया गया है। दरअसल बड़वानी पुलिस यहाँ के हवालातों को सुधार कर पाठशाला बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रही है और उसी को लेकर ये बदलाव नजर आ रहा है। इसमें पुलिसिंग के साथ अब इंसानियत, सकारात्मक सोच और व्यवस्था को जगह दी गई है। दीवारों पर महात्मा बुद्ध की सीख के बाद डाकू उंगली माल के हृदय परिवर्तन की कहानियों को चित्रों के जरिए उकेरा गया है। इसी तरह रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने जैसी कथाओं को भी चित्रों के जरिए बताने की कोशिश की गई है, ताकि हवालात में बंद लोगों को इन सब से सीख लेते हुए खुद में बदलाव करने का मौका मिल सके। जिले के पुलिस अधीक्षक पदम विमोचन शुक्ल ने थानों को सिर्फ अपराध पर कार्रवाई करने की जगह नहीं, बल्कि सकारात्मक माहौल वाले सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल की है।
1: थाने में लोग जो आते हैं, आगंतुक आते हैं या आरोपी आते हैं, एक नकारात्मक विचार लेके ही आते हैं, तो हम सभी का ये था क्यों ना थाने का हमको ऐसा खुशनुमा माहौल बनाया जाए कि अगर इसमें आरोपी भी आ रहा है तो उसका हृदय परिवर्तन होके यहाँ से जाए। तत्पश्चात हम सब लोगों ने कई लोगों से बातचीत की, जिसमें हमारे कुछ प्रमुख न्यायमूर्ति महोदय थे, रिटायर्ड जज साहबान थे, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी साहबान थे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम सबसे पहले शुरुआत हवालात से करते हैं, क्योंकि वहाँ आरोपी आता है वो एक विचित्र सी मानसिक अवस्था से गुजरता रहता है और उसमें कुछ तब्दीली हो सके, उसके विचारों में कुछ परिवर्तन हो सके, इस कारण से हमने हवालात में सुधार करने का प्रयास किया।
0: किसी तरह अपराध के अपराधियों में सुधार के साथ ही यहाँ शिकायत लेकर आने वालों को अच्छा महसूस कराने के लिए भी तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। थाने में फरियाद लेकर आने वालों और उनके साथ अगर बच्चा भी हो तो उसका भी ध्यान रखा गया है। फरियादों के बैठने के लिए व्यवस्थित जगह बनाई गई है, तो बच्चों के लिए कॉमिक्स की व्यवस्था भी की गई है। महिला फरियादियों के लिए महिला डेस्क पर सैनिटरी पैड की व्यवस्था की गई है। वहीं छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग स्थान भी बनाया गया है। इन थानों की सजावट किसी होटल और मॉल की तरह नजर आती है। फिलहाल बड़वानी जिले में 5 थानों में बदलाव की शुरुआत की गई है।
1: यूं ही एक मन में विचार आया कि हमारे थाने में आने वाले जो आरोपी गण हैं, गिरफ्तार व्यक्ति हैं, उनमें हम अगर कुछ सुधार कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। लोगों की ये सुविधा के लिए ही हम सब लोगों ने ये चीज चालू की है, क्योंकि जैसा माहौल रहेगा वैसे ही पुलिसकर्मी का बर्ताव होता है, तो एक स्वस्थ माहौल आने से पुलिसकर्मियों के व्यवहार भी बदलाव होगा। इस सिलावत, सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण और राजपुर, इनको उच्च गुणवत्ता के कारण इनको ISO 9000 सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया, साथ ही साथ हमारे SP ऑफिस को भी ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।
0: थानों में मौजूद रिकॉर्ड को भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। फाइलों के ढेर को बॉक्स में व्यवस्थित कर उन पर पहचान संबंधित विवरण लगाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड को आसानी से तलाशा जा सके। मालखाना, शास्त्रागार समेत थाने में खड़े जब्त वाहनों पर QR कोड भी लगाए गए हैं, ताकि उनसे जुड़ी तमाम जानकारी आसानी से मिल सके। बड़वानी से जैद अहमद शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। ये दिल्ली हमारी है, इसलिए सॉल्यूशन भी हम बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, पॉल्यूशन की जंग को लड़ेंगे। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ। अब मिलकर हवा बदलेंगे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तीसरी वर्षगांठ पर कल मनेगा जश्न। भारत ने 3 साल पहले 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी सतह पर उतारा था अंतरिक्ष यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में जुड़ने की अपील की। गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा शोध, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की जांच रिपोर्ट, इलाज भी होगा आसान। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी बैन हुआ एनालॉग पनीर, 1 साल तक इसके भंडारण, बिक्री और सप्लाई पर लगी रोक, लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। काली नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने, सरकारी योजना बन रही संजीवनी, 1 जिला 1 उत्पाद योजना से उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। केरल में 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन, पुनमाड़ा झील में हुई रेस में 22 स्नेक बोट समेत कुल 71 नावें हुई शामिल। चीन के चोंगकिंग में फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल की रौनक, 68 आकृतियों से जगमग हुआ इलाका, 1000 साल के इतिहास की दिखी झलक।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयों और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग इसे बिना जांचे बिना परखे सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन पर सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे बिना समझे बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं और शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि महिला यात्री से बदसलूकी के बाद बस कंडक्टर को एक यात्री जमकर पीटा। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है, जहां पर पुल ना होने के कारण बच्चे गोगा नदी को पैदल पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
7: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये देखा जा रहा है कि कंडक्टर पर महिला यात्री को गलत तरीके से छूता है, जिसके बाद एक लड़का कंडक्टर की जमकर पिटाई कर देता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।

0: एक महिला के साथ बदसलूकी का बताकर एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें महिला एक बस में चढ़ती हुई दिखाई देती है, उसी दौरान बस कंडक्टर महिला को गलत तरीके से छूता हुआ नजर आता है। इसके बाद एक लड़का कंडक्टर को बस से नीचे उतार कर सड़क पर लाता है और उसे कई थप्पड़ मारता है। वीडियो के साथ लोग लिख रहे हैं कि महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर इस लड़के ने बस कंडक्टर को अच्छी तरह सबक सिखाया। वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला एक बस में चढ़ती हुई दिखाई देती है, उसी दौरान बस कंडक्टर महिला को गलत तरीके से छूता हुआ नजर आता है। इसके बाद एक लड़का कंडक्टर को बस से नीचे उतारकर सड़क पर लाता है और उसे कई थप्पड़ मारता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम पड़ताल में जुट गई। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा उसने और सुना। इस दौरान वीडियो में आ रही आवाजों पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो बांग्ला लगा और साथ ही वीडियो में नजर आ रहे पिलर पर भी बांग्ला टेक्स्ट देखने को मिल रहा था। मतलब वायरल हो रहा वीडियो किसी बांग्ला भाषी इलाके का हो सकता है, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सही है तो वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है? जब हमने इन सवालों की जांच की है तो क्या पाया है इस रिपोर्ट में देखिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो बांग्लादेश के चट्टोग्राम के एक फेसबुक अकाउंट की पोस्ट में मिला। इस वीडियो के आखिर में इसमें दिख रहे लोग एक साथ खड़े होते हैं और बताया जाता है कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है।
2: तो अस्सलाम वालेकुम उधर आता कौन जे वीडियो टी देखते हैं चेटी हो चाहे हमारे स्क्रिप्टेड वीडियो
0: की। इसके अलावा लोगों से वीडियो को लाइक और शेयर करने की अपील भी की जाती है।
2: बीच-बीच करो शेयर करना, लाइक कमेंट करना। नेक्स्ट उन लोगों ने वीडियो आपरा देखा पे अल्लाह हाफिज़।
0: इस फेसबुक पेज पर हमें कई स्क्रिप्टेड वीडियोस भी देखने को मिले। इन वीडियोस में महिला का किरदार निभाने वाला शख्स भी कोई पुरुष ही होता है। वायरल वीडियो में जिस महिला को दिखाया गया है असली वीडियो के आखिर में देखने पर वो भी एक पुरुष ही नजर आता है। साफ है कि जिस वीडियो को महिला से छेड़छाड़ के बाद बस कंडक्टर की पिटाई का बताकर शेयर किया जा रहा है वो असल में एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, यानी इसमें नजर आ रहे लोग एक्टिंग कर रहे हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है, जहां पुल ना होने के कारण बच्चे गोगा नदी को पैदल पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। लेकिन जब हमने वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया तो क्या सच और झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।

0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म पहने कुछ बच्चे एक नदी को पैदल पार करते हुए साफ दिख रहे हैं। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह नजारा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है, जहां पुल ना होने के कारण बच्चे रोज गोगा नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। भीम आर्मी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना की। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, ये दृश्य भाजपा सरकार के विकास के दावों की जमीनी हकीकत दिखा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है, जहां पुल ना होने के कारण बच्चे गोगा नदी को पैदल पार कर रहे हैं और स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सर्च किया, उत्तर प्रदेश के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सही होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में खबरें जरूर होती, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? जब हमने जांच की है तो क्या कुछ सामने आया है इस रिपोर्ट में देखिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक फेसबुक पेज पर मिला, जहां से 16 जुलाई को पोस्ट किया गया था। यहां मौजूद कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो उत्तराखंड के टिहरी जिले का है, जहां पुल ना होने से बच्चों को इसी तरह नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है। मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया, लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें 18 जुलाई को छपी एक रिपोर्ट मिल गई। इसमें ये जानकारी दी गई थी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 25 किलोमीटर दूर विकास खंड जौनपुर में बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालते हुए सोंग नदी पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरसात के मौसम में जब सोंग नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, तब आसपास के गांवों के करीब 20 से 30 छात्र छात्राओं को रोज इसी तरह स्कूल जाना पड़ता है। इस दौरान बच्चों के कपड़े और जूते पूरी तरह से भीग जाते हैं। सोंग नदी पर कोई पुल ना बनने के कारण सालों से ये स्थिति बनी हुई है। जब बच्चे नदी पार करते हैं, तब कभी किसी के पिता तो कभी कोई गांव वाला मदद कर देता है। अगर किसी दिन नदी का बहाव और बढ़ जाए तो उन्हें बड़ा हादसा होने का डर भी सताता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो उत्तराखंड के टिहरी जिले का है, जहां के बच्चे सोंग नदी को पार कर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। रद्धदीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ हो रहा है, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी।
7: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटी बहन अपने भाई की जिस तरह देखभाल करती नजर आ रही है, उसे देख लोग भावुक हो रहे हैं। वायरल वीडियो में भाई बहन के बीच का बेहद मासूम रिश्ता देखने को मिलता है। छोटा भाई अपनी ही दुनिया में मस्ती करता नजर आता है, जबकि उसकी बहन लगातार उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती दिखती है। कभी वो भाई की स्कूल ड्रेस ठीक करती है, कभी उसे संभालती हुई नजर आती है। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा तो वो है जब बहन अपने छोटे भाई को गोद में लेकर घूमती नजर आती है। उसकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन भाई के लिए उसके व्यवहार में जिम्मेदारी और अपनापन साफ झलक रहा है। भाई की ड्रेस ठीक करने से लेकर उसे संभालने तक बहन के हर छोटे प्रयास में एक अलग ही प्यार नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने छोटे भाई की सिर्फ बहन नहीं बल्कि उसकी छोटी सी केयर टेकर भी हो। यही मासूम पल वीडियो को खास बना रहे हैं। इसमें न कोई बड़ी बात है, न कोई बनावटी भावनाएं, लेकिन भाई बहन के बीच दिख रहा अपनापन सीधे लोगों के दिल तक पहुँच रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। क्या एक छोटा बच्चा स्कूल में अपनी टीचर से बेहद मासूमियत से बात करता दिख रहा है। बच्चे की प्यारी बातें, उसकी मासूमियत देख लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। टीचर के प्रति इस बच्चे के लगाव को देखकर लोग इस वीडियो पर खूब प्यार भी लुटा रहे हैं।
8: जब से तुम यहाँ पे नाम लिखाया तब से प्यार करती हूँ। रो नहीं, बातें मैं पूछ रही हूँ तो ढंग से बोलो। रो नहीं, मैं मारी हूँ कि रो रहे हो।
7: वीडियो ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।
8: पहले ये बताओ कि जब से नाम लिखवाया तब से प्यार करती हूँ, अब नहीं करती
9: हूँ?
8: क्या कर बाइक चाहिए तुमको? चलो तुम्हारे बर्थडे पे मैं बाइक खरीद के दूंगी, ओके? गिफ्ट में, ओके?
7: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर कमेंट्स करते हुए यूजर्स कह रहे हैं कि किसी को कम आंकना भारी पड़ सकता है। वीडियो में एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर दो छोटे लड़के और दो लड़कियां ग्लव्स पहनकर आमने सामने नजर आते हैं। मुकाबला शुरू होने से पहले दोनों लड़के इशारा करते हैं कि इनका तो चंद सेकंड में ही काम खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता है दोनों बच्चियां बिना डरे लड़कों पर मुक्कों की बरसात कर देती हैं। बच्चियों के इस आक्रामक हमले और लगातार पड़ते पंचों के आगे लड़के खुद को बचा नहीं पाते और रिंग में ही रोने लगते हैं। लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। योग से न सिर्फ तन स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी ऊर्जावान बना रहता है। इन बच्चों को जरा देखिए, अपनी फिटनेस के दम पर क्या सुंदर फॉर्मेशन बनाया है, वो भी मिनटों में, कोई चूक नहीं। इनके बीच तालमेल भी गजब का है। योगा स्टूडेंट्स का ये वीडियो देख लोग इनकी फिटनेस की तारीफ भी कर रहे हैं। खेल भी एक्सरसाइज भी, देखिए जरा इन्हें टास्क मजेदार जो मिला है। दो अलग अलग घेरे और उनमें एक एक पांव रखना है और फिर एक हाथ गर्दन के पीछे रखनी है और एक हाथ से सामने रखी पेंसिल उठाकर पीछे के चौकोर घेरे में डालनी है। ध्यान रहे पेन बाहर नहीं ना निकल जाए। प्रतियोगिता दो बच्चों के बीच है और इसे जीतने के लिए दोनों बच्चे जिस तरह से मेंढकों की तरह उछल कूद कर रहे हैं वो देखना दिलचस्प है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना और मस्ती करना भी बेहद जरूरी है। स्कूल के मैदान में खेलकूद बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के साथ उनके मानसिक विकास में भी मदद करता है। इन तस्वीरों में बच्चे गाने की धुन पर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में बड़े ही मजेदार तरीके से छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। इस गतिविधि के जरिए बच्चों का बैलेंस और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। पढ़ाई के बीच मस्ती भरे ये पल बच्चों को तरोताजा कर दे रहे हैं। ओडिशा के रायगढ़ के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले नारायण जेना सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। जेना शरीर से दिव्यांग हैं, लेकिन वो जैसे हैं क्लासरूम में रेंगते हुए घुसते हैं, वैसे ही बच्चे उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। ये नजारा दिखाता है कि संस्कार से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। वीडियो में नारायण जेनी जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, बच्चे अपनी दरी से खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर जेनी किसी तरह पीछे रखी हरे रंग की कुर्सी को आगे खींचकर उस पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद एक बच्ची उन्हें पढ़ाने के लिए किताब देती है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के प्यार और सम्मान को दिखाने वाला ये लम्हा इंटरनेट को इतना भाता है कि यूजर्स इसके दीवाने हो जा रहे हैं। किसी का जन्मदिन खास बनाने के लिए हमेशा महंगी गिफ्ट या बड़ी पार्टी की जरूरत नहीं होती। कई बार तो एक छोटा सा सरप्राइज और दिल से की गई कोशिश किसी के लिए जिंदगी भर की याद बन जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब बेंगलुरु में रहने वाली एक रूसी महिला ने अपने घर में काम करने वाली महिला के जन्मदिन पर उन्हें अचानक सरप्राइज दे दिया। जैसे ही केक सामने आया और परिवार ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, वो अपनी भावनाओं पर काबू रख नहीं पाई और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। इस खूबसूरत पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग रूसी महिला की इस छोटी सी कोशिश की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। बेटी का जन्म हुआ है, ये सुनने के बाद अब कई परिवारों ने सामाजिक सोच को बदलते हुए नया नजरिया दुनिया को दर्शाया है। अब परिवार बेटी के जन्म पर खुशी जताते हैं, इतनी खुशी मानो उन्हें दुनिया मिल गई।

0: बाहर लाया जा रहा था। इन कारों को भी गुब्बारों से सजाया गया था और लग रहा था कि परिवार बेटी को शान से घर ला रहा है। फिर घर के बाहर बेटी के आते ही अलग लेवल का सेलिब्रेशन शुरू हो गया। सजे हुए घर के बाहर पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा मोहल्ला डांस करता दिख रहा है। इस वीडियो को देखने वाले परिवार की खुशी को महसूस कर पा रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और खूब प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। यहाँ दादा पोती के रिश्ते की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। दादाजी का स्नेह और पोती के प्रति अपनापन देख यूजर्स इमोशनल हो रहे हैं। लोग इस प्यारे से पल को खूब पसंद और शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो में दादाजी अपनी पोती के स्कूल जाने की तैयारी में उसका साथ देते नजर आते हैं। वो बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि क्या वो उसके स्कूल बैग में किताबें रखने में मदद करें।
1: मैं डाल देता हूँ। अच्छा, हो रहा है अभी बुक।
0: दादाजी का ये छोटा सा सवाल सुनने में भले ही सामान्य लगे लेकिन इसमें पोती के लिए उनका अपनापन और चिंता साफ दिखाई देती है। बच्चों के लिए स्कूल जाने की तैयारी रोजमर्रा की बात होती है लेकिन दादाजी के लिए पोती के साथ बिताया यही छोटा सा पल बेहद खास नजर आता है। वीडियो में दादाजी जिस सहज अंदाज में उसकी मदद करने की बात करते हैं वो लोगों को काफी भावुक कर दे रहा है। इंडोनेशियाई सेना के ट्रेनिंग प्रोग्राम का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दे रहा है। वीडियो में सेना की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवानों के लिए एक खास समारोह रखा गया था। वहां ज्यादातर युवा सैनिकों के साथ उनके माता पिता, पार्टनर या परिवार के लोग मौजूद रहे। हर तरफ खुशी और गर्व का माहौल था लेकिन इसी बीच एक जवान ऐसा भी था जो अकेला खड़ा दिखा। जहां बाकी सैनिक अपने करीबियों के साथ इस खास पल को सेलिब्रेट कर रहे थे वहीं उस जवान के पास कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। वो चुपचाप बाकी लोगों से थोड़ा अलग खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी जिसे देख शायद ही कोई अपनी भावनाएं रोक पाए। तभी वहां मौजूद एक सीनियर अधिकारी की नजर उस जवान पर पड़ी। उन्होंने उसकी स्थिति को समझने में देर नहीं लगाई। अधिकारी सीधे उसके पास पहुंचे और उसे अपने पास बुलाकर गर्मजोशी से गले लगा लिया। ये कोई औपचारिक सैन्य सलाम या बधाई नहीं थी बल्कि बिल्कुल एक पिता की तरह दिया गया अपनापन था। शुरुआत में जवान ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपनी भावनाओं को रोक कर रखने की भी पूरी कोशिश की लेकिन शायद उस पल का अकेलापन और अचानक मिला प्यार दोनों ही उसके लिए बहुत ज्यादा थे। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो अधिकारी के कंधे से लगकर रो पड़ा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कस

0: करते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है? घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए? क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी।
8: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
7: आपको कितने लगेंगे?
9: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
10: There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we've listening. And our esteemed jury is going to judge that. The chief minister will adopt that.
9: अब मिलकर हवा बदलेंगे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
14: अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तीसरी वर्षगांठ पर कल मनेगा जश्न। भारत ने 3 साल पहले 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील की। गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा रिसर्च, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की रिपोर्ट, इलाज भी होगा इससे आसान। केरल में 72वीं रोमांचक नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का मुकाबला, पुनमाड़ा झील में हुई प्रतियोगिता, 22 स्नेक बोट समेत 71 नावें हुई शामिल। उत्तर प्रदेश के कालीन नगरी बदोई के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने, सरकारी योजना बनी उनके लिए संजीवनी, एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। चीन के चोंगकिंग में पहले फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल की दिखी रौनक, 68 आकृतियों से जगमग हुआ पूरा इलाका, 1000 साल के इतिहास की दिखी झलक।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उस।
14: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात सेना की तैयारियों की कर लेते हैं। थल सेना के एविएशन विंग ने जैसलमेर में जब हाईवे पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर उतारे तो लोग देखते ही रह गए। थल सेना ने इस अभ्यास को युद्ध जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया ताकि विपरीत हालात में ये हाईवे सुरक्षित ठिकाना बने। पहले भी आप सुन चुके होंगे जब वायुसेना के विमानों ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ जैसे अभ्यास किए हैं ताकि एक्सप्रेसवे और हाईवे सेना के लिए मजबूत आधार बने रहे।
4: राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में अपाचे की गर्जना, रुद्र का पराक्रम, शौर्य और वीरता का प्रदर्शन, भारत पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर और वाड़मेर सेक्टर में भारतीय थल सेना का एक बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है। जोधपुर आर्मी एविएशन कोर के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भारतमाला हाईवे की एक खास पट्टी पर सीधे उतरते और उड़ान भरते नजर आए। आमतौर पर किसी भी सैन्य मिशन के लिए एयरबेस या पक्के हेलीपैड की जरूरत होती है, लेकिन युद्ध जैसे हालात या किसी आपातकालीन स्थिति में अगर मुख्य रनवे क्षतिग्रस्त हो जाए तो सेना को वैकल्पिक रास्तों की जरूरत पड़ती है। इसी रणनीति के तहत जवानों ने नेशनल हाईवे को ही अस्थायी एयरबेस में बदलकर अपनी लैंडिंग और टेकऑफ की क्षमता को सफलतापूर्वक परखा। इस दौरान रेत के टीलों के बीच बनाए गए हेलीपैड से थल सेना के 3 AH-64E अपाचे और 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र ने अपना पराक्रम दिखाया। जमीनी लड़ाई का सबसे ताकतवर हथियार अपाचे हेलीकॉप्टर सेना के कई और स्वदेशी हेलीकॉप्टर के साथ सैन्य अभ्यास में जुटा है। जोधपुर आर्मी एविएशन कोर की यूनिट के ये ताकतवर हेलीकॉप्टर्स इन दिनों जैसलमेर सेक्टर में हाईवे पर लैंडिंग और टेकऑफ का अभ्यास कर रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़कें काफी मजबूत और चौड़ी हैं। युद्ध या आपदा के समय इन सड़कों का उपयोग लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को लैंड कराने के लिए किया जा सकता है। इस अभ्यास का मकसद यही था कि विपरीत परिस्थितियों में भी ईंधन भरने, हथियारों को लोड करने और घायल जवानों को तुरंत रेस्क्यू करने का काम बिना रुके चलता रहे। इस युद्धाभ्यास में सेना ने ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों के खतरों से निपटने का भी अभ्यास किया। भारतीय सेना का ये कदम दर्शाता है कि सरहद पर देश की सुरक्षा हर हालत में पूरी तरह मजबूत बनी रहनी चाहिए। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये अंधेरे में और रात में भी दुश्मन को आसानी से खोजकर निशाना बना सकता है। इसमें हेलफायर मिसाइलें, स्टिंगर मिसाइलें और 30 mm की ऑटोमेटिक गन लगी होती है जो दुश्मन के टैंक को पल भर में तबाह कर सकती है। यह करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इस पर गोलियों का असर भी नहीं होता। अगर रुद्र हेलीकॉप्टर की बात करें तो रुद्र भारत में बना एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये एक साथ कई काम कर सकता है। इसमें रॉकेट, मिसाइल और टरेंट गन लगी होती है जो थल सेना को सीधा सपोर्ट करती है। रुद्र हेलीकॉप्टर रेगिस्तान के ऊंचे तापमान और उड़ती धूल के बीच भी बिना किसी रुकावट के काम करने में सक्षम है। अपाचे और रुद्र सिर्फ अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि भारत की लगातार विकसित हो रही एयर लैंड वॉरफेयर क्षमता का अहम हिस्सा है। इसे थल सेना को शक्तिशाली हवाई सहायता देने और चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थितियों में दुश्मन के खतरों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी महीने के पहले हफ्ते में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एयरफोर्स ने रोटर क्लैप 3rd युद्धाभ्यास किया था। इसमें हाई इंटेंसिटी हेलीकॉप्टर अभ्यास के दौरान ड्रोन और मानव रहित एयर सिस्टम के खतरे से निपटने पर फोकस किया गया था। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
14: थाईलैंड में थल सेना के जवानों और थाई शाही सेना का मैत्री अभ्यास का 15वां संस्करण चल रहा है जिसमें दोनों देश के जवान आतंकवाद से निपटने के तौर तरीकों को लेकर अभ्यास कर रहे हैं। देखिए मैत्री अभ्यास 31 अगस्त तक चलने वाला है।
15: थाईलैंड में हिंद के जवानों के शौर्य का प्रदर्शन, मैत्री युद्धाभ्यास भारत थाईलैंड की दोस्ती का प्रमाण। थाईलैंड के सूरत थानी के रंगसित कैंप में इन दिनों भारतीय और थाईलैंड के जवानों के युद्ध कौशल की गवाही दे रहा है। 18 अगस्त से यहां पर भारत और थाईलैंड की सेनाओं ने सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास मैत्री की शुरुआत की थी। ये दोनों सेनाओं के युद्धाभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण है। ये युद्धाभ्यास दोनों मित्र राष्ट्रों की सैन्य क्षमताओं और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्धाभ्यास मैत्री 30 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ सैन्य क्षमताओं और युद्ध नीति को एक दूसरे से साझा करेंगी। भारतीय सेना और थाई शाही सेना की टुकड़ियों में 85-85 जवान शामिल हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी में मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स के जवान हैं, जबकि थाई सेना की टुकड़ी में 5वीं डिवीजन की 25वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की 3री बटालियन के जवान शामिल हैं। इस अभ्यास का मकसद जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और क्षमता को बढ़ाना है। ये अभ्यास जंगल और शहरी वातावरण में उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त अभियानों को अंजाम देने में दोनों देशों की क्षमताओं को बढ़ाएगा। दोनों देशों के जवान मुआय थाई की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसे आर्ट ऑफ 8 लिम्स भी कहा जाता है। वजह है कि इसमें 2 मुट्ठियों, 2 कोहनियों, 2 घुटनों और दोनों पैरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर भविष्य में कभी दोनों सेनाओं को मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा तो मैत्री युद्धाभ्यास की बदौलत दोनों सेनाएं बेहतर तालमेल के साथ मिशन को अंजाम दे सकेंगी। इस युद्धाभ्यास से भारत और थाईलैंड के सशस्त्र बलों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस सामरिक अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
16: तो चलिए बात जन्माष्टमी की कर लेते हैं। तो जन्माष्टमी का त्यौहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर दिल्ली में होगा मटकी फोड़ लीग का आयोजन। मटकी फोड़ लीग में 26 गोविंदा टीमों के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। एमपीएल का ये दूसरा साल है और एक कार्यक्रम में आधिकारिक एंथम सॉन्ग और मस्कट मटकू लॉन्च किया गया।

0: बार फिर आएंगे कान्हा। मटकी फोड़ेंगे कृष्ण मुरारी गिरधारी, नंद गोपाल मुरलीधर कुंज बिहारी, गोवर्धन धारी गोविंदा बाके बिहारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर खूब जमेगा रंग। जब दिल्ली के कोने कोने से आई गोविंदाओं की टोलियां ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाएगी, दही हांडी की मटकी फोड़ने के लिए एक बार फिर अपना दमखम दिखाने के लिए जुटेंगी, जोश और उत्साह चरम पर होगा। जब राजधानी दिल्ली में मटकी फोड़ ली यानी एमपीएस सीजन 2 का भव्य आयोजन होगा। माखन की मटकी फोड़ने की सदियों पुरानी परंपरा शानदार खेल प्रतियोगिता के रूप में जीवंत होगी। राजधानी में पिछले 23 वर्षों से आयोजित हो रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की परंपरा को इस वर्ष एमपीएल के साथ और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी की गई है। इसी सिलसिले में अब एमपीएल का अपना एंथम और मैस्कॉट मटकू भी लॉन्च कर दिया गया है।
1: हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ एक टीम के रूप में खेलें। तो हमारा ये मटकी फोड़ जो खेल है, गोविंदाला ये मटकी फोड़ जो खेल है, ये ऐसा खेल है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ टीम के रूप में पैरामिड बनाते हैं और मटकियों को फोड़ने का जो प्रभु लीला का प्रदर्शन है वो करते हैं। तो हम इस बार इसको बड़े स्केल पे बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं।
0: दिल्ली में इस बार मटकी फोड़ लीग यानी एमपीएस सीजन 2 का आयोजन 3 और 4 सितंबर को किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एमपीएल में शामिल गोविंदा टीमों के बीच मुकाबला होगा। इसमें इस बार 26 गोविंदा टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से 10 टीमें लड़कियों की हैं। टीमों ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है।
1: 2 महीने से लगभग ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस लीला को अब एक स्पोर्ट्स के रूप में देखना शुरू कर दिया गया है। लगभग दिल्ली में आप खुश होंगे ये जानकर के कि इस लीला के माध्यम से जो ये स्पोर्ट्स बन गया है, अब लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे आज हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ गए हैं। जो स्पोर्ट्स से नहीं थे वो एथलीट्स बनने जा रहे हैं।
0: आपको बता दें कि दिल्ली से पहले मुंबई में प्रो गोविंदा लीग सीजन 4 होने जा रहा है। 25 से 27 अगस्त 2026 तक वर्ली के स्टेडियम में प्रो गोविंदा लीग में मुंबई सहित महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से आए गोविंदाओं की टीमें मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करेंगी। इस दौरान विजेता टीमों को लाखों रुपए के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पारंपरिक दही हांडी उत्सव को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। इसी के बाद से इसे प्रोफेशनल खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रो गोविंदा लीग की शुरुआत की गई, और अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने की कोशिश हो रही है, ताकि किशोरों और युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ा जा सके, और साथ ही साथ इनमें टीम भावना, अनुशासन, साहस, नेतृत्व, शारीरिक क्षमता और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत किया जा सके। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टुडे।
2: तो देखिए, मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर चल रही तैयारियों ने तेजी पकड़ ली है। मुंबई के गणेश गली का पंडाल काफी चर्चित पंडालों में से एक है। यहाँ पर मुंबई के राजा विराजते हैं। यहाँ पर सजावट, लाइटिंग और भव्य मुख्य द्वार निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार इनका 99वां साल है। इस बार पंडाल की सजावट की थीम महाराष्ट्र के संतों पर आधारित है।
0: सजावट पूरी होने को है, रोशनियां जगमगाने लगी हैं, भव्य द्वार आकार ले चुका है, और अब बस इंतजार है उस पल का जब मुंबई के राजा का दरबार भक्तों के लिए सचकर तैयार होगा। मुंबई की गलियों में बप्पा के स्वागत की आहट सुनाई देने लगी है। हर तरफ तैयारियों की गति तेज हो गई है। कारीगर दिन रात जुटे हैं। कहीं पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनियों से परिसर को सजाया जा रहा है।
3: मुंबई, महाराष्ट्र, ये पूरा देश अब गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गया है। 14 सितंबर से हर किसी के घर में, हर कोई नुक्कड़ पर, हर किसी इलाके में, हर सड़क पर बप्पा को विराजमान किया जाएगा। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के गणेश गली, जो मुंबई का राजा के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसकर सेट पर। देखिए, जब यहाँ पर श्रद्धालु और जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बड़ी ही सुंदर सुंदर तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जैसे कि पिछली बार यहाँ पर रामेश्वर बनाया गया था, रामेश्वर धाम जो है वो तब्दील किया गया था, और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पीछे की मेहनत देखें, एक डेढ़ महीने पहले से ही शुरू हो जाती है आलीशान बहुत बड़ा सेट, जो धीरे धीरे बहुत बड़े स्वरूप में बदलने वाला है। इस बार गणेश गली यानी कि मुंबई का राजा किस अवतार में होंगे और क्या कुछ खास सोचा गया है, क्या डेकोरेशन होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं।
4: मुंबई के गणेश गली में इस उत्सव की भव्यता देखते ही बन रही है। यहाँ मशहूर मुंबई के राजा एक बार फिर अपने भक्तों के बीच विराजने वाले हैं। इस बार गणेश गली मंडल अपने 99 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, लिहाजा उत्साह भी जबरदस्त है और तैयारियां भी बेहद खास।
5: मंडल का ये 99 ईयर है और इस बार हम संतों की परंपरा या दिखाने की हमारी कोशिश है, जो कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो समृद्ध करने में उनका बहुत ही बड़ा सहयोग ये महाराष्ट्र में है। तो उनकी परंपरा क्या है ये इस पीढ़ी को पता चलिए, इसीलिए ये संतों की परंपरा हम यहाँ दिखाए।
4: महागणपति दरबार की सजावट लगभग पूरी हो चुकी है, लाइटिंग का काम अंतिम चरण में है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार को भी अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। लेकिन इस बार सबसे खास आकर्षण सिर्फ भव्य सजावट नहीं, बल्कि मुंबई के राजा के दरबार की थीम है, जो महाराष्ट्र के संतों पर आधारित रखी है। पंडाल में श्रद्धालुओं को महाराष्ट्र की संत परंपरा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी, उनके संदेश को बताया जाएगा जिससे उन्होंने इंसानियत की राह दिखाई। इन पहलुओं को सजावट के जरिए सामने लाने की तैयारी है।
5: तो इस बार जो हम दिखा रहे हैं संतों की परंपरा, वो लोगों में एक ज्यादा से ज्यादा उनकी जानकारी लोगों में कैसी बढ़नी चाहिए, जो ये जो हमारी जेन जी है तो उनको भी संतों की परंपरा कैसी है, क्या क्या संतों ने महाराष्ट्र के लिए किया है, क्या क्या संतों की मदद से महाराष्ट्र ये समृद्ध हो चुका है, उनकी भाषा समृद्ध हो चुकी है, वो लोगों तक पहुंचाने की ये कोशिश है। और मतलब हमें तो ये ऐसा लग रहा है कि हम इसमें खरे उतरेंगे।
4: गणेश गली मंडल की एक और खास परंपरा है, यहाँ गणपति की प्रतिमा को बाहर से लाकर स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि मूर्ति को मौके पर ही तैयार किया जाता है। जैसे जैसे उत्सव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे कारीगरों की मेहनत भी साफ नजर आने लगी है। सजावट में बारीकी लाई जा रही है, रोशनी को परखा जा रहा है और पंडाल के हर हिस्से को आकर्षक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मुंबई के राजा का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुंबई के राजा का आगमन सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद की वो खुशी है जिसका इंतजार वो साल भर करते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी है। यात्रा के दौरान पवित्र छड़ी की चंदन वाड़ी शेषनाग और पंचतरणी में विश्राम होगा। रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी।

0: ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और वादियों में गूंजता महादेव का जयकार। साधु संतों की टोली आगे पढ़ रही है तो श्रद्धालु बाबा के दरबार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हवा में भक्ति की महक है, आंखों में दर्शन की उम्मीद है और दिल में सिर्फ एक नाम, जय शिव शंकर। कश्मीर की धरती पर इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा है। श्रीनगर से लेकर पहलगाम और पुंछ तक शिव भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक अपने सफर पर निकल चुकी है। चारों तरफ प्रभु के जयकारे और भक्ति की अनोखी चमक दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर की वादियां इन दिनों सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि शिव भक्ति, परंपरा और श्रद्धा के संगम के लिए भी खास बन गई है। श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद छड़ी मुबारक को पहलगाम के लिए रवाना किया गया। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाथ और 26-27 अगस्त को पंचतरणी में पड़ाव होगा। इसके बाद 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा।
1: जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और 28 तारीख प्रातःकाल जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, तो वहां पर छड़ी मुबारक को वहां स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा।
0: अमरनाथ गुफा में विधि विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बीच छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद छड़ी मुबारक पंचतरणी लौटेगी और 29 अगस्त को वापसी का सफर शुरू होगा। शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए 30 अगस्त को पहलगाम पहुंचने के बाद पूजा और विसर्जन के साथ इस धार्मिक परंपरा का समापन होगा।
2: और अब खबर सासाराम से। तो सासाराम के चिनारी के करमचट डैम पर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें पटना एम से आए करीब 70 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम, एनडीआरएफ, अग्निशमन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, एचओईसी, आपदा प्रबंधन विभाग, स्थानीय प्रशासन और वॉलेंटियर्स की टीमें शामिल हुई। बड़े हादसे के वक्त ग्राउंड जीरो पर फुल स्केल हॉस्पिटल की सर्विस देने के उद्देश्य से ये मॉकड्रिल किया गया। लाइफ सेविंग ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास, पोर्टेबल मिनी हॉस्पिटल का निर्माण जैसी तैयारियों को भी इस दौरान परखा गया।
3: कुछ फ्यूचर में अगर हुआ डिजास्टर तो क्या गैप है, उस गैप एनालिसिस को हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। और इसका जो मुख्य बिंदु है वो भीष्म क्यूब है। भीष्म क्यूब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हम लोगों को मिला हुआ, सारे एम्स को, उसमें एम्स पटना को भी मिला है। तो हम लोग उस भीष्म क्यूब को क्विकली कैसे इंस्टॉल करते हैं विद इन 20-30 मिनट कहीं भी डिजास्टर होता है तो, और किस तरह से लाइफ सेविंग और लिम्ब सेविंग सर्जरी करके जान बचाते हैं और पैर जो काटना पड़ता है, जो खून बहता है उसको रोक करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाते हैं, जो डिजास्टर का मेन कंसेप्ट है, टू सेव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्स। उस कंसेप्ट में जितने स्टेक होल्डर हैं उनका कोऑर्डिनेट करके और इस चीज़ को हम लोग देखना चाहते हैं।
2: तो देखिए, हांगकांग का आसमान मशहूर क्वीसी फेस्टिवल के मौके पर ड्रोन की रोशनी से जगमगा उठा। इस फेस्टिवल में 2000 ड्रोनों ने विक्टोरिया हार्बर के ऊपरी चीनी लोक कथा की खूबसूरत तस्वीरें पेश की। ड्रोन से आसमान में मैगपाई ब्रिज की आकृति भी बनाई गई। ये वही पुल है जो चीनी लोक कथा के न्यूलांग और वीवर गर्ल को साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा ड्रोन से प्यार में डूबे जोड़ों और खेलते हुए विशाल गुलाबों की आकृतियां भी इस दौरान ड्रोन के जरिए बनाई गई। आसमान में बदलती इन तस्वीरों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो देखता ही रह गया। क्वीसी फेस्टिवल चीनी कैलेंडर के सातवें महीने के सातवें दिन मनाया जाता है। लोग करीब 2000 साल पुरानी प्रेम कहानी को सुनना, देखना और समझना चाहते हैं। आसमान पर बनी रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन गई। तो चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
5: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है, घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए, क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव
10: खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। ये दिल्ली हमारी है, इसलिए सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। सॉल्यूशन बताएंगे, पॉल्यूशन की जंग को लड़ेंगे। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ। अब मिलकर हवा बदलेंगे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
5: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की पीड़ा को दूर करने में घोड़े की नाल का क्या कमाल होता है, क्या जादू होता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आपके भाग्य के लिए कुछ विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र शाम के 5:44 तक, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जैसा सरगम ने आरंभ में बताया कि घोड़े के पैर में लगा हुआ एक लोहे का टुकड़ा है, सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर समझें तो घोड़े की नाल घोड़े के खुर में उसके पैर में लगाई जाती है ताकि ना तो घोड़े को चलने में समस्या हो और ना ही घोड़े की सवारी करने वाले को समस्या हो। ये घोड़े की नाल यू की आकृति का होता है और इसके विशेष प्रभाव के कारण ज्योतिष में शनि और राहु से इसका संबंध जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके विशेष प्रभाव के कारण और आकृति की वजह से शनि और राहु हमेशा नियंत्रित रहते हैं। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि अगर घोड़े की नाल का गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये मुश्किल में डाल सकता है। ये कोई सामान्य लोहे का टुकड़ा नहीं है, इसके अंदर विशेष तरह के चुंबकीय गुण होते हैं जिसकी वजह से ये आपके ग्रहों को रेगुलेट कर पाता है, आपके ग्रहों को कंट्रोल कर पाता है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, संतान की चिंता हो सकती है, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की प्राप्ति हो सकती है, काफी व्यस्तता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, शनि का संबंध लौह धातु से है ये हम सब जानते हैं, लेकिन घोड़े की नाल ही क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है शनि को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, शनि जो है वो धीमी गति का, संघर्ष का और मेहनत का ग्रह है। घोड़े की गति धीमी तो नहीं होती, लेकिन गति उसके पास भी होती है, मेहनती बहुत होता है, संघर्ष का प्राणी है और ये गुण घोड़े की नाल में पाया जाता है। घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगी होती है और इसी कारण गतिशील अवस्था में यानी मूवमेंट में बनी रहती है। घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगी होने की वजह से जब घोड़ा चलता है तो ये नाल जमीन से बार बार घिसती है और टकराती है। रगड़ खाते रहने के कारण इसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, लगातार जमीन से रगड़ खाने की वजह से विशेष तरह की तरंगे और विशेष तरह की ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है और इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर पाती है। घोड़े की नाल जितनी पुरानी होगी, जितनी घिसी हुई होगी, उसकी तरंगे उतनी प्रभावशाली होंगी और उसकी तरंगों के फायदे से आप शनि को कंट्रोल कर पाएंगे। सिंह राशि, करियर की समस्या हल होगी, अतिथि का आगमन होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, अपयश से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, कर्ज की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, समस्या से मुक्ति मिलेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा, खान पान में थोड़ी सावधानी रखें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, घोड़े की नाल अगर पुरानी है, घिसी हुई है, तो इसका प्रयोग करके आप शनि की पीड़ा को कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? किसी मंगलवार या बृहस्पतिवार को घोड़े की नाल ले लें। ये जितनी ज्यादा पुरानी होगी, जितनी ज्यादा घिसी हुई होगी, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। इस नाल से एक अंगूठी यानी एक छल्ला बनवा लें, लेकिन ये छल्ला या अंगूठी पीट पीट कर, काट काट कर बनाई जाएगी। इसको आग में नहीं तपाया जाएगा। शनिवार की शाम को इस अंगूठी को सरसों के तेल से धो करके मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। अगर शनि की महादशा है, अंतरदशा है, शनि की साढ़े साती है, ढैया है और इसके वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो आप घोड़े की नाल का छल्ला अगर मध्यमा अंगुली में पहन लेंगे तो शनि जो आपको पीड़ा दे रहे हैं वो पीड़ा कम हो जाएगी और उस पीड़ा से आप बचे रहेंगे। धनुराशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम मत टालें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। आप अपने पूरे घर के ऊपर से नकारात्मक प्रभाव को, निगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं घोड़े की नाल का प्रयोग करके। तो घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि घर में सुख शांति आए? घोड़े की नाल मंगलवार या बृहस्पतिवार को घर में ले आएं और इसको एक कटोरी में या एक पात्र में सरसों का तेल डालकर उसमें डुबा करके रख दें। शनिवार की शाम को इसे जल से धो लें, कपड़े से पोंछ लें और इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर ऊपर बीचों बीच में इसे यू की आकृति में लगा दें और एक नियम बना लें, रोज शाम को जब घर में पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर धूप बत्ती दिखाइए और नाल के ऊपर से भी धूप बत्ती एक बार घुमा लीजिए, इसको भी दिखा लीजिए। इस नाल को लगाने का फायदा यह है कि ये मुख्य द्वार पर लगा रहेगा, घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। अगर घर में कोई निगेटिव एनर्जी लेकर के प्रवेश करना चाहेगा तो वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर हायर ऑफिशियल्स के साथ, उच्चाधिकारी के साथ संबंध गड़बड़ हो रहे हों, आपके जो उच्च अधिकारी हैं वहां से रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो सूर्य देव को रोज जल चढ़ाइए, जल में जरा सी रोली मिला करके अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप नौकरी करते हैं, बड़ी अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन बार बार नौकरी में समस्या आ जाती है, बार बार नौकरी छूट जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, उठा पटक होने लगती है, क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में रोली डाल करके सूर्य देव को जल अर्पित करें, जितना अर्ली करें उतना अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और एक घोड़े की नाल के लोहे की बनी हुई अंगूठी मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण करें, आपको लाभ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या के श्री राम मंदिर में अद्भुत अलौकिक आयोजन हो रहा है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला अपने भव्य भवन में दिव्य झूलन उत्सव मना रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रामलला के दरबार में और दिखाते हैं झूलन उत्सव की शानदार छटा।

0: लगता है जैसे अयोध्या में त्रेता युग जीवंत हो उठा है। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला झूलनोत्सव मना रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। गर्भगृह में विशेष रूप से तैयार किए गए सोने चांदी के भव्य झूले पर रामलला विराजमान है। झूलनोत्सव के लिए प्रभु को विशेष रेशमी और जरी के वस्त्र पहनाए गए हैं। भजन कीर्तन के बीच यहाँ का माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से यहाँ पर सावन का ये उत्सव त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब पूरी अयोध्या आनंद में डूबी रहती थी। श्री राम मंदिर परिसर में रामलला का ऐतिहासिक झूलनोत्सव इस बार 15 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू हुआ। संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में भगवान श्री राम की उत्सव मूर्ति को भाइयों के साथ विधि विधान पूर्वक झूले पर विराजमान कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये उत्सव रामलला के प्रति भक्ति की भावना से प्रेरित है। सावन की उमस और गर्मी से राहत देने के लिए भक्त भगवान को फूलों और चंदन से सजे ठंडे झूले पर बिठाकर धीरे धीरे झूला झुलाते हैं, ताकि उन्हें सुख मिल सके। भक्त अपने आराध्य को छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं और हिंडोली पर बिठाकर पंखा चलते हुए उन्हें झूला झुलाते हैं। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से झूला उत्सव का खास वीडियो जारी किया गया है। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दरमियान यहाँ मंदिर परिसर में संत महात्माओं की मौजूदगी में लगातार धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जो अयोध्या की इस युगों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को और भव्यता प्रदान कर रही है। खास बात यह है कि 12 दिनों के झूलनोत्सव के दौरान हर दिन शाम को रामलला को पालकी में बिठाकर कुबेर टीला ले जाया जाता है और वहां उनके दर्शन की विशेष व्यवस्था रहती है। केवल राम जन्मभूमि ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या इस समय उत्सव के रंग में सराबोर है। सरयू के तट से लेकर कनक भवन तक और तमाम मंदिरों में भी हर तरफ इन दिनों उत्सव का माहौल है। सावन शुक्ल तृतीया से शुरू हुआ ये झूलनोत्सव पूर्णिमा तक इसी तरह पूरी भव्यता के साथ जारी रहेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी।
2: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
1: आपको कितने लगेंगे?
3: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
4: If you've got a solution, we're listening. And our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that.
1: Ab milkar hawa badlenge.
5: Good news today is really good. In this, there are no news of mar dhad aur chilla chilli nahi hai. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आज

0: कल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन। प्रतियोगिता में एक गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 6 मेडल, अंक तालिका में दूसरा स्थान। अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तीसरी वर्षगांठ पर कल मनेगा जश्न। भारत ने 3 साल पहले 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील। गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा रिसर्च, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की रिपोर्ट, इलाज भी होगा आसान। केरलम में 72वीं रोमांचक नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का मुकाबला। पुनमाड़ा झील में हुई प्रतियोगिता, 22 स्नेक बोट समेत 71 नावें हुई शामिल। उत्तर प्रदेश की कालीन नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने। सरकारी योजना बनी संजीवनी, एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। चीन के चोंगकिंग में पहले फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल की दिखी रौनक। 68 आकृतियों से जगमगा उठा पूरा इलाका, 1000 साल के इतिहास की दिखी झलक।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों

0: नए दौर का सबसे घातक हथियार। युद्ध की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखता है। रण क्षेत्र में जब यह उतरता है तो सरहदें छोटी लगने लगती हैं। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने की ताकत है इसके पास। मॉडर्न वॉरफेयर का यह हथियार है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे दुनिया ड्रोन के नाम से जानती है।
1: हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से इसराइल ने हुती हमास और ईरान पर अपनी ड्रोन ताकत का इस्तेमाल किया। रूस और यूक्रेन वॉर में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए ड्रोन का ही सहारा ले रहा है और अब भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत भी ऐसे ऐसे ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है जिनके सामने दुश्मन का टिक पाना नामुमकिन होगा।
0: ड्रोन साइज में छोटे होते हैं, इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। साथ ही दुर्लभ इलाकों में भी ये गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं और यही वजह है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है। ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका यह है कि ड्रोन में हथियार या फिर विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देते हैं। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में तब्दील कर दिया जाए, यानी खुद ही विस्फोटक के साथ टारगेट से टकरा जाए, जिसे कैमिकेज यानी कि सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है।
2: आज ड्रोन बहुत ही आधुनिक हो गए हैं और ड्रोन एक घातक हथियार है। इसके अंदर आपके पास कामिकाजी ड्रोन भी हैं जो कि सुसाइडल ड्रोन माने जाते हैं, और इसके अंदर सर्विलेंस वाले ड्रोन भी हैं जो रेकी एंड सर्विलेंस करते हैं। इसके पास वो ड्रोन भी हैं जो जाके डीप इनसाइड दुश्मन के इलाके में एक प्रकार से सटीक वार कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है, ड्रोन जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वेपन है आज मॉडर्न वर्ल्ड वॉर में।
0: भारत के पास कई एडवांस किस्म के ड्रोन मौजूद हैं जो दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकते हैं। इसमें कैमिकेज ड्रोन की ताकत सबसे खास है, इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। दहशत गर्दों के ट्रेनिंग सेंटर पर बारूद बरसाने से लेकर घात लगाए बैठे दुश्मनों को हमेशा के लिए खामोश करना कैमिकेज ड्रोन के लिए बाएं हाथ का काम है। आकार में छोटा होने के बावजूद ये बड़ी तादाद में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। भारतीय सेना के पास हार्पी ड्रोन की ताकत है जिसे इसराइल से लिया गया है। हार्पी सुसाइड ड्रोन है जिसे इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। साल 1989 में पहली बार हार्पी ड्रोन का परीक्षण किया गया था जिसमें यह हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज ये भारतीय सेना की ताकत का हिस्सा बन चुके हैं। हार्पी को दुश्मन के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एंटी रेडिएशन सीकर लगाया गया है जिसकी मदद से रेडिएशन के स्रोतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये रेडियो सिग्नल्स का पता लगाकर हमला करता है। इसे ऑटोनॉमस और मैनुअल दोनों मोड पर ऑपरेट किया जा सकता है।
2: वो बहुत ही आधुनिक है, वो एक प्रकार इसराइल का बना हुआ है, भारत के पास है, और वो एयर डिफेंस सिस्टम को जो है एक प्रकार चकमा दे देता है, उसको एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता इन एनी वे, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो ये ड्रोन भारत ने लिया इसराइल से बहुत ही सटीक हमला करता है और एक ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, लो हाइट पे चलता है और रडार इसको पकड़ नहीं पाते।
0: आरपी ड्रोन तो ट्रक और जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, ये खुद टारगेट को डिटेक्ट कर उसे तबाह कर देता है। हार्पी ड्रोन लगातार 6 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर तक है, जिससे सेना को बिना किसी जोखिम के दुश्मन को निशाना बनाने में मदद मिलती है। स्पीड की बात की जाए तो ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है और ये अपने साथ 32 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। दिन हो या रात किसी भी समय हमला करने में सक्षम ये ड्रोन हमले के बाद दुश्मन के हाथ नहीं आता, क्योंकि ये अपना मिशन पूरा करने के बाद खुद ही नष्ट हो जाता है और यही वजह है कि इसे फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी में रखा जाता है।
1: भारत के पास इजराइल से आया एक और ड्रोन है जिसका नाम है हेरॉन और हेरॉन का असली काम है निगरानी करना, जानकारी जुटाना और युद्ध के मैदान में ये दुश्मन की हर खुफिया जानकारी का पता लगा सकता है, सर्वेलेंस का काम भी आसानी से कर सकता है।
0: हेरॉन इतना शक्तिशाली है कि इसका इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक तक में किया जा सकता है। अभी भारत के पास हेरॉन मार्क 2 है और ये करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक बार में लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रेंज करीब 3000 किलोमीटर है और ये 250 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है।
2: देखो हेरॉन ड्रोन भी इजराइल का है, बहुत ही अच्छा ड्रोन है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी इंड्योरेंस ज्यादा है और ये जो है सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रेकी के लिए भी किया जाता है और दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है।
0: सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाला ड्रोन है जो हर मौसम में अपना मिशन पूरा करने में सक्षम है। इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जिससे हेरॉन ड्रोन को किसी भी तरह से जैम नहीं किया जा सकता। हेरॉन ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरा लगे होते हैं, जैसे कि थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में अंधेरे में देखने में इसकी मदद करता है। इसके अलावा विजिबल लाइट एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस जो कि दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है, साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के रडार सिस्टम मौजूद हैं। हेरॉन ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक या फिर इंफ्रारेड सीकर मिसाइल को दे सकता है, यानी सीमा के इस पार से ड्रोन से मिले सटीक टारगेट पर हमला किया जा सकता है।
1: हाल के सालों में रक्षा क्षेत्र में ऐसी छलांग लगाई है जिसने न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन को बदला है बल्कि इंटरनेशनल भी भारत की इमेज और ज्यादा अच्छी हो गई है। भारत अपने ही देश में ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे ड्रोन की ताकत को बना रहा है जो दुश्मन को मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकते हैं।
0: अब भारत सिर्फ रक्षा ही नहीं करता बल्कि आसमान पर नियंत्रण भी रखता है। भारतीय सेना ने खरगा कामिकेज ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये ड्रोन खुफिया और निगरानी भूमिकाओं में अहम है। भारतीय सेना ने इस ड्रोन को मदर ड्रोन का नाम दिया है जिसके साथ दो छोटे ड्रोन भी अटैच किए जाएंगे। ये ड्रोन एमुनेशन यानी कि RDX 7 लेकर उड़ने में सक्षम है। दिन हो या रात, तूफान हो या बरसात, हर हालात में अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम है भारत का खरगा कैमिकेज ड्रोन। GPS नेविगेशन सिस्टम और हाई डेफिशिएंसी कैमरा से लैस खरगा ड्रोन 700 ग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है।
3: देखिए 700 ग्राम का जो एक्सप्लोसिव होता है वो काफी कारगर होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। अगर जिस इलाके में वो गिरेगा वहां पे तबाही मचाएगा और तकरीबन 20 से 25 मीटर के दायरे में जो भी कुछ होगा उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। देखिए इसमें एक बख्तरबंद गाड़ी या एक ट्रूप जो टैंक का होता है वो नुकसान हो सकता है। अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी तो वो बिल्डिंग धाराशाही हो सकती है। अगर ट्रूप सेंट ओपन है, अगर वहां गिरता है तो पूरे पूरे जो प्लटून है, जो सेक्शन है, वो वहां तबाह हो सकता है।
0: केमिकल ड्रोन आर्मी के ग्राउंड ऑपरेशन के समय दुश्मन की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ये ड्रोन लंबे समय तक टारगेट वाले इलाके में उड़ सकता है। करगा की रेंज करीब 1.5 किलोमीटर है और ये 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। करगा के एमिकेस ड्रोन की खासियत है कि ये वजन में बेहद हल्का है, तो एक लॉन्च और हवाई टारगेट करने में भी आसान है।
3: जो खड़गा कामिकोजी ड्रोन है वो एक हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन है। ये लो फ्लाइंग करता है जिससे रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसमें HD कैमरा लगा रहता है। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और सर्वेलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
0: करगा केमिकल्स ड्रोन की और खास बात ये है कि ये रडार की रेंज में आए बगैर दुश्मन या उसके ठिकानों को तबाह कर सकता है। अगर दुश्मन ने इसे देख भी लिया तो वो इसके पास दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग के लिए जवाबी उपाय भी है।
3: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग की जब हम बात करते हैं तो वो उस फ्रीक्वेंसी बैंड को जैम करता है जिसपे ये ड्रोन ऑपरेट करता है, और इसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि इसमें उसका काउंटर मेजर अवेलेबल है। ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कर सकता है स्पेक्ट्रम टेक्निक द्वारा, या इसका एंटीना जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो जैमर को बरखिलाफ काम किया जा सकता है, और तमाम तरीके के एंटी जैमिंग मेजर्स हैं उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर दुश्मन चाहे इसको डिस्ट्रॉय करना या इसको मिसगाइड करना तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि रडार इसको कैच नहीं कर सकता, जैमर इस पे इफेक्टिव है नहीं।
0: युद्ध के मैदान में ड्रोन ने एंट्री लेते ही अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ड्रोन को किसने तैयार किया और कब तैयार किया। ड्रोन बनाने का क्रेडिट इराकी मूल के अमेरिकी इंजीनियर इब्राहिम करीम को जाता है। इब्राहिम करीम ने पहला ड्रोन इजरायली सेना के लिए साल 1973 में योम कपूर वॉर के समय तैयार किया था। आज ये ड्रोन कई कैटेगरी की तरह कई रूप ले चुका है। सबसे पहले ड्रोन की कैटेगरी और उनके इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। पहला है नैनो ड्रोन। 250 ग्राम क्षमता वाले इस ड्रोन का इस्तेमाल हॉबी टॉय से लेकर स्पाई कैमरा के लिए होता है। अगला है माइक्रो ड्रोन। इसकी क्षमता 2 किलो तक की होती है। इसका इस्तेमाल मैपिंग और सर्वे के लिए किया जाता है। स्मॉल ड्रोन की क्षमता 2 किलो से 25 किलो तक है। इसका इस्तेमाल ज्यादा दूरी तक मैपिंग और सर्वे करने में होता है। वहीं मीडियम ड्रोन की क्षमता 25 किलो से लेकर 150 किलो तक होती है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में सामान की डिलीवरी करने में होता है। हैवी ड्रोन की बात करें तो ये 150 किलो से ज्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में होता है। ड्रोन अपने छोटे आकार और लो फ्लाइंग की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आते, लिहाजा सवलान से लेकर अटैक में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि आने वाले सालों में युद्ध का तौर तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। यहाँ पर सैनिकों की जगह रोबोट्स लेंगे, यानी कि तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। रोबोट्स का इस्तेमाल होगा, हवाई हमलों का इस्तेमाल होगा। ड्रोन की ताकत आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि युद्ध इसी तरीके से लड़े जाएंगे। और इसी को समझते हुए भारत भी अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। भारत खुद को तकनीकी रूप से इतना सशक्त बना रहा है कि वो युद्ध के मैदान में दुश्मन को पटखनी दे सके।
0: दुनिया के ज्यादातर देश समझ चुके हैं कि ड्रोन ही वो हथियार है जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, यानी जिसका ड्रोन जितना ताकतवर होगा युद्ध में जीत उसी की सुनिश्चित होगी। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत तैयार है और वो अपनी तैयारियों को धार दे रहा है।
1: भारतीय सेना को लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी कि आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 मिल चुका है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारत ने इसे लिया है और अब ये हमारी सेना का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
0: भारत में तैयार पहला स्वदेशी लॉयटर म्यूनिशन नागास्त्र 1 ड्रोन है, इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि आसानी से सीमा पर पनपती साजिशों को राख में मिला सकता है। आत्मघाती ड्रोन को साइलेंट मोड में 1200 मीटर की ऊंचाई से ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। नागास्त्र एक अपने साथ करीब 2 किलो एक्सप्लोसिव लेकर उड़ सकता है, जो 15 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। लॉन्चिंग मेनुएशन एक एरियल वेपन सिस्टम है। ये ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और कमांड मिलते ही आत्मघाती हमला कर देते हैं। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ड्रोन अपने साथ 2 से ज्यादा ग्रेनेड लेकर उड़ते हैं। अब जरा सोचिए कि बॉर्डर पर दुश्मन घात लगाए बैठा हो और घुसपैठ की फिराक में नागास ड्रोन हमला कर दुश्मन के परखचे उड़ा दे।
2: देखो, नागशस्त्र ड्रोन जो है ये एक भारत ने अपने इंडिजिनियसली बनाया है और इसके अंदर जो सामान इस्तेमाल किया गया 75% जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत बना है और ये एक कामिकाजी ड्रोन है और एक ये गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर। ये एक छोटा ड्रोन है जो कि मिक्सचर है एक प्रकार से आपका मिसाइल और यूएवी का। ये 30 kg के करीब है, ये पैक्ड ले जाया जा सकता है और इसकी 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट खसूसियत हैं। एक तो ये ऑलमोस्ट 100% अपने टारगेट को हिट करता है और ये लॉटरिंग अमनूशन है। ये एक प्रकार डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है दुश्मन से, बिकॉज ये जमीन के बहुत नजदीक उड़ता है और ये 15 किलोमीटर तक जो वार कर सकता है और जो 30 किलोमीटर का इसका दायरा है और ये एक प्रकार से उस इलाके के अंदर लॉटर करता है और उसके बाद जब टारगेट को जीपीएस की तरह से सिलेक्ट कर लेता है।
0: नागास ड्रोन एक सुसाइडल ड्रोन है जिसकी ताकत और नजरों से बचना दुश्मन के लिए आसान नहीं होता। ये ड्रोन खुद को खत्म कर दुश्मन का सर्वनाश कर सकता है।
2: कामिकाज़ी ड्रोन बोलते हैं जिसको सुसाइडल ड्रोन भी बोलते हैं। तो ये ड्रोन जो है एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है कि ये एक प्रकार अपने टारगेट को जाके हिट करता है, अपने आप भी बर्बाद हो जाता है और टारगेट को भी बर्बाद करता है। देखो, ये चली थी प्रथा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस प्रकार से जापानीज थे वो अपना छोटा एयरक्राफ्ट लेके बड़ी बड़ी शिप है उसके ऊपर हमला करते थे, जाके उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, खुद तो एक्सप्लोड हो जाते थे मगर पूरे शिप को बर्बाद कर देते थे। तो ये सच्चाई है, इसीलिए इसका नाम कामिकाज़ी ड्रोन पड़ा है। और ये एक जो कामिकाज़ी ड्रोन है वो बहुत ही ज्यादा पुख्ता है और वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और वो 100% अपने टारगेट को हिट करके खुद भी जो है बर्बाद होते हैं मगर टारगेट को बर्बाद कर देते हैं।
0: नागास ड्रोन को युद्ध क्षेत्र में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। इसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर सिस्टम या फिर हाथ से भी लॉन्च किया जा सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन का वजन करीब 10 किलो है जो आसानी से 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है और अगर टारगेट न मिले तो ये वापस भी आ जाएगा। पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सकती है।
2: ड्रोन्स हैं, अगर वो सुसाइडल हैं, अगर वो अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम नहीं है या टारगेट जो है मूव कर जाता है तो उसके बाद उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सकता है पैराशूट की मदद से, तो उसको रिट्रीव किया जाता है। हम बात कर रहे थे नागशस्त्र की, उसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि उसके अंदर वो अपने टारगेट को खुद सेलेक्ट करता है, वो जो एरिया है उस पर लॉयटर करता है और उसके बाद जब वो जीपीएस से टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है तो फिर जाके टारगेट को हिट करता है और टारगेट जो है 100% के करीब बर्बाद हो जाता है। इसकी एक्यूरेसी 2 मीटर तक की है। तो ये है कि जो सुसाइडल बॉम्ब्स हैं इनको जो कामिकाज़ी ड्रोन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर ये इनका मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है या मिशन अबॉर्ट हो जाता है तो इसको वापिस भी बुलाया जा सकता है।
0: जीपीएस एनेबल नागास ड्रोन 2 मीटर की सटीकता के साथ किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है।
4: Once we manually feed the target area, or it can automatically also acquire the target, it dives onto the target and it destroys the target along with itself. The accuracy of this particular equipment is less than 2 meters that we were able to achieve.
0: Ground control system aur ground data terminal ki madad se Nagastra ko control kiya jayega. Dushman dikha nahi ki uski tabahi ka countdown shuru.
1: नागास्त्र दरअसल एक फिक्स विंग ड्रोन है जिसके मिडल में विस्फोटक रख के इसे दुश्मन पर हमला किया जा सकता है और इसे ट्राइपॉड या फिर हाथ से भी उड़ाया जा सकता है। फिलहाल नागास्त्र 2 पर भी काम चल रहा है जो नागास्त्र 1 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। नागास्त्र की अगर बात की जाए तो ये 25 किलोमीटर तक और 90 मिनट तक उड़ान भर सकता है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
1: है। मोटे की नाल के प्रयोग से शनि की अशुभता दूर हो जाती है। घोड़े की नाल आखिर शनि की समस्या कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल के प्रयोग से पूरे घर का शनि कैसे बेहतर हो सकता है? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: चार्जिंग मिनिशन या आत्मघाती ड्रोन को केमिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। सुसाइड ड्रोन को केमिकेज कहे जाने की भी एक दिलचस्प कहानी है। केमिकेज ड्रोन का नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जापानी केमिकेज पायलट से लिया गया था, जिन्होंने जानबूझकर विस्फोटक से भरे विमान को दुश्मन के ठिकानों पर गिराकर आत्मघाती हमले किए थे। विश्व युद्ध के दौरान जापान के करीब 19% केमिकेज हमले पूरी तरह से सफल रहे। जापान ने मित्र देशों के हवाई हमलों को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया था। केमिकेज दरअसल ऐसा सटीक हमला करता है कि जिससे दुश्मन का पूरी तरह से खात्मा हो सके। जापान की केमिकेज दस्तों को बनाने की भी एक खास वजह थी। दूसरे विश्व युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही जापान की सेना जब कई अहम युद्ध हार चुकी थी, जापानियों के कई बेहतरीन पायलट्स मारे जा चुके थे।
1: दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के कई विमान पूरी तरह से तबाह हो चुके थे और उस समय जापान के पास इतना समय नहीं था कि वो अपने पायलट्स को फाइटर जेट की ट्रेनिंग देता और ऊपर से उनकी औद्योगिक क्षमता भी काफी कम हो चुकी थी और यहीं से शुरुआत हुई केमिकेज रणनीति की।
0: हार, कब्जा और शर्म की जगह मौत की परंपरा जापानी सैन्य संस्कृति में गहराई से समाई है। समुराई जीवन और बुशिडो कोड ये कहता है कि हार से बेहतर है कि मौत को गले लगा ले। ऐसी मृत्यु को वफादारी और सम्मान माना जाता है। केवल केमिकेज ही नहीं, जापान ने आत्मघाती गोताखोरों का भी इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि जापान का पहला केमिकेज ड्रोन मिशन 13 सितंबर 1944 को हुआ था। नोग्रोस द्वीप पर जापानी सेना ने 31वें फाइटर स्क्वाड्रन के पायलट के एक समूह ने आत्मघाती हमला करने का फैसला किया। इसके लिए लेफ्टिनेंट ताकेशी कोसाई और एक सार्जेंट को चुना गया। दो लड़ाकू विमानों में 200 किलोग्राम के बम लगाए गए। पायलट्स ने सुबह सबसे पहले उड़ान भरी ताकि वो अपने टारगेट से टकरा सके। मिशन पर निकला आत्मघाती विमान और पायलट भी कभी वापस नहीं लौटे।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर आप देखें कि जो बड़ी बड़ी शिप थी वो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा थी समुद्र की लड़ाई में, और उनको बर्बाद करना इतना आसान नहीं था। और जो जापान ने एक नई स्ट्रेटेजी निकाली थी जिसको बोलते थे कामिकोजी, वहीं से नाम आया था कि एक छोटे एयरक्राफ्ट में जो जापानीज पायलट थे वो अपना जहाज ले जाके और जो बड़ी शिप थी उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, तो खुद तो बर्बाद हो जाते थे मगर पूरे बड़े शिप को उन्होंने बर्बाद किया। इस प्रकार से अगर आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जापानीज के ने काफी नुकसान किया था बड़े बड़े शिप, और एक डर पैदा हो गया था जापान का कि वो कामिकोजी जो कारण जिसको बोलते हैं, वहीं से नाम इसका पड़ा कि सुसाइडल, जिस प्रकार से एक छोटे एयरक्राफ्ट में उड़ के और वो शिप के जो इंजन था उसके अंदर घुस जाते थे, उधर अटैक करके अंदर अपने आप को भी तो बर्बाद कर लेते थे मगर पूरा का पूरा शिप बर्बाद हो जाता।

0: आज रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मिडल ईस्ट तक कैमिकेज ड्रोन का इस्तेमाल होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कम लागत में विध्वंसक ताकत वाला हथियार आत्मघाती ड्रोन ये सारी जरूरतें पूरी करता है।
1: भविष्य के इस गेम चेंजर की ताकत जिसके पास भी होगी रण क्षेत्र में उसी का पलड़ा ज्यादा भारी होगा और भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता है समझता है और इसीलिए मेक इन इंडिया के तहत भारत अपने यहाँ ही इस तरह की टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित कर रहा है ताकि युद्ध के मैदान में वो दुश्मन के आगे टिका रहे और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे।
0: आज दुनिया के कई देश ड्रोन शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। उन्हें पता है कि दुर्गम इलाके में दुश्मनों पर नजर रखना हो या फिर उसकी गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देना हो इसमें ड्रोन एक कारगर हथियार साबित होगा। लिहाजा भारत भी अपनी सेना के तरकश में ताकतवर ड्रोन का जखीरा जमा करने में जुटा हुआ है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज भारत का खुद का कैमिकेज ड्रोन बना रहे हैं। दावा यह है कि मेड इन इंडिया कैमिकेज ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम होगा जो अपने साथ 25 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकेगा और इसकी उड़ान क्षमता करीब 9 घंटे होगी यानी कि एक बार लॉन्च करने के बाद यह आसमान में लगातार मंडराता रहेगा। करीब 120 किलो वजनी कैमिकेज ड्रोन को दूर बैठा कोई भी व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। विस्फोटक लगा होने की वजह से इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ी तक को तबाह कर सकते हैं। स्वदेशी कैमिकेज ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें 30 हॉर्स पावर वाला व्हीकल इंजन का इस्तेमाल भी किया जाएगा जिससे ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होगा। कैमिकेज ड्रोन को झुंड में यानी कि कई ड्रोन एक साथ भी भेजे जा सकते हैं। इससे दुश्मन के रडार और डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट पर हमला कर सकते हैं।

0: भारत ने पिछले साल ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला फ्लाइट टेस्ट किया था, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को पेश करता है। ये भारत का स्टेल्थ ड्रोन है जो भविष्य में पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर देगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक था। इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और आसानी से लैंडिंग की, जो ड्रोन सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है।
1: जो ड्रोन ऑपरेट करता है ये बड़े ही हाई स्पीड से लॉन्च करता है। कहने का मतलब यह है कि ये रडार को चकमा देता है, इसमें बहुत ही हाई एवियोनिक्स होता है, इसका जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है वो बहुत एडवांस होता है, साथ में ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। कहने का मतलब यह है कि ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ये हाई एंड टेक्नोलॉजी किसी किसी देश के पास है। हिंदुस्तान ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया और हिंदुस्तान ऐसे इलीट ग्रुप में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है।
0: ताकतवर ड्रोन एक्सपोर्ट के साथ साथ भारत देश में ही अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग क्षमता के ड्रोन विकसित कर रहा है, जिसमें एक नाम है वेपनाइज्ड हेक्सोकॉप्टर, जिसे रुद्रास्त्र भी कहा जाता है। रुद्रास्त्र ड्रोन 5 किलो का बम लेकर उड़ने में सक्षम है। इसमें 1-1 किलो के 4 बम भी एक साथ लगाए जा सकते हैं, यानी कि इसमें एक साथ अलग अलग टारगेट्स पर हमला करने की ताकत है। रुद्रास्त्र ड्रोन लगातार 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। ये एक बार में 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और साथ ही इस ड्रोन में लगे बम GPS से कनेक्टेड होंगे, जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकेगा। रुद्रास में हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा है, जिससे आसानी से टारगेट को लोकेट किया जा सकता है और फिर दुश्मन का काम तमाम। रुद्रास ड्रोन जहां हमला करता है उसके 20 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचाता है।
1: रुद्रास जो है वो भी एक शॉर्ट रेंज ड्रोन है। ये इसका जो मारक क्षमता है वो 10 से 15 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में जा सकती है। ये एक शोल्डर फायर ड्रोन है जो कि आगे जो ट्रूप्स इन कॉन्टैक्ट है वो इसकी मदद से यूज करते हैं। इसका भी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है और इसको भी डिफरेंट डिफरेंट पेलोड में आप यूज कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 10 से 15 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इमीडिएट टारगेट जो विसिनिटी में है 10 से 15 किलोमीटर उस पर लॉन्च किया जा सकता है।
0: भारत में रुद्रास, नागास और तपस जैसे स्वदेशी ड्रोन की एक फौज तैयार हो रही है। भारतीय सेना तपस BH-201 का इस्तेमाल आर्म्ड मिशन और सीमा पर निगरानी के लिए करेगी। तपस BH-201 ड्रोन एक अटैकिंग ड्रोन है जो 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर ये 1000 किलोमीटर की रेंज में सर्वेलांस और अटैक कर सकता है। तपस ड्रोन की दूसरी खूबियों की बात की जाए तो ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे तक उड़ान भर सकता है।
1: इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है जितनी हाइट पे जा, ये 30,000 फीट की हाइट तक जा सकता है और इसका पेलोड 500 से 6 किलोग्राम होता है और इसका इंड्योरेंस 17 से 18 घंटे के आसपास का होता है। डिपेंड करता है आप कहां से लॉन्च करें। अगर आप बॉर्डर एरिया से लॉन्च करेंगे तो यह दुश्मन के इलाके में जाएगा और वहां से देखिए जो इसके जो प्रिसीजन गाइडेड इग्निशन इसमें जो लोड होता है, जो इसका पेलोड है, उससे वो स्ट्राइक कर सकता है। तो लिहाजा आप इसको हवा में लॉन्च करके वेट कर सकते हैं टारगेट के अपीयर होने के।
0: तपस ड्रोन को भारतीय कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। इस ड्रोन को अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया गया है। तपस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था और तपस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह खुद ही लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है और रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज और ताकतवर बनाने की मुहिम के तहत दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन में शुमार MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने का रास्ता साफ हो चुका है। भारत अमेरिका की MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन डील ने चीन और पाकिस्तान की हलक को सुखा दिया है। ये ऐसा आसमानी योद्धा है जो दूसरे ड्रोन से ताकत और तकनीक के मामले में कोसों आगे है। अमेरिका से जो 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन लिए जाएंगे उनमें 15 MQ-9B सी गार्जियन और 16 स्काई गार्जियन होंगे। 15 सी गार्जियन भारतीय नौसेना को मिलेंगे, वहीं भारतीय थलसेना और एयरफोर्स को 8 स्काई गार्जियन मिलेंगे। प्रेडेटर ड्रोन तालिबान और आईएसएस के खिलाफ अमेरिका का सबसे कामयाब हथियार साबित हुआ है। ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन ऐसी ताकतवर मिसाइलों से लैस हैं जो कि दुश्मन के ठिकाने पर एकदम सटीक वार करते हैं।
2: ये एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है, ये 30 घंटे से ज्यादा देर उड़ सकता है और 40,000 फीट तक ये एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। ये एयरक्राफ्ट 2000 से ज्यादा नॉटिकल माइल दूर जा सकता है, जिससे कि हमारा पूरा भारत इंडियन ओशन रीजन कवर होता है और कोई भी गतिविधि जो कि इंडियन ओशन रीजन में हो रही है उसकी हमें तुरंत खबर पता चलती है, जो कि तुरंत लाइव वीडियो फीड हम हेडक्वार्टर को दे देते हैं।
0: प्रेडेटर ड्रोन भारत के पास आने के बाद देश की सरहद और हिंद महासागर के बीच पूरी निगरानी रखी जा सकेगी। जमीन और समंदर दोनों में किसी भी मिशन को इससे अंजाम दिया जा सकता है।
3: कि ये पायलटलेस एयरक्राफ्ट है, फुल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो दिस कैन बी वेरी इफेक्टिवली यूज्ड अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर एरियाज, वेयर आप अपने एयरक्राफ्ट नहीं भेज सकते हैं दूसरे के वायु सीमा के अंदर। और ये जो ड्रोन होते हैं इनका साइज बहुत कम होता है, इनके सिग्नेचर्स बहुत छोटे होते हैं, तो इनको डिटेक्ट करने में एनिमी रेडार्स की बहुत मुश्किल होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग एंड बिफोर द वॉर दीज ड्रोन्स कैन बी फ्लोन अक्रॉस द बॉर्डर एरियाज, अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल।
0: प्रेडेटर ड्रोन को हंटर किलर यूएवी भी कहते हैं। ये एक पायलटलेस विमान की तरह है जिसे रिमोट से उड़ाया जाता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन दो वर्जन में है, पहला स्काई गार्जियन और दूसरा सी गार्जियन। स्काई वर्जन किसी भी मौसम में 40 घंटे से ज्यादा उड़ान भर सकता है, सी गार्जियन 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। दोनों ड्रोन में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ पानी और जमीन के हिसाब से लगाई गई मशीनरी अलग अलग है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें वाइड एरिया मैरिटाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और एक सेल्फ कंटेन्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि ASW किट से इसे लैस किया गया है, जिसे भारतीय वायुसेना के अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं।
3: रडार का काम होता है किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करना, तो ये जो ड्रोन है इसके ऊपर लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, तो जब ये हवा में उड़ता है सो इट कैन डिटेक्ट एनिमी टारगेट्स और जो भी टारगेट्स डेजिग्नेट किए हुए हैं, और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एनिमी की तरफ से रडार चल रहा है या कोई और एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न है तो उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पिकअप कर सकता है। सो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ड्रोन वेपन सिस्टम।
0: MQ-9B प्रेडेटर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दुश्मन पर चुपके से नजर रखता है और जरूरत पड़ते ही जमीन पर मिसाइल से हमला कर देता है। पनडुब्बियों को ढूंढकर उसे भी तबाह करने की ताकत है इसमें। 9,721 किलोग्राम की मिसाइल को अटैच किया जा सकता है, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल शामिल है। प्रेडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें दो लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। 40,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ भी नहीं पाएगा।
2: अभी इस एयरक्राफ्ट में केवल कैमरा और रडार है, जब ये इंडक्ट होगा तब इस एयरक्राफ्ट में बोला जा रहा है कि इसमें मिसाइल, बॉम्ब, एंटी सबमरीन किट और इसमें आपके कोलिजन अवॉइडेंस किट्स भी ऐड होंगी।
0: भारत के लिए प्रेडेटर ड्रोन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन पाकिस्तान को ड्रोन ताकत से लैस कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।
4: जो पाकिस्तान को ड्रोन दिए हैं वो 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकते हैं और 20 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकते हैं। लेकिन भारत के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की अगर बात की जाए तो ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ज्यादा देर तक हवा में रहने की वजह से इसकी ताकत और निगरानी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, जासूसी और सैन्य कार्रवाई में कई तरह के कामों में हो सकता है, जैसे कि एंटी सर्फेस वॉरफेयर यानी कि नौसेना इसे जमीन पर रखे हथियार को तबाह कर सकती है। वहीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर में MQ-9B ड्रोन के जरिए नौसेना दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह कर सकती है। प्रेडेटर ड्रोन के जरिए लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा सकती है, सवलान हो सकता है, हवाई हमलों को रोकने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपदा के समय राहत कार्यों में भी प्रेडेटर ड्रोन काफी काम आते हैं। साल 2020 में भारतीय नौसेना को अमेरिका की तरफ से 2 MQ-9BC गार्जियन ड्रोन लीज पर मिले थे और जरूरत के मुताबिक इसकी लीज को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया। पानी की सतह के ऊपर और अंदर दोनों ही जगहों की निगरानी या फिर छानबीन के लिए प्रेडेटर ड्रोन एक बेहतर विकल्प है। इसमें 80 से ज्यादा जी साइज के सोनोबॉय लगाए गए हैं। सोनोबॉय वो डिवाइस है जो कि रेडियो सिग्नल के जरिए पानी के भीतर हो रही आवाजों को डिटेक्ट करता है। इसे गहरे पानी में छिपी पनडुब्बियों को प्रेडेटर आसानी से ढूंढ लेता है और मिसाइल से उन्हें अटैक कर सकता है। प्रेडेटर ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है और इसकी मदद से LAC से लेकर LOC तक दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है। वहीं समुद्री निगरानी में भी प्रेडेटर काफी मददगार साबित होता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन में लगे 360 डिग्री कैमरे से समंदर से लेकर आसमान और फिर जमीन तक पर निगरानी रखी जा सकती है। हिंद महासागर इलाके में PLA युद्धपोतों समेत चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन बेहद कारगर साबित होंगे। क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: मोड़े की नाल के प्रयोग से शनि की अशुभता दूर हो जाती है। घोड़े की नाल आखिर शनि की समस्या कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल के प्रयोग से पूरे घर का शनि कैसे बेहतर हो सकता है? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी है। यात्रा के दौरान पवित्र छड़ी की चंदन वाड़ी शेषनाग और पंचतरणी में विश्राम होगा। रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी।
5: ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और वादियों में गूंजता महादेव का जयकार। साधु संतों की टोली आगे पड़ रही है तो श्रद्धालु बाबा के दरबार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हवा में भक्ति की महक है, आंखों में दर्शन की उम्मीद है और दिल में सिर्फ एक नाम, जय शिव शंकर। कश्मीर की धरती पर इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा है। श्रीनगर से लेकर पहलगाम और पुंछ तक शिव भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक अपने सफर पर निकल चुकी है। चारों तरफ प्रभु के जयकारे और भक्ति की अनोखी चमक दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर की वादियां इन दिनों सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि शिव भक्ति परम्परा और श्रद्धा के संगम के लिए भी खास बन गई है। श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद छड़ी मुबारक को पहलगाम के लिए रवाना किया गया। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाग और 26-27 अगस्त को पंचतरणी में पड़ा होगा। इसके बाद 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा।
6: जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और 28 तारीख प्रातःकाल जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, तो वहां पर छड़ी मुबारक को वहां स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा।
5: अमरनाथ गुफा में विधि विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बीच छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद छड़ी मुबारक पंचतरणी लौटेगी और 29 अगस्त को वापसी का सफर शुरू होगा। शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए 30 अगस्त को पहलगाम पहुंचने के बाद पूजा और विसर्जन के साथ इस धार्मिक परंपरा का समापन होगा। रिपोर्ट।
4: तो चलिए बात जन्माष्टमी की कर लेते हैं। तो जन्माष्टमी का त्योहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर दिल्ली में होगा मटकी फोड़ लीग का आयोजन। मटकी फोड़ लीग में 26 गोविंदा टीमों के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। एमपीएल का ये दूसरा साल है और एक कार्यक्रम में आधिकारिक एंथम सॉन्ग और मस्कट मटकू लॉन्च किया गया।

0: पर फिर आएंगे कान्हा। मटकी फोड़ेंगे कृष्ण मुरारी गिरधारी, नंद गोपाल मुरलीधर कुंज बिहारी, गोवर्धन धारी गोविंदा बाके बिहारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर खूब जमेगा रंग। जब दिल्ली के कोने कोने से आई गोविंदाओं की टोलियां ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाएगी, दही हांडी की मटकी फोड़ने के लिए एक बार फिर अपना दमखम दिखाने के लिए जुटेंगी, जोश और उत्साह चरम पर होगा। जब राजधानी दिल्ली में मटकी फोड़ ली यानी एमपीएस सीजन 2 का भव्य आयोजन होगा। माखन की मटकी फोड़ने की सदियों पुरानी परंपरा शानदार खेल प्रतियोगिता के रूप में जीवंत होगी। राजधानी में पिछले 23 वर्षों से आयोजित हो रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की परंपरा को इस वर्ष एमपीएल के साथ और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी की गई है। इसी सिलसिले में अब एमपीएल का अपना एंथम और मैस्कॉट मटकू भी लॉन्च कर दिया गया है।
1: हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ एक टीम के रूप में खेलें। तो हमारा ये मटकी फोड़ जो खेल है, गोविंदाला ये मटकी फोड़ जो खेल है, ये ऐसा खेल है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ टीम के रूप में पैरामिड बनाते हैं और मटकियों को फोड़ने का जो प्रभु लीला का प्रदर्शन है वो करते हैं। तो हम इस बार इसको बड़े स्केल पे बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं।
0: दिल्ली में इस बार मटकी फोड़ लीग यानी एमपीएस सीजन 2 का आयोजन 3 और 4 सितंबर को किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एमपीएल में शामिल गोविंदा टीमों के बीच मुकाबला होगा। इसमें इस बार 26 गोविंदा टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से 10 टीमें लड़कियों की हैं। टीमों ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है।
1: 2 महीने से लगभग ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस लीला को अब एक स्पोर्ट्स के रूप में देखना शुरू कर दिया गया है। लगभग दिल्ली में आप खुश होंगे ये जानकर के कि इस लीला के माध्यम से जो ये स्पोर्ट्स बन गया है, अब लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे आज हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ गए हैं। जो स्पोर्ट्स से नहीं थे वो एथलीट्स बनने जा रहे हैं।
0: आपको बता दें कि दिल्ली से पहले मुंबई में प्रो गोविंदा लीग सीजन 4 होने जा रहा है। 25 से 27 अगस्त 2026 तक वर्ली के स्टेडियम में प्रो गोविंदा लीग में मुंबई सहित महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से आए गोविंदाओं की टीमें मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करेंगी। इस दौरान विजेता टीमों को लाखों रुपए के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पारंपरिक दही हांडी उत्सव को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। इसी के बाद से इसे प्रोफेशनल खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रो गोविंदा लीग की शुरुआत की गई, और अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने की कोशिश हो रही है, ताकि किशोरों और युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ा जा सके, और साथ ही साथ इनमें टीम भावना, अनुशासन, साहस, नेतृत्व, शारीरिक क्षमता और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत किया जा सके। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टुडे।
2: तो देखिए, गुड न्यूज आई है महाराष्ट्र के जालना से, जहां बेटियों के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई है। बात बेटियों की पढ़ाई की है, बात बेहतर भविष्य की है। यही वजह है कि जब बेटियों को स्कूल ले जाने वाली बस पतरूर तहसील के वागाड़ी गांव पहुंची, तो गांव वालों ने न सिर्फ ढोल ताशों से बस का जोरदार स्वागत किया, बल्कि बस पर फूल माला भी बरसाए। बरसों पुरानी मांग पूरे होने पर गांव वालों की खुशी देखते ही बन रही थी। आजादी के बाद पहली बार है जब गांव में बेटियों के लिए नियमित स्कूल बस की शुरुआत की गई है। स्कूल बस शुरू होने से गांव की बेटियां अब आसानी से स्कूल आ जा सकेंगी, उनकी यात्रा भी सुरक्षित होगी और उनका समय भी बचेगा। नियमित बस सेवा शुरू होने से गांव वाले भी बेहद खुश हैं। तो देखिए, भारत में तो आपने होली के रंग खूब देखे होंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं परदेश में होली जैसे उत्सव के रंग। देखिए, चीन के एक इलाके में रंगों से तो नहीं, लेकिन केवल पानी से अनोखी होली खेलने की परंपरा है। कैसे, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में।

0: सोच रहे होंगे कि भला रेनकोट पहनकर कौन होली खेलता है, तो आपको बता दें कि यहाँ असल में होली नहीं खेली जा रही, लेकिन होली जैसा ही त्योहार मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें चीन के हैनान की हैं। यहाँ पर खेली जा रही इस अनोखी होली में रंगों का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन हुड़दंग की कमी नहीं है, क्योंकि ये होली सिर्फ पानी से खेली जा रही है। चीन के हैनान के बोटिंग ली और मियाओ इलाके में हर साल की तरह इस बार भी जल की फुवारों के साथ इस अनोखे उत्सव वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल का शानदार आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और जमकर मस्ती की।
1: 我感觉就是那个泼水就是新年的意思吧，所以我从这里这几天开始，那个泼水以后，我变成了一个很好的很快乐，还有很快乐，还有从我认识了很多朋友，还有这里的人也很幽默，所以我感觉温暖的感觉。到了这个活动有，但是没有机会，是第一次我来，但是真的特别特别好玩。我看到了很多视频，我觉得哇，好玩，酷，我来这里一分钟，衣服都湿了，开心。
0: मान्यता है कि पिचकारियों से निकली शीतल जल की ये प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतीक है। हैनान में ली जनजातीय समूह के लोग पीढ़ियों से इस उत्सव को मनाते आ रहे हैं और अब विदेशी सैलानी भी इसमें बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। चार दिन के उत्सव में इस बार 8 देशों के सैलानियों के समूहों ने हिस्सा लिया। म्यूजिक और मनोरंजक माहौल के बीच लोगों ने इस उत्सव का खूब आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चाइना का रुख कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं चीन में रोशनी के उत्सव की शानदार तस्वीरें। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग के फुलिंग जिले में पहला फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल मनाया गया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, इस दौरान यहां पर जगह जगह 68 ऐसी आकृतियां लगाई गई जिनसे पूरा इलाका जगमग हो उठा। खासतौर से सीढ़ीदार फूलों के खेतों, झील के किनारे और जंगल के रास्तों पर रोशन इन आकृतियों से बेहद शानदार और खूबसूरत नजारा देखने को मिला। ये फेस्टिवल इलाके की खास पहचान और इसके हजारों साल पुराने इतिहास को इस तरह की सजावट के जरिए पेश करता है कि जो भी इसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। इसके बारे में देखिए, खास बात यह भी है कि इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जी हाँ, बल्कि 100 से ज्यादा कारीगरों ने इन्हें पूरी तरीके से हाथ से बनाया है, यानी ये हैंडमेड है। इन आकृतियों को बनाने में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सिचुआन की अनोखी सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। इस लाइट डिस्प्ले में पत्थर की मछली, अलग अलग दौर के विद्वानों के शिलालेख और पानी से जुड़ी नक्काशी के पैटर्न को भी दिखाया गया है। तो देखिए, हांगकांग का आसमान मशहूर क्वीसी फेस्टिवल के मौके पर ड्रोन की रोशनी से जगमगा उठा। इस फेस्टिवल में 2000 ड्रोनों ने विक्टोरिया हार्बर के ऊपरी चीनी लोक कथा की खूबसूरत तस्वीरें पेश की। ड्रोन से आसमान में मैगपाई ब्रिज की आकृति भी बनाई गई। ये वही पुल है जो चीनी लोक कथा के न्यूलांग और वीवर गर्ल को साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा ड्रोन से प्यार में डूबे जोड़ों और खेलते हुए विशाल गुलाबों की आकृतियां भी इस दौरान ड्रोन के जरिए बनाई गई। आसमान में बदलती इन तस्वीरों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो देखता ही रह गया। क्वीसी फेस्टिवल चीनी कैलेंडर के 7वें महीने के 7वें दिन मनाया जाता है। लोग करीब 2000 साल पुरानी प्रेम कहानी को सुनना, देखना और समझना चाहते हैं। आसमान पर बनी रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन गई।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए।

0: पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: नाल के प्रयोग से शनि की अशुभता दूर हो जाती है, घोड़े की नाल आखिर शनि की समस्या कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल के प्रयोग से पूरे घर का शनि कैसे बेहतर हो सकता है? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: 120 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन, प्रतियोगिता में 1 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 6 मेडल, अंक तालिका में 2रा स्थान। अंतरिक्ष में इतिहास रचने की 3री वर्षगांठ पर कल मनेगा जश्न, भारत ने 3 साल पहले 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील की। यूपी की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन पर खास गिफ्ट, 27 और 28 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान, एक सहयोगी के साथ बिना किराए के कर सकेंगे यात्रा। गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा रिसर्च, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की रिपोर्ट, इलाज भी होगा इससे आसान। केरलम में 72वीं रोमांचक नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का मुकाबला, पुनमाड़ा झील में हुई है प्रतियोगिता, 22 नेक बोट समेत 71 नावें हुई इसमें शामिल।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों
10: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का दमदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसकी एक फिनोमिनल मूवी 26 अगस्त को दुनिया भर के सिल्वर स्क्रीन्स पर दस्तक देने के लिए तैयार है। एक ऐसी मूवी जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े बजट वाली फिल्म माना जा रहा है। उसी फिल्म के लीड एक्टर की जिंदगी की दास्तान लेकर हम हाजिर हुए हैं। एक ऐसा हीरो शुरुआती दिनों में जिसके पास एक्टिंग का कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे,

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वंडर बॉय रॉकिंग यश हैं। जी हाँ, यही यश, वो यश जिसकी केजीएफ ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। 26 अगस्त को यश की एक और दमदार फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। एडवांस बुकिंग का विंडो ओपन होने के बाद टॉक्सिक को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म केजीएफ की कामयाबी को भी पीछे छोड़ने जा रही है। ये वही यश हैं जिनके पास कभी एक्टिंग कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे लेकिन आज वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे हीरो में शुमार हो चुके हैं।

0: यश का भी साफ मानना है कि कुछ भी नहीं है नामुमकिन अगर ठान लिया जाए।
1: So what I believe is, when you want to do something in life, nothing should stop you. Most of us listen to people who say bad things about us. What you can't do, what is wrong. I think I'm somebody who doesn't listen to anybody. If somebody is telling me that you can't do this, I'll only see their lack of imagination or their stupidity. Because if I can see it clearly, there's nothing in life, if you are able to put in effort and time and required energy or actions towards something, there's nothing in life which you cannot achieve, is what I believe.
0: यश के इसी अदम्य इच्छा शक्ति को देखकर निर्माता निर्देशक इन पर कोई भी दांव खेलने को तैयार हो जाते हैं। यश की इसी साल एक और फिनोमिनल बजट वाली मूवी रिलीज होने वाली है, रामायण। दो पार्ट में बनने वाली रामायण का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नजरिए से देखेंगे तो ये बजट फैंटेसी लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा हैं, जबकि टॉक्सी की तरह यश इस फिल्म के भी को प्रोड्यूसर हैं। रामायण में यश रावण का किरदार निभा रहे हैं।
2: प्रतिशोध लिया जाएगा सुपर्ण का। राम की
0: वो चाहते तो राम की भूमिका में भी आ सकते थे, लेकिन यश का साफ कहना है कि उन्होंने राम की बजाय रावण की भूमिका इसलिए चुनी क्योंकि जब तक खलनायक का किरदार दमदार नहीं होगा, नायक का नायकत्व निखर कर सामने नहीं आ पाएगा। रामायण का फलक कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत तैयार कर रहे हैं। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड के एक्शन डायरेक्टर गॉय नॉरिस फिल्म के युद्ध के दृश्यों को डिजाइन कर रहे हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वार फिल्म टेरी नोटरी फिल्म में परफॉर्मेंस और मोशन कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। द मैट्रिक्स फेम डैन ग्लास के पास फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की कमान है। रामायण की तरह टॉक्सी को भी ग्लोबल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको बता दें कि हॉलीवुड की जानी मानी फिल्म जॉन विक और फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्शन डायरेक्टर जे.जे. पेरी ने टॉक्सी के लिए भारत में 45 दिनों तक रहकर बेहद खास एक्शन शेड्यूल शूट किया है। इतना ही नहीं, टॉक्सी को दुनिया भर के 12,000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज करने की तैयारी है और इसके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हॉलीवुड के दिग्गज स्टूडियो 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ पार्टनरशिप की गई है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर ही टॉक्सी को कन्नड़ के साथ अंग्रेजी भाषा में भी शूट किया गया है। टॉक्सिक और रामायण से पहले यश की साल 2018 में आई KGF चैप्टर 1 और साल 2012 में आई KGF चैप्टर 2 ने हिंदुस्तान के साथ ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। KGF में यश द्वारा निभाया गया रॉकी भाई का करिश्माई और विद्रोही किरदार दुनिया भर के सिने प्रेमियों के बीच एक आइकॉनिक हीरो के रूप में सामने आया। साफ है कि कर्नाटक के हासन जिले के गुमनाम गांव में जन्मे बच्चे ने बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट और बिना किसी गॉडफादर के अपनी इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन के दम पर न सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कद्दा और पहचान बनाई, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर भी पूरी ठसक के साथ मजबूत पहचान दिलाई।
3: यश के एक्टर बनने की दास्तान अत्यंत मर्म स्पर्शी है। इनका जन्म कर्नाटक के हासन जिले के एक साधारण से गांव में हुआ था। यश के पिता बस ड्राइवर थे, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि गृहस्थी मुश्किल से ही चलती होगी। लेकिन उसी साधारण परिवार में जन्मे यश के मन में बचपन से ही ये हसरत कुलाचे मारने लगी थी कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना है। शुरुआती दिनों में यश अपनी हसरत जब दोस्तों के बीच बताते थे तो दोस्त इन पर चुटकी लेते थे, लेकिन साथियों की चुटकियों से विचलित हुए बगैर वो अपने मिशन में काफी कम उम्र से ही जुट गए थे। यश के जीवन की हकीकत भी किसी परी कथा से कम थ्रिलिंग नहीं है।
0: इमेजिनेशन, एनालाइजेशन और एग्जीक्यूशन, अंग्रेजी के इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द ही सफलता और असफलता का चक्र घूमता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इमेजिनेशन ना करता हो। हसीन ख्वाब देखना इंसान की बुनियादी फितरत है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमेजिनेशन को एनालाइज करते हैं। एग्जीक्यूशन के लेवल तक तो कोई विरला ही पहुंचता है, लेकिन जो पहुंच जाता है वो ही इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराता है। साउथ के सुपरस्टार यश उन्हीं विरले लोगों में शुमार हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वंडर बॉय और रॉकिंग स्टार के नाम से पहचान बना चुके यश के शुरुआती जीवन की सच्चाई से जब आप रूबरू होंगे तो जेहन में सवाल उठेगा कि इतनी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला एक शख्स इतना रॉकिंग स्टार कैसे बन गया। कर्नाटक के हासन जिले के छोटे से गांव भुवनहल्ली में 8 जनवरी 1986 को जन्मे यश ने जब से होश संभाला तभी से दिल में रुपहले पर्दे पर स्टार बनकर चमकने की हसरत पलने लगी। घर वाले यश की इस हसरत को कम उम्र की नादानी मानकर बस इतना चाहते थे कि पढ़ लिख कर उनका बेटा एक सरकारी नौकरी पकड़ ले, पर पेरेंट्स को क्या पता था कि यश की एक्टर बनने की ख्वाहिश बाल सुलभ नादानी नहीं बल्कि वास्तविक जुनून है।
1: My father is from Mysore, so I grew up in Mysore. Most of my childhood was in Mysore. My father was a BMTC bus driver and my mother was a housewife. So just like any other middle class, this thing, we were leading a happy life, and then I want to become an actor. From childhood, I've been inclined towards this, extra attention we get as an actor, no? For that, maybe all the CT Marna, all this I used to like. I used to participate in a lot of fancy dress, mono acting and all of that. And I used to dance. So that used to give me a lot of happiness. So that's how it started and I got into, it's a long story.
0: हासन जिले के गुमनाम गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मे बच्चे के इंटरनेशनल स्टार बनने की दास्तान वाकई बहुत लंबी है। नवीन कुमार गौड़ा से रॉकिंग यश बनने की कहानी दिल को छू लेने वाली है। हीरो बनने की हसरत सजोई यश बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के स्वयं की प्रेरणा से स्कूल के नाटकों और डांस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे, और उनके परफॉर्मेंस पर जब साथी बच्चे तालियां बजाते तो उन्हें उसी उम्र में रॉक स्टार वाली फीलिंग होने लगती। उधर स्कूल के साथी यहां तक कि टीचर्स भी यश को हीरो कहकर संबोधित करने लगे। दूसरी ओर यश को बचपन में कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन जैसा जरूर है।
1: I never realized how difficult it is or this. It's just that I believed it at a very young age because all my teachers, they started calling me, Kya hero, how are you? Matlab, jab baat karte the na, even then they used to be like hero bulate the. Because I'd done some small mono acting this thing where I told that, you know, I'll catch Veerappan and all of that when I was young. So they used to tease me with that thing. If Veerappan's any news used to come out, they used to question me, saying, "Hey, you used to kidhar hai, pakda nahi abhi tak." So they used to make fun of those things. And I believe that one day, jaake main actor ban jaunga. I didn't know how difficult it is or how much dedication or lot of things go into becoming an actor or anybody who wants to achieve something. I had no clue about that, but I just wanted to be an actor.
0: रुपहले पर्दे का स्टार बनने की धुन के साथ ही यश ने स्कूलिंग पूरी कर ली। लेकिन प्री यूनिवर्सिटी करने के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आई तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल के स्टेज पर परफॉर्म करने और प्रोफेशनल एक्टिंग में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे में उन्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए एक्टिंग का कोर्स करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन घर वालों के पास इतने पैसे थे कहां कि यश को किसी एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिलवा सकें। पर यश के पास तो दूसरा विकल्प था ही नहीं, लिहाजा एक दिन घर वालों से कह दिया कि वो बेंगलुरु जाएंगे और वहीं एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमाएंगे। यश के पिता इसके लिए कतई राजी नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद देखकर आखिरकार मान गए, पर जाने से पहले एक शर्त रख दी कि अगर वापस लौटने की नौबत आई तो हीरो बनने की हसरत की तिलांजलि दे देनी होगी। यश ने पिता की शर्त मान ली और महज 300 रुपए लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए।
4: I just went and I joined theater and I did a lot of backstage work. Eventually, while doing backstage work, I used to practice for other roles also. Where some actor is late, then I used to give that dialogue cue बोलते हैं उसको। Like that, I used to rehearse and then I was an emergency actor. If somebody is ill or if some actor is not I used to just go and do that. That's how it started. And then I started getting big roles.
0: थिएटर में काम मिलने के बाद तो जैसे यश के अरमानों को पंख लग गए। काम इतनी मेहनत से किया कि उनकी एक्टिंग के चर्चे होने लगे। साल 2004 में यश की किस्मत ने बड़ी करवट ली और उन्हें कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल में विजय सिंह का किरदार मिल गया। नंदा गोकुल में विजय सिंह के किरदार को यश ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर इतना जीवंत कर दिया कि दूसरे सीरियल्स के लिए भी ऑफर आने लगे। 3 साल में ही यश छोटे पर्दे के इतने बड़े एक्टर बन गए कि उसकी गूंज फिल्म इंडस्ट्रीज तक सुनाई देने लगी। फिर आया साल 2007 जब यश को बड़े पर्दे पर भी एंट्री मिल गई। इसी साल उन्होंने कन्नड़ फिल्म जम्बडा हुदगी में बड़े पर्दे पर बतौर सेकेंड लीड डेब्यू किया। अगले ही साल यानी 2008 में कन्नड़ फिल्म मोगीना मानासु में यश को लीड रोल निभाने का मौका भी मिल गया। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। बतौर लीड हीरो यश की पहली ही फिल्म मोगीना मानासु सुपरहिट हो गई। रोमांटिक ड्रामा मोगीना मानासु के लिए यश को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। मोगीना मानासु के बाद यश ने राजधानी, गजकेसरी और मास्टरपीस जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी बेहतरीन अदाकारी के दम पर ज्यादातर फिल्में हिट होती चली गईं। हालांकि जिंदगी में खूबसूरत और शानदार मोड़ तब आया जब साल 2018 में KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई। KGF चैप्टर 1 में उन्होंने रॉकी का किरदार निभाया जो दर्शकों के दिलों में ऐसे उतर गया कि बॉक्स ऑफिस पर बवंडर आ गया। साल 2022 में KGF का सीक्वल KGF चैप्टर 2 आया जिसने पहले चैप्टर से भी ज्यादा तहलका मचा दिया। KGF चैप्टर 1 और 2 वर्ल्ड वाइड करीब 1500 करोड़ का कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाले फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। अपने 19 साल के फिल्मी सफर में यश एक दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दे चुके हैं। टॉक्सिक और रामायण जैसी मेगा बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या करिश्मा कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों फिल्मों का रिलीज से पहले जैसा बच क्रिएट हो चुका है इसकी पूरी उम्मीद है कि KGF वाला करिश्मा एक बार फिर दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि यश बचपन से ही अपने एक्टिंग करियर को लेकर जिस तरह से कमिटेड थे वैसे ही अपने शरीके हयात राधिका पंडित को लेकर भी हैं। दोनों की पहली मुलाकात कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल की शूटिंग के दौरान 2007 में हुई थी और पहली मुलाकात में ही आंखें चार हो गईं। उसके बाद यश ने किसी दूसरे विकल्प पर कभी विचार ही नहीं किया। दोनों ने साल 2016 में शादी कर ली। आज यश और राधिका की जोड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सर्वाधिक कमिटेड कपल में शुमार की जाती है।
3: बंदे में है दम में आज आपने अभिनेता यश के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: Oh, my God.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: की नाल के प्रयोग से शनि की अशुभता दूर हो जाती है। घोड़े की नाल आखिर शनि की समस्या कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल के प्रयोग से पूरे घर का शनि कैसे बेहतर हो सकता है? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तीसरी वर्षगांठ पर कल मनेगा जश्न। भारत ने 3 साल पहले 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील की। यूपी की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन का तोहफा। 27 और 28 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान। एक सहयोगी के साथ बिना किराए के कर सकेंगी यात्रा। गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा रिसर्च, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की रिपोर्ट, इलाज भी होगा इससे आसान। यूपी के कालीन नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने, सरकारी योजना बनी संजीवनी, एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन, प्रतियोगिता में 1 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 6 मेडल। केरला में 72वीं रोमांचक नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का मुकाबला, पुनमाड़ा झील में हुई है प्रतियोगिता, 22 स्नेक बोट समेत 71 नावें हुई इसमें शामिल। चीन के चोंगकिंग में पहले फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल की दिखी रौनक, 68 आकृतियों से जगमग हुआ पूरा इलाका, 1000 साल के इतिहास की दिखी झलक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
8: विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रीनगर से निकली घड़ी मुबारक, अनुष्ठान के साथ ही अंतिम पड़ाव पर पहुंची बाबा अमरनाथ की यात्रा। इस मौके पर महंतों और साधुओं के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना हुई पवित्र छड़ी मुबारक, जहां रात्रि विश्राम और अनुष्ठान के बाद चंदन वाड़ी के लिए निकलेगी यात्रा। 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचेगी छड़ी मुबारक, तभी होगा बाबा अमरनाथ की यात्रा का औपचारिक समापन। इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई थी 57 दिवसीय अमरनाथ यात्रा, अब तक 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। पूरी श्रद्धा और आस्था से जारी प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, धार्मिक यात्रा के 5वें जत्थे ने किए दर्शन पूजन। यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, श्रद्धालुओं का फूल मालाएं पहनाकर हुआ भव्य स्वागत, गूंज जयकारे। स्थानीय लोग भी पेश कर रहे सेवा सहयोग और भाईचारे की मिसाल, श्रद्धालुओं के लिए जलपान भोजन पेयजल समेत सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकल रहा जत्था, भक्तों की यात्रा सुगम और सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा प्रशासन। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की ये यात्रा, रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भव्य झूलन उत्सव का हुआ आयोजन, सावन महीने में तीनों भाइयों के साथ रामलला को झुलाया गया झूला। झूलन उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा रहे मौजूद, श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आए लोग। रामलला को झूला झुलाने के लिए लगी होड़, धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भजन कीर्तन करते दिखे साधु संत। भगवान राम के उत्सव विग्रह को फूलों से सजे चांदी के हिंडोले में कराया गया विराजमान, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। रामनगरी में झूला उत्सव के लेकर श्रद्धालुओं में दिख रहा खासा उत्साह, तीनों भाइयों के साथ रामलला के दर्शन का मिला सौभाग्य। केरलम के अल्पुझा में 72वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का भव्य शुभारंभ, रेस में 71 बड़ी बोट ने लिया हिस्सा। 22 स्नेक बोट बनी मुख्य आकर्षण का केंद्र, पुन्नमाडा झील दर्शकों से गुलजार, नाविकों का हौसला बढ़ाते दिखे दर्शक। झील में तेज रफ्तार से दौड़ी नावें, हजारों लोग देखने पहुंचे रोमांचक मुकाबला, नाविकों ने तालमेल के साथ लगाई ताकत। चप्पुओं की रफ्तार ने बढ़ाया बोट रेस का रोमांच, रंग बिरंगी नावों ने बढ़ाई झील की खूबसूरती, केरल की समुद्री परंपरा की दिखी झलक। पंडित नेहरू की अल्पुझा यात्रा से जुड़ा बोट रेस का इतिहास, 1952 में हुई थी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की शुरुआत। रक्षाबंधन पर अकोला रेल मेल सर्विस की खास पहल, राखी भेजने के लिए स्टेशन परिसर में स्पेशल काउंटर की हुई शुरुआत, बहनों को लंबी कतारों से मिली राहत। राखी पोस्ट करने की प्रक्रिया हुई आसान, राखी के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था, बारिश से बचाने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे की भी सुविधा उपलब्ध। रात 9 बजे तक राखी पोस्ट कर सकेंगे बहनें, दिन भर कामकाज के बाद भी भेज सकेंगे राखी, काउंटर पर राखी भेजने के लिए उमड़ रही महिलाओं की भीड़। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा, 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक फ्री यात्रा। माताओं बेटियों और बहनों को मिलेगी राहत, महिला के साथ एक सहयोगी भी फ्री सफर करेगा, रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा। गोपालगंज की पुष्पा प्रसाद को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उन्हें सम्मानित। पुष्पा प्रसाद का देश भर में हुआ चयन, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 48 शिक्षक चुने गए, गोपालगंज के कुचायकोट स्कूल में पढ़ाती हैं पुष्पा, बच्चों को अनोखे अंदाज में पढ़ाती हैं पुष्पा प्रसाद, कठिन विषय को बनाती हैं आसान, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाती हैं। हर बच्चे की प्रतिभा पहचानने पर जोर, ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ाना है संकल्प, कम संसाधनों में ही शिक्षा का नया मॉडल तैयार। विशेष बच्चों के लिए ब्रेल सामग्री तैयार, पुष्पा को पहले भी मिल चुके कई सम्मान, टीचर ऑफ द मंथ भी रह चुके हैं। भदोही में कालीन उद्योग को ODOP का सहारा, सरकारी मदद से कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार, पूंजी बाजार और हुनर पर खास जोर। 348 लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त ऋण मिला, 131 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया गया, 12 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी मिली। 546 उद्यमियों को बाजार की मदद मिली, प्रदर्शनी में जाने के लिए 6,85,00,000 की सहायता। 2,350 लोगों को प्रशिक्षण और टूल किट मिली, कालीन सेंटर से 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार। 88 से ज्यादा देशों में पहुंचती है भदोही की कालीन, अमेरिका और यूरोप में भी कारपेट की बड़ी मांग। रोहतास में करमचर डैम पर हुआ बड़ा मॉक ड्रिल, आपदा से निपटने की तैयारियों का हुआ टेस्ट। स्वास्थ्य विभाग और एम्स ने मिलकर किया अभ्यास, करीब 70 स्वास्थ्य कर्मी की टीम पहुंची। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड भी रही शामिल, पुलिस और ट्रैफिक टीम ने संभाला मोर्चा। मौके पर ही लाइफ सेविंग ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास, मॉक ड्रिल में फुल स्केल हॉस्पिटल हुआ तैयार, एक साथ 200 लोगों को मिल सकेगी इससे मदद। मॉक ड्रिल के दौरान पोर्टेबल मिनी हॉस्पिटल भी मौजूद, PHISHM क्यूब की तैनाती का भी परीक्षण, मल्टी एजेंसी फुल स्केल लाइव ड्रिल हुई। मुरादाबाद के सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए लिया गया बड़ा कदम, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ICT लैब्स की स्थापना। प्रदेश में कुल 300 विश्वविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और 48 विद्यालयों में ICT लैब स्थापित की गई, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम। बच्चों को एनिमेटेड वीडियो और इंटरैक्टिव स्क्रीन के जरिए आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई में रुचि बनाए रखने के लिए सरकार की पहल। टीबी की जांच और इलाज में गोरखपुर एम्स को मिली बड़ी सफलता, अब 6 हफ्ते नहीं सिर्फ 2 घंटे में ही मिलेगी टीबी की जानकारी। नई जांच तकनीक के जरिए करीब 2 घंटे में ही की जा सकती है संवेदनशील और दवा प्रतिरोधी टीबी की पहचान, जल्द शुरू किया जा सकेगा मरीजों का सटीक इलाज। गोरखपुर में राप्ती रिवर फ्रंट की तैयारी, 1,303 करोड़ रुपए की लागत से बदलेगी तस्वीर, 3.5 किलोमीटर में दिखेगा शानदार नजारा। राप्ती नदी का किनारा बनेगा आकर्षण का मुख्य केंद्र, राजघाट से डोमेनगढ़ तक होगा इसका विकास, गोमती साबरमती की तर्ज पर राप्ती रिवर फ्रंट का होगा विकास। करीब 150 मीटर चढ़ाई में होगा काम, सड़क तक बनेगा खूबसूरत ग्रीन बेल्ट, अर्बन हार्ट की होगी इसमें सुविधा, पर्यटन को भी मिलेगा इससे बढ़ावा। बस्ती में बेटे के अवसर बनने पर दिखा पिता का बादशाही अंदाज, हाथी पर बिठा के बेटे का किया भव्य स्वागत। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हुआ है अवनीश पांडे का चयन, इस उपलब्धि की खुशी में उनके पिता ने गाजे बाजे के साथ किया उनका स्वागत का आयोजन। फिल्म महावीर कर्ण का टीजर हुआ आउट, 4 दिसंबर को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी भव्य लाइव एक्शन फिल्म। वीर पहाड़ी और अपार शक्ति खुराना की फिल्म प्रेम कीटाणु का पहला गाना हुआ रिलीज, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी ये फिल्म। सिनेमाघरों में फिर लौटेगी एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स डूम्सडे से सीधा कनेक्ट करने के लिए नए सीन और फुटेज के साथ री रिलीज होगी ये फिल्म। सिनेमाघरों के बाद OTT पर रिलीज होगी बॉबी देओल की फिल्म बंदर, 28 अगस्त से Zee5 पे होगी स्क्रीनिंग। अर्जुन रामपाल ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गैब्रियला के संग रचाई शादी, गोवा में कराया मैरिज का रजिस्ट्रेशन। सलाइवा सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म जेलर 2 का पहला गाना हुआ रिलीज, जिसमें शामना कासिम के साथ नजर आ रहे रजनीकांत। एक्टर कुणाल खेमू की अगली डायरेक्टोरियल फिल्म वाइब का टीजर हुआ रिलीज, इस एक्शन कॉमेडी फिल्म में प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर आएंगे नजर। गोविंदा के बेटे हर्षवर्धन हॉरर कॉमेडी हीरो की हीरोइन से करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू, साजिद खान के निर्देशन में बन रही फिल्म को शोभा कपूर, एकता आर कपूर और अमर बुटाला मिलकर कर रहे हैं प्रोड्यूस। यश की फिल्म टॉक्सिक ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में की शानदार कमाई, एक ही दिन में करीब 13 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज की। बॉक्स ऑफिस पर रोज सफलता की सीढ़ी चढ़ रही इमरान हाशमी की फिल्म अवारमन 2 अब महज 8 दिनों में 120 करोड़ रुपए के बेहद करीब पहुंची है। कल कोलंबो में खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच 2रा टेस्ट मैच, इस मैच में भी इंतजार में कई नए रिकॉर्ड्स। 2 मैचों की सीरीज में भारत को पहले ही 1-0 से बढ़त, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकिल में 53.33% पॉइंट के साथ 5वें स्थान पर टीम। इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पूरे कर सकते हैं टेस्ट में 3,000 रन, इस कीर्तिमान से महज 7 रन है दूर गिल, फिलहाल उनके नाम 2,993 रन। इसके अलावा टेस्ट में 50 छक्के भी पूरे कर सकते हैं गिल, कोलंबो में 3 छक्के लगाते ही उपलब्धि हासिल कर लेंगे गिल, फिलहाल उनके नाम है 47 सिक्स। टेस्ट 400 चौके पूरे करने से महज एक कदम दूर है रविंद्र जडेजा। अभी उनके नाम है 399 चौके, साथ ही 49 कैच ले चुके जडेजा। एक कैच लेते ही टेस्ट मैच में पूरा करेंगे 50 कैच। बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर रेस में जेमिनी और एसबीआई लाइफ। बेस प्राइस 4,85,00,000 रुपए प्रति मैच। 2 साल में 35 घरेलू मैचों के अधिकार मिलेंगे। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारतीय महिला पहलवानों ने जीते 3 मेडल। महिला पहलवान मानसी लाठर ने जीता सिल्वर। 68 किलोग्राम वर्ग में मानसी ने दम दिखाया। 57 किलोग्राम वर्ग में महिला पहलवान तानवी मगदुम ने ब्रॉन्ज। 59 किलोग्राम वर्ग में कोमल को भी ब्रॉन्ज। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 9 मेडल्स जीते। दूसरे पायदान पे भारत। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर से भारत के लिए गुड न्यूज आई सामने। डबल पोडियम पे महिला एथलीट्स, गोल्ड और सिल्वर। 1500 मीटर वुमेन्स रेस में पूजा ओला ने जीता गोल्ड। लिली दास ने सिल्वर पर किया कब्जा। भारतीय महिला एथलीट ज्योति याराजी ने 100 मीटर हर्डल्स में जीता ब्रॉन्ज। 13.24 सेकंड का लिया समय। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का कमाल। महिला वर्ग में त्रिशा जॉली गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज। 15 साल बाद महिला डबल्स में भारत को ऐतिहासिक मेडल। सेमीफाइनल में चीनी जोड़ी से हार के बाद मिला ब्रॉन्ज। टेनिस से भारत के लिए गुड न्यूज आई सामने। कैनकन चैलेंजर में भारतीय जोड़ी श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर की शानदार जीत। सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टेनिस जोड़ी। क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन की जोड़ी डेविड स्टीवंस मार्कस विलिस को हराया। 4 ग्रैंड स्लैम के बाद वापसी करेंगे भारतीय टेनिस प्लेयर सुमित नागल। यूएस ओपन क्वालिफाइंग ड्रॉ में मिली जगह। जैक ड्रेपर के हटने से नागल को मिला मौका। यूएस ओपन से पहले बड़ा झटका। वर्ल्ड नंबर 1 जैनिक सिनर आउट। घुटने की चोट ने उन्हें रोका। 5 ग्रैंड स्लैम जीत चुके इटालियन स्टार ने कहा मुझे पूरी तरीके से फिट होने के लिए अभी और समय चाहिए। चीन का डोंग युआन बना खिलौनों का बड़ा हब। टॉयस से सजे बाजार रंग बिरंगे खिलौनों की भरमार। बाजारों में दिखे ट्रेंडी और अनोखे टॉयज। ब्लाइंड बॉक्स खिलौनों का बड़ा क्रेज। प्लश टॉयज ने भी खींचा लोगों का ध्यान। मेटल मॉडल और कलेक्टिबल्स की धूम। एनीमे कैरेक्टर वाले टॉयज भी काफी ज्यादा पॉपुलर। हर उम्र के लोगों के लिए खिलौनों के रेंज। डिजाइन मोल्ड और पैकेजिंग की सुविधा के साथ चीन के करीब 85% ट्रेंडी टॉयज यहीं बनते हैं। टॉयज की बिक्री में उछाल। खिलौनों में दिख रही चीनी संस्कृति की झलक। पारंपरिक विरासत से प्रेरित टॉयज भी तैयार। दुनिया भर में हो रहा है इसका एक्सपोर्ट। चीन के चोंगकिंग में रोशनी का शानदार उत्सव। फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल से जगमगा उठा शहर। 68 विशाल लालटेन इंस्टॉलेशन ने बढ़ाई रौनक। फूलों के खेत रोशनी से जगमगा उठे। झील किनारे दिखा अद्भुत नजारा। जंगल के रास्ते भी रोशनी से चमके। लालटेनों ने इतिहास को जीवंत किया। लालटेन में दिखी पत्थर की मछलियां। पानी से जुड़े नक्काशी पैटर्न आए नजर। हजारों साल पुराना जल इतिहास नजर आया। रोशनी और परछाई ने मोह सभी का मन। रोशनी के बीच इतिहास का खूबसूरत संगम। प्राचीन संस्कृति का अनोखा प्रदर्शन। फेस्टिवल ने दिखाई चोंगकिंग की पहचान। रोशनी से चमका हांगकांग का आसमान। 2000 ड्रोन ने किया शानदार शो। विक्टोरिया हार्बर बना रोमांस का कैंपस। आसमान में बना मैगपाई ब्रिज। ड्रोन से दिखी चीनी प्रेम कथा। आसमान में दिखे प्यार में डूबे जोड़े। ड्रोन से बने विशाल गुलाब। आसमान में रंग बिरंगी आकृतियों ने मोहा सभी का मन। ड्रोन शो देखकर दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। चीन में रोबोट डॉग्स बने सामान होने वाले। होंगझोउ की झेजियांग यूनिवर्सिटी में दिखा अनोखा नजारा। रोबोट डॉग्स ने उठाया छात्रों का सामान। रोबोट्स में शानदार मोशन कंट्रोल। छात्रों के बीच बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। स्कॉटलैंड के डॉक्टर के क्लिनिक में रोबोट मरीजों के हेल्थ चेकअप में कर रहे हैं हेल्प। रोबोट का नाम है तेमी। मरीजों को चेकअप के स्टेप्स भी बताता है। रोबोट हाइट और वजन नापने में करता है मदद। ब्लड प्रेशर भी चेक करता है रोबोट। ऑक्सीजन लेवल की भी करता है जांच। स्विट्जरलैंड के एंगडन में स्विस एपिक के तीसरे स्टेज में रोमांचक रेस। डी कॉस्मो और डोरेगोनी ने मारी बाजी। जीत का फैसला स्प्रिंट फिनिश में हुआ। महिलाओं की रेस में भी जबरदस्त मुकाबला, अन्ना वाइनबीर और क्लाउडिया पेरेटी ने फिर जीता स्टेज, दोनों की जीत का सिलसिला जारी। स्पेन में डेंजन डंफ्रीज को मिले 24वें नंबर की जर्सी, 30 साल के डंफ्रीज से 4 साल का करार, रियल मैड्रिड क्लब ने टीम को मजबूत करने पे दिया जोर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
6: घोड़े की नाल के प्रयोग से शनि की अशुभता दूर हो जाती है। घोड़े की नाल आखिर शनि की समस्या कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल के प्रयोग से पूरे घर का शनि कैसे बेहतर हो सकता है? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी है। यात्रा के दौरान पवित्र छड़ी की चंदन वाड़ी शेषनाग और पंचतरणी में विश्राम होगा। रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी।

ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और वादियों में गूंजता महादेव का जयकारा। साधु संतों की टोली आगे पढ़ रही है तो श्रद्धालु बाबा के दरबार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हवा में भक्ति की महक है, आंखों में दर्शन की उम्मीद है और दिल में सिर्फ एक नाम, जय शिव शंकर। कश्मीर की धरती पर इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा है। श्रीनगर से लेकर पहलगाम और पुंछ तक शिव भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक अपने सफर पर निकल चुकी है। चारों तरफ प्रभु के जयकारे और भक्ति की अनोखी चमक।

0: मानसिक मंत्रोच्चार के बाद छड़ी मुबारक को पहलगाम के लिए रवाना किया गया। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाथ और 26-27 अगस्त को पंचतरणी में पड़ाव होगा। इसके बाद 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा।
1: जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और 28 तारीख प्रातःकाल, जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, तो वहां पर छड़ी मुबारक को वहां स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा।
0: अमरनाथ गुफा में विधि विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बीच छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद छड़ी मुबारक पंचतरणी लौटेगी और 29 अगस्त को वापसी का सफर शुरू होगा। शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए 30 अगस्त को पहलगाम पहुंचने के बाद पूजा और विसर्जन के साथ इस धार्मिक परंपरा का समापन होगा।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
12: अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तीसरी वर्षगांठ पर कल मनेगा जश्न। भारत ने 3 साल पहले 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील की। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक पूरे विधि विधान से श्रीनगर से पहलगाम रवाना। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा के अंतिम धार्मिक अनुष्ठान शुरू। रविवार को पहलगाम में रात्रि विश्राम के बाद सोमवार को चंदनवाड़ी पहुंचेगी छड़ी मुबारक। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन पर खास गिफ्ट। 27 और 28 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान। एक सहयोगी के साथ बिना किराए के कर सकेंगी यात्रा। गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का बड़ा रिसर्च, अब 2 घंटे में आ जाएगी टीबी की रिपोर्ट, इलाज भी होगा इससे आसान। यूपी की कालीन नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने। सरकारी योजना बनी संजीवनी, एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन। प्रतियोगिता में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 6 मेडल। केरला में 72वीं रोमांचक नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का मुकाबला। पुनमाड़ा झील में हुई ये प्रतियोगिता। 22 स्नेक बोट समेत

कर नावें हुई इसमें शामिल। चीन के चोंगकिंग में पहले फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल के दिखी रौनक, 68 आकृतियों से जगमग हुआ पूरा इलाका, 1000 साल के इतिहास के दिखी झलक।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं घोड़े की नाल के बारे में। घोड़े की नाल यानी आपको समझा दूं, जो घोड़े के पैर होते हैं उसमें यू शेप का लोहे का एक टुकड़ा होता है, आपने भी देखा होगा। इसका ज्योतिष शास्त्र में बहुत गहरा इसका संबंध होता है, तो आखिरकार इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर हायर ऑफिशियल्स के साथ, उच्चाधिकारी के साथ संबंध गड़बड़ हो रहे हों, आपके जो उच्च अधिकारी हैं वहां से रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो सूर्य देव को रोज जल चढ़ाइए। जल में जरा सी रोली मिला करके अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं 23 अगस्त 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 23 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र शाम के 5:44 तक, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार पंडित जी, ये घोड़े की नाल होती क्या है, जिनको मालूम नहीं है उनको समझा दीजिए, और इसका प्रयोग क्या होता है, और अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें, उसके दृष्टिकोण से देखें, क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कहने को तो ये बस लोहे का टुकड़ा ही है।
1: जी, जैसा सरगम ने आरंभ में बताया कि घोड़े के पैर में लगा हुआ एक लोहे का टुकड़ा है, सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर समझें तो घोड़े की नाल घोड़े के खुर में उसके पैर में लगाई जाती है ताकि ना तो घोड़े को चलने में समस्या हो और ना ही घोड़े की सवारी करने वाले को समस्या हो। ये घोड़े की नाल यू की आकृति का होता है और इसके विशेष प्रभाव के कारण ज्योतिष में शनि और राहु से इसका संबंध जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके विशेष प्रभाव के कारण और आकृति की वजह से शनि और राहु हमेशा नियंत्रित रहते हैं। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि अगर घोड़े की नाल का गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये मुश्किल में डाल सकता है। ये कोई सामान्य लोहे का टुकड़ा नहीं है, इसके अंदर विशेष तरह के चुंबकीय गुण होते हैं जिसकी वजह से ये आपके ग्रहों को रेगुलेट कर पाता है, आपके ग्रहों को कंट्रोल कर पाता है।
0: तो चलिए बातचीत का जो सिलसिला है ये जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, संतान की चिंता हो सकती है, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की प्राप्ति हो सकती है, काफी व्यस्तता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: पंडित जी, मैंने खुद मुख्यतः देखा है कि कई ऐसे शनि मंदिर हैं जहां पर इसे चढ़ाया जाता है, यानी घोड़े के नाल को चढ़ाया जाता है, तो क्यों और कैसे घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर सकती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
1: देखिए, शनि का संबंध लौह धातु से है ये हम सब जानते हैं, लेकिन घोड़े की नाल ही क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है शनि को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, शनि जो है वो धीमी गति का, संघर्ष का और मेहनत का ग्रह है। घोड़े की गति धीमी तो नहीं होती, लेकिन गति उसके पास भी होती है, मेहनती बहुत होता है, संघर्ष का प्राणी है, और ये गुण घोड़े की नाल में पाया जाता है। घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगी होती है और इसी कारण गतिशील अवस्था में, यानी मूवमेंट में बनी रहती है। घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगी होने की वजह से जब घोड़ा चलता है तो ये नाल जमीन से बार बार घिसती है और टकराती है। रगड़ खाते रहने के कारण इसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। लगातार जमीन से रगड़ खाने की वजह से विशेष तरह की तरंगे और विशेष तरह की ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है, और इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर पाती है, घोड़े की नाल जितनी पुरानी होगी, जितनी घिसी हुई होगी, उसकी तरंगे उतनी प्रभावशाली होंगी और उसकी तरंगों के फायदे से आप शनि को कंट्रोल कर पाएंगे।
0: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की समस्या हल होगी, अतिथि का आगमन होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, अपयश से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं आज का पहला सवाल आप किस व्यूअर का ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न शैली सिंह ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1995, जन्म का समय रात में 10:35, जन्म स्थान है वाराणसी। शैली कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शैली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय शुरू हो चुका है और अगले 3-4 महीनों में आपकी शादी फाइनल हो जाएगी, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। साल 2027 के आरंभ में आपका विवाह होगा और वाराणसी या उसके आसपास ही विवाह होने की संभावना बनती है। हालांकि विवाह के बाद आप अपने पति के साथ बनारस से दूर जा सकती हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारे ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और सोचते हैं कि पंडित जी से सवाल कैसे पूछ सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर हमारा ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रहा है। आपको बस इतना करना है कि अपनी जो बर्थ डिटेल्स हैं इस ईमेल आईडी पे भेजनी है और अपना सवाल साथ में हमें भेज दीजिए। पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो पंडित जी, अगला सवाल किसका है इसके बारे में बताएं।
1: जी, अगला प्रश्न विवेकानंद जी ने लिखा है, हमें देहरादून से लिखते हैं। 8 अक्टूबर 1975 का जन्म है। दोपहर के 3:50 जन्म का स्थान है देहरादून। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी के कब्जे को लेके काफी समय से मुकदमा चल रहा है। प्रॉपर्टी मेरी है, किराएदार उसे छोड़ नहीं रहा है और विवाद काफी समय से चलता आ रहा है। तो ये विवाद कब तक हल होगा? समस्या से छुटकारा कब तक मिलेगा? विवेकानंद जी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस साल के अंत में आपसी सुलह समझौते से आपकी समस्या हल हो जाएगी साल 2026 के अंत में, और आपको आपकी प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन उसको पाने के लिए कुछ पैसा वगैरह आपको खर्च करना पड़ेगा। मामला सुलह समझौते से निपट जाएगा। रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का अगर आप दान करें तो आपकी समस्या जल्दी हल हो जाएगी।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किस प्रकार घोड़े की नाल का प्रयोग कर सकते हैं ताकि शनि की पीड़ा से अगर आप जूझ रहे हैं, शनि से मिलने वाली जो तमाम मुश्किलें हैं उसका सामना कर रहे हैं, तो उसे किस तरीके से मुक्ति मिल सकती है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, घोड़े की नाल अगर पुरानी है, घिसी हुई है, तो इसका प्रयोग करके आप शनि की पीड़ा को कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? किसी मंगलवार या बृहस्पतिवार को घोड़े की नाल ले लें। ये जितनी ज्यादा पुरानी होगी, जितनी ज्यादा घिसी हुई होगी, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। इस नाल से एक अंगूठी यानी एक छल्ला बनवा लें, लेकिन ये छल्ला या अंगूठी पीट पीट कर काट काट कर बनाई जाएगी। इसको आग में नहीं तपाया जाएगा। शनिवार की शाम को इस अंगूठी को सरसों के तेल से धो करके मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। अगर शनि की महादशा है, अंतरदशा है, शनि की साढ़े साती है, ढैया है और इसके वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो आप घोड़े की नाल का छल्ला अगर मध्यमा अंगुली में पहन लेंगे तो शनि जो आपको पीड़ा दे रहे हैं वो पीड़ा कम हो जाएगी और उस पीड़ा से आप बचे रहेंगे।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, करियर में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। कर्ज की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, समस्या से मुक्ति मिलेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा, खान पान में थोड़ी सावधानी रखें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो पंडित जी, अगर किसी के घर में किसी ना किसी तरीके की परेशानी बनी रहती है तो घोड़े की नाल का वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनके घर में सुख और शांति का वास हो?
1: आप अपने पूरे घर के ऊपर से नकारात्मक प्रभाव को, निगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं घोड़े की नाल का प्रयोग करके। तो घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि घर में सुख शांति आए? घोड़े की नाल मंगलवार या बृहस्पतिवार को घर में ले आएं और इसको एक कटोरी में या एक पात्र में सरसों का तेल डालकर उसमें डुबा करके रख दें। शनिवार की शाम को इसे जल से धो लें, कपड़े से पोंछ लें और इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर ऊपर बीचों बीच में इसे यू की आकृति में लगा दें और एक नियम बना लें, रोज शाम को जब घर में पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर धूप बत्ती दिखाइए और नाल के ऊपर से भी धूप बत्ती एक बार घुमा लीजिए, इसको भी दिखा लीजिए। इस नाल को लगाने का फायदा यह है कि ये मुख्य द्वार पर लगा रहेगा, घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। अगर घर में कोई निगेटिव एनर्जी लेकर के प्रवेश करना चाहेगा तो वो प्रवेश नहीं कर पाएगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जाने का वक्त हो गया है कि मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम मत टालें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आज आपने बताया घोड़े की नाल के बारे में, तो शनि से इसका संबंध होता है, शनि के मंदिरों में चढ़ाया जाता है, मैंने खुद भी देखा है, लेकिन नाव की जो कील होती है इसका भी सीधा तौर पर संबंध जो है शनि के साथ देखा जाता है, बताया जाता है कि जीवन में अगर कोई तकलीफ है जो कि शनि देव के द्वारा आ रही है तो उससे निजात मिल जाती है।
1: जी देखिए, जैसे घोड़े की जो नाल होती है ना, जब घोड़े के पैर में लगी होती है, घोड़ा बराबर दौड़ता है, चलता रहता है, तो वो लोहा जमीन से घिसता जाता है, उसके अंदर एक चुंबकीय प्रभाव आ जाता है और ये चुंबकीय प्रभाव शनि को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करता है। चाहे आप नाल का छल्ला बनवा के पहन लें, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर लगा लें, और बहुत सारे लोग घोड़े की नाल को लक फैक्टर मान के अपने ऑफिस में, अपने कमरे में, अपनी दराज में, अपने बैग में भी रखते हैं। इसी तरह से जो नाव की कील है, नाव में कहीं भी लगी हुई कील नहीं, जो नाव की मुख्य कील है जिस पर पूरे नाव का ढांचा टिका हुआ होता है, जो नीचे की तरफ लगी होती है, ये जो नाव की कील होती है ये बार बार लहरों से, बार बार पानी से टकराती है। तो जब बार बार पानी से नाव की कील टकराती है तो उसके अंदर भी चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। तो नाव की ऐसी कील जो नाव में नीचे लगी हो, बार बार लहरों से टकराती हो और काफी समय से नाव में लगी हो, ये नाव की कील भी शनि की पीड़ा से छुटकारा पाने में आपकी सहायता कर सकती है। लोग इस नाव की कील की भी अंगूठी या छल्ला बनवाते हैं, लेकिन वहां पे भी शर्त यही होती है कि इसको काट कर पीट कर ठोंक ठोंक कर बनाया जाता है, इसको आग में तपाया नहीं जाता, और फिर सरसों के तेल से शुद्ध करके नाव की कील के छल्ले को या अंगूठी को भी मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है। लेकिन नाव की कील घर के मुख्य द्वार पर लगाई जाए या नाव की कील अपने साथ रखी जाए, ऐसी परंपरा और ऐसी मान्यता नहीं है। लेकिन जैसे घोड़े की नाल की चुंबकीय क्षेत्र से आपको फायदा होता है, उसी तरह से नाव की कील के चुंबकीय क्षेत्र से भी आपको फायदा जरूर होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और राशि फल के बाद अब समय हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि तीसरा सवाल किस व्यूअर का है।
1: जी अगला प्रश्न अंजलि दीक्षित जी ने हमें लिखा है और अंजलि हमें कानपुर से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 15 अक्टूबर 2014, जन्म का समय दोपहर में 1:09, जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं उसको लगी रहती हैं, तो उसे अच्छा स्वास्थ्य मिले इसके लिए मैं क्या उपाय करूं? अंजलि जी, आपके पुत्र की कुंडली में ऐसी कोई बड़ी स्वास्थ्य की समस्या नहीं है जिसके लिए आप परेशान हैं। उसके आंखों में दिक्कत हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई बहुत चिंता की बात कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी आप दो काम करिए, अपने बेटे के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और प्रार्थना करिए कि आपका बेटा स्वस्थ रहे, और अपने बेटे के नाम से हर सोमवार को सफेद चीज का, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करिए। अगले 1 साल तक ये उपाय करिए, बेटे के स्वास्थ्य में और जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
0: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, और आज का चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारे कार्यक्रम देखते हैं और पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो बहुत ही आसान इसका तरीका है। टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी जो फ्लैश हो रही है इसे आप नोट कर लें और अपने सवाल इस पर लिख करके हमें भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं अगला सवाल किसका है, पंडित जी जरूर बताएं।
1: जी आज का अंतिम प्रश्न जया श्रीवास्तव जी ने लिखा है हमें, भोपाल से लिखती हैं, अपने पतिदेव के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पतिदेव की जन्म की तारीख है 15 मार्च 1979। जन्म का समय रात में 9:10, जन्म का स्थान है भोपाल। ये कह रही हैं कि मेरे पतिदेव अभी पुणे में नौकरी कर रहे हैं और ऐसा देखा जाता है कि हर 2-2.5 साल पे उनकी नौकरी में प्रॉब्लम आ जाती है। अभी भी नौकरी में प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या आने वाले समय में नौकरी बचेगी या जाएगी, और भविष्य में नौकरी अगर ये करें तो उसमें प्रॉब्लम ना आए उसके लिए मैं क्या उपाय करूं? जया, सबसे पहले बता दूं आपको कि आपके पतिदेव की नौकरी जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनका ट्रांसफर हो या जो वर्क प्रोफाइल हो, जो करियर में काम करते हो उसमें आंतरिक रूप से इंटरनली कोई बदलाव हो, लेकिन अभी नौकरी जाने की संभावना नहीं बनती है। आपके पति की कुंडली में ये बात सही है कि शनि के गड़बड़ होने की वजह से बार बार नौकरी बदलना, छूटना, उतार चढ़ाव ये लगा रहता है। तो आप अपने पतिदेव को एक लोहे का छल्ला, अगर घोड़े की नाल के लोहे का बना हो तो बहुत अच्छा, ये बनवा करके पहना दीजिए राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को, और दूसरा रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, अपने पति के करियर के लिए प्रार्थना करिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी।
0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन यानी कि बर्थडे 23 अगस्त को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल जो है वो कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 23 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, करियर सामान्य तरीके से चलता रहेगा, धन की स्थिति मध्यम बनी रहेगी, हालांकि अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं, और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
1: आज की जिज्ञासा है कि घर में अगर पूजा स्थान साफ तरीके से ना हो, अस्त व्यस्त हो, देवी देवताओं के चित्र मूर्तियां गड़बड़ तरीके से रखे हों तो क्या प्रभाव होगा? घर का पूजा स्थान पूरे घर को समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी और आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य देता है। अगर ये स्थान अस्त व्यस्त होता है तो घर के लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहती, घर में लोग बीमार रहते हैं और घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होता है। तो देखिए, घर के पूजा स्थान की रोज सफाई करिए, पुराने फूल धूप बत्ती की राख ये सब हटाइए, रोज मूर्तियों को झाड़िए पोंछिए, पूरे पूजा स्थान को रोज सुबह साफ करके तब पूजा करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपके घर में समृद्धि भी रहेगी और लोग स्वस्थ भी रहेंगे।
0: तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार 23 अगस्त 2026 यानी कि दिन रविवार का शुभ पहर, अच्छा पहर कौन सा है?
1: दिनांक 23 अगस्त 2026 दिन रविवार शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा एक बार जरूर पढ़िएगा, ऐसा करने से रोजगार की समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 23 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
0: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की गुड लक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के अंदर कमियां क्या होती हैं, गलतियां क्या होती हैं और किन बातों का ध्यान रखें। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। आपको अपने जिद्दी स्वभाव और क्रोध का ध्यान रखना चाहिए और जहां तक संभव हो बेवजह दूसरों के मामले में पड़ने से आपको बचना चाहिए।
0: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
1: जी, आप नौकरी करते हैं, बड़ी अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन बार बार नौकरी में समस्या आ जाती है, बार बार नौकरी छूट जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, उठा पटक होने लगती है, क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में रोली डाल करके सूर्य देव को जल अर्पित करें, जितना अर्ली करें उतना अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और एक घोड़े की नाल के लोहे की बनी हुई अंगूठी मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण करें, आपको लाभ होगा।
0: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या के श्री राम मंदिर में अद्भुत अलौकिक आयोजन हो रहा है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला अपने भव्य भवन में दिव्य झूलनोत्सव मना रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रामलला के दरबार में और दिखाते हैं झूलनोत्सव की शानदार छटा।

0: लगता है जैसे अयोध्या में त्रेता युग जीवंत हो उठा है। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला झूलनोत्सव मना रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। गर्भगृह में विशेष रूप से तैयार किए गए सोने चांदी के भव्य झूले पर रामलला विराजमान है। झूलनोत्सव के लिए प्रभु को विशेष रेशमी और जरी के वस्त्र पहनाए गए हैं। भजन कीर्तन के बीच यहाँ का माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से यहाँ पर सावन का ये उत्सव त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब पूरी अयोध्या आनंद में डूबी रहती थी। श्री राम मंदिर परिसर में रामलला का ऐतिहासिक झूलनोत्सव इस बार 15 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू हुआ। संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में भगवान श्री राम की उत्सव मूर्ति को भाइयों के साथ विधि विधान पूर्वक झूले पर विराजमान कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये उत्सव रामलला के प्रति भक्ति की भावना से प्रेरित है। सावन की उमस और गर्मी से राहत देने के लिए भक्त भगवान को फूलों और चंदन से सजे ठंडे झूले पर बिठाकर धीरे धीरे झूला झुलाते हैं, ताकि उन्हें सुख मिल सके। आराध्य को छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं और हिंडोले पर बिठाकर पंखा चलते हुए उन्हें झूला झुलाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से झूला उत्सव का खास वीडियो जारी किया गया है। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरमियान यहां मंदिर परिसर में संत महात्माओं की मौजूदगी में लगातार धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जो अयोध्या की इस युगों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को और भव्यता प्रदान कर रहे हैं। खास बात यह है कि 12 दिनों के झूलनोत्सव के दौरान हर दिन शाम को रामलला को पालकी में बिठाकर कुबेर टीला ले जाया जाता है और वहाँ उनके दर्शन की विशेष व्यवस्था रहती है। केवल राम जन्मभूमि ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या इस समय उत्सव के रंग में सराबोर है। सरयू के तट से लेकर कनक भवन तक और तमाम मंदिरों में भी हर तरफ इन दिनों उत्सव का माहौल है। सावन शुक्ल तृतीया से शुरू हुआ ये झूलनोत्सव पूर्णिमा तक इसी तरह पूरी भव्यता के साथ जारी रहेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी है। यात्रा के दौरान पवित्र छड़ी की चंदन वाड़ी शेषनाग और पंचतरणी में विश्राम होगा। रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी।

0: ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और वादियों में गूंजता महादेव का जयकार। साधु संतों की टोली आगे पढ़ रही है तो श्रद्धालु बाबा के दरबार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हवा में भक्ति की महक है, आंखों में दर्शन की उम्मीद है और दिल में सिर्फ एक नाम, जय शिव शंकर। कश्मीर की धरती पर इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा है। श्रीनगर से लेकर पहलगाम और पुंछ तक शिव भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक अपने सफर पर निकल चुकी है। चारों तरफ प्रभु के जयकारे और भक्ति की अनोखी चमक दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर की वादियां इन दिनों सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि शिव भक्ति परंपरा और श्रद्धा के संगम के लिए भी खास बन गई है। श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद छड़ी मुबारक को पहलगाम के लिए रवाना किया गया। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाग और 26-27 अगस्त को पंचतरणी में पड़ाव होगा। इसके बाद 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा।
1: जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और 28 तारीख प्रातःकाल जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, तो वहां पर छड़ी मुबारक को वहां स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा।
0: अमरनाथ गुफा में विधि विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बीच छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद छड़ी मुबारक पंचतरणी लौटेगी और 29 अगस्त को वापसी का सफर शुरू होगा। शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए 30 अगस्त को पहलगाम पहुंचने के बाद पूजा और विसर्जन के साथ इस धार्मिक परंपरा का समापन होगा।
2: तो चलिए बात जन्माष्टमी की कर लेते हैं। तो जन्माष्टमी का त्यौहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर दिल्ली में होगा मटकी फोड़ लीग का आयोजन। मटकी फोड़ लीग में 26 गोविंदा टीमों के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। एमपीएल का ये दूसरा साल है और एक कार्यक्रम में आधिकारिक एंथम सॉन्ग और मस्कट मटकू लॉन्च किया गया।

0: एक बार फिर आएंगे कान्हा। मटकी फोड़ेंगे कृष्ण मुरारी गिरधारी, नंद गोपाल मुरलीधर कुंज बिहारी, गोवर्धन धारी गोविंदा बाके बिहारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर खूब जमेगा रंग। जब दिल्ली के कोने कोने से आई गोविंदाओं की टोलियां ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाएगी, दही हांडी की मटकी फोड़ने के लिए एक बार फिर अपना दमखम दिखाने के लिए जुटेंगी, जोश और उत्साह चरम पर होगा। जब राजधानी दिल्ली में मटकी फोड़ ली यानी एमपीएस सीजन 2 का भव्य आयोजन होगा। माखन की मटकी फोड़ने की सदियों पुरानी परंपरा शानदार खेल प्रतियोगिता के रूप में जीवंत होगी। राजधानी में पिछले 23 वर्षों से आयोजित हो रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की परंपरा को इस वर्ष एमपीएल के साथ और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी की गई है। इसी सिलसिले में अब एमपीएल का अपना एंथम और मैस्कॉट मटकू भी लॉन्च कर दिया गया है।
1: हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ एक टीम के रूप में खेलें। तो हमारा ये मटकी फोड़ जो खेल है, गोविंदाला जो मटकी फोड़ जो खेल है, ये ऐसा खेल है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ टीम के रूप में पैरामिड बनाते हैं और मटकियों को फोड़ने का जो प्रभु लीला का प्रदर्शन है वो करते हैं। तो हम इस बार इसको बड़े स्केल पे बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं।
0: दिल्ली में इस बार मटकी फोड़ लीग यानी एमपीएस सीजन 2 का आयोजन 3 और 4 सितंबर को किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एमपीएल में शामिल गोविंदा टीमों के बीच मुकाबला होगा। इसमें इस बार 26 गोविंदा टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से 10 टीमें लड़कियों की हैं। टीमों ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है।
2: 2 महीने से लगभग ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस लीला को अब एक स्पोर्ट्स के रूप में देखना शुरू कर दिया गया है। लगभग दिल्ली में आप खुश होंगे ये जानकर के कि इस लीला के माध्यम से जो ये स्पोर्ट्स बन गया है, अब लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे आज हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ गए हैं। जो स्पोर्ट्स से नहीं थे वो एथलीट्स बनने जा रहे हैं।
0: आपको बता दें कि दिल्ली से पहले मुंबई में प्रो गोविंदा लीग सीजन 4 होने जा रहा है। 25 से 27 अगस्त 2026 तक वर्ली के स्टेडियम में प्रो गोविंदा लीग में मुंबई सहित महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से आए गोविंदाओं की टीमें मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करेंगी। इस दौरान विजेता टीमों को लाखों रुपए के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पारंपरिक दही हांडी उत्सव को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। इसी के बाद से इसे प्रोफेशनल खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रो गोविंदा लीग की शुरुआत की गई, और अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने की कोशिश हो रही है, ताकि किशोरों और युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ा जा सके, और साथ ही साथ इनमें टीम भावना, अनुशासन, साहस, नेतृत्व, शारीरिक क्षमता और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत किया जा सके। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टुडे।
3: तो देखिए, गुड न्यूज आई है महाराष्ट्र के जालना से, जहां बेटियों के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई है। बात बेटियों की पढ़ाई की है, बात बेहतर भविष्य की है। यही वजह है कि जब बेटियों को स्कूल ले जाने वाली बस पत्रूर तहसील के वागाड़ी गांव पहुंची, तो गांव वालों ने न सिर्फ ढोल ताशों से बस का जोरदार स्वागत किया बल्कि बस पर फूल माला भी बरसाए। बरसों पुरानी मांग पूरे होने पर गांव वालों की खुशी देखते ही बन रही थी। आजादी के बाद पहली बार है जब गांव में बेटियों के लिए नियमित स्कूल बस की शुरुआत की गई है। स्कूल बस शुरू होने से गांव की बेटियां अब आसानी से स्कूल आ जा सकेंगी, उनकी यात्रा भी सुरक्षित होगी और उनका समय भी बचेगा। नियमित बस सेवा शुरू होने से गांव वाले भी बेहद खुश हैं। तो देखिए, भारत में तो आपने होली के रंग खूब देखे होंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं परदेश में होली जैसे उत्सव के रंग। देखिए, चीन के एक इलाके में रंगों से तो नहीं लेकिन केवल पानी से अनोखी होली खेलने की परंपरा है। कैसे देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में।
4: पहने हुए इन लोगों के हाथों में बंदूक नहीं पिचकारियां हैं और इन पिचकारियों से पानी की जोरदार फुवारे छोड़ी जा रही है। माहौल कुल मिलाकर वैसा ही है जैसा भारत में होली के उत्सव में होता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भला रेनकोट पहनकर कौन होली खेलता है। तो आपको बता दें कि यहाँ असल में होली नहीं खेली जा रही, लेकिन होली जैसा ही त्योहार मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें चीन के हेनान की है। यहाँ पर खेली जा रही इस अनोखी होली में रंगों का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन हुड़दंग की कमी नहीं है, क्योंकि ये होली सिर्फ पानी से खेली जा रही है। चीन के हेनान के बोटिंग ली और मियाओ इलाके में हर साल की तरह इस बार भी जल की फुवारों के साथ इस अनोखे उत्सव वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल का शानदार आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और जमकर मस्ती की।
5: 我感觉就像那个泼水就是新年的意思吧，所以我从这里见以前开始，那个泼水以后，我变成了一个很好的很快乐，还有很快乐，还有像我认识了很多朋友，还有这里的人也很幽默，所以我感觉温暖的感觉。到了这个活动有，但是没有机会，是第一次我来，但是真的特别特别好玩。我看到了很多视频，我觉得哇，好玩，酷，我来这里一分钟，衣服都湿了，开心。
4: मान्यता है कि पिचकारियों से निकली शीतल जल की ये फुवारे प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतीक है। हेनान में ली जनजातीय समूह के लोग पीढ़ियों से इस उत्सव को मनाते आ रहे हैं और अब विदेशी सैलानी भी इसमें बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। चार दिन के उत्सव में इस बार 8 देशों के सैलानियों के समूहों ने हिस्सा लिया। म्यूजिक और मनोरंजक माहौल के बीच लोगों ने इस उत्सव का खूब आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चाइना का रुख कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं चीन में रोशनी के उत्सव की शानदार तस्वीरें। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग के फुलिंग जिले में पहला फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल मनाया गया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, इस दौरान यहां पर जगह जगह 68 ऐसी आकृतियां लगाई गई जिनसे पूरा इलाका जगमग हो उठा। खासतौर से सीढ़ीदार फूलों के खेतों, झील के किनारे और जंगल के रास्तों पर रोशन इन आकृतियों से बेहद शानदार और खूबसूरत नजारा देखने को मिला। ये फेस्टिवल इलाके की खास पहचान और इसके हजारों साल पुराने इतिहास को इस तरह की सजावट के जरिए पेश करता है कि जो भी इसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। इसके बारे में देखिए, खास बात यह भी है कि इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जी हाँ, बल्कि 100 से ज्यादा कारीगर

0: गया है। तो देखिए, हांगकांग का आसमान मशहूर क्वीसी फेस्टिवल के मौके पर ड्रोन की रोशनी से जगमगा उठा। इस फेस्टिवल में 2000 ड्रोनों ने विक्टोरिया हार्बर के ऊपरी चीनी लोक कथा की खूबसूरत तस्वीरें पेश की। ड्रोन से आसमान में मैगपाई ब्रिज की आकृति भी बनाई गई। ये वही पुल है जो चीनी लोक कथा के न्योलांग और वीवर गर्ल को साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा ड्रोन से प्यार में डूबे जोड़ों और खेलते हुए विशाल गुलाबों की आकृतियां भी इस दौरान ड्रोन के जरिए बनाई गई। आसमान में बदलती इन तस्वीरों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो देखता ही रह गया। क्वीसी फेस्टिवल चीनी कैलेंडर के सातवें महीने के सातवें दिन मनाया जाता है। लोग करीब 2000 साल पुरानी प्रेम कहानी को सुनना, देखना और समझना चाहते हैं। आसमान पर बनी रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन गई।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट। रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट। यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान। बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल

0: क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: घोड़े की नाल के प्रयोग से शनि की अशुभता दूर हो जाती है। घोड़े की नाल आखिर शनि की समस्या कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल के प्रयोग से पूरे घर का शनि कैसे बेहतर हो सकता है? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: ये कहता है
1: कि भाग्य
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: अंतरिक्ष में इतिहास रचने की आज तीसरी वर्षगांठ। भारत ने 3 साल पहले आज के दिन ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील की। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक पूरे विधि विधान से श्रीनगर से पहलगाम रवाना। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा के अंतिम धार्मिक अनुष्ठान शुरू। आज पहलगाम में रात्रि विश्राम के बाद कल चंदनवाड़ी पहुंचेगी पवित्र छड़ी मुबारक। यूपी की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन गिफ्ट। 27 और 28 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान। एक सहयोगी के साथ बिना किराए के कर सकेंगी यात्रा। यूपी की कालीन नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने। सरकारी योजना बनी संजीवनी, एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन। प्रतियोगिता में 1 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 6 मेडल।

बंधने वाला एक धागा नहीं बल्कि भाई बहन के प्यार, उनके भरोसे और जीवन भर के साथ निभाने के संकल्प का पर्व भी है। पूरे साल बहनों को जिस दिन का इंतजार रहता है वो घड़ी अब बस आने ही वाली है। बाजारों में राखियों की रौनक देखने को मिल रही है। भाई बहन एक दूसरे के लिए तोहफे चुन रहे हैं। हर घर में 28 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन की कहानी थोड़ी अलग है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल क्योंकि सावन पूर्णिमा के दिन जहां एक ओर भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा बंधेगा, वहीं आसमान में एक बड़ी खगोलीय घटना भी घटेगी। जी हाँ, दरअसल 28 अगस्त को ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि रक्षाबंधन पर क्या होगा ग्रहण का असर।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, रक्षाबंधन का सभी भाई बहनों को बेसब्री से इंतजार है और राखी सिर्फ कलाई पर

0: इस बार सावन पूर्णिमा पर 5 घंटे 39 मिनट का चंद्र ग्रहण। तो सवाल ये कि क्या इस बार रक्षाबंधन पर मंडराएगा ग्रहण का साया। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट विश्वास, स्नेह और सुरक्षा के संकल्प का वो पावन पर्व जिसका इंतजार हर बहन को पूरे साल रहता है। रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा का बंधन, जिसमें बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा है, जिसे भाई बहन के प्रेम और पवित्र रिश्ते के प्रतीक के रूप में बेहद खास माना जाता है। ये दिन रिश्तों के मिठास और खुशियों की सौगात लेकर आता है, लेकिन इस बार का रक्षाबंधन आम सालों जैसा नहीं है। इस बार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो पूरे 5 घंटे 39 मिनट तक रहेगा।
1: रक्षाबंधन का पर्व एक खास खगोलीय संयोग के साथ आ रहा है। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन है और इसी तारीख को आंशिक चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में ये सवाल है कि ये ग्रहण रक्षाबंधन के पर्व को प्रभावित करेगा।
0: सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के लिए घर घर तैयारियां शुरू हो चुकी है। बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों से पट चुके हैं। बहने भाई की कलाई सजाने के लिए राखी चुनने में लगी हैं, भाई बहनों के लिए उपहार तैयार करने में लगी हैं। सबको इंतजार है 28 अगस्त का, जब शुभ घड़ी में बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधेगी। लेकिन इस बार रक्षाबंधन की पूर्णिमा कुछ अलग है। जिस दिन देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनेगा, उसी दिन आसमान में एक बड़ा खगोलीय संयोग भी बन रहा है।
1: ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा को मन, भावनाओं और संवेदनाओं और पारिवारिक संबंधों से जोड़ा जाता है, और रक्षाबंधन भी भाई बहन के प्रेम और भावनात्मक रिश्ते का एक पर्व है, इसलिए दोनों का एक ही दिन होना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संयोग है।
0: 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी एक तरफ कलाई पर राखी का धागा तो दूसरी तरफ आसमान में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया। इसी संयोग ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में कोई बदलाव होगा? क्या ग्रहण के साए में राखी बांधना शुभ होगा? क्या ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में दिखाई देगा रक्षाबंधन वाला चंद्र ग्रहण? क्योंकि पंचांग में ग्रहण का समय सुबह से दोपहर तक बताया जा रहा है और इसी दौरान रक्षाबंधन की पूर्णिमा भी रहेगी, तो क्या सचमुच राखी के शुभ पर्व पर ग्रहण का साया पड़ने वाला है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो यहाँ सूतक काल मान्य होगा। अगर सूतक मान्य नहीं होगा तो राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा? अगर ग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण चरण उसी वक्त होगा जब भारत में बहनें राखी बांध रही होंगी, तो फिर आखिर दोनों घटनाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले समझना होगा कि इस साल रक्षाबंधन की पूर्णिमा कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 तक रहेगी। इसी वजह से उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। यानी 28 अगस्त की सुबह एक बेहद खास समय होगा, पूर्णिमा भी रहेगी, राखी का त्योहार भी होगा और उसी दौरान चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी चल रही होगी। 28 अगस्त को राखी बांधने का समय सुबह 5:58 से 9:48 तक बताया गया है। वहीं 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने की स्थिति बन रही है। ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू होकर दोपहर 12:30 खत्म होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू हो जाएगा तो बहनों के पास राखी बांधने के लिए कितना समय बचेगा? ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन जैसे पवित्र विधान को लेकर श्रद्धालुओं के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, जिनका समाधान जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: 28 अगस्त 2026, सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन और आसमान में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी। एक तरफ भाई की कलाई पर सजने वाला प्रेम और विश्वास का धागा, तो दूसरी तरफ चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया। यानी इस बार की पूर्णिमा से भाई बहन के पवित्र रिश्ते की वजह से खास नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाला ये खगोलीय संयोग भी इसे काफी ज्यादा खास बना रहा है। देखिए, इस बीच सवाल ये है कि क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, भारत में विजिबल होगा? क्या रक्षाबंधन के दिन ग्रहण का सूतक काल भी लगेगा? रक्षाबंधन पर ग्रहण की पूरी उलझन का जवाब जानना भी जरूरी है।

0: 28 अगस्त 2026 एक तरफ सावन की पूर्णिमा, एक तरफ भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन, और इसी दिन आसमान में होने जा रही है साल की आखिरी चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना। यानी इस बार की पूर्णिमा सिर्फ राखी के त्योहार के लिए ही खास नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाले एक बड़े खगोलीय संयोग की वजह से भी चर्चा में है। 28 अगस्त को लगने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़ी सबसे अहम और राहत देने वाली बात ये है कि ये ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देख सकेंगे।
1: वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति के कारण होने वाली एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। वही ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के प्रभावों का आंकलन ग्रहों की स्थिति, राशि और नक्षत्र आदि के आधार पर किया जाता है। दुनिया के जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहां लोग इसका प्रत्यक्ष खगोलीय अनुभव कर पाएंगे।
0: अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। यानी एक ही समय में दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग आसमान में ग्रहण देख रहे होंगे, जबकि भारत में उसी दौरान रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। सवाल ये कि जब भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो क्या इसका सूतक काल यहाँ मान्य होगा, क्योंकि आम तौर पर ग्रहण का नाम आते ही सूतक की चर्चा शुरू हो जाती है।
1: यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसे लेकर वही ग्रहण संबंधी धार्मिक प्रभाव नहीं माने जाएंगे जो किसी दिखाई देने वाले ग्रहण के समय माने जाते हैं। ऐसे में केवल ये संयोग को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन का मूल भाव प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का है, इसलिए इस दिन रिश्तों को मजबूत करना और सकारात्मक भाव रखने पर ध्यान देना चाहिए। रक्षाबंधन के सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं मानी जाएगी।
0: धार्मिक मान्यताओं और वैदिक ज्योतिष में ग्रहण के सूतक काल की गणना लोकल विजिबिलिटी यानी स्थानीय दृश्यता से तय होती है। शास्त्रों में कहा गया है यस्य दृश्यम तस्य फलम, मतलब ग्रहण जहां आंखों से दिखाई देता है सूतक काल, धार्मिक निषेध और उसके अशुभ प्रभाव केवल वही मान्य होते हैं। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिर के कपाट बंद करने, भोजन वर्जित रखने या शुभ कार्यों को रोकने जैसे नियम भी लागू नहीं होंगे।
1: इस बार सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर है कि अगर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है तो क्या रक्षाबंधन से पहले भारत में सूतक काल लग जाएगा। सामान्य भारतीय धार्मिक पंचांग परंपरा के अनुसार भारत में इस चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रक्षाबंधन के दिन केवल ग्रहण के नाम पर पूजा पाठ रोकने, मंदिर बंद करने या सामान्य धार्मिक गतिविधियों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
0: मतलब साफ है, भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा इसलिए रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया नहीं माना जाएगा। बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, राखी की थाली सज सकती है, रोली और अक्षत से भाई का तिलक हो सकता है, आरती उतारी जा सकती है, मिठाई खिलाई जा सकती है और भाई बहन एक दूसरे को उपहार देकर इस रिश्ते की मिठास को और बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राखी की तारीख तय है, 28 अगस्त को पड़ रही है, ग्रहण को लेकर तस्वीर भी साफ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल देखिए इस बीच ये है कि 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा है, यानी मुहूर्त जो लोग पूछते हैं अक्सर किस मुहूर्त पर राखी बांधनी चाहिए वो कौन सा है, जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। अगर सुबह राखी नहीं बांध पाए तो दिन में, शाम को और रात के समय कौन से शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है, आइए चलिए आपको ये भी बता देते हैं।

0: चंद्र ग्रहण को लेकर तस्वीर साफ होने के बाद अब बारी है उस सवाल की जिसका इंतजार हर भाई और बहन को है। आखिर 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा? इस बार रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण का संयोग जरूर बना है, लेकिन भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ऐसे में ग्रहण का सूतक मान्य नहीं माना जा रहा है।
1: ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए ग्रहण को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर संवेदनशील समय माना जाता है। ऐसे में अनावश्यक डर, तनाव, गुस्सा या किसी रिश्ते में गलतफहमी बढ़ने से बचना चाहिए। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रक्षाबंधन का ये पर्व नकारात्मक हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के कारण रक्षाबंधन प्रेम, सुरक्षा, विश्वास और पारिवारिक जुड़ाव का पर्व है, इसलिए इस दिन भाई बहन के बीच प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है।
0: रक्षाबंधन पर सिर्फ ग्रहण ही नहीं, भद्रा को लेकर भी विशेष सावधानी बरती जाती है। हिंदू पंचांग में भद्रा को ऐसे समय के रूप में देखा जाता है जिसमें मांगलिक और शुभ कार्य करने से बचने की परंपरा रही है। इस बार 27 अगस्त को भद्रा का प्रभाव सुबह 9:08 से रात 9:32 तक रहेगा, यानी 27 अगस्त की रात तक भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए किसी भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। यही वजह है कि बहनें 28 अगस्त को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मना सकती हैं। अब बात करते हैं राखी बांधने के सबसे शुभ समय की। 28 अगस्त की सुबह 6:23 से 9:48 तक का समय राखी बांधने के लिए सबसे शुभ बताया गया है।
2: सूर्योदय से लेकर 9:48 तक पूर्णमासी का समापन होने तक पूर्णतया सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त है। इस बीच में रक्षा सूत्र अपनी भाई को बांध सकती है बहन।
0: यानी सुबह का ये समय भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बेहद खास रहेगा। इस दौरान बहनें पूजा की थाली सजाकर भाई को तिलक लगा सकती हैं, आरती कर सकती हैं, मिठाई खिला सकती हैं और इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। अगर किसी वजह से सुबह के मुहूर्त में राखी नहीं बांधी जा सकी तो दिन में भी दूसरे शुभ मुहूर्त मौजूद हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:05 तक रहेगा। अगर सुबह और दोपहर में राखी बांधना संभव नहीं है तो शाम को भी शुभ समय उपलब्ध रहेगा। शाम के समय गोधूली मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:57 से 7:19 तक रहेगा। इस दिन चौघड़िया के अनुसार शुभ, लाभ और अमृत वेला में राखी बांधी जा सकती है। चौघड़िया के हिसाब से देख लें तो दिन में कई अच्छे समय मिल रहे हैं। लाभ चौघड़िया सुबह 7:57 से 9:31 तक रहेगा। इसके बाद अमृत चौघड़िया सुबह 9:31 से 11:05 तक रहेगा। दोपहर में शुभ चौघड़िया 12:40 से 2:14 तक रहेगा। शाम को चर चौघड़िया 5:22 से 6:57 तक रहेगा। रात में लाभ चौघड़िया 9:48 से 11:14 तक रहेगा।
3: सबसे जरूरी है कि अपने घर में जो आपके ठाकुर जी हैं, आप उनको पहले रक्षा सूत्र बांधें, भगवान से आज्ञा लेकर के तब अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें, क्योंकि हमारे इस घर में जो ईश्वर विराजमान है उसका प्रसाद स्वरूप लेकर के राखी हम बांधेंगे। और जिस कामना से हम रक्षाबंधन करने जा रहे हैं, बहने रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, वह उनकी कामना फलीभूत होगी और उनका भाई आयुष्यमान होगा, दीर्घायुष्य होगा। यह मंगल कामना के साथ इस त्योहार को हम बनाए।
0: रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, ये पर्व भावनाओं, विश्वास और आत्मिक रक्षा के उस पवित्र धागे का नाम है जो काल और परिस्थितियों से परे है। शास्त्रों में विधान है कि जिन बहनों के सगे भाई नहीं है वो जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं।
2: सामान्यतया ये माना जाता है कि अगर अपना सगा भाई ना हो तो अपने चचेरे भाई आदि, ममेरे भाई आदि को बांधते, पर अगर किसी प्रकार के मन में कामना नहीं है तो गणेश जी को अपना भाई बनाने का विधान है। या भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधने पर वो भाई के समान आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये माना जाता है।
0: पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में रक्षाबंधन का विशेष महत्व बताया गया है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से सबसे भावुक कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया तो युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि समय आने पर वो आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे, और द्रौपदी के चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने इस वचन को निभाया।
2: तीसरी कथा एक और आती है जो कि हमने भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का अभय वर देने का था। इस प्रकार से हम मानते हैं ये केवल भाई बहनों का ही त्योहार नहीं, ये रक्षा सूत्र है। पुरोहित अपने जजमानों को बांधते हैं उनकी मंगल कामना के लिए, और वर्ष पर्यंत उनकी सुरक्षा, आयु, धन संपत्ति आदि की सुरक्षा होती है।
0: इसीलिए रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधा धागा नहीं है, ये विश्वास का बंधन है। एक बहन जब राखी बांधती है तो वो सिर्फ भाई की कलाई नहीं बांधती, वो अपने विश्वास को बांधती है। और भाई जब उस राखी को स्वीकार करता है तो वो सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि बहन की रक्षा, सम्मान और साथ निभाने का संकल्प स्वीकार करता है। रक्षाबंधन का त्योहार संदेश देता है कि रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं रिश्तों की भी होती है, साथ सिर्फ सुख में नहीं संकट में भी होता है, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त आने पर एक एक वचन का कर्ज चुका देते हैं। यही वजह है कि सदियों बाद भी कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता याद दिलाता है कि राखी का धागा छोटा जरूर होता है लेकिन उसमें बंधा विश्वास बहुत बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेएनटी के साथ।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या के श्री राम मंदिर में अद्भुत अलौकिक आयोजन हो रहा है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला अपने भव्य भवन में दिव्य झूलनोत्सव मना रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रामलला के दरबार में और दिखाते हैं झूलनोत्सव की शानदार छटा।

0: लगता है जैसे अयोध्या में त्रेता युग जीवंत हो उठा है। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला झूलनोत्सव मना रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, गर्भगृह में विशेष रूप से तैयार किए गए सोने चांदी के भव्य झूले पर रामलला विराजमान है। झूलनोत्सव के लिए प्रभु को विशेष रेशमी और जरी के वस्त्र पहनाए गए हैं। भजन कीर्तन के बीच यहाँ का माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से यहाँ पर सावन का ये उत्सव त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब पूरी अयोध्या आनंद में डूबी रहती थी। श्री राम मंदिर परिसर में रामलला का ऐतिहासिक झूलनोत्सव इस बार 15 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू हुआ। संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में भगवान श्री राम की उत्सव मूर्ति को भाइयों के साथ विधि विधान पूर्वक झूले पर विराजमान कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये उत्सव रामलला के प्रति भक्ति की भावना से प्रेरित है। सावन की उमस और गर्मी से राहत देने के लिए भक्त भगवान को फूलों और चंदन से सजे ठंडे झूले पर बिठाकर धीरे धीरे झूला झुलाते हैं, ताकि उन्हें सुख मिल सके। आराध्य को छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं और हिंडोली पर बिठाकर पंखा चलते हुए उन्हें झूला झुलाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से झूला उत्सव का खास वीडियो जारी किया गया है। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दरमियान यहां मंदिर परिसर में संत महात्माओं की मौजूदगी में लगातार धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जो अयोध्या की इस युगों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को और भव्यता प्रदान कर रहे हैं। खास बात यह है कि 12 दिनों के झूलनोत्सव के दौरान हर दिन शाम को रामलला को पालकी में बिठाकर कुबेर टीला ले जाया जाता है और वहाँ उनके दर्शन की विशेष व्यवस्था रहती है। केवल राम जन्मभूमि ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या इस समय उत्सव के रंग में सराबोर है। सरयू के तट से लेकर कनक भवन तक और तमाम मंदिरों में भी हर तरफ इन दिनों उत्सव का माहौल है। सावन शुक्ल तृतीया से शुरू हुआ ये झूलनोत्सव पूर्णिमा तक इसी तरह पूरी भव्यता के साथ जारी रहेगा। अयोध्या से मैं शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी है। यात्रा के दौरान पवित्र छड़ी की चंदन वाड़ी शेषनाग और पंचतरणी में विश्राम होगा। रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी।
2: ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और वादियों में गूंजता महादेव का जयकार। साधु संतों की टोली आगे पड़ रही है तो श्रद्धालु बाबा के दरबार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हवा में भक्ति की महक है, आंखों में दर्शन की उम्मीद है और दिल में सिर्फ एक नाम, जय शिव शंकर। कश्मीर की धरती पर इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा है। श्रीनगर से लेकर पहलगाम और पुंछ तक शिव भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक अपने सफर पर निकल चुकी है। चारों तरफ प्रभु के जयकारे और भक्ति की अनोखी चमक दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर की वादियां इन दिनों सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि शिव भक्ति परंपरा और श्रद्धा के संगम के लिए भी खास बन गई। श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद छड़ी मुबारक को पहलगाम के लिए रवाना किया गया। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाग और 26-27 अगस्त को पंचतरणी में पड़ाव होगा। इसके बाद 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा।
3: जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और 28 तारीख प्रातःकाल, जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, तो वहां पर छड़ी मुबारक को वहां स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा।
2: अमरनाथ गुफा में विधि विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बीच छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद छड़ी मुबारक पंचतरणी लौटेगी और 29 अगस्त को वापसी का सफर शुरू होगा। शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए 30 अगस्त को पहलगाम पहुंचने के बाद पूजा और विसर्जन के साथ इस धार्मिक परंपरा का समापन होगा।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अंतरिक्ष में इतिहास रचने की आज तीसरी वर्षगांठ। भारत ने 3 साल पहले आज के दिन ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील की। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक पूरे विधि विधान से श्रीनगर से पहलगाम रवाना। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा के अंतिम धार्मिक अनुष्ठान शुरू। आज पहलगाम में रात्रि विश्राम के बाद कल चंदनवाड़ी पहुंचेगी पवित्र छड़ी मुबारक। यूपी की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन गिफ्ट। 27 और 28 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान। एक सहयोगी के साथ बिना किराए के कर सकेंगी यात्रा। यूपी की कालीन नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने। सरकारी योजना बनी संजीवनी, एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन। प्रतियोगिता में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 6 मेडल।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का दमदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं उसकी एक फिनोमिनल मूवी 26 अगस्त को दुनिया भर के सिल्वर स्क्रीन्स पर दस्तक देने के लिए तैयार है। एक ऐसी मूवी जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े बजट वाली फिल्म माना जा रहा है। उसी फिल्म के लीड एक्टर की जिंदगी की दास्तान लेकर हम हाजिर हुए हैं। एक ऐसा हीरो शुरुआती दिनों में जिसके पास एक्टिंग का कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वंडर बॉय रॉकिंग यश हैं। जी हाँ, यही यश, वो यश जिसकी केजीएफ ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। 26 अगस्त को यश की एक और दमदार फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। एडवांस बुकिंग का विंडो ओपन होने के बाद टॉक्सिक को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म केजीएफ की कामयाबी को भी पीछे छोड़ने जा रही है। ये वही यश हैं जिनके पास कभी एक्टिंग कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे लेकिन आज वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे हीरो में शुमार हो चुके हैं।

0: यश का भी साफ मानना है कि कुछ भी नहीं है नामुमकिन अगर ठान लिया जाए।
1: So what I believe is, when you want to do something in life, nothing should stop you. Most of us listen to people who say bad things about us. What you can't do, what is wrong. I think I'm somebody who doesn't listen to anybody. If somebody is telling me that you can't do this, I'll only see their lack of imagination or their stupidity. Because if I can see it clearly, there's nothing in life, if you're able to put in effort and time and required energy or actions towards something, there's nothing in life which you cannot achieve, is what I believe.
0: यश के इसी अदम्य इच्छा शक्ति को देखकर निर्माता निर्देशक इन पर कोई भी दांव खेलने को तैयार हो जाते हैं। यश की इसी साल एक और फिनोमिनल बजट वाली मूवी रिलीज होने वाली है, रामायण। दो पार्ट में बनने वाली रामायण का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नजरिए से देखेंगे तो ये बजट फैंटेसी लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा हैं, जबकि टॉक्सी की तरह यश इस फिल्म के भी को प्रोड्यूसर हैं। रामायण में यश रावण का किरदार निभा रहे हैं।
2: प्रतिशोध लिया जाएगा सुपर्ण का। राम की
0: वो चाहते तो राम की भूमिका में भी आ सकते थे, लेकिन यश का साफ कहना है कि उन्होंने राम की बजाय रावण की भूमिका इसलिए चुनी क्योंकि जब तक खलनायक का किरदार दमदार नहीं होगा, नायक का नायकत्व निखर कर सामने नहीं आ पाएगा। रामायण का फलक कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत तैयार कर रहे हैं। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड के एक्शन डायरेक्टर गॉय नॉरिस फिल्म के युद्ध के दृश्यों को डिजाइन कर रहे हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वार फिल्म टेरी नोटरी फिल्म में परफॉर्मेंस और मोशन कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। द मैट्रिक्स फिल्म डैन ग्लास के पास फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की कमान है। रामायण की तरह टॉक्सी को भी ग्लोबल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको बता दें कि हॉलीवुड की जानी मानी फिल्म जॉन विक और फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्शन डायरेक्टर जे.जे. पेरी ने टॉक्सी के लिए भारत में 45 दिनों तक रहकर बेहद खास एक्शन शेड्यूल शूट किया है। इतना ही नहीं, टॉक्सी को दुनिया भर के 12,000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज करने की तैयारी है और इसके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हॉलीवुड के दिग्गज स्टूडियो 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ पार्टनरशिप की गई है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर ही टॉक्सी को कन्नड़ के साथ अंग्रेजी भाषा में भी शूट किया गया है। टॉक्सिक और रामायण से पहले यश की साल 2018 में आई केजीएफ चैप्टर 1 और साल 2012 में आई केजीएफ चैप्टर 2 ने हिंदुस्तान के साथ ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। केजीएफ में यश द्वारा निभाया गया रॉकी भाई का करिश्माई और विद्रोही किरदार दुनिया भर के सिने प्रेमियों के बीच एक आइकॉनिक हीरो के रूप में सामने आया। साफ है कि कर्नाटक के हासन जिले के एक गुमनाम गांव में जन्मे बच्चे ने बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट और बिना किसी गॉडफादर के अपनी इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन के दम पर ना सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कद्दा और पहचान बनाई, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर भी पूरी ठसक के साथ मजबूत पहचान दिलाई।
3: यश के एक्टर बनने की दास्तान अत्यंत मर्म स्पर्शी है। इनका जन्म कर्नाटक के हासन जिले के एक साधारण से गांव में हुआ था। यश के पिता बस ड्राइवर थे, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि गृहस्थी मुश्किल से ही चलती होगी। लेकिन उसी साधारण परिवार में जन्मे यश के मन में बचपन से ही ये हसरत कुलाचे मारने लगी थी कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना है। शुरुआती दिनों में यश अपनी हसरत जब दोस्तों के बीच बताते थे तो दोस्त इन पर चुटकी लेते थे, लेकिन साथियों की चुटकियों से विचलित हुए बगैर वो अपने मिशन में काफी कम उम्र से ही जुट गए थे। यश के जीवन की हकीकत भी किसी परी कथा से कम थ्रिलिंग नहीं है।
0: इमेजिनेशन, एनालाइजेशन और एग्जीक्यूशन, अंग्रेजी के इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द ही सफलता और असफलता का चक्र घूमता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इमेजिनेशन ना करता हो। हसीन ख्वाब देखना इंसान की बुनियादी फितरत है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमेजिनेशन को एनालाइज करते हैं। एग्जीक्यूशन के लेवल तक तो कोई विरला ही पहुंचता है, लेकिन जो पहुंच जाता है वो ही इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराता है। साउथ के सुपरस्टार यश उन्हीं विरले लोगों में शुमार हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वंडर बॉय और रॉकिंग स्टार के नाम से पहचान बना चुके यश के शुरुआती जीवन की सच्चाई से जब आप रूबरू होंगे तो जेहन में सवाल उठेगा कि इतनी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला एक शख्स इतना रॉकिंग स्टार कैसे बन गया। कर्नाटक के हासन जिले के छोटे से गांव भुवन हल्ली में 8 जनवरी 1986 को जन्मे यश ने जब से होश संभाला तभी से दिल में रुपहले पर्दे पर स्टार बनकर चमकने की हसरत पलने लगी। घर वाले यश की इस हसरत को कम उम्र की नादानी मानकर बस इतना चाहते थे कि पढ़ लिख कर उनका बेटा एक सरकारी नौकरी पकड़ ले, पर पेरेंट्स को क्या पता था कि यश की एक्टर बनने की ख्वाहिश बाल सुलभ नादानी नहीं बल्कि वास्तविक जुनून है।
1: माई फादर इज फ्रॉम मैसूर, सो आई ग्रो अप इन मैसूर, मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड वॉज इन मैसूर। माई फादर वॉज अ BMTC बस ड्राइवर एंड माई मदर वॉज अ हाउस वाइफ, सो जस्ट लाइक एनी अदर मिडिल क्लास दिस थिंग वी वेर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ एंड देन आई वॉन्ट बिकम एन एक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड बीन इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस what do you call it? Extra attention we get as an actor, no? For that maybe all the CT Marna, all this I used to like. I used to participate in a lot of fancy dress, mono acting and all of that. And I used to dance. So that used to give me a lot of happiness. So that's how it started and I got into, it's a long story.
0: हासन जिले के गुमनाम गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मे बच्चे के इंटरनेशनल स्टार बनने की दास्तान वाकई बहुत लंबी है। नवीन कुमार गौड़ा से रॉकिंग यश बनने की कहानी दिल को छू लेने वाली है। हीरो बनने की हसरत सजोए यश बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के स्वयं की प्रेरणा से स्कूल के नाटकों और डांस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे, और उनके परफॉर्मेंस पर जब साथी बच्चे तालियां बजाते तो उन्हें उसी उम्र में रॉक स्टार वाली फीलिंग होने लगती। उधर स्कूल के साथी यहां तक कि टीचर्स भी यश को हीरो कहकर संबोधित करने लगे। दूसरी ओर यश को बचपन में कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन जैसा जरूर है।
1: I never realized how difficult it is or this. It's just that I believed it at a very young age because all my teachers, they started calling me, Kya hero? How are you? Matlab, jab baat karte the na, even then they used to be like hero bulate the. Because I'd done some small mono acting this thing where I told that, you know, I'll catch Veerappan and all of that when I was young. So they used to tease me with that thing. If Veerappan's any news used to come out, they used to question me, saying, hey, you used to, kidhar hai, pakda nahi abhi tak. So they used to make fun of those things. And I believed that one day, jaake main actor ban jaunga. I didn't know how difficult it is or how much dedication or lot of things go into becoming an actor or anybody who wants to achieve something. I had no clue about that. But I just wanted to be an actor.
0: रुपहले पर्दे का स्टार बनने की धुन के साथ ही यश ने स्कूलिंग पूरी कर ली। लेकिन प्री यूनिवर्सिटी करने के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आई तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल के स्टेज पर परफॉर्म करने और प्रोफेशनल एक्टिंग में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे में उन्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए एक्टिंग का कोर्स करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन घर वालों के पास इतने पैसे थे कहां कि यश को किसी एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिलवा सकें। पर यश के पास तो दूसरा विकल्प था ही नहीं, लिहाजा एक दिन घर वालों से कह दिया कि वो बेंगलुरु जाएंगे और वहीं एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमाएंगे। यश के पिता इसके लिए कतई राजी नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद देखकर आखिरकार मान गए, पर जाने से पहले एक शर्त रख दी कि अगर वापस लौटने की नौबत आई तो हीरो बनने की हसरत की तिलांजलि दे देनी होगी। यश ने पिता की शर्त मान ली और महज 300 रुपए लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए।
4: I just went and I joined theater and I did a lot of backstage work. Eventually, while doing backstage work, I used to practice for other roles also, where some actor is late, then I used to give that dialogue cue बोलते उसको। Like that, I used to rehearse and then I was an emergency actor. If somebody is ill or if some actor is not I used to just go and do that. That's how it started. And then I started getting big roles.
0: थिएटर में काम मिलने के बाद तो जैसे यश के अरमानों को पंख लग गए। काम इतनी मेहनत से किया कि उनकी एक्टिंग के चर्चे होने लगे। साल 2004 में यश की किस्मत ने बड़ी करवट ली और उन्हें कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल में विजय सिंह का किरदार मिल गया। नंदा गोकुल में विजय सिंह के किरदार को यश ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर इतना जीवंत कर दिया कि दूसरे सीरियल्स के लिए भी ऑफर आने लगे। 3 साल में ही यश छोटे पर्दे के इतने बड़े एक्टर बन गए कि उसकी गूंज फिल्म इंडस्ट्रीज तक सुनाई देने लगी। फिर आया साल 2007 जब यश को बड़े पर्दे पर भी एंट्री मिल गई। इसी साल उन्होंने कन्नड़ फिल्म जम्बडा हुदगी में बड़े पर्दे पर बतौर सेकेंड लीड डेब्यू किया। अगले ही साल यानी 2008 में कन्नड़ फिल्म मोगीना मानासु में यश को लीड रोल निभाने का मौका भी मिल गया। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। बतौर लीड हीरो यश की पहली ही फिल्म मोगीना मानासु सुपरहिट हो गई। रोमांटिक ड्रामा मोगीना मानासु के लिए यश को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। मोगीना मानासु के बाद यश ने राजधानी, गजकेसरी और मास्टरपीस जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी बेहतरीन अदाकारी के दम पर ज्यादातर फिल्में हिट होती चली गईं। हालांकि जिंदगी में खूबसूरत और शानदार मोड़ तब आया जब साल 2018 में KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई। KGF चैप्टर 1 में उन्होंने रॉकी का किरदार निभाया जो दर्शकों के दिलों में ऐसे उतर गया कि बॉक्स ऑफिस पर बवंडर आ गया। साल 2022 में KGF का सीक्वल KGF चैप्टर 2 आया जिसने पहले चैप्टर से भी ज्यादा तहलका मचा दिया। KGF चैप्टर 1 और 2 वर्ल्ड वाइड करीब 1500 करोड़ का कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाले फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। अपने 19 साल के फिल्मी सफर में यश एक दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दे चुके हैं। टॉक्सिक और रामायण जैसी मेगा बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या करिश्मा कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों फिल्मों का रिलीज से पहले जैसा बच क्रिएट हो चुका है इसकी पूरी उम्मीद है कि KGF वाला करिश्मा एक बार फिर दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि यश बचपन से ही अपने एक्टिंग करियर को लेकर जिस तरह से कमिटेड थे वैसे ही अपने शरीके हयात राधिका पंडित को लेकर भी हैं। दोनों की पहली मुलाकात कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल की शूटिंग के दौरान 2007 में हुई थी और पहली मुलाकात में ही आंखें चार हो गईं। उसके बाद यश ने किसी दूसरे विकल्प पर कभी विचार ही नहीं किया। दोनों ने साल 2016 में शादी कर ली। आज यश और राधिका की जोड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सर्वाधिक कमिटेड कपल में शुमार की जाती है।
3: तो बंदे में है दम में आज आपने अभिनेता यश के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चाइना का रुख कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं चीन में रोशनी के उत्सव की शानदार तस्वीरें। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग के फुलिंग जिले में पहला फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल मनाया गया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए इस दौरान यहां पर जगह जगह 68 ऐसी आकृतियां लगाई गई जिनसे पूरा इलाका जगमग हो उठा। खासतौर से सीढ़ीदार फूलों के खेतों, झील के किनारे और जंगल के रास्तों पर रोशन इन आकृतियों से बेहद शानदार और खूबसूरत नजारा देखने को मिला। ये फेस्टिवल इलाके की खास पहचान और इसके हजारों साल पुराने

0: से देखता है, वो बस देखता ही रह जाता है। इसके बारे में देखिए, खास बात यह भी है कि इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जी हाँ, बल्कि 100 से ज्यादा कारीगरों ने इन्हें पूरी तरीके से हाथ से बनाया है, यानी ये हैंडमेड है। इन आकृतियों को बनाने में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सिचुआन की अनोखी सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। इस लाइट डिस्प्ले में पत्थर की मछली, अलग अलग दौर के विद्वानों के शिलालेख और पानी से जुड़े नक्काशी के पैटर्न्स को भी दिखाया गया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: की नाल के प्रयोग से शनि की अशुभता दूर हो जाती है। घोड़े की नाल आखिर शनि की समस्या कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल के प्रयोग से पूरे घर का शनि कैसे बेहतर हो सकता है? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसा गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: अंतरिक्ष में इतिहास रचने की आज तीसरी वर्षगांठ, भारत ने 3 साल पहले आज के दिन ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील की। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक पूरे विधि विधान से श्रीनगर से पहलगाम रवाना। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा के अंतिम धार्मिक अनुष्ठान शुरू। आज पहलगाम में रात्रि विश्राम के बाद कल चंदनवाड़ी पहुंचेगी पवित्र छड़ी मुबारक। यूपी की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन गिफ्ट। 27 और 28 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान। एक सहयोगी के साथ बिना किराए के कर सकेंगी यात्रा। यूपी की कालीन नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने। सरकारी योजना बनी संजीवनी, एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन। प्रतियोगिता में 1 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 6 मेडल। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या के श्री राम मंदिर में अद्भुत अलौकिक आयोजन हो रहा है। यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला अपने भव्य भवन में दिव्य झूलनोत्सव मना रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रामलला के दरबार में और दिखाते हैं झूलनोत्सव की शानदार छटा।

लगता है जैसे अयोध्या में त्रेता युग जीवंत हो उठा है। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला झूलनोत्सव मना रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। गर्भगृह में विशेष रूप से तैयार किए गए सोने चांदी के भव्य झूले पर रामलला विराजमान है। झूलनोत्सव के लिए प्रभु को विशेष रेशमी और जरी के वस्त्र पहनाए गए हैं। भजन कीर्तन के बीच यहाँ का माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से यहाँ पर सावन का ये उत्सव त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब पूरी अयोध्या आनंद में डूबी रहती थी। श्री राम मंदिर परिसर में रामलला का ऐतिहासिक

0: मिलनोत्सव इस बार 15 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू हुआ। संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में भगवान श्री राम की उत्सव मूर्ति को भाइयों के साथ विधि विधान पूर्वक झूले पर विराजमान कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये उत्सव रामलला के प्रति भक्ति की भावना से प्रेरित है। सावन की उमस और गर्मी से राहत देने के लिए भक्त भगवान को फूलों और चंदन से सजे ठंडे झूले पर बिठाकर धीरे धीरे झूला झुलाते हैं ताकि उन्हें सुख मिल सके। भक्त अपने आराध्य को छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं और हिंडोली पर बिठाकर पंखा चलते हुए उन्हें झूला झुलाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से झूला उत्सव का खास वीडियो जारी किया गया है। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दरमियान यहाँ मंदिर परिसर में संत महात्माओं की मौजूदगी में लगातार धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जो अयोध्या की इस युगों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को और भव्यता प्रदान कर रहे हैं। खास बात ये है कि 12 दिनों के झूलनोत्सव के दौरान हर दिन शाम को रामलला को पालकी में बिठाकर कुबेर टीला ले जाया जाता है और वहां उनके दर्शन की विशेष व्यवस्था रहती है। केवल राम जन्मभूमि ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या इस समय उत्सव के रंग में सराबोर है। सरयू के तट से लेकर कनक भवन तक और तमाम मंदिरों में भी हर तरफ इन दिनों उत्सव का माहौल है। सावन शुक्ल तृतीया से शुरू हुआ ये झूलनोत्सव पूर्णिमा तक इसी तरह पूरी भव्यता के साथ जारी रहेगा। अयोध्या से मैं शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी है। यात्रा के दौरान पवित्र छड़ी की चंदन वाड़ी शेषनाग और पंचतरणी में विश्राम होगा। रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी।

0: ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और वादियों में गूंजता महादेव का जयकार। साधु संतों की टोली आगे पड़ रही है तो श्रद्धालु बाबा के दरबार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हवा में भक्ति की महक है, आंखों में दर्शन की उम्मीद है और दिल में सिर्फ एक नाम, जय शिव शंकर। कश्मीर की धरती पर इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा है। श्रीनगर से लेकर पहलगाम और पुंछ तक शिव भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक अपने सफर पर निकल चुकी है। चारों तरफ प्रभु के जयकारे और भक्ति की अनोखी चमक दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर की वादियां इन दिनों सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि शिव भक्ति, परंपरा और श्रद्धा के संगम के लिए भी खास बन गई है। श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद छड़ी मुबारक को पहलगाम के लिए रवाना किया गया। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाग और 26-27 अगस्त को पंचतरणी में पड़ाव होगा। इसके बाद 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा।
1: जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और 28 तारीख प्रातःकाल, जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, तो वहां पर छड़ी मुबारक को वहां स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा।
0: अमरनाथ गुफा में विधि विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बीच छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद छड़ी मुबारक पंचतरणी लौटेगी और 29 अगस्त को वापसी का सफर शुरू होगा। शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए 30 अगस्त को पहलगाम पहुंचने के बाद पूजा और विसर्जन के साथ इस धार्मिक परंपरा का समापन होगा।
2: तो चलिए बात जन्माष्टमी की कर लेते हैं। तो जन्माष्टमी का त्यौहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर दिल्ली में होगा मटकी फोड़ लीग का आयोजन। मटकी फोड़ लीग में 26 गोविंदा टीमों के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। एमपीएल का ये दूसरा साल है और एक कार्यक्रम में आधिकारिक एंथम सॉन्ग और मस्कट मटकू लॉन्च किया गया।

0: एक बार फिर आएंगे कान्हा। मटकी फोड़ेंगे कृष्ण मुरारी गिरधारी, नंद गोपाल मुरलीधर कुंज बिहारी, गोवर्धन धारी गोविंदा बाके बिहारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर खूब जमेगा रंग। जब दिल्ली के कोने कोने से आई गोविंदाओं की टोलियां ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाएगी, दही हांडी की मटकी फोड़ने के लिए एक बार फिर अपना दमखम दिखाने के लिए जुटेंगी, जोश और उत्साह चरम पर होगा। जब राजधानी दिल्ली में मटकी फोड़ ली यानी एमपीएस सीजन 2 का भव्य आयोजन होगा। माखन की मटकी फोड़ने की सदियों पुरानी परंपरा शानदार खेल प्रतियोगिता के रूप में जीवंत होगी। राजधानी में पिछले 23 वर्षों से आयोजित हो रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की परंपरा को इस वर्ष एमपीएल के साथ और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी की गई है। इसी सिलसिले में अब एमपीएल का अपना एंथम और मैस्कॉट मटकू भी लॉन्च कर दिया गया है।
1: हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ एक टीम के रूप में खेलें। तो हमारा ये मटकी फोड़ जो खेल है, गोविंदाला ये मटकी फोड़ जो खेल है, ये ऐसा खेल है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ टीम के रूप में पैरामिड बनाते हैं और मटकियों को फोड़ने का जो प्रभु लीला का प्रदर्शन है वो करते हैं। तो हम इस बार इसको बड़े स्केल पे बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं।
0: दिल्ली में इस बार मटकी फोड़ लीग यानी एमपीएस सीजन 2 का आयोजन 3 और 4 सितंबर को किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एमपीएल में शामिल गोविंदा टीमों के बीच मुकाबला होगा। इसमें इस बार 26 गोविंदा टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से 10 टीमें लड़कियों की हैं। टीमों ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है।
1: 2 महीने से लगभग ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग और सबसे बड़ी बात ये है कि इस लीला को अब एक स्पोर्ट्स के रूप में देखना शुरू कर दिया गया है। लगभग दिल्ली में आप खुश होंगे ये जानकर के कि इस लीला के माध्यम से जो ये स्पोर्ट्स बन गया है, अब लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे आज हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ गए हैं। जो स्पोर्ट्स से नहीं थे वो एथलीट्स बनने जा रहे हैं।
0: आपको बता दें कि दिल्ली से पहले मुंबई में प्रो गोविंदा लीग सीजन 4 होने जा रहा है। 25 से 27 अगस्त 2026 तक वर्ली के स्टेडियम में प्रो गोविंदा लीग में मुंबई सहित महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से आए गोविंदाओं की टीमें मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करेंगी। इस दौरान विजेता टीमों को लाखों रुपए के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पारंपरिक दही हांडी उत्सव को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। इसी के बाद से इसे प्रोफेशनल खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रो गोविंदा लीग की शुरुआत की गई और अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने की कोशिश हो रही है, ताकि किशोरों और युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ा जा सके और साथ ही साथ इनमें टीम भावना, अनुशासन, साहस, नेतृत्व, शारीरिक क्षमता और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत किया जा सके। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट फॉर टुडे।
2: तो देखिए, मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर चल रही तैयारियों ने तेजी पकड़ ली है। मुंबई के गणेश गली का पंडाल काफी चर्चित पंडालों में से एक है। यहाँ पर मुंबई के राजा विराजते हैं। यहाँ पर सजावट, लाइटिंग और भव्य मुख्य द्वार निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार इनका 99वां साल है। इस बार पंडाल की सजावट की थीम महाराष्ट्र के संतों पर आधारित है।
0: सजावट पूरी होने को है, रोशनियां जगमगाने लगी हैं, भव्य द्वार आकार ले चुका है और अब बस इंतजार है उस पल का जब मुंबई के राजा का दरबार भक्तों के लिए सच कर तैयार होगा। मुंबई की गलियों में बप्पा के स्वागत की आहट सुनाई देने लगी है। हर तरफ तैयारियों की गति तेज हो गई है। कारीगर दिन रात जुटे हैं। कहीं पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनियों से परिसर को सजाया जा रहा है।
3: मुंबई, महाराष्ट्र, ये पूरा देश अब गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गया है। 14 सितंबर से हर किसी के घर में, हर कोई नुक्कड़ पर, हर किसी इलाके में, हर सड़क पर बप्पा को विराजमान किया जाएगा। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के गणेश गली, जो मुंबई का राजा के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसकर सेट पर। देखिए, जब यहाँ पर श्रद्धालु और जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बड़ी ही सुंदर सुंदर तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जैसे कि पिछली बार यहाँ पर रामेश्वर बनाया गया था, रामेश्वर धाम जो है वो तब्दील किया गया था, और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पीछे की मेहनत देखें, एक डेढ़ महीने पहले से ही शुरू हो जाती है आलीशान बहुत बड़ा सेट, जो धीरे धीरे बहुत बड़े स्वरूप में बदलने वाला है। इस बार गणेश गली यानी कि मुंबई का राजा किस अवतार में होंगे और क्या कुछ खास सोचा गया है, क्या डेकोरेशन होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं।
0: मुंबई के गणेश गली में इस उत्सव की भव्यता देखते ही बन रही है। यहाँ मशहूर मुंबई के राजा एक बार फिर अपने भक्तों के बीच विराजने वाले हैं। इस बार गणेश गली मंडल अपने 99 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, लिहाजा उत्साह भी जबरदस्त है और तैयारियां भी बेहद खास।
4: मंडल का ये 99 ईयर है और इस बार हम संतों की परंपरा या दिखाने की हमारी कोशिश है, जो कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो समृद्ध करने में उनका बहुत ही बड़ा सहयोग ये महाराष्ट्र में है। तो उनकी परंपरा क्या है ये इस पीढ़ी को पता चले, इसीलिए ये संतों की परंपरा हम यहाँ दिखाए।
0: महागणपति दरबार की सजावट लगभग पूरी हो चुकी है, लाइटिंग का काम अंतिम चरण में है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार को भी अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। लेकिन इस बार सबसे खास आकर्षण सिर्फ भव्य सजावट नहीं, बल्कि मुंबई के राजा के दरबार की थीम है, जो महाराष्ट्र के संतों पर आधारित रखी है। पंडाल में श्रद्धालुओं को महाराष्ट्र की संत परंपरा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी, उनके संदेश को बताया जाएगा जिससे उन्होंने इंसानियत की राह दिखाई। इन पहलुओं को सजावट के जरिए सामने लाने की तैयारी है।
4: तो इस बार जो हम दिखा रहे हैं संतों की परंपरा, वो लोगों में एक ज्यादा से ज्यादा उनकी जानकारी लोगों में कैसी बढ़नी चाहिए, जो ये जो हमारी जेन जी है, तो उनको भी संतों की परंपरा कैसी है, क्या क्या संतों ने महाराष्ट्र के लिए किया है, क्या क्या संतों की मदद से महाराष्ट्र ये समृद्ध हो चुका है, उनकी भाषा समृद्ध हो चुकी है, वो लोगों तक पहुंचाने की ये कोशिश है। और मतलब हमें तो ये ऐसा लग रहा है कि हम इसमें खरे उतरेंगे।
0: गणेश गली मंडल की एक और खास परंपरा है, यहाँ गणपति की प्रतिमा को बाहर से लाकर स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि मूर्ति को मौके पर ही तैयार किया जाता है। जैसे जैसे उत्सव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे कारीगरों की मेहनत भी साफ नजर आने लगी है। सजावट में बारीकी लाई जा रही है, रोशनी को परखा जा रहा है और पंडाल के हर हिस्से को आकर्षक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मुंबई के राजा का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुंबई के राजा का आगमन सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद की वो खुशी है जिसका इंतजार वो साल भर करते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, गुड न्यूज आई है महाराष्ट्र के जालना से, जहां बेटियों के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई है। बात बेटियों की पढ़ाई की है, बात बेहतर भविष्य की है। यही वजह है कि जब बेटियों को स्कूल ले जाने वाली बस पत्रूर तहसील के वागाड़ी गांव पहुंची, तो गांव वालों ने न सिर्फ ढोल ताशों से बस का जोरदार स्वागत किया, बल्कि बस पर फूल माला भी बरसाए। बरसों पुरानी मांग पूरे होने पर गांव वालों की खुशी देखते ही बन रही थी। आजादी के बाद पहली बार है जब गांव में बेटियों के लिए नियमित स्कूल बस की शुरुआत की गई है। स्कूल बस शुरू होने से गांव की बेटियां आसानी से स्कूल आ जा सकेंगी, उनकी यात्रा भी सुरक्षित होगी और उनका समय भी बचेगा। नियमित बस सेवा शुरू होने से गांव वाले भी बेहद खुश हैं।
0: केरला में आज प्रसिद्ध 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किया गया। पुन्नमाड़ा झील में आयोजित इस दौड़ में लोगों ने पूरे उत्साह और रोमांच के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कई तरीके की नावों को शामिल किया गया, लेकिन सर्प नौकाओं ने लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। इस साल प्रतियोगिता में करीब 70 से 71 नौकाओं ने हिस्सा लिया, जिनमें 21 से 22 चुंडन नौकाएं शामिल हैं। छोटी नौकाओं के मुकाबले की शुरुआत की गई।
2: तो इसी के साथ इसकी शुरुआत हुई और बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने नौका चालकों का खूब उत्साह बढ़ाया। बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आज रिलीज हो गया है। फिल्म में महाभारत के महान योद्धा कर्ण की कहानी को भव्य अंदाज में दिखाया गया। महावीर कर्ण 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खास बात यह है कि फिल्म को हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। यानी देश भर के दर्शक इस फिल्म को अपनी पसंदीदा भाषा में देख सकेंगे और महान योद्धा कर्ण की कहानी को महसूस कर सकेंगे।
5: यह संसार हमारी संपत्ति भूल जाएगा लेकिन हमारे खोए हुए साम्राज्य का हमेशा स्मरण करेगा। कर्ण के लिए उसका प्राण, कर्ण के प्राण देना, अपने कवच कुंडल उतार।
2: थाईलैंड में थल सेना के जवानों और थाई शाही सेना का मैत्री अभ्यास का 15वां संस्करण चल रहा है, जिसमें दोनों देश के जवान आतंकवाद से निपटने के तौर तरीकों को लेकर अभ्यास कर रहे हैं। देखिए मैत्री अभ्यास 31 अगस्त तक चलने वाला है। थाईलैंड में हिंद के जवानों के शौर्य का प्रदर्शन, मैत्री युद्धाभ्यास भारत थाईलैंड की दोस्ती का प्रमाण। थाईलैंड के सूरत थानी के रंगसित कैंप में इन दिनों भारतीय और थाईलैंड के जवानों के युद्ध कौशल की गवाही दे रहा है। 18 अगस्त से यहां पर भारत और थाईलैंड की सेनाओं ने सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास मैत्री की शुरुआत की थी। ये दोनों सेनाओं के युद्धाभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण है। ये युद्धाभ्यास दोनों मित्र राष्ट्रों की सैन्य क्षमताओं और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्धाभ्यास मैत्री 30 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ सैन्य क्षमताओं और युद्ध नीति को एक दूसरे से साझा करेंगी। भारतीय सेना और थाई शाही सेना की टुकड़ियों में 85-85 जवान शामिल हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी में मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स के जवान हैं, जबकि थाई सेना की टुकड़ी में 5वीं डिवीजन की 25वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की 3री बटालियन के जवान शामिल हैं। इस अभ्यास का मकसद जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और क्षमता को बढ़ाना है। ये अभ्यास जंगल और शहरी वातावरण में उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त अभियानों को अंजाम देने में दोनों देशों की क्षमताओं को बढ़ाएगा। दोनों देशों के जवान मुआय थाई की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसे आर्ट ऑफ 8 लिम्स भी कहा जाता है। वजह है कि इसमें 2 मुट्ठियों, 2 कोहनियों, 2 घुटनों और दोनों पैरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर भविष्य में कभी दोनों सेनाओं को मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा तो मैत्री युद्धाभ्यास की बदौलत दोनों सेनाएं बेहतर तालमेल के साथ मिशन को अंजाम दे सकेंगी। इस युद्धाभ्यास से भारत और थाईलैंड के सशस्त्र बलों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस सामरिक अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: तो देखिए भारत में तो आपने होली के रंग खूब देखे होंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं परदेश में होली जैसे उत्सव के रंग। देखिए चीन के एक इलाके में रंगों से तो नहीं लेकिन केवल पानी से अनोखी होली खेलने की परंपरा है। कैसे देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में।
2: रेनकोट पहने हुए इन लोगों के हाथों में बंदूक नहीं, पिचकारियां हैं और इन पिचकारियों से पानी की जोरदार फुवारे छोड़ी जा रही है। माहौल कुल मिलाकर वैसा ही है जैसा भारत में होली के उत्सव में होता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भला रेनकोट पहनकर कौन होली खेलता है।
7: तो आपको बता दें कि यहाँ असल में होली नहीं खेली जा रही, लेकिन होली जैसा ही त्योहार मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें चीन के हैनान की है। यहाँ पर खेली जा रही इस अनोखी होली में रंगों का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन हुड़दंग की कमी नहीं है, क्योंकि ये होली सिर्फ पानी से खेली जा रही है। चीन के हैनान के बोटिंग ली और मियाओ इलाके में हर साल की तरह इस बार भी जल की फुवारों के साथ इस अनोखे उत्सव वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल का शानदार आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और जमकर मस्ती की।
8: 我感觉就像那个泼水，就是新年的意思吧。所以我从这里这一天开始，那个泼水以后，我变成了一个很好的、很快乐，还有从我认识了很多朋友，还有这里的人也很幽默，所以我感觉温暖的感觉。到了几个活动有，但是没有机会，是第一次我来，但是真的特别特别好玩。我看到了很多视频，我觉得哇，好玩，酷，我来这里一分钟，衣服都湿了，开心。
7: मान्यता है कि पिचकारियों से निकली शीतल जल की ये फुवारें प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतीक है। हैनान में ली जनजातीय समूह के लोग पीढ़ियों से इस उत्सव को मनाते आ रहे हैं और अब विदेशी सैलानी भी इसमें बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। चार दिन के उत्सव में इस बार 8 देशों के सैलानियों के समूहों ने हिस्सा लिया। म्यूजिक और मनोरंजक माहौल के बीच लोगों ने इस उत्सव का खूब आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चाइना का रुख कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं चीन में रोशनी के उत्सव की शानदार तस्वीरें। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग के फुलिंग जिले में पहला फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल मनाया गया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, इस दौरान यहां पर जगह जगह 68 ऐसी आकृतियां लगाई गई जिनसे पूरा इलाका जगमग हो उठा। खासतौर से सीढ़ीदार फूलों के खेतों, झील के किनारे और जंगल के रास्तों पर रोशन इन आकृतियों से बेहद शानदार और खूबसूरत नजारा देखने को मिला। ये फेस्टिवल इलाके की खास पहचान और इसके हजारों साल पुराने इतिहास को इस तरह की सजावट के जरिए पेश करता है कि जो भी इसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। इसके बारे में देखिए, खास बात यह भी है कि इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जी हाँ, बल्कि 100 से ज्यादा कारीगरों ने इन्हें पूरी तरीके से हाथ से बनाया है, यानी हैंडमेड है। इन आकृतियों को बनाने में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सिचुआन की अनोखी सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। इस लाइट डिस्प्ले में पत्थर की मछली, अलग अलग दौर के विद्वानों के शिलालेख और पानी से जुड़ी नक्काशी के पैटर्न को भी दिखाया गया है। तो देखिए, हांगकांग का आसमान मशहूर क्वीसी फेस्टिवल के मौके पर ड्रोन की रोशनी से जगमगा उठा। इस फेस्टिवल में 2000 ड्रोनों ने विक्टोरिया हार्बर के ऊपरी चीनी लोक कथा की खूबसूरत तस्वीरें पेश की। ड्रोन से आसमान में मैगपाई ब्रिज की आकृति भी बनाई गई। ये वही पुल है जो चीनी लोक कथा के न्यूलांग और वीवर गर्ल को साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा ड्रोन से प्यार में डूबे जोड़ों और खेलते हुए विशाल गुलाबों की आकृतियां भी इस दौरान ड्रोन के जरिए बनाई गई। आसमान में बदलती इन तस्वीरों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो देखता ही रह गया। क्वीसी फेस्टिवल चीनी कैलेंडर के 7वें महीने के 7वें दिन मनाया जाता है। लोग करीब 2000 साल पुरानी प्रेम कहानी को सुनना, देखना और समझना चाहते हैं। आसमान पर बनी रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन गई।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
16: नाल के प्रयोग से शनि की अशुभता दूर हो जाती है, घोड़े की नाल आखिर शनि की समस्या कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल के प्रयोग से पूरे घर का शनि कैसे बेहतर हो सकता है? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को।
15: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: अंतरिक्ष में इतिहास रचने की आज तीसरी वर्षगांठ, भारत ने 3 साल पहले आज के दिन ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील की। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक पूरे विधि विधान से श्रीनगर से पहलगाम रवाना, इसी के साथ अमरनाथ यात्रा के अंतिम धार्मिक अनुष्ठान शुरू। आज पहलगाम में रात्रि विश्राम के बाद कल चंदनवाड़ी पहुंचेगी पवित्र छड़ी मुबारक। यूपी की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन गिफ्ट, 27 और 28 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान, एक सहयोगी के साथ बिना किराए के कर सकेंगी यात्रा। यूपी की काली नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने, सरकारी योजना बनी संजीवनी, एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन, प्रतियोगिता में 1 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 6 मेडल।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। देखिए, भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली गया के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन गया के गांव में होने वाले कुदरती करिश्मे के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। दरअसल गया में स्थित हंसराज पर्वत की तलहटी में बसे छोटे से गांव में रत्नों की बारिश होती है। जी हाँ, जिन्हें रत्नों को पाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों से गहरी खुदाई करनी पड़ती है, वही रत्न गया के इस गांव में सड़कों पर बिखरे हुए मिल जाते हैं। ये सुनकर जरूर आपके मन में ये जिज्ञासा जगी होगी कि आखिरकार ये गांव कहाँ पर है और इस गांव को मुझे देखना है। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं गया के उस अद्भुत गांव में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: हमारी धरती का नाम रत्नगर्भा है। रत्नगर्भा इसलिए क्योंकि धरती ने अपने भीतर हीरा, पन्ना, नीलम, माणिक्य, पुखराज और गोमेद जैसे बेशकीमती रत्नों का अकूत भंडार सहेज रखा है। पर धरती के गर्भ में कुदरत की ओर से सहेज कर रखे गए इन रत्नों को पाना आसान नहीं है। इसके लिए भारी मशीनों की मदद से संभावित पहाड़ों या जमीनों में काफी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। फिर एक्सपर्ट की मदद से उनकी पहचान कर रत्नों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली बिहार के गया जिले के एक गांव के लोगों को इन्हीं रत्नों को पाने के लिए न तो माइनिंग करनी पड़ती है और न ही कोई दूसरी मशक्कत करनी पड़ती है। इन्हें करना होता है तो बस मानसून का इंतजार। मानसून की बारिश के बाद ये बेशकीमती रत्न इनके रास्तों में अपने आप ही आकर बिछ जाते हैं और जिन्हें पाकर इनकी जिंदगी से दूर हो जाता है गुर्बत का मनहूस साया। ये बात सुनकर आपको जरूर हैरानी हुई होगी। इस बात पर आसानी से यकीन कर लेना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम आपको पूरी सच्चाई से रूबरू कराएंगे तो आपको न सिर्फ इस बात पर पक्का यकीन हो जाएगा बल्कि गांव वालों की किस्मत पर रश्क भी होने लगेगा। तो सुनिए साहब, बिहार के गया जिले के वजीरगंज ब्लॉक में मौजूद है हसरा गांव। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हसरा गांव हंसराज पर्वत की तलहटी में बसा है। इस गांव के लोग हर साल मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं और अच्छी बारिश होते ही गांव के खुशकिस्मत लोग निकल पड़ते हैं हंसराज पर्वत पर, जहां मोती, मनिया जैसे कीमती पत्थर रास्ते में पड़े मिलते हैं। दरअसल बारिश के बाद हंसराज पर्वत पर कुदरती रूप से मौजूद बेशकीमती पत्थर लुढ़क कर पहाड़ की पगडंडियों तक पहुंच जाते हैं और कई बार तो गांव के खेत खलियानों तक भी आ जाते हैं।
1: बारिश जब पूरा बारिश होगा तो अपने आप पहाड़ी से ढल के जमीन में चला जाता है फिसल के,
2: फिर लोग
1: उसका जानवर उमर चढ़ता है खुड़ी से, कहीं कहीं से कुछ कुछ से अपना धोआ के अपना निकलता है तो ही ले जाते हैं।
2: बहुत सारे बच्चे भी खोजते रहते हैं।
1: जी हाँ सर, बच्चे जो गरीब का आदमी है, तत्व के बाल बच्चे हैं, वो जो घर में कुछ काम नहीं है, जो पैसा के लोभ है तो कुछ भी कोई भी खोज सकता है सर।
0: हंसराज पर्वत की तलहटी में बसे हसरा गांव के लोग बेहद सहज, सरल और भोले भाले हैं। गांव पर बरसने वाली कुदरत की बेशकीमती नेमत के महत्व से ये आज भी कमोबेश अनजान ही हैं। मॉनसून की बारिश के बाद मूंगा, मनिया जैसे पत्थर हंसराज पर्वत से लुढ़क कर जब इनके कदमों तक पहुंचते हैं तो ये उसकी असली कीमत से अनजान ही रहते हैं। गया या दूसरे शहरों से आने वाले जौहरी इन्हें उसकी जो भी कीमत बता दें उसे सही मानकर वो सौदा कर लेते हैं। गांव के भोले भाले बच्चों के लिए पत्थर ढूंढना बाल सुलभ खेल से ज्यादा कुछ नहीं होता। इन बच्चों के लिए रत्न ढूंढना आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, एक कौतूहल होता है।
2: खोजने के लिए ज्यादातर बच्चा लोग वर्षा होने के बाद दौड़ जाता है, वही लोग लेता है, उसी को मिलता है, जो ढूंढता है उसको मिलता है, बेच देता है लोग। बोध गया से कुछ लोग आते हैं, जानते हैं कि वहाँ पर वर्षा होने के बाद मिलता है कुछ, आके लोग ले जाता है, बढ़िया कीमत भी देता है।
3: क्या कीमत लगाते होंगे?
2: कुछ जैसा साइज रहता है मूंगा को, उस प्रकार से वो लोग देते हैं।
3: किस तरह का मूंगा रहता है?
2: काला उजला रहता है, रेड भी रहता है, गुलाबी जैसा भी होता है, अलग अलग प्रकार है सब।
0: कुदरत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। कुदरत की मेहर का कोई बना बनाया फॉर्मेट नहीं होता। कब, कहां, किस पर और क्यों कुदरत की मेहरबानी हो जाए ये किसी को नहीं पता। मानसून के दौरान सहज ही मिलने वाले बेशकीमती रत्नों ने गया जिले के हसरा गांव के लोगों की जीवन शैली में बड़ा बदलाव ला दिया है। करीब 150 घरों और 1000 की आबादी वाला ये गांव आज अगर खुशहाल है तो उसकी वजह है हंसराज पहाड़ से लुढ़क कर आने वाले अनमोल पत्थर। कुछ दशक पहले तक इस गांव में मुफलिसी का आलम ये था कि यहां के ज्यादातर घर कच्चे हुआ करते थे, लेकिन बेखुदी में मिले पत्थरों को बेचकर अब ज्यादातर परिवारों ने पक्के मकान बनवा लिए हैं। दरअसल यूं ही रास्तों में पड़े मिले पत्थर कई बार 2.5 से 3 लाख तक की कीमत दे जाते हैं।
1: हाँ, मूंगा टाइप मिलता है,
4: जैसे छोटा मूंगा बड़ा मूंगा जो जिसका जैसा नसीब है वो अनुसार अगर छोटा मिल गया तो कम बेनिफिट हुआ, जड़ी बड़ा मिल गया तो ज़्यादा बेनिफिट हुआ, वो साहब बड़ा मिल गया तो 2.5 लाख 3-3.25 लाख तक के लिए बिका है मूंगा।
5: कब वो रत्न मिलता है, कैसे मिलता है?
4: जब पानी पड़ गया तो लोग निकल जाते हैं, जिसका नसीब आता है उनका मिल जाता है, कम से कम तो 100 आदमी से ऊपर है, 100 आदमी ऊपर। पर किसान की कहानी कहते हैं गाय खोल के आया, जस्ट पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं और वही घरवा के आपसे नीचे उतर पर रोडवा किनारे ही में, रोड के किनारे ही में, अरे मूंगा में हमको मिल गया शंकर जी मिल गया। तुरंत उसको 1,55,000 में एकदम हैंड टू हैंड कहते कहते बिक गया।
0: शुरुआती वर्षों में जब ये बेशकीमती पत्थर गांव वालों को मिलने लगे तो उन्हें नहीं पता था कि ये इतने कीमती हैं। लिहाजा तब गांव वाले इन पत्थरों को कुछ 100 या कुछ 1,000 रुपयों में बेच देते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें इन पत्थरों की वैल्यू पता चली गांव वालों ने मोल भाव करना शुरू कर दिया। मोल भाव करने की वजह से सीधे साधे गाँव वालों को पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत मिलने लगी। हालांकि अभी भी इन्हें नहीं पता कि जो जौहरी इन रत्नों के बदले 1-2 लाख रुपए देते हैं वो अपने ग्राहकों से उसके लिए कितना पैसा वसूलते हैं। बहुत मुमकिन है कि जो पत्थर ये शहरों से आने वाले जौहरी को 1 या 2 लाख में बेच देते हैं, जौहरी अपने ग्राहकों से उस पत्थर के 40 से 50 लाख रुपए वसूलते हों। दरअसल दुनियादारी से बेखबर गाँव वाले रत्नों के पारखी तो है नहीं, वो तो बस पत्थरों की चमक देखकर उसे उठा लेते हैं और फिर इंतजार करते हैं जौहरी का।
6: चमकता है ना, जैसे मिल जाता है उसे, जिसे लड़कन के खोता है 100 के मिलता है, हमको मिलता है।
5: जब आपको मिला था तब कैसा लगा?
6: कैसा लगता है, वो रख ले है अभी नहीं बेचा, उसी के दे रहा 10-20 ने, हम कहीं नहीं बेचेगा, जब हम कहा ऐसे रख ले है मूंगा के, उसी के दाम ज्यादा है। मिला तो हम कहते जैसे आ रहा है ने, वो नहीं फूल जता मिला हमको,
7: क्या था?
6: हीरा है।
0: हंसराज पर्वत से लुढ़क कर आने वाले इन बेशकीमती पत्थरों का एक गहरा धार्मिक कनेक्शन भी है। गांव वालों को ये पत्थर आमतौर पर सावन के महीने में मिलते हैं। सावन को भगवान शिव का मनभावन महीना माना जाता है और संयोग ये कि हंसराज पर्वत पर भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर भी है। गांव वाले कहते हैं कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया बल्कि ये स्वयं प्रकट हुआ है। जाहिर है गांव वाले हंसराज पर्वत से मिलने वाले पत्थरों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ही मानते हैं।
2: हसरा पहाड़ी है, खासियत तो ऊपर में बाबा हैं, सबसे बड़ा खासियत तो वही है, 1934 से यहाँ विराजमान है।
0: काबिले गौर है कि हंसराज पर्वत पर स्थित भोलेनाथ के मंदिर की कहानी सोनपुर के राजा से भी जुड़ी है। गांव वालों के अनुसार पहाड़ के आसपास आज भी कुछ पुराने राजा महाराजाओं के महलों के खंडर और अवशेष दबे हुए हैं। गांव वाले कहते हैं कि साल 1934 में हंसराज पर्वत पर सोनपुर के राजा निरसु नारायण सिंह ने 4 फीट ऊंचे शिवलिंग वाले एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया था। सावन महीने और पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में जलाभिषेक करने आते हैं। मंदिर से जुड़ी कुछ चमत्कारिक कथाएं गांव वालों के इस विश्वास को और पुख्ता कर देती है।
4: यहां आप रूपी शंकर जी का मूर्ति निकला है जो हम लोग के जन्म के पहले से ही है, 1934 में ही बना हुआ मंदिर है, हम लोग जानते हैं, हम लोग देखे उखे नहीं थे कि कैसे शंकर जी यहाँ उत्पत्ति हुए से, लेकिन पूर्वज लोग कहते थे कि जब यहाँ खुदाते थे मालिक थे सोनपुर के मालिक के, हम लोग क्षेत्र में पढ़ते हैं, निचु नारायण सिंह उनका नाम था, तो खुदवा के यहाँ से ले जाना चाहते थे सोनपुर, लेकिन जन बन लगवा खोदवाते थे, जैसा जलधरी है वैसा जलधरी 7 जलधरी तक शाम तक खोदाता था कि तो, और फिर रात भर में उसी जस के तस हो जाते थे।
0: क्या ये वाकई भगवान शिव की कृपा का असर है या फिर हंसराज पर्वत की भूगर्भीय संरचना का कमाल? इस सवाल का जवाब तो कोई आध्यात्मिक विभूति या फिर भूगर्भ शास्त्री ही दे सकते हैं। हालांकि गया के वन पदाधिकारी का कहना है कि जिन लावा से पहाड़ों का निर्माण होता है उनमें कुदरती रूप से रत्न भी होते हैं।
8: ये मे भी ये पूर्व में लावा से जो पहाड़ का निर्माण हुआ है, तो उसमें कुछ ऑर्नामेंटल एलिमेंट जो होते हैं लाइक जो पत्थर होते हैं, बेसिकली ये पत्थर का टाइप है, ठीक है, डिफरेंट कलरफुल पत्थर के टाइप हैं और वो मे भी वो निकल रहा होगा।
0: वन पदाधिकारी चाहे जो कारण बताएं, भोले भाले गांव वालों के लिए तो ये साक्षात शिव जी की कृपा का ही कमाल है। कारण चाहे जो हो, पर सच्चाई यही है कि धरती के भीतर दबे रत्नों को निकालने के लिए जहां एक ओर करोड़ों रुपए खर्च कर वैज्ञानिक तरीके से माइनिंग करनी पड़ती है, वहीं रत्न इन गांव वालों को सहज ही उपलब्ध है। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: गया के गांव में सहज ही मिलने वाले रत्नों के बाद आपके मन में रत्नों की पहचान और उनकी कीमत निर्धारण से जुड़े सवाल भी जरूर उठ रहे होंगे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने रत्नों के विशेषज्ञ से हर पहलू पर खास बातचीत की। आइए विशेषज्ञ से ही जानते हैं कि कैसी होती है रत्नों की पहचान, कैसे तय होती है इनकी कीमतें।
10: बहुत सारे लोग जीवन का सुख दुख रत्न के हिसाब से तय करते हैं, ऐसे में रत्न की डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है और जितनी डिमांड होती है उतना ही रत्न के साथ कई तरह के खेल भी होते हैं, असली नकली का खेल। कैसे पहचाने, क्या चीज़ें हो सकती हैं, मेरे साथ अमरजीत जी हैं जो कि पीपी ज्वेलर्स भाई पवन गुप्ता से हैं। सर आप रत्न तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं, किसी ऑथेंटिक शॉप से लेना एक बात है, लेकिन अगर कोई हाथ में लेकर आया है क्या उसको पहचानना मुमकिन है?
11: देखिए, ऐसा जनरल आदमी के लिए पहचानना कि स्टोन रियल है या फेक है बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी ये है कि स्टोन कभी भी आप देखें, जैसे कोई भी स्टोन आप रियल स्टोन देख रहे हैं, जैसे ये नीलम है, तो स्टोन जो रियल आएगा उसका एक तो थोड़ा वेट हैवी रहता है, अगर सिंथेटिक स्टोन है आर्टिफिशियल स्टोन है तो थोड़ा हल्का रहेगा, और सेकेंड है कि कट थोड़ा अच्छा आता है, अगर रियल स्टोन है तो उस पर थोड़ी मेहनत करी जाती है, खर्चा करा जाता है, उसको अच्छा बनाने के लिए तराशा जाता है, तो उसके ऊपर कट बहुत अच्छा दिया जाता है। फेक स्टोन के ऊपर उतनी मेहनत नहीं कर सकता आदमी, क्योंकि इतना सस्ता होता है वो, उसकी ना तो इतनी अच्छी कटिंग आती है ना बहुत अच्छी पॉलिश होती है, और वजन में भी वो काफ़ी हल्का रहता है। बाकी आजकल के टाइम पे तो काफ़ी लैब हैं, गवर्नमेंट लैब हैं, वहाँ जाके आप अपना स्टोन चेक करा सकते हैं, या किसी अच्छे ज्वेलर्स पे जो अच्छा कोई स्टोन का काम कर रहा है एक बार आप उसका सजेशन ले सकते हैं या उसके पास दे सकते हैं, तो जो एक अच्छा काम कर रहा है मार्केट में जिसका नाम है तो जनरल उस पर चीज़ अच्छी ही मिल जाती है।
10: मोटा मोटी ये है कि थोड़ा सा वो भारी होगा जी, उसके कट बहुत फाइन होंगे और उसमें चमक होगी,
11: चमक आएगी, बिल्कुल ठीक बात है जी। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं स्टोन से पहले, और बाकी किसी भी अच्छे रेप्यूटेड शॉप से लो तो मेरे हिसाब से चीज़ अच्छी ही मिल रही है मार्केट में, अभी काम सही चल रहा है।
10: कीमत कैसे तय होती है स्टोन की? जैसे मान लीजिए कोई कहीं कुछ पड़ा हुआ पा गया तो उसकी कीमत कैसे तय कर सकते हैं?
11: देखिए, कीमत तो स्टोन के वजन के ऊपर है कि स्टोन का साइज कितना बड़ा है, वजन कितना है, और स्टोन के अंदर क्लैरिटी कितनी है। स्टोन जितना ज़्यादा अच्छा साफ होगा, अंदर से ट्रांसपेरेंट आएगा, तो स्टोन की वैल्यू ज़्यादा होती है। वहीं स्टोन के अंदर धुंधलापन है, क्लैरिटी नहीं आ रही या पीस छोटा है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी।
10: ठीक है, जो अलग अलग स्टोन है जैसे कई लोग नहीं पहचानते हैं, हम स्टोरी ये कर रहे हैं कि एक गांव में कुछ लोग स्टोन उनको मिलते हैं बारिश के बाद बहुत सारे, तो वो नहीं पहचानते हैं कि ये कौन सा है, ये गुमद है कि ये नीलम है कि ये क्या है, थोड़ी सी उनकी जानकारी अगर दिखाते हुए बताएं कि ये है और इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए।
11: जी जी, देखिए स्टोन जो है, जो रियल स्टोन है वो आप जनरल देखेंगे तो इस तरीके से आते हैं, जैसे पन्ना हो गया जो जनरल आप देखेंगे हरे रंग का ही पाया जाता है, और नीलम है जैसे नाम से ही नीलम है, नीले रंग का है। इसी के अंदर एक मूंगा स्टोन आता है ये वाला, ये भी समुद्र के अंदर से निकलता है, ये मोस्टली रेड कलर का या वाइट कलर का पाया जाता है, और एक मोती इस तरीके से जो मोती आ रहा है वाइट, जनरल सब ने देखा ही होगा। और स्टोन के अंदर और काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे गोमेद है ये वाला, तो काफ़ी चीज़ें हैं स्टोन के अंदर। बाकी जो जनरल महंगे स्टोन देखे जाएंगे आप तो पुखराज महंगा आता है, नीलम महंगा आता है, पन्ना महंगा आता है, और कई स्टोन काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं जो रियल होते हैं लेकिन सस्ते मिल जाते हैं।
10: किसकी कितनी कीमत होती है मोटा मोटी?
11: देखिए, अच्छा स्टोन जैसे सपोज कोई भी मान के देखते हैं हम, पन्ना है या पुखराज है या नीलम है, तो जनरल अगर हम देखेंगे तो ये आपको स्टार्टिंग जो अच्छा स्टोन अगर आपको चाहिए 10-15 हज़ार रुपये रत्ती आपको कम से कम मिलेगा ही, और 6-7 रत्ती, 8 रत्ती, 10 रत्ती, सब लोग अपने अपने एक वजन के हिसाब से शरीर के, या जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है उसके हिसाब से स्टोन पहना जाता है। कोई 4 रत्ती पहन रहा, कोई 6 रत्ती पहन रहा, कोई 8 रत्ती पहन रहा।
9: रत्नों का हमारी जिंदगी में बहुत गहरा महत्व है और ये नया नहीं है, हमारे पुराणों और शास्त्रों में भी अनमोल रत्नों का जिक्र मिलता है। समुद्र मंथन के बाद कौस्तुभ मणि निकालने का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में आसानी से मिल जाता है। आज हमारे बीच 9 रत्नों का बड़ा महत्व है क्योंकि ये 9 रत्न हमारे 9 ग्रहों से संबंधित बताए जाते हैं। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि कौन सा रत्न किस ग्रह से जुड़ा हुआ है और उन रत्नों का प्रभाव और असर आखिर क्या है।

0: धरती के गर्भ में मिलने वाले रत्नों की तासीर बड़ी अद्भुत होती है। प्रकृति ने जो खजाना अपनी आगोश में सहेज कर रखा है वो ग्रह नक्षत्रों की विपरीत चाल से परेशान इंसान की विपत्तियों का समाधान बन जाता है, तो ज्योतिष विज्ञान में बाधाओं का परिहार माना जाता है। वही रत्न जब जौहरियों के पास पहुंचता है तो उनके लिए टकसाल बन जाता है। इन्हीं रत्नों का मोल भाव कर जौहरी धन कुबेर बन जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर रत्न का अपना एक साइंटिफिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और उसका अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों को आप कोई न कोई रत्न धारण किए हुए पाएंगे। कई लोग शौक से तो कई ज्योतिषीय सलाह के मुताबिक रत्नों को धारण करते हैं।
1: वैदिक ज्योतिष में रत्नों का विशेष महत्व है क्योंकि हर रत्न किसी न किसी ग्रह की कॉस्मिक एनर्जी को डिनोट करता है। ये रत्न आपको माता पृथ्वी या समुद्र के गर्भ से मिलते हैं और वहां से मिलने वाली ये दिव्य वस्तुएं कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाती हैं, आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी लाती हैं, अमुक ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी को आपके जीवन में संतुलित करती हैं, चैनलाइज करती हैं।
0: ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को हमेशा से ऊर्जा और शक्ति का अजस्त्र स्रोत माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रत्नों में कॉस्मिक एनर्जी समाहित होती है। हर रत्न की अपनी अलग एनर्जी होती है, अलग प्रभाव क्षेत्र होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नौ ग्रह का जिक्र किया गया है और हर ग्रह का हमारे जीवन में खास स्थान होता है। हर ग्रह को एक खास रत्न के माध्यम से दर्शाया जाता है जिसकी वजह से इन्हें नौ रत्न कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर रत्न में विशेष गुण होते हैं जो सही समय पर सही विधि से और सही उंगली में धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब आइए ये जानते हैं कि किस रत्न में कौन सा गुण होता है और उसे कब और कैसे और क्यों धारण करना चाहिए। पुखराज का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है तथा इसे सोने के साथ तर्जनी उंगली में धारण किया जाता है। मान्यता है कि पुखराज धारण करने से धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं। इसके साथ ही शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसे गुरुवार को धारण करने की ज्योतिषीय सलाह दी जाती है। पुखराज दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में मदद करने वाला रत्न भी माना जाता है। पन्ना का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। पन्ना को सोने के साथ कनिष्ठिका उंगली में धारण किया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक पन्ना धारण करने से निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि बढ़ती है। आईटी, मीडिया और लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये विशेष तौर पर लाभकारी माना जाता है। इसे बुधवार के दिन धारण करना विशेष लाभकारी बताया गया है। पन्ना से लोक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी की बात भी कही जाती है, साथ ही शेयर बाजार में निवेश के लिए इसे लाभकारी माना जाता है।
1: पन्ना जो एमरल्ड वो बुध को डिनोट करता है। ये विशेष रूप से जो मिथुन राशि और वर्गो साइन कन्या राशि के लॉर्ड होते हैं, आपकी एक्यूमन, बिजनेस एक्यूमन, आपकी ऑरेटरी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी अकाउंटिंग स्किल्स, मैथमेटिक्स, वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। आप इसको धारण करिए अपनी सबसे स्मॉल फिंगर में। ग्रीन कलर का स्टोन होता है, बहुत वाइब्रेंट कलर्स इसमें आते हैं और ग्रीन कलर में ही आप इसको पंच धातु में या फिर गोल्ड में आप धारण कर सकते हैं।
0: माणिक्य को सूर्य ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इसे अनामिका यानी रिंग फिंगर में धारण किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में माणिक्य को राजसी रत्न माना जाता है। इसे धारण करने से नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। माणिक्य को राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता का कारक माना जाता है। माणिक्य को रविवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। माणिक्य को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रत्न भी माना जाता है। नीलम को शनि ग्रह से जुड़ा रत्न माना जाता है। इसे मध्यमा यानी मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है। नीलम काफी संवेदनशील रत्न माना जाता है। माना जाता है कि इसे धारण करने के बाद अचानक या तेजी से धन लाभ होता है। नीलम के प्रभाव से करियर का ग्राफ तेजी से चढ़ता है। धारण करने वाले जातक में कर्मठता बढ़ती है। नीलम को शनिवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि नीलम 7.5 के दुष्प्रभाव को भी कम करता है।
1: शनि को स्ट्रांग करने के लिए आपको नीलम धारण करना है, लेकिन प्लैटिनम में, व्हाइट गोल्ड में, आप इसको गोल्ड में धारण नहीं करेंगे। और शनि आपके जीवन में कहीं ना कहीं करियर को बूस्ट करता है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि आपकी काल पुरुष की कुंडली में शनि दशम भाव मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी, आपके जीवन के लाभ के मार्ग को प्रशस्त करता है। जो लोग बिजनेस में, बिजनेस बेसिकली लैंड का बिजनेस कर रहे हैं, लोहे का बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपकी कुंडली में शनि वीक है और वेल प्लेस्ड, वेल हाउसेस को, गुड हाउसेस को दिखाता है, आप इसको पहन सकते हैं।
0: हीरा को शुक्र ग्रह से जुड़ा रत्न माना जाता है, इसे भी मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। हीरा विलासिता, फैशन और ब्यूटी व्यवसाय में सफलता का कारक माना जाता है। कला और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये विशेष तौर पर लाभकारी माना जाता है। हीरा को शुक्रवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। हीरा धारण करने से सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन स्तर में बढ़ोतरी की भी मान्यता है। मोती को चंद्रमा से जुड़ा रत्न माना जाता है, इसे कनिष्ठिका उंगली में धारण किया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक मोती मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करने वाला रत्न है। मोती धारण करने वाले जातकों की मानसिक स्थिरता बढ़ने की वजह से लोक व्यवहार में सुधार होता है। मोती को सोमवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि मोती जनसंपर्क और लोकप्रियता में बढ़ोतरी का कारक है। मूंगा का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है, इसे अनामिका यानी रिंग फिंगर में धारण किया जाता है। मूंगा साहस और पराक्रम बढ़ाने वाला रत्न माना गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक मूंगा धारण करने से भूमि, संपत्ति और रियल एस्टेट के कारोबार में सफलता मिलती है। मूंगा को मंगलवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मूंगा वर्दी वाली नौकरी में उत्थान और खेल जगत में सफलता दिलाने वाला रत्न भी माना जाता है। गोमेद का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है, इसे मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक गोमेद धारण करने से अचानक धन लाभ का योग बनता है, विदेश व्यापार या शेयर बाजार में सफलता मिलती है। गोमेद को शनिवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि राहु की महादशा में गोमेद धारण करने से अनिष्ट दूर हो जाते हैं। लहसुनिया का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है, इसे मध्यमा यानी मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है। लहसुनिया आध्यात्मिक उथल पुथल के दौर में विशेष लाभकारी माना जाता है। इसे धारण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और दुर्घटना का दुर्योग नष्ट होता है। लहसुनिया को मंगलवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोगों के लिए लहसुनिया रत्न विशेष तौर पर लाभकारी सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रत्न का प्रभाव या असर दिखाने का समय एक दूसरे से अलग होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ रत्न धारण करने के 5 से 7 दिनों के भीतर असर दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ रत्नों को अपना असर दिखाने में 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। रत्न काम कर रहा है कि नहीं, इसकी पहचान धारण करने वाले जातक को कई संकेतों के जरिए होने लगती है। रत्न अगर सही काम कर रहा है तो सबसे पहले मन शांत होने लगता है, तनावों में मन विचलित नहीं होगा, नींद बेहतर होगी, बड़े से बड़ा फैसला लेने में दिक्कत नहीं महसूस होगी, मानसिक और शारीरिक स्तर पर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल के प्रयोग से पूरे घर का शनि कैसे बेहतर हो सकता है? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग में?
1: हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: अंतरिक्ष में इतिहास रचने की आज तीसरी वर्षगांठ, भारत ने 3 साल पहले आज के दिन ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील की। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक पूरे विधि विधान से श्रीनगर से पहलगाम रवाना। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा के अंतिम धार्मिक अनुष्ठान शुरू। आज पहलगाम में रात्रि विश्राम के बाद कल चंदनवाड़ी पहुंचेगी पवित्र छड़ी मुबारक। यूपी की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन गिफ्ट। 27 और 28 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान। एक सहयोगी के साथ बिना किराए के कर सकेंगी यात्रा। यूपी की काली नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने। सरकारी योजना बनी संजीवनी, एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन। प्रतियोगिता में 1 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 6 मेडल।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, रक्षाबंधन का सभी भाई बहनों को बेसब्री से इंतजार है और राखी सिर्फ कलाई पर बंधने वाला एक धागा नहीं बल्कि भाई बहन के प्यार, उनके भरोसे और जीवन भर के साथ निभाने के संकल्प का पर्व भी है। पूरे साल बहनों को जिस दिन का इंतजार रहता है वो घड़ी अब बस आने ही वाली है। बाजारों में राखियों की रौनक देखने को मिल रही है। भाई बहन एक दूसरे के लिए तोहफे चुन रहे हैं। हर घर में 28 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन की कहानी थोड़ी अलग है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल क्योंकि सावन पूर्णिमा के दिन जहां एक ओर भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा बंधेगा, वहीं आसमान में एक बड़ी खगोलीय घटना भी घटेगी। जी हाँ, दरअसल 28 अगस्त को ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि रक्षाबंधन पर क्या होगा ग्रहण का असर।

0: प्यार हर बहन को पूरे साल रहता है। रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा का बंधन, जिसमें बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा है, जिसे भाई बहन के प्रेम और पवित्र रिश्ते के प्रतीक के रूप में बेहद खास माना जाता है। ये दिन रिश्तों की मिठास और खुशियों की सौगात लेकर आता है, लेकिन इस बार का रक्षाबंधन आम सालों जैसा नहीं है। इस बार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो पूरे 5 घंटे 39 मिनट तक रहेगा।
1: रक्षाबंधन का पर्व एक खास खगोलीय संयोग के साथ आ रहा है। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन है और इसी तारीख को आंशिक चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में ये सवाल है कि ये ग्रहण रक्षाबंधन के पर्व को प्रभावित करेगा।
0: सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के लिए घर घर तैयारियां शुरू हो चुकी है। बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों से पट चुके हैं। बहने भाई की कलाई सजाने के लिए राखी चुनने में लगी हैं, भाई बहनों के लिए उपहार तैयार करने में लगी हैं। सबको इंतजार है 28 अगस्त का, जब शुभ घड़ी में बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधेगी। लेकिन इस बार रक्षाबंधन की पूर्णिमा कुछ अलग है। जिस दिन देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनेगा, उसी दिन आसमान में एक बड़ा खगोलीय संयोग भी बन रहा है।
1: ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा को मन भावनाओं और संवेदनाओं और पारिवारिक संबंधों से जोड़ा जाता है, और रक्षाबंधन भी भाई बहन के प्रेम और भावनात्मक रिश्ते का एक पर्व है, इसलिए दोनों का एक ही दिन होना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संयोग है।
0: 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी एक तरफ कलाई पर राखी का धागा तो दूसरी तरफ आसमान में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया। इसी संयोग ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में कोई बदलाव होगा? क्या ग्रहण के साए में राखी बांधना शुभ होगा? क्या ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में दिखाई देगा रक्षाबंधन वाला चंद्र ग्रहण? क्योंकि पंचांग में ग्रहण का समय सुबह से दोपहर तक बताया जा रहा है और इसी दौरान रक्षाबंधन की पूर्णिमा भी रहेगी, तो क्या सचमुच राखी के शुभ पर्व पर ग्रहण का साया पड़ने वाला है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो यहाँ सूतक काल मान्य होगा। अगर सूतक मान्य नहीं होगा तो राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा? अगर ग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण चरण उसी वक्त होगा जब भारत में बहनें राखी बांध रही होंगी, तो फिर आखिर दोनों घटनाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले समझना होगा कि इस साल रक्षाबंधन की पूर्णिमा कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 तक रहेगी। इसी वजह से उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। यानी 28 अगस्त की सुबह एक बेहद खास समय होगा, पूर्णिमा भी रहेगी, राखी का त्योहार भी होगा और उसी दौरान चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी चल रही होगी। 28 अगस्त को राखी बांधने का समय सुबह 5:58 से 9:48 तक बताया गया है। वहीं 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने की स्थिति बन रही है। ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू होकर दोपहर 12:30 खत्म होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू हो जाएगा तो बहनों के पास राखी बांधने के लिए कितना समय बचेगा? ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन जैसे पवित्र विधान को लेकर श्रद्धालुओं के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, जिनका समाधान जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: 28 अगस्त 2026
0: सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन और आसमान में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी। एक तरफ भाई की कलाई पर सजने वाला प्रेम और विश्वास का धागा, तो दूसरी तरफ चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया। यानी इस बार की पूर्णिमा से भाई बहन के पवित्र रिश्ते की वजह से खास नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाला ये खगोलीय संयोग भी इसे काफी ज्यादा खास बना रहा है। देखिए, इस बीच सवाल ये है कि क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, भारत में विजिबल होगा? क्या रक्षाबंधन के दिन ग्रहण का सूतक काल भी लगेगा? रक्षाबंधन पर ग्रहण की पूरी उलझन का जवाब जानना भी जरूरी है।

इस बार सावन पूर्णिमा पर 5 घंटे 39 मिनट का चंद्र ग्रहण। तो सवाल ये कि क्या इस बार रक्षाबंधन पर मंडराएगा ग्रहण का साया? रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट विश्वास, स्नेह और सुरक्षा के संकल्प का वो पावन पर्व जिसका इंतजार

0: 28 अगस्त 2026, एक तरफ सावन की पूर्णिमा, एक तरफ भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन, और इसी दिन आसमान में होने जा रही है साल की आखिरी चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना। यानी इस बार की पूर्णिमा सिर्फ राखी के त्योहार के लिए ही खास नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाले एक बड़े खगोलीय संयोग की वजह से भी चर्चा में है। 28 अगस्त को लगने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़ी सबसे अहम और राहत देने वाली बात ये है कि ये ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देख सकेंगे।
1: वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति के कारण होने वाली एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के प्रभावों का आंकलन ग्रहों की स्थिति, राशि और नक्षत्र आदि के आधार पर किया जाता है। दुनिया के जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहां लोग इसका प्रत्यक्ष खगोलीय अनुभव कर पाएंगे।
0: अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। यानी एक ही समय में दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग आसमान में ग्रहण देख रहे होंगे, जबकि भारत में उसी दौरान रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। सवाल ये कि जब भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो क्या इसका सूतक काल यहाँ मान्य होगा, क्योंकि आम तौर पर ग्रहण का नाम आते ही सूतक की चर्चा शुरू हो जाती है।
1: यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसे लेकर वही ग्रहण संबंधी धार्मिक प्रभाव नहीं माने जाएंगे जो किसी दिखाई देने वाले ग्रहण के समय माने जाते हैं। ऐसे में केवल ये संयोग को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन का मूल भाव प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का है, इसलिए इस दिन रिश्तों को मजबूत करना और सकारात्मक भाव रखने पर ध्यान देना चाहिए। रक्षाबंधन के सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं मानी जाएगी।
0: धार्मिक मान्यताओं और वैदिक ज्योतिष में ग्रहण के सूतक काल की गणना लोकल विजिबिलिटी यानी स्थानीय दृश्यता से तय होती है। शास्त्रों में कहा गया है यस्य दृश्यम तस्य फलम, मतलब ग्रहण जहां आंखों से दिखाई देता है सूतक काल, धार्मिक निषेध और उसके अशुभ प्रभाव केवल वही मान्य होते हैं। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिर के कपाट बंद करने, भोजन वर्जित रखने या शुभ कार्यों को रोकने जैसे नियम भी लागू नहीं होंगे।
1: इस बार सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर है कि अगर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है तो क्या रक्षाबंधन से पहले भारत में सूतक काल लग जाएगा। सामान्य भारतीय धार्मिक पंचांग परंपरा के अनुसार भारत में इस चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रक्षाबंधन के दिन केवल ग्रहण के नाम पर पूजा पाठ रोकने, मंदिर बंद करने या सामान्य धार्मिक गतिविधियों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
0: मतलब साफ है, भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा इसलिए रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया नहीं माना जाएगा। बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, राखी की थाली सज सकती है, रोली और अक्षत से भाई का तिलक हो सकता है, आरती उतारी जा सकती है, मिठाई खिलाई जा सकती है और भाई बहन एक दूसरे को उपहार देकर इस रिश्ते की मिठास को और बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राखी की तारीख तय है, 28 अगस्त को पड़ रही है, ग्रहण को लेकर तस्वीर भी साफ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल देखिए इस बीच ये है कि 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा है, यानी मुहूर्त जो लोग पूछते हैं अक्सर किस मुहूर्त पर राखी बांधनी चाहिए वो कौन सा है, जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। अगर सुबह राखी नहीं बांध पाए तो दिन में, शाम को और रात के समय कौन से शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है, आइए चलिए आपको ये भी बता देते हैं।

0: चंद्र ग्रहण को लेकर तस्वीर साफ होने के बाद अब बारी है उस सवाल की जिसका इंतजार हर भाई और बहन को है। आखिर 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा? इस बार रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण का संयोग जरूर बना है, लेकिन भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ऐसे में ग्रहण का सूतक मान्य नहीं माना जा रहा है।
1: ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए ग्रहण को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर संवेदनशील समय माना जाता है। ऐसे में अनावश्यक डर, तनाव, गुस्सा या किसी रिश्ते में गलतफहमी बढ़ने से बचना चाहिए। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रक्षाबंधन का ये पर्व नकारात्मक हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के कारण रक्षाबंधन प्रेम, सुरक्षा, विश्वास और पारिवारिक जुड़ाव का पर्व है, इसलिए इस दिन भाई बहन के बीच प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है।
0: रक्षाबंधन पर सिर्फ ग्रहण ही नहीं, भद्रा को लेकर भी विशेष सावधानी बरती जाती है। हिंदू पंचांग में भद्रा को ऐसे समय के रूप में देखा जाता है जिसमें मांगलिक और शुभ कार्य करने से बचने की परंपरा रही है। इस बार 27 अगस्त को भद्रा का प्रभाव सुबह 9:08 से रात 9:32 तक रहेगा, यानी 27 अगस्त की रात तक भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए किसी भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। यही वजह है कि बहनें 28 अगस्त को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मना सकती हैं। अब बात करते हैं राखी बांधने के सबसे शुभ समय की। 28 अगस्त की सुबह 6:23 से 9:48 तक का समय राखी बांधने के लिए सबसे शुभ बताया गया है।
2: सूर्योदय से लेकर 9:48 तक पूर्णमासी का समापन होने तक पूर्णतया सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त है। इस बीच में रक्षा सूत्र अपनी भाई को बांध सकती है बहन।
0: यानी सुबह का ये समय भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बेहद खास रहेगा। इस दौरान बहनें पूजा की थाली सजाकर भाई को तिलक लगा सकती हैं, आरती कर सकती हैं, मिठाई खिला सकती हैं और इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। अगर किसी वजह से सुबह के मुहूर्त में राखी नहीं बांधी जा सकी तो दिन में भी दूसरे शुभ मुहूर्त मौजूद हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:05 तक रहेगा। अगर सुबह और दोपहर में राखी बांधना संभव नहीं है तो शाम को भी शुभ समय उपलब्ध रहेगा। शाम के समय गोधूली मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:57 से 7:19 तक रहेगा। इस दिन चौघड़िया के अनुसार शुभ, लाभ और अमृत वेला में राखी बांधी जा सकती है। चौघड़िया के हिसाब से देख लें तो दिन में कई अच्छे समय मिल रहे हैं। लाभ चौघड़िया सुबह 7:57 से 9:31 तक रहेगा। इसके बाद अमृत चौघड़िया सुबह 9:31 से 11:05 तक रहेगा। दोपहर में शुभ चौघड़िया 12:40 से 2:14 तक रहेगा। शाम को चर चौघड़िया 5:22 से 6:57 तक रहेगा। रात में लाभ चौघड़िया 9:48 से 11:14 तक रहेगा।
3: सबसे जरूरी है कि अपने घर में जो आपके ठाकुर जी हैं, आप उनको पहले रक्षा सूत्र बांधें, भगवान से आज्ञा लेकर के तब अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें, क्योंकि हमारे इस घर में जो ईश्वर विराजमान है उसका प्रसाद स्वरूप लेकर के राखी हम बांधेंगे। तो जिस कामना से हम रक्षा बंधन करने जा रहे हैं, बहने रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, वह उनकी कामना फलीभूत होगी और उनका भाई आयुष्यमान होगा, दीर्घायुष्य होगा। यह मंगल कामना के साथ इस त्योहार को हम बनाए।
0: रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, ये पर्व भावनाओं, विश्वास और आत्मिक रक्षा के उस पवित्र धागे का नाम है जो काल और परिस्थितियों से परे है। शास्त्रों में विधान है कि जिन बहनों के सगे भाई नहीं है वो जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं।
2: सामान्यतया ये माना जाता है कि अगर अपना सगा भाई ना हो तो अपने चचेरे भाई आदि, ममेरे भाई आदि को बांधते, पर अगर किसी प्रकार के मन में कामना नहीं है तो गणेश जी को अपना भाई बनाने का विधान है। या भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधने पर वो भाई के समान आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये माना जाता है।
0: पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में रक्षाबंधन का विशेष महत्व बताया गया है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से सबसे भावुक कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया तो युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि समय आने पर वो आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे, और द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने इस वचन को निभाया।
2: तीसरी कथा एक और आती है जो कि हमने भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का अभय वर देने का था। इस प्रकार से हम मानते हैं ये केवल भाई बहनों का ही त्योहार नहीं, ये रक्षा सूत्र है। पुरोहित अपने जजमानों को बांधते हैं उनकी मंगल कामना के लिए, और वर्ष पर्यंत उनकी सुरक्षा, आयु, धन संपत्ति आदि की सुरक्षा होती रहे।
0: इसीलिए रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधा धागा नहीं है, ये विश्वास का बंधन है। एक बहन जब राखी बांधती है तो वो सिर्फ भाई की कलाई नहीं बांधती, वो अपने विश्वास को बांधती है। और भाई जब उस राखी को स्वीकार करता है तो वो सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि बहन की रक्षा, सम्मान और साथ निभाने का संकल्प स्वीकार करता है। रक्षाबंधन का त्योहार संदेश देता है कि रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं रिश्तों की भी होती है, साथ सिर्फ सुख में नहीं संकट में भी होता है, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त आने पर एक एक वचन का कर्ज चुका देते हैं। यही वजह है कि सदियों बाद भी कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता याद दिलाता है कि राखी का धागा छोटा जरूर होता है लेकिन उसमें बंधा विश्वास बहुत बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेएनटी के साथ। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या के श्री राम मंदिर में अद्भुत अलौकिक आयोजन हो रहा है। यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला अपने भव्य भवन में दिव्य झूलनोत्सव मना रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रामलला के दरबार में और दिखाते हैं झूलनोत्सव की शानदार छटा।

0: लगता है जैसे अयोध्या में त्रेता युग जीवंत हो उठा है। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला झूलनोत्सव मना रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। गर्भगृह में विशेष रूप से तैयार किए गए सोने चांदी के भव्य झूले पर रामलला विराजमान है। झूलनोत्सव के लिए प्रभु को विशेष रेशमी और जरी के वस्त्र पहनाए गए हैं। भजन कीर्तन के बीच यहाँ का माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से यहाँ पर सावन का ये उत्सव त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब पूरी अयोध्या आनंद में डूबी रहती थी। श्री राम मंदिर परिसर में रामलला का ऐतिहासिक झूलनोत्सव इस बार 15 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू हुआ। संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में भगवान श्री राम की उत्सव मूर्ति को भाइयों के साथ विधि विधान पूर्वक झूले पर विराजमान कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये उत्सव रामलला के प्रति भक्ति की भावना से प्रेरित है। सावन की उमस और गर्मी से राहत देने के लिए भक्त भगवान को फूलों और चंदन से सजे ठंडे झूले पर बिठाकर धीरे धीरे झूला झुलाते हैं, ताकि उन्हें सुख मिल सके। भक्त अपने आराध्य को छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं और हिंडोली पर बिठाकर पंखा चलते हुए उन्हें झूला झुलाते हैं। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से झूला उत्सव का खास वीडियो जारी किया गया है। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दरमियान यहाँ मंदिर परिसर में संत महात्माओं की मौजूदगी में लगातार धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जो अयोध्या की इस युगों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को और भव्यता प्रदान कर रहे हैं। खास बात यह है कि 12 दिनों के झूलनोत्सव के दौरान हर दिन शाम को रामलला को पालकी में बिठाकर कुबेर टीला ले जाया जाता है और वहां उनके दर्शन की विशेष व्यवस्था रहती है। केवल राम जन्मभूमि ही नहीं, बल्कि पूरी अयोध्या इस समय उत्सव के रंग में सराबोर है। सरयू के तट से लेकर कनक भवन तक और तमाम मंदिरों में भी हर तरफ इन दिनों उत्सव का माहौल है। सावन शुक्ल तृतीया से शुरू हुआ ये झूलनोत्सव पूर्णिमा तक इसी तरह पूरी भव्यता के साथ जारी रहेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी है। यात्रा के दौरान पवित्र छड़ी की चंदन वाड़ी शेषनाग और पंचतरणी में विश्राम होगा। रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी।

0: ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और वादियों में गूंजता महादेव का जयकार। साधु संतों की टोली आगे पड़ रही है तो श्रद्धालु बाबा के दरबार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हवा में भक्ति की महक है, आंखों में दर्शन की उम्मीद है और दिल में सिर्फ एक नाम, जय शिव शंकर। कश्मीर की धरती पर इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा है। श्रीनगर से लेकर पहलगाम और पुंछ तक शिव भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक अपने सफर पर निकल चुकी है। चारों तरफ प्रभु के जयकारे और भक्ति की अनोखी चमक दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर की वादियां इन दिनों सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि शिव भक्ति परंपरा और श्रद्धा के संगम के लिए भी खास बन गई है। श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद छड़ी मुबारक को पहलगाम के लिए रवाना किया गया। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाग और 26-27 अगस्त को पंचतरणी में पड़ाव होगा। इसके बाद 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा।
1: जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और 28 तारीख प्रातःकाल जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, तो वहां पर छड़ी मुबारक को वहां स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा।
0: अमरनाथ गुफा में विधि विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बीच छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद छड़ी मुबारक पंचतरणी लौटेगी और 29 अगस्त को वापसी का सफर शुरू होगा। शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए 30 अगस्त को पहलगाम पहुंचने के बाद पूजा और विसर्जन के साथ इस धार्मिक परंपरा का समापन होगा।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: कि नाल के प्रयोग से शनि की अशुभता दूर हो जाती है, घोड़े की नाल आखिर शनि की समस्या कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल के प्रयोग से पूरे घर का शनि कैसे बेहतर हो सकता है? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: अंतरिक्ष में इतिहास रचने की आज तीसरी वर्षगांठ। भारत ने 3 साल पहले आज के दिन ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील की। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक पूरे विधि विधान से श्रीनगर से पहलगाम रवाना। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा के अंतिम धार्मिक अनुष्ठान शुरू। आज पहलगाम में रात्रि विश्राम के बाद कल चंदनवाड़ी पहुंचेगी पवित्र छड़ी मुबारक। यूपी की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन गिफ्ट। 27 और 28 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान। एक सहयोगी के साथ बिना किराए के कर सकेंगी यात्रा। यूपी की काली नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने। सरकारी योजना बनी संजीवनी, एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन। प्रतियोगिता में एक गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 6 मेडल।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का दमदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं उसकी एक फिनोमिनल मूवी 26 अगस्त को दुनिया भर के सिल्वर स्क्रीन्स पर दस्तक देने के लिए तैयार है। एक ऐसी मूवी जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े बजट वाली फिल्म माना जा रहा है। उसी फिल्म के लीड एक्टर की जिंदगी की दास्तान लेकर हम हाजिर हुए हैं। एक ऐसा हीरो शुरुआती दिनों में जिसके पास एक्टिंग का कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे,

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वंडर बॉय रॉकिंग यश हैं। जी हाँ, यही यश, वो यश जिसकी केजीएफ ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। 26 अगस्त को यश की एक और दमदार फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। एडवांस बुकिंग का विंडो ओपन होने के बाद टॉक्सिक को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म केजीएफ की कामयाबी को भी पीछे छोड़ने जा रही है। ये वही यश हैं जिनके पास कभी एक्टिंग कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे लेकिन आज वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे हीरो में शुमार हो चुके हैं।

0: यश का भी साफ मानना है कि कुछ भी नहीं है नामुमकिन अगर ठान लिया जाए।
1: So what I believe is, when you want to do something in life, nothing should stop you. Most of us listen to people who say bad things about us. What you can't do, what is wrong. I think I'm somebody who doesn't listen to anybody. If somebody is telling me that you can't do this, I'll only see their lack of imagination or their stupidity. Because if I can see it clearly, there's nothing in life, if you're able to put in effort and time and required energy or actions towards something, there's nothing in life which you cannot achieve, is what I believe.
0: यश के इसी अदम्य इच्छा शक्ति को देखकर निर्माता निर्देशक इन पर कोई भी दांव खेलने को तैयार हो जाते हैं। यश की इसी साल एक और फिनोमिनल बजट वाली मूवी रिलीज होने वाली है, रामायण। दो पार्ट में बनने वाली रामायण का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नजरिए से देखेंगे तो ये बजट फैंटेसी लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा हैं, जबकि टॉक्सी की तरह यश इस फिल्म के भी को प्रोड्यूसर हैं। रामायण में यश रावण का किरदार निभा रहे हैं।
2: प्रतिशोध लिया जाएगा सुपर्ण का। राम की
0: वो चाहते तो राम की भूमिका में भी आ सकते थे, लेकिन यश का साफ कहना है कि उन्होंने राम की बजाय रावण की भूमिका इसलिए चुनी क्योंकि जब तक खलनायक का किरदार दमदार नहीं होगा, नायक का नायकत्व तो निखर कर सामने नहीं आ पाएगा। रामायण का फलक कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत तैयार कर रहे हैं। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड के एक्शन डायरेक्टर गॉय नॉरिस फिल्म के युद्ध के दृश्यों को डिजाइन कर रहे हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वार फिल्म टेरी नोटरी फिल्म में परफॉर्मेंस और मोशन कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। द मैट्रिक्स फिल्म डैन ग्लास के पास फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की कमान है। रामायण की तरह टॉक्सी को भी ग्लोबल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको बता दें कि हॉलीवुड की जानी मानी फिल्म जॉन विक और फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्शन डायरेक्टर जे.जे. पेरी ने टॉक्सी के लिए भारत में 45 दिनों तक रहकर बेहद खास एक्शन शेड्यूल शूट किया है। इतना ही नहीं, टॉक्सी को दुनिया भर के 12,000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज करने की तैयारी है और इसके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हॉलीवुड के दिग्गज स्टूडियो 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ पार्टनरशिप की गई है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर ही टॉक्सी को कन्नड़ के साथ अंग्रेजी भाषा में भी शूट किया गया है। टॉक्सिक और रामायण से पहले यश की साल 2018 में आई केजीएफ चैप्टर 1 और साल 2012 में आई केजीएफ चैप्टर 2 ने हिंदुस्तान के साथ ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। केजीएफ में यश द्वारा निभाया गया रॉकी भाई का करिश्माई और विद्रोही किरदार दुनिया भर के सिने प्रेमियों के बीच एक आइकॉनिक हीरो के रूप में सामने आया। साफ है कि कर्नाटक के हासन जिले के गुमनाम गांव में जन्मे बच्चे ने बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट और बिना किसी गॉडफादर के अपनी इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन के दम पर न सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कद्दा और पहचान बनाई, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर भी पूरी ठसक के साथ मजबूत पहचान दिलाई।
3: यश के एक्टर बनने की दास्तान अत्यंत मर्म स्पर्शी है। इनका जन्म कर्नाटक के हासन जिले के एक साधारण से गांव में हुआ था। यश के पिता बस ड्राइवर थे, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि गृहस्थी मुश्किल से ही चलती होगी। लेकिन उसी साधारण परिवार में जन्मे यश के मन में बचपन से ही ये हसरत कुलाचे मारने लगी थी कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना है। शुरुआती दिनों में यश अपनी हसरत जब दोस्तों के बीच बताते थे तो दोस्त इन पर चुटकी लेते थे, लेकिन साथियों की चुटकियों से विचलित हुए बगैर वो अपने मिशन में काफी कम उम्र से ही जुट गए थे। यश के जीवन की हकीकत भी किसी परी कथा से कम थ्रिलिंग नहीं है।
0: इमेजिनेशन, एनालाइजेशन और एग्जीक्यूशन, अंग्रेजी के इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द ही सफलता और असफलता का चक्र घूमता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इमेजिनेशन ना करता हो। हसीन ख्वाब देखना इंसान की बुनियादी फितरत है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमेजिनेशन को एनालाइज करते हैं। एग्जीक्यूशन के लेवल तक तो कोई विरला ही पहुंचता है, लेकिन जो पहुंच जाता है वो ही इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराता है। साउथ के सुपरस्टार यश उन्हीं विरले लोगों में शुमार हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वंडर बॉय और रॉकिंग स्टार के नाम से पहचान बना चुके यश के शुरुआती जीवन की सच्चाई से जब आप रूबरू होंगे तो जेहन में सवाल उठेगा कि इतनी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला एक शख्स इतना रॉकिंग स्टार कैसे बन गया। कर्नाटक के हासन जिले के छोटे से गांव भुवन हल्ली में 8 जनवरी 1986 को जन्मे यश ने जब से होश संभाला तभी से दिल में रुपहले पर्दे पर स्टार बनकर चमकने की हसरत पलने लगी। घर वाले यश की इस हसरत को कम उम्र की नादानी मानकर बस इतना चाहते थे कि पढ़ लिख कर उनका बेटा एक सरकारी नौकरी पकड़ ले। पर पेरेंट्स को क्या पता था कि यश की एक्टर बनने की ख्वाहिश बाल सुलभ नादानी नहीं बल्कि वास्तविक जुनून है।
1: माई फादर इज फ्रॉम मैसूर, सो आई ग्रो अप इन मैसूर, मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड वॉज इन मैसूर। माई फादर वॉज अ BMTC बस ड्राइवर एंड माई मदर वॉज अ हाउस वाइफ। सो जस्ट लाइक एनी अदर मिडिल क्लास दिस थिंग वी वेर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ एंड देन आई वॉन्ट बिकम एन एक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड बीन inclined towards this what do you call it? Extra attention we get as an actor, no? For that maybe all the CT Marna, all this I used to like. I used to participate in lot of fancy dress, mono acting and all of that, and I used to dance, so that used to give me a lot of happiness. So that's how it started and I got into it's a long story.
0: हासन जिले के गुमनाम गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मे बच्चे के इंटरनेशनल स्टार बनने की दास्तान वाकई बहुत लंबी है। नवीन कुमार गौड़ा से रॉकिंग यश बनने की कहानी दिल को छू लेने वाली है। हीरो बनने की हसरत सजोए यश बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के स्वयं की प्रेरणा से स्कूल के नाटकों और डांस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे, और उनके परफॉर्मेंस पर जब साथी बच्चे तालियां बजाते तो उन्हें उसी उम्र में रॉक स्टार वाली फीलिंग होने लगती। उधर स्कूल के साथी यहां तक कि टीचर्स भी यश को हीरो कहकर संबोधित करने लगे। दूसरी ओर यश को बचपन में कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन जैसा जरूर है।
1: I never realized how difficult it is or this. It's just that I believed it at a very young age because all my teachers, they started calling me, Kya hero? How are you? Matlab, jab baat karte the na, even then they used to be like hero bulate the. Because I'd done some small mono acting this thing where I told that, you know, I'll catch Veerappan and all of that when I was young. So they used to tease me with that thing. If Veerappan's any news used to come out, they used to question me, saying, "Hey, you used to kidhar hai, pakda nahi abhi tak." So they used to make fun of those things. And I believe that one day, jaake main actor ban jaunga. I didn't know how difficult it is or how much dedication or lot of things go into becoming an actor or anybody who wants to achieve something. I had no clue about that. But I just wanted to be an actor.
0: रुपहले पर्दे का स्टार बनने की धुन के साथ ही यश ने स्कूलिंग पूरी कर ली। लेकिन प्री यूनिवर्सिटी करने के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आई तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल के स्टेज पर परफॉर्म करने और प्रोफेशनल एक्टिंग में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे में उन्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए एक्टिंग का कोर्स करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन घर वालों के पास इतने पैसे थे कहां कि यश को किसी एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिलवा सकें। पर यश के पास तो दूसरा विकल्प था ही नहीं, लिहाजा एक दिन घर वालों से कह दिया कि वो बेंगलुरु जाएंगे और वहीं एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमाएंगे। यश के पिता इसके लिए कतई राजी नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद देखकर आखिरकार मान गए, पर जाने से पहले एक शर्त रख दी कि अगर वापस लौटने की नौबत आई तो हीरो बनने की हसरत की तिलांजलि दे देनी होगी। यश ने पिता की शर्त मान ली और महज 300 रुपए लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए।
4: I just went and I joined theater and I did a lot of backstage work. Eventually, while doing backstage work, I used to practice for other roles also, where some actor is late, then I used to give that dialogue cue बोलते हैं उसको। Like that, I used to rehearse and then I was an emergency actor. If somebody is ill or if some actor is not I used to just go and do that. That's how it started. And then I started getting big roles.
0: थिएटर में काम मिलने के बाद तो जैसे यश के अरमानों को पंख लग गए। काम इतनी मेहनत से किया कि उनकी एक्टिंग के चर्चे होने लगे। साल 2004 में यश की किस्मत ने बड़ी करवट ली और उन्हें कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल में विजय सिंह का किरदार मिल गया। नंदा गोकुल में विजय सिंह के किरदार को यश ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर इतना जीवंत कर दिया कि दूसरे सीरियल्स के लिए भी ऑफर आने लगे। 3 साल में ही यश छोटे पर्दे के इतने बड़े एक्टर बन गए कि उसकी गूंज फिल्म इंडस्ट्रीज तक सुनाई देने लगी। फिर आया साल 2007 जब यश को बड़े पर्दे पर भी एंट्री मिल गई। इसी साल उन्होंने कन्नड़ फिल्म जम्बडा हुदगी में बड़े पर्दे पर बतौर सेकेंड लीड डेब्यू किया। अगले ही साल यानी 2008 में कन्नड़ फिल्म मोगीना मानासु में यश को लीड रोल निभाने का मौका भी मिल गया। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। बतौर लीड हीरो यश की पहली ही फिल्म मोगीना मानासु सुपरहिट हो गई। रोमांटिक ड्रामा मोगीना मानासु के लिए यश को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। मोगीना मानासु के बाद यश ने राजधानी, गजकेसरी और मास्टरपीस जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी बेहतरीन अदाकारी के दम पर ज्यादातर फिल्में हिट होती चली गईं। हालांकि जिंदगी में खूबसूरत और शानदार मोड़ तब आया जब साल 2018 में KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई। KGF चैप्टर 1 में उन्होंने रॉकी का किरदार निभाया जो दर्शकों के दिलों में ऐसे उतर गया कि बॉक्स ऑफिस पर बवंडर आ गया। साल 2022 में KGF का सीक्वल KGF चैप्टर 2 आया जिसने पहले चैप्टर से भी ज्यादा तहलका मचा दिया। KGF चैप्टर 1 और 2 वर्ल्ड वाइड करीब 1500 करोड़ का कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाले फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। अपने 19 साल के फिल्मी सफर में यश एक दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दे चुके हैं। टॉक्सिक और रामायण जैसी मेगा बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या करिश्मा कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों फिल्मों का रिलीज से पहले जैसा बच क्रिएट हो चुका है इसकी पूरी उम्मीद है कि KGF वाला करिश्मा एक बार फिर दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि यश बचपन से ही अपने एक्टिंग करियर को लेकर जिस तरह से कमिटेड थे वैसे ही अपने शरीके हयात राधिका पंडित को लेकर भी हैं। दोनों की पहली मुलाकात कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल की शूटिंग के दौरान 2007 में हुई थी और पहली मुलाकात में ही आंखें चार हो गईं। उसके बाद यश ने किसी दूसरे विकल्प पर कभी विचार ही नहीं किया। दोनों ने साल 2016 में शादी कर ली। आज यश और राधिका की जोड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सर्वाधिक कमिटेड कपल में शुमार की जाती है।
3: तो बंदे में है दम में आज आपने अभिनेता यश के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: आगे बढ़ते हैं, चाइना का रुख कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं चीन में रोशनी के उत्सव की शानदार तस्वीरें। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग के फुलिंग जिले में पहला फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल मनाया गया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, इस दौरान यहां पर जगह जगह 68 ऐसी आकृतियां लगाई गई जिनसे पूरा इलाका जगमग हो उठा। खासतौर से सीढ़ीदार फूलों के खेतों, झील के किनारे और जंगल के रास्तों पर रोशन इन आकृतियों से बेहद शानदार और खूबसूरत नजारा देखने को मिला। ये फेस्टिवल इलाके की खास पहचान और इसके हजारों साल पुराने इतिहास को इस तरह की सजावट के जरिए पेश करता है कि जो भी इसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। इसके बारे में देखिए, खास बात यह भी है कि इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जी हाँ, बल्कि 100 से ज्यादा कारीगरों ने इन्हें पूरी तरीके से हाथ से बनाया है, यानी हैंडमेड है। इन आकृतियों को बनाने में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सिचुआन की अनोखी सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। इस लाइट डिस्प्ले में पत्थर की मछली, अलग अलग दौर के विद्वानों के शिलालेख और पानी से जुड़ी नक्काशी के पैटर्न्स को भी दिखाया गया है।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए, मेरे यानी
6: की नाल के प्रयोग से शनि की अशुभता दूर हो जाती है। घोड़े की नाल आखिर शनि की समस्या कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: अंतरिक्ष में इतिहास रचने की आज तीसरी वर्षगांठ, भारत ने 3 साल पहले आज के दिन ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील की। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक पूरे विधि विधान से श्रीनगर से पहलगाम रवाना, इसी के साथ अमरनाथ यात्रा के अंतिम धार्मिक अनुष्ठान शुरू। आज पहलगाम में रात्रि विश्राम के बाद कल चंदनवाड़ी पहुंचेगी पवित्र छड़ी मुबारक। यूपी की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन गिफ्ट, 27 और 28 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान, एक सहयोगी के साथ बिना किराए के कर सकेंगी यात्रा। यूपी की काली नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने, सरकारी योजना बनी संजीवनी, एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन, प्रतियोगिता में 1 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 6 मेडल। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या के श्री राम मंदिर में अद्भुत अलौकिक आयोजन हो रहा है। यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला अपने भव्य भवन में दिव्य झूलनोत्सव मना रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रामलला के दरबार में और दिखाते हैं झूलनोत्सव की शानदार छटा।

लगता है जैसे अयोध्या में त्रेता युग जीवंत हो उठा है। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला झूलनोत्सव मना रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। गर्भगृह में विशेष रूप से तैयार किए गए सोने चांदी के भव्य झूले पर रामलला विराजमान है। झूलनोत्सव के लिए प्रभु को विशेष रेशमी और जरी के वस्त्र पहनाए गए हैं। भजन कीर्तन के बीच यहाँ का माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से यहाँ पर सावन का ये उत्सव त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब पूरी अयोध्या आनंद में डूबी रहती थी। श्री राम मंदिर परिसर में रामलला का ऐतिहासिक झूलनोत्सव इस बार 15 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू हुआ। संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में भगवान श्री राम की उत्सव मूर्ति को भाइयों के साथ विधि विधान पूर्वक झूले पर विराजमान कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये उत्सव रामलला के प्रति भक्ति की भावना से प्रेरित है। सावन की उमस और गर्मी से राहत देने के लिए भक्त भगवान को फूलों और चंदन से सजे ठंडे झूले पर बिठाकर धीरे धीरे झूला झुलाते हैं, ताकि उन्हें सुख मिल सके। आराध्य को छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं और हिंडोली पर बिठाकर पंखा चलते हुए उन्हें झूला झुला

0: हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से झूला उत्सव का खास वीडियो जारी किया गया है। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दरमियान यहाँ मंदिर परिसर में संत महात्माओं की मौजूदगी में लगातार धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जो अयोध्या की इस युगों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को और भव्यता प्रदान कर रहे हैं। खास बात यह है कि 12 दिनों के झूलनोत्सव के दौरान हर दिन शाम को रामलला को पालकी में बिठाकर कुबेर टीला ले जाया जाता है और वहां उनके दर्शन की विशेष व्यवस्था रहती है। केवल राम जन्मभूमि ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या इस समय उत्सव के रंग में सराबोर है। सरयू के तट से लेकर कनक भवन तक और तमाम मंदिरों में भी हर तरफ इन दिनों उत्सव का माहौल है। सावन शुक्ल तृतीया से शुरू हुआ ये झूलनोत्सव पूर्णिमा तक इसी तरह पूरी भव्यता के साथ जारी रहेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी है। यात्रा के दौरान पवित्र छड़ी की चंदन वाड़ी शेषनाग और पंचतरणी में विश्राम होगा। रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी।

0: ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और वादियों में गूंजता महादेव का जयकार। साधु संतों की टोली आगे पढ़ रही है तो श्रद्धालु बाबा के दरबार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हवा में भक्ति की महक है, आंखों में दर्शन की उम्मीद है और दिल में सिर्फ एक नाम, जय शिव शंकर। कश्मीर की धरती पर इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा है। श्रीनगर से लेकर पहलगाम और पुंछ तक शिव भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक अपने सफर पर निकल चुकी है। चारों तरफ प्रभु के जयकारे और भक्ति की अनोखी चमक दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर की वादियां इन दिनों सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि शिव भक्ति परंपरा और श्रद्धा के संगम के लिए भी खास बन गई है। श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद छड़ी मुबारक को पहलगाम के लिए रवाना किया गया। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाग और 26-27 अगस्त को पंचतरणी में पड़ाव होगा। इसके बाद 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा।
1: जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और 28 तारीख प्रातःकाल जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, तो वहां पर छड़ी मुबारक को वहां स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा।
0: अमरनाथ गुफा में विधि विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बीच छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद छड़ी मुबारक पंचतरणी लौटेगी और 29 अगस्त को वापसी का सफर शुरू होगा। शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए 30 अगस्त को पहलगाम पहुंचने के बाद पूजा और विसर्जन के साथ इस धार्मिक परंपरा का समापन होगा।
2: तो चलिए बात जन्माष्टमी की कर लेते हैं। तो जन्माष्टमी का त्योहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर दिल्ली में होगा मटकी फोड़ लीग का आयोजन। मटकी फोड़ लीग में 26 गोविंदा टीमों के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। एमपीएल का ये दूसरा साल है और एक कार्यक्रम में आधिकारिक एंथम सॉन्ग और मस्कट मटकू लॉन्च किया गया।

0: एक बार फिर आएंगे कान्हा। मटकी फोड़ेंगे कृष्ण मुरारी गिरधारी, नंद गोपाल मुरलीधर कुंज बिहारी, गोवर्धन धारी गोविंदा बाके बिहारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर खूब जमेगा रंग। जब दिल्ली के कोने कोने से आई गोविंदाओं की टोलियां ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाएगी, दही हांडी की मटकी फोड़ने के लिए एक बार फिर अपना दमखम दिखाने के लिए जुटेंगी, जोश और उत्साह चरम पर होगा। जब राजधानी दिल्ली में मटकी फोड़ ली यानी एमपीएस सीजन 2 का भव्य आयोजन होगा। माखन की मटकी फोड़ने की सदियों पुरानी परंपरा शानदार खेल प्रतियोगिता के रूप में जीवंत होगी। राजधानी में पिछले 23 वर्षों से आयोजित हो रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की परंपरा को इस वर्ष एमपीएल के साथ और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी की गई है। इसी सिलसिले में अब एमपीएल का अपना एंथम और मैस्कॉट मटकू भी लॉन्च कर दिया गया है।
1: हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ एक टीम के रूप में खेलें। तो हमारा ये मटकी फोड़ जो खेल है, गोविंदाला ये मटकी फोड़ जो खेल है, ये ऐसा खेल है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ टीम के रूप में पैरामिड बनाते हैं और मटकियों को फोड़ने का जो प्रभु लीला का प्रदर्शन है वो करते हैं। तो हम इस बार इसको बड़े स्केल पे बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं।
0: दिल्ली में इस बार मटकी फोड़ लीग यानी एमपीएस सीजन 2 का आयोजन 3 और 4 सितंबर को किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एमपीएल में शामिल गोविंदा टीमों के बीच मुकाबला होगा। इसमें इस बार 26 गोविंदा टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से 10 टीमें लड़कियों की हैं। टीमों ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है।
1: 2 महीने से लगभग ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस लीला को अब एक स्पोर्ट्स के रूप में देखना शुरू कर दिया गया है। लगभग दिल्ली में आप खुश होंगे ये जानकर के कि इस लीला के माध्यम से जो ये स्पोर्ट्स बन गया है, अब लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे आज हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ गए हैं। जो स्पोर्ट्स से नहीं थे वो एथलीट्स बनने जा रहे हैं।
0: आपको बता दें कि दिल्ली से पहले मुंबई में प्रो गोविंदा लीग सीजन 4 होने जा रहा है। 25 से 27 अगस्त 2026 तक वर्ली के स्टेडियम में प्रो गोविंदा लीग में मुंबई सहित महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से आए गोविंदाओं की टीमें मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करेंगी। इस दौरान विजेता टीमों को लाखों रुपए के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पारंपरिक दही हांडी उत्सव को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। इसी के बाद से इसे प्रोफेशनल खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रो गोविंदा लीग की शुरुआत की गई, और अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने की कोशिश हो रही है, ताकि किशोरों और युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ा जा सके और साथ ही साथ इनमें टीम भावना, अनुशासन, साहस, नेतृत्व, शारीरिक क्षमता और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत किया जा सके। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टुडे।
2: तो देखिए, मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर चल रही तैयारियों ने तेजी पकड़ ली है। मुंबई के गणेश गली का पंडाल काफी चर्चित पंडालों में से एक है। यहाँ पर मुंबई के राजा विराजते हैं। यहाँ पर सजावट, लाइटिंग और भव्य मुख्य द्वार निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार इनका 99वां साल है। इस बार पंडाल की सजावट की थीम महाराष्ट्र के संतों पर आधारित है।
0: सजावट पूरी होने को है, रोशनियां जगमगाने लगी हैं, भव्य द्वार आकार ले चुका है और अब बस इंतजार है उस पल का जब मुंबई के राजा का दरबार भक्तों के लिए सच कर तैयार होगा। मुंबई की गलियों में बप्पा के स्वागत की आहट सुनाई देने लगी है। हर तरफ तैयारियों की गति तेज हो गई है। कारीगर दिन रात जुटे हैं। कहीं पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनियों से परिसर को सजाया जा रहा है।
3: मुंबई, महाराष्ट्र, ये पूरा देश अब गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गया है। 14 सितंबर से हर किसी के घर में, हर कोई नुक्कड़ पर, हर किसी इलाके में, हर सड़क पर बप्पा को विराजमान किया जाएगा। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के गणेश गली, जो मुंबई का राजा के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसकर सेट पर। देखिए, जब यहाँ पर श्रद्धालु और जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बड़ी ही सुंदर सुंदर तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जैसे कि पिछली बार यहाँ पर रामेश्वर बनाया गया था, रामेश्वर धाम जो है वो तब्दील किया गया था, और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पीछे की मेहनत देखें, एक डेढ़ महीने पहले से ही शुरू हो जाती है आलीशान बहुत बड़ा सेट, जो धीरे धीरे बहुत बड़े स्वरूप में बदलने वाला है। इस बार गणेश गली यानी कि मुंबई का राजा किस अवतार में होंगे और क्या कुछ खास सोचा गया है, क्या डेकोरेशन होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं।
4: मुंबई के गणेश गली में इस उत्सव की भव्यता देखते ही बन रही है। यहाँ मशहूर मुंबई के राजा एक बार फिर अपने भक्तों के बीच विराजने वाले हैं। इस बार गणेश गली मंडल अपने 99 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, लिहाजा उत्साह भी जबरदस्त है और तैयारियां भी बेहद खास।
5: मंडल का ये 99 ईयर है और इस बार हम संतों की परंपरा या दिखाने की हमारी कोशिश है, जो कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो समृद्ध करने में उनका बहुत ही बड़ा सहयोग ये महाराष्ट्र में है। तो उनकी परंपरा क्या है ये इस पीढ़ी को पता चले, इसीलिए ये संतों की परंपरा हम यहाँ दिखाए।
4: महागणपति दरबार की सजावट लगभग पूरी हो चुकी है, लाइटिंग का काम अंतिम चरण में है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार को भी अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। लेकिन इस बार सबसे खास आकर्षण सिर्फ भव्य सजावट नहीं, बल्कि मुंबई के राजा के दरबार की थीम है, जो महाराष्ट्र के संतों पर आधारित रखी है। पंडाल में श्रद्धालुओं को महाराष्ट्र की संत परंपरा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी, उनके संदेश को बताया जाएगा जिससे उन्होंने इंसानियत की राह दिखाई। इन पहलुओं को सजावट के जरिए सामने लाने की तैयारी है।
5: तो इस बार जो हम दिखा रहे हैं संतों की परंपरा, वो लोगों में एक ज्यादा से ज्यादा उनकी जानकारी लोगों में कैसी बढ़नी चाहिए, जो ये जो हमारी जेन जी है तो उनको भी संतों की परंपरा कैसी है, क्या क्या संतों ने महाराष्ट्र के लिए किया है, क्या क्या संतों की मदद से महाराष्ट्र ये समृद्ध हो चुका है, उनकी भाषा समृद्ध हो चुकी है, वो लोगों तक पहुंचाने की ये कोशिश है। और मतलब हमें तो ये ऐसा लग रहा है कि हम इसमें खरे उतरेंगे।
4: गणेश गली मंडल की एक और खास परंपरा है, यहाँ गणपति की प्रतिमा को बाहर से लाकर स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि मूर्ति को मौके पर ही तैयार किया जाता है। जैसे जैसे उत्सव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे कारीगरों की मेहनत भी साफ नजर आने लगी है। सजावट में बारीकी लाई जा रही है, रोशनी को परखा जा रहा है और पंडाल के हर हिस्से को आकर्षक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मुंबई के राजा का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुंबई के राजा का आगमन सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद की वो खुशी है जिसका इंतजार वो साल भर करते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, गुड न्यूज आई है महाराष्ट्र के जालना से, जहां बेटियों के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई है। बात बेटियों की पढ़ाई की है, बात बेहतर भविष्य की है। यही वजह है कि जब बेटियों को स्कूल ले जाने वाली बस पत्रूर तहसील के वागाड़ी गांव पहुंची, तो गांव वालों ने न सिर्फ ढोल ताशों से बस का जोरदार स्वागत किया, बल्कि बस पर फूल माला भी बरसाए। बरसों पुरानी मांग पूरे होने पर गांव वालों की खुशी देखते ही बन रही थी। आजादी के बाद पहली बार है जब गांव में बेटियों के लिए नियमित स्कूल बस की शुरुआत की गई है। स्कूल बस शुरू होने से गांव की बेटियां आसानी से स्कूल आ जा सकेंगी, उनकी यात्रा भी सुरक्षित होगी और उनका समय भी बचेगा। नियमित बस सेवा शुरू होने से गांव वाले भी बेहद खुश हैं।
4: केरला में आज प्रसिद्ध 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किया गया। पुन्नमाड़ा झील में आयोजित इस दौड़ में लोगों ने पूरे उत्साह और रोमांच के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कई तरीके की नावों को शामिल किया गया, लेकिन सर्प नौकाओं ने लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। इस साल प्रतियोगिता में करीब 70 से 71 नौकाओं ने हिस्सा लिया, जिनमें 21 से 22 चुंडन नौकाएं शामिल हैं। छोटी नौकाओं के मुकाबले की शुरुआत की गई। तो इसी के साथ इसकी शुरुआत हुई और बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने नौका चालकों का खूब उत्साह बढ़ाया। बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड लाइव एक्शन फिल्म महावीर कर्ण का टीजर आज रिलीज हो गया है। फिल्म में महाभारत के महान योद्धा कर्ण की कहानी को भव्य अंदाज में दिखाया गया। महावीर कर्ण 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खास बात यह है कि फिल्म को हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। यानी देश भर के दर्शक इस फिल्म को अपनी पसंदीदा भाषा में देख सकेंगे और महान योद्धा कर्ण की कहानी को महसूस कर सकेंगे।
6: यह संसार हमारी संपत्ति भूल जाएगा, लेकिन हमारे खोए हुए साम्राज्य का हमेशा स्मरण करेगा। कर्ण के लिए उसका प्राण, कर्ण के प्राण देना, अपने कवच कुंडल उतार।
2: थाईलैंड में थल सेना के जवानों और थाई शाही सेना का मैत्री अभ्यास का 15वां संस्करण चल रहा है, जिसमें दोनों देश के जवान आतंकवाद से निपटने के तौर तरीकों को लेकर अभ्यास कर रहे हैं। देखिए, मैत्री अभ्यास 31 अगस्त तक चलने वाला है।
4: थाईलैंड में हिंद के जवानों के शौर्य का प्रदर्शन, मैत्री युद्धाभ्यास भारत थाईलैंड की दोस्ती का प्रमाण। थाईलैंड के सूरत थानी के रंगसित कैंप में इन दिनों भारतीय और थाईलैंड के जवानों के युद्ध कौशल की गवाही दे रहा है। 18 अगस्त से यहां पर भारत और थाईलैंड की सेनाओं ने सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास मैत्री की शुरुआत की थी। ये दोनों सेनाओं के युद्धाभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण है। ये युद्धाभ्यास दोनों मित्र राष्ट्रों की सैन्य क्षमताओं और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्धाभ्यास मैत्री 30 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ सैन्य क्षमताओं और युद्ध नीति को एक दूसरे से साझा करेंगी। भारतीय सेना और थाई शाही सेना की टुकड़ियों में 85-85 जवान शामिल हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी में मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स के जवान हैं, जबकि थाई सेना की टुकड़ी में 5वीं डिवीजन की 25वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की 3री बटालियन के जवान शामिल हैं। इस अभ्यास का मकसद जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और क्षमता को बढ़ाना है। ये अभ्यास जंगल और शहरी वातावरण में उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त अभियानों को अंजाम देने में दोनों देशों की क्षमताओं को बढ़ाएगा। दोनों देशों के जवान मुआय थाई की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसे आर्ट ऑफ 8 लिम्स भी कहा जाता है। वजह है कि इसमें 2 मुट्ठियों, 2 कोहनियों, 2 घुटनों और दोनों पैरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर भविष्य में कभी दोनों सेनाओं को मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा तो मैत्री युद्धाभ्यास की बदौलत दोनों सेनाएं बेहतर तालमेल के साथ मिशन को अंजाम दे सकेंगी। इस युद्धाभ्यास से भारत और थाईलैंड के सशस्त्र बलों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस सामरिक अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, भारत में तो आपने होली के रंग खूब देखे होंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं परदेश में होली जैसे उत्सव के रंग। देखिए, चीन के एक इलाके में रंगों से तो नहीं, लेकिन केवल पानी से अनोखी होली खेलने की परंपरा है। कैसे, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में।
7: रेनकोट पहने हुए इन लोगों के हाथों में बंदूक नहीं, पिचकारियां हैं और इन पिचकारियों से पानी की जोरदार फुवारे छोड़ी जा रही है। माहौल कुल मिलाकर वैसा ही है जैसा भारत में होली के उत्सव में होता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भला रेनकोट पहनकर कौन होली खेलता है। तो आपको बता दें कि यहाँ असल में होली नहीं खेली जा रही, लेकिन होली जैसा ही त्योहार मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें चीन के हेनान की है। यहाँ पर खेली जा रही इस अनोखी होली में रंगों का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन हुड़दंग की कमी नहीं है, क्योंकि ये होली सिर्फ पानी से खेली जा रही है। चीन के हेनान के बोटिंग ली और मियाओ इलाके में हर साल की तरह इस बार भी जल की फुवारों के साथ इस अनोखे उत्सव वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल का शानदार आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और जमकर मस्ती की।
8: 我来到保定以后，我也有点想到了我的家乡。我感觉就像那个泼水节一天开始，那个泼水以后，我变成了一个很好的事情，然后我感觉感动，还有很快乐，还有从我认识了很多朋友，还有这里的人也很幽默，所以。
7: मान्यता है कि पिचकारियों से निकली शीतल जल की ये फुवारें प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतीक है। हेनान में ली जनजातीय समूह के लोग पीढ़ियों से इस उत्सव को मनाते आ रहे हैं और अब विदेशी सैलानी भी इसमें बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। चार दिन के उत्सव में इस बार 8 देशों के सैलानियों के समूहों ने हिस्सा लिया। म्यूजिक और मनोरंजक माहौल के बीच लोगों ने इस उत्सव का खूब आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चाइना का रुख कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं चीन में रोशनी के उत्सव की शानदार तस्वीरें। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग के फुलिंग जिले में पहला फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल मनाया गया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, इस दौरान यहां पर जगह जगह 68 ऐसी आकृतियां लगाई गई जिनसे पूरा इलाका जगमग हो उठा। खासतौर से सीढ़ीदार फूलों के खेतों, झील के किनारे और जंगल के रास्तों पर रोशन इन आकृतियों से बेहद शानदार और खूबसूरत नजारा देखने को मिला। ये फेस्टिवल इलाके की खास पहचान और इसके हजारों साल पुराने इतिहास को इस तरह की सजावट के जरिए पेश करता है कि जो भी इसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। इसके बारे में देखिए, खास बात यह भी है कि इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जी हाँ, बल्कि 100 से ज्यादा कारीगरों ने इन्हें पूरी तरीके से हाथ से बनाया है, यानी हैंडमेड है। इन आकृतियों को बनाने में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सिचुआन की अनोखी सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। इस लाइट डिस्प्ले में पत्थर की मछली, अलग अलग दौर के विद्वानों के शिलालेख और पानी से जुड़े नक्काशी के पैटर्न को भी दिखाया गया है। तो देखिए, हांगकांग का आसमान मशहूर क्वीसी फेस्टिवल के मौके पर ड्रोन की रोशनी से जगमगा उठा। इस फेस्टिवल में 2000 ड्रोनों ने विक्टोरिया हार्बर के ऊपरी चीनी लोक कथा की खूबसूरत तस्वीरें पेश की। ड्रोन से आसमान में मैगपाई ब्रिज की आकृति भी बनाई गई। ये वही पुल है जो चीनी लोक कथा के न्यूलांग और वीवर गर्ल को साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा ड्रोन से प्यार में डूबे जोड़ों और खेलते हुए विशाल गुलाबों की आकृतियां भी इस दौरान ड्रोन के जरिए बनाई गई। आसमान में बदलती इन तस्वीरों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो देखता ही रह गया। क्वीसी फेस्टिवल चीनी कैलेंडर के 7वें महीने के 7वें दिन मनाया जाता है। लोग करीब 2000 साल पुरानी प्रेम कहानी को सुनना, देखना और समझना चाहते हैं। आसमान पर बनी रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन गई।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का दमदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं उसकी एक फिनोमिनल मूवी 26 अगस्त को दुनिया भर के सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने के लिए तैयार है। एक ऐसी मूवी जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े बजट वाली फिल्म माना जा रहा है। उसी फिल्म के लीड एक्टर की जिंदगी की दास्तान लेकर हम हाजिर हुए हैं। एक ऐसा हीरो शुरुआती दिनों में जिसके पास एक्टिंग का कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे,

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वंडर बॉय रॉकिंग यश हैं। जी हाँ, यही यश, वो यश जिसकी केजीएफ ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। 26 अगस्त को यश की एक और दमदार फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। एडवांस बुकिंग का विंडो ओपन होने के बाद टॉक्सिक को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म केजीएफ की कामयाबी को भी पीछे छोड़ने जा रही है। ये वही यश हैं जिनके पास कभी एक्टिंग कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे लेकिन आज वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे हीरो में शुमार हो चुके हैं।

0: यश का भी साफ मानना है कि कुछ भी नहीं है नामुमकिन अगर ठान लिया जाए।
1: So what I believe is, when you want to do something in life, nothing should stop you. Most of us listen to people who say bad things about us. What you can't do. What is wrong. I think I'm somebody who doesn't listen to anybody. If somebody is telling me that you can't do this, I'll only see their lack of imagination or their stupidity. Because if I can see it clearly, there's nothing in life, if you are able to put in effort and time and required energy or actions towards something, there's nothing in life which you cannot achieve, is what I believe.
0: यश के इसी अदम्य इच्छा शक्ति को देखकर निर्माता निर्देशक इन पर कोई भी दांव खेलने को तैयार हो जाते हैं। यश की इसी साल एक और फिनोमिनल बजट वाली मूवी रिलीज होने वाली है, रामायण। दो पार्ट में बनने वाली रामायण का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नजरिए से देखेंगे तो ये बजट फैंटेसी लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा हैं, जबकि टॉक्सी की तरह यश इस फिल्म के भी को प्रोड्यूसर हैं। रामायण में यश रावण का किरदार निभा रहे हैं।
2: प्रतिशोध लिया जाएगा सुपर्णा का। राम की
0: वो चाहते तो राम की भूमिका में भी आ सकते थे, लेकिन यश का साफ कहना है कि उन्होंने राम की बजाय रावण की भूमिका इसलिए चुनी क्योंकि जब तक खलनायक का किरदार दमदार नहीं होगा, नायक का नायकत्व निखर कर सामने नहीं आ पाएगा। रामायण का फलक कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत तैयार कर रहे हैं। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड के एक्शन डायरेक्टर गॉय नॉरिस फिल्म के युद्ध के दृश्यों को डिजाइन कर रहे हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वार फिल्म टेरी नोटरी फिल्म में परफॉर्मेंस और मोशन कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। द मैट्रिक्स फेम डैन ग्लास के पास फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की कमान है। रामायण की तरह टॉक्सी को भी ग्लोबल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको बता दें कि हॉलीवुड की जानी मानी फिल्म जॉन विक और फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्शन डायरेक्टर जे.जे. पेरी ने टॉक्सी के लिए भारत में 45 दिनों तक रहकर बेहद खास एक्शन शेड्यूल शूट किया है। इतना ही नहीं, टॉक्सी को दुनिया भर के 12,000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज करने की तैयारी है और इसके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हॉलीवुड के दिग्गज स्टूडियो 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ पार्टनरशिप की गई है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर ही टॉक्सी को कन्नड़ के साथ अंग्रेजी भाषा में भी शूट किया गया है। टॉक्सिक और रामायण से पहले यश की साल 2018 में आई KGF चैप्टर 1 और साल 2012 में आई KGF चैप्टर 2 ने हिंदुस्तान के साथ ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। KGF में यश द्वारा निभाया गया रॉकी भाई का करिश्माई और विद्रोही किरदार दुनिया भर के सिने प्रेमियों के बीच एक आइकॉनिक हीरो के रूप में सामने आया। साफ है कि कर्नाटक के हासन जिले के गुमनाम गांव में जन्मे बच्चे ने बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट और बिना किसी गॉडफादर के अपनी इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन के दम पर न सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कद्दावर और पहचान बनाई, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर भी पूरी ठसक के साथ मजबूत पहचान दिलाई।
3: यश के एक्टर बनने की दास्तान अत्यंत मर्म स्पर्शी है। इनका जन्म कर्नाटक के हासन जिले के एक साधारण से गांव में हुआ था। यश के पिता बस ड्राइवर थे, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि गृहस्थी मुश्किल से ही चलती होगी। लेकिन उसी साधारण परिवार में जन्मे यश के मन में बचपन से ही ये हसरत कुलाचे मारने लगी थी कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना है। शुरुआती दिनों में यश अपनी हसरत जब दोस्तों के बीच बताते थे तो दोस्त इन पर चुटकी लेते थे, लेकिन साथियों की चुटकियों से विचलित हुए बगैर वो अपने मिशन में काफी कम उम्र से ही जुट गए थे। यश के जीवन की हकीकत भी किसी परी कथा से कम थ्रिलिंग नहीं है।
0: इमेजिनेशन, एनालाइजेशन और एग्जीक्यूशन, अंग्रेजी के इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द ही सफलता और असफलता का चक्र घूमता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इमेजिनेशन ना करता हो। हसीन ख्वाब देखना इंसान की बुनियादी फितरत है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमेजिनेशन को एनालाइज करते हैं। एग्जीक्यूशन के लेवल तक तो कोई विरला ही पहुंचता है, लेकिन जो पहुंच जाता है वो ही इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराता है। साउथ के सुपरस्टार यश उन्हीं विरले लोगों में शुमार हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वंडर बॉय और रॉकिंग स्टार के नाम से पहचान बना चुके यश के शुरुआती जीवन की सच्चाई से जब आप रूबरू होंगे तो जेहन में सवाल उठेगा कि इतनी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला एक शख्स इतना रॉकिंग स्टार कैसे बन गया। कर्नाटक के हासन जिले के छोटे से गांव भुवन हल्ली में 8 जनवरी 1986 को जन्मे यश ने जब से होश संभाला तभी से दिल में रुपहले पर्दे पर स्टार बनकर चमकने की हसरत पलने लगी। घर वाले यश की इस हसरत को कम उम्र की नादानी मानकर बस इतना चाहते थे कि पढ़ लिख कर उनका बेटा एक सरकारी नौकरी पकड़ ले, पर पेरेंट्स को क्या पता था कि यश की एक्टर बनने की ख्वाहिश बाल सुलभ नादानी नहीं बल्कि वास्तविक जुनून है।
1: My father is from Mysore, so I grew up in Mysore. Most of my childhood was in Mysore. My father was a BMTC bus driver and my mother was a housewife. So just like any other middle class, this thing, we were leading a happy life, and then I want to become an actor. From childhood I've been inclined towards this extra attention we get as an actor, no? For that maybe all the CT Marna, all this I used to like. I used to participate in a lot of fancy dress, mono acting and all of that. And I used to dance. So that used to give me a lot of happiness. So that's how it started and I got into, it's a long story.
0: हासन जिले के गुमनाम गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मे बच्चे के इंटरनेशनल स्टार बनने की दास्तान वाकई बहुत लंबी है। नवीन कुमार गौड़ा से रॉकिंग यश बनने की कहानी दिल को छू लेने वाली है। हीरो बनने की हसरत सजोई यश बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के स्वयं की प्रेरणा से स्कूल के नाटकों और डांस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे, और उनके परफॉर्मेंस पर जब साथी बच्चे तालियां बजाते तो उन्हें उसी उम्र में रॉक स्टार वाली फीलिंग होने लगती। उधर स्कूल के साथी यहां तक कि टीचर्स भी यश को हीरो कहकर संबोधित करने लगे। दूसरी ओर यश को बचपन में कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन जैसा जरूर है।
1: I never realized how difficult it is or this. It's just that I believed it at a very young age because all my teachers, they started calling me, Kya hero? How are you? Matlab, jab baat karte the na, even then they used to be like hero bulate the. Because I'd done some small mono acting this thing where I told that, you know, I'll catch Veerappan and all of that when I was young. So they used to tease me with that thing. If Veerappan's any news used to come out, they used to question me, saying, "Hey, you used to kidhar hai? Pakda nahi abhi tak." So they used to make fun of those things. And I believed that one day, jaake main actor ban jaunga. I didn't know how difficult it is or how much dedication or lot of things go into becoming an actor or anybody who wants to achieve something. I had no clue about that, but I just wanted to be an actor.
0: रुपहले पर्दे का स्टार बनने की धुन के साथ ही यश ने स्कूलिंग पूरी कर ली। लेकिन प्री यूनिवर्सिटी करने के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आई तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल के स्टेज पर परफॉर्म करने और प्रोफेशनल एक्टिंग में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे में उन्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए एक्टिंग का कोर्स करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन घर वालों के पास इतने पैसे थे कहां कि यश को किसी एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिलवा सकें। पर यश के पास तो दूसरा विकल्प था ही नहीं, लिहाजा एक दिन घर वालों से कह दिया कि वो बेंगलुरु जाएंगे और वहीं एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमाएंगे। यश के पिता इसके लिए कतई राजी नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद देखकर आखिरकार मान गए, पर जाने से पहले एक शर्त रख दी कि अगर वापस लौटने की नौबत आई तो हीरो बनने की हसरत की तिलांजलि दे देनी होगी। यश ने पिता की शर्त मान ली और महज 300 रुपए लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए।
4: I just went and I joined theater and I did a lot of backstage work. Eventually, while doing backstage work, I used to practice for other roles also. Where some actor is late, then I used to give that dialogue cue बोलते हैं उसको। Like that, I used to rehearse and then I was an emergency actor. If somebody is ill or if some actor is not I used to just go and do that. That's how it started. And then I started getting big roles.
0: थिएटर में काम मिलने के बाद तो जैसे यश के अरमानों को पंख लग गए। काम इतनी मेहनत से किया कि उनकी एक्टिंग के चर्चे होने लगे। साल 2004 में यश की किस्मत ने बड़ी करवट ली और उन्हें कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल में विजय सिंह का किरदार मिल गया। नंदा गोकुल में विजय सिंह के किरदार को यश ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर इतना जीवंत कर दिया कि दूसरे सीरियल्स के लिए भी ऑफर आने लगे। 3 साल में ही यश छोटे पर्दे के इतने बड़े एक्टर बन गए कि उसकी गूंज फिल्म इंडस्ट्रीज तक सुनाई देने लगी। फिर आया साल 2007 जब यश को बड़े पर्दे पर भी एंट्री मिल गई। इसी साल उन्होंने कन्नड़ फिल्म जम्बडा हुदगी में बड़े पर्दे पर बतौर सेकेंड लीड डेब्यू किया। अगले ही साल यानी 2008 में कन्नड़ फिल्म मोगीना मानासु में यश को लीड रोल निभाने का मौका भी मिल गया। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। बतौर लीड हीरो यश की पहली ही फिल्म मोगीना मानासु सुपरहिट हो गई। रोमांटिक ड्रामा मोगीना मानासु के लिए यश को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। मोगीना मानासु के बाद यश ने राजधानी, गजकेसरी और मास्टरपीस जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी बेहतरीन अदाकारी के दम पर ज्यादातर फिल्में हिट होती चली गईं। हालांकि जिंदगी में खूबसूरत और शानदार मोड़ तब आया जब साल 2018 में KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई। KGF चैप्टर 1 में उन्होंने रॉकी का किरदार निभाया जो दर्शकों के दिलों में ऐसे उतर गया कि बॉक्स ऑफिस पर बवंडर आ गया। साल 2022 में KGF का सीक्वल KGF चैप्टर 2 आया जिसने पहले चैप्टर से भी ज्यादा तहलका मचा दिया। KGF चैप्टर 1 और 2 वर्ल्ड वाइड करीब 1500 करोड़ का कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। अपने 19 साल के फिल्मी सफर में यश एक दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दे चुके हैं। टॉक्सिक और रामायण जैसी मेगा बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या करिश्मा कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों फिल्मों का रिलीज से पहले जैसा बच क्रिएट हो चुका है इसकी पूरी उम्मीद है कि KGF वाला करिश्मा एक बार फिर दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि यश बचपन से ही अपने एक्टिंग करियर को लेकर जिस तरह से कमिटेड थे वैसे ही अपने शरीके हयात राधिका पंडित को लेकर भी हैं। दोनों की पहली मुलाकात कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल की शूटिंग के दौरान 2007 में हुई थी और पहली मुलाकात में ही आंखें चार हो गईं। उसके बाद यश ने किसी दूसरे विकल्प पर कभी विचार ही नहीं किया। दोनों ने साल 2016 में शादी कर ली। आज यश और राधिका की जोड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सर्वाधिक कमिटेड कपल में शुमार की जाती है।
3: बंदे में है दम में आज आपने अभिनेता यश के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: चलिए आगे बढ़ते हैं, चाइना का रुख कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं चीन में रोशनी के उत्सव की शानदार तस्वीरें। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग के फुलिंग जिले में पहला फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल मनाया गया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए इस दौरान यहां पर जगह जगह 68 ऐसी आकृतियां लगाई गई जिनसे पूरा इलाका जगमग हो उठा। खासतौर से सीढ़ीदार फूलों के खेतों, झील के किनारे और जंगल के रास्तों पर रोशन इन आकृतियों से बेहद शानदार और खूबसूरत नजारा देखने को मिला। ये फेस्टिवल इलाके की खास पहचान और इसके हजारों साल पुराने इतिहास को इस तरह की सजावट के जरिए पेश करता है कि जो भी इसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। इसके बारे में देखिए, खास बात यह भी है कि इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जी हाँ, बल्कि 100 से ज्यादा कारीगरों ने इन्हें पूरी तरीके से हाथ से बनाया है, यानी हैंडमेड है। इन आकृतियों को बनाने में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सिचुआन की अनोखी सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। इस लाइट डिस्प्ले में पत्थर की मछली, अलग अलग दौर के विद्वानों के शिलालेख और पानी से जुड़ी नक्काशी के पैटर्न्स को भी दिखाया गया है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: की नाल के प्रयोग से शनि की अशुभता दूर हो जाती है। घोड़े की नाल आखिर शनि की समस्या कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल के प्रयोग से पूरे घर का शनि कैसे बेहतर हो सकता है? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: इसीलिए
8: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: अंतरिक्ष में इतिहास रचने की आज तीसरी वर्षगांठ, भारत ने 3 साल पहले आज के दिन ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा था यान। इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जश्न में लोगों से जुड़ने की अपील की। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक पूरे विधि विधान से श्रीनगर से पहलगाम रवाना। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा के अंतिम धार्मिक अनुष्ठान शुरू। आज पहलगाम में रात्रि विश्राम के बाद कल चंदनवाड़ी पहुंचेगी पवित्र छड़ी मुबारक। यूपी की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन गिफ्ट। 27 और 28 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान। एक सहयोगी के साथ बिना किराए के कर सकेंगी यात्रा। यूपी की कालीन नगरी भदोही के बुनकरों के लिए गुड न्यूज आई सामने। सरकारी योजना बनी संजीवनी, एक जिला एक उत्पाद योजना से कालीन उद्योग को मिल रही नई रफ्तार। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन, प्रतियोगिता में 1 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज समेत जीते कुल 6 मेडल।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, रक्षाबंधन का सभी भाई बहनों को बेसब्री से इंतजार है और राखी सिर्फ कलाई पर बंधने वाला एक धागा नहीं बल्कि भाई बहन के प्यार, उनके भरोसे और जीवन भर के साथ निभाने के संकल्प का पर्व भी है। पूरे साल बहनों को जिस दिन का इंतजार रहता है वो घड़ी अब बस आने ही वाली है। बाजारों में राखियों की रौनक देखने को मिल रही

घर में 28 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन की कहानी थोड़ी अलग है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल क्योंकि सावन पूर्णिमा के दिन जहाँ एक ओर भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा बंधेगा, वहीं आसमान में एक बड़ी खगोलीय घटना भी घटेगी। जी हाँ, दरअसल 28 अगस्त को ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि रक्षाबंधन पर क्या होगा ग्रहण का असर।

0: इस बार सावन पूर्णिमा पर 5 घंटे 39 मिनट का चंद्र ग्रहण। तो सवाल ये कि क्या इस बार रक्षाबंधन पर मंडराएगा ग्रहण का साया। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट विश्वास, स्नेह और सुरक्षा के संकल्प का वो पावन पर्व जिसका इंतजार हर बहन को पूरे साल रहता है। रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा का बंधन, जिसमें बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा है, जिसे भाई बहन के प्रेम और पवित्र रिश्ते के प्रतीक के रूप में बेहद खास माना जाता है। ये दिन रिश्तों के मिठास और खुशियों की सौगात लेकर आता है, लेकिन इस बार का रक्षाबंधन आम सालों जैसा नहीं है। इस बार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो पूरे 5 घंटे 39 मिनट तक रहेगा।
1: रक्षाबंधन का पर्व एक खास खगोलीय संयोग के साथ आ रहा है। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन है और इसी तारीख को आंशिक चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह सवाल है कि ये ग्रहण रक्षाबंधन के पर्व को प्रभावित करेगा।
0: सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के लिए घर घर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों से पट चुके हैं। बहने भाई की कलाई सजाने के लिए राखी चुनने में लगी हैं। भाई बहनों के लिए उपहार तैयार करने में लगी हैं। सबको इंतजार है 28 अगस्त का, जब शुभ घड़ी में बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधेगी। लेकिन इस बार रक्षाबंधन की पूर्णिमा कुछ अलग है। जिस दिन देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनेगा, उसी दिन आसमान में एक बड़ा खगोलीय संयोग भी बन रहा है।
1: ज्योतिषी दृष्टि से चंद्रमा को मन, भावनाओं और संवेदनाओं और पारिवारिक संबंधों से जोड़ा जाता है, और रक्षाबंधन भी भाई बहन के प्रेम और भावनात्मक रिश्ते का एक पर्व है, इसलिए दोनों का एक ही दिन होना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संयोग है।
0: 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी एक तरफ कलाई पर राखी का धागा तो दूसरी तरफ आसमान में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया। इसी संयोग ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में कोई बदलाव होगा? क्या ग्रहण के साए में राखी बांधना शुभ होगा? क्या ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में दिखाई देगा रक्षाबंधन वाला चंद्र ग्रहण? क्योंकि पंचांग में ग्रहण का समय सुबह से दोपहर तक बताया जा रहा है और इसी दौरान रक्षाबंधन की पूर्णिमा भी रहेगी, तो क्या सचमुच राखी के शुभ पर्व पर ग्रहण का साया पड़ने वाला है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो यहाँ सूतक काल मान्य होगा। अगर सूतक मान्य नहीं होगा तो राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा? अगर ग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण चरण उसी वक्त होगा जब भारत में बहनें राखी बांध रही होंगी, तो फिर आखिर दोनों घटनाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले समझना होगा कि इस साल रक्षाबंधन की पूर्णिमा कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 तक रहेगी। इसी वजह से उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व

0: शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। यानी 28 अगस्त की सुबह एक बेहद खास समय होगा, पूर्णिमा भी रहेगी, राखी का त्योहार भी होगा और उसी दौरान चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी चल रही होगी। 28 अगस्त को राखी बांधने का समय सुबह 5:58 से 9:48 तक बताया गया है। वहीं 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने की स्थिति बन रही है। ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू होकर दोपहर 12:30 खत्म होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू हो जाएगा तो बहनों के पास राखी बांधने के लिए कितना समय बचेगा। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन जैसे पवित्र विधान को लेकर श्रद्धालुओं के मन में कई तरह की शंकाएं हैं जिनका समाधान जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: 28 अगस्त 2026, सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन और आसमान में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी। एक तरफ भाई की कलाई पर सजने वाला प्रेम और विश्वास का धागा, तो दूसरी तरफ चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया। यानी इस बार की पूर्णिमा से भाई बहन के पवित्र रिश्ते की वजह से खास नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाला ये खगोलीय संयोग भी इसे काफी ज्यादा खास बना रहा है। देखिए, इस बीच सवाल ये है कि क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, भारत में विजिबल होगा? क्या रक्षाबंधन के दिन ग्रहण का सूतक काल भी लगेगा? रक्षाबंधन पर ग्रहण की पूरी उलझन का जवाब जानना भी जरूरी है।

0: 28 अगस्त 2026। एक तरफ सावन की पूर्णिमा, एक तरफ भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन, और इसी दिन आसमान में होने जा रही है साल की आखिरी चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना। यानी इस बार की पूर्णिमा सिर्फ राखी के त्योहार के लिए ही खास नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाले एक बड़े खगोलीय संयोग की वजह से भी चर्चा में है। 28 अगस्त को लगने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़ी सबसे अहम और राहत देने वाली बात ये है कि ये ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देख सकेंगे।
1: वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति के कारण होने वाली एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के प्रभावों का आंकलन ग्रहों की स्थिति, राशि और नक्षत्र आदि के आधार पर किया जाता है। दुनिया के जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहां लोग इसका प्रत्यक्ष खगोलीय अनुभव कर पाएंगे।
0: अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। यानी एक ही समय में दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग आसमान में ग्रहण देख रहे होंगे, जबकि भारत में उसी दौरान रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। सवाल ये कि जब भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो क्या इसका सूतक काल यहाँ मान्य होगा, क्योंकि आम तौर पर ग्रहण का नाम आते ही सूतक की चर्चा शुरू हो जाती है।
1: यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसे लेकर वही ग्रहण संबंधी धार्मिक प्रभाव नहीं माने जाएंगे जो किसी दिखाई देने वाले ग्रहण के समय माने जाते हैं। ऐसे में केवल ये संयोग को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन का मूल भाव प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का है, इसलिए इस दिन रिश्तों को मजबूत करना और सकारात्मक भाव रखने पर ध्यान देना चाहिए। रक्षाबंधन के सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं मानी जाएगी।
0: धार्मिक मान्यताओं और वैदिक ज्योतिष में ग्रहण के सूतक काल की गणना लोकल विजिबिलिटी यानी स्थानीय दृश्यता से तय होती है। शास्त्रों में कहा गया है यस्य दृश्यम तस्य फलम, मतलब ग्रहण जहां आंखों से दिखाई देता है सूतक काल, धार्मिक निषेध और उसके अशुभ प्रभाव केवल वही मान्य होते हैं। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिर के कपाट बंद करने, भोजन वर्जित रखने या शुभ कार्यों को रोकने जैसे नियम भी लागू नहीं होंगे।
1: इस बार सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर है कि अगर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है तो क्या रक्षाबंधन से पहले भारत में सूतक काल लग जाएगा। सामान्य भारतीय धार्मिक पंचांग परंपरा के अनुसार भारत में इस चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रक्षाबंधन के दिन केवल ग्रहण के नाम पर पूजा पाठ रोकने, मंदिर बंद करने या सामान्य धार्मिक गतिविधियों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
0: मतलब साफ है, भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा इसलिए रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया नहीं माना जाएगा। बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, राखी की थाली सज सकती है, रोली और अक्षत से भाई का तिलक हो सकता है, आरती उतारी जा सकती है, मिठाई खिलाई जा सकती है और भाई बहन एक दूसरे को उपहार देकर इस रिश्ते की मिठास को और बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: राखी की तारीख तय है, 28 अगस्त को पड़ रही है, ग्रहण को लेकर तस्वीर भी साफ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल देखिए इस बीच ये है कि 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा है, यानी मुहूर्त जो लोग पूछते हैं अक्सर किस मुहूर्त पर राखी बांधनी चाहिए वो कौन सा है, जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। अगर सुबह राखी नहीं बांध पाए तो दिन में, शाम को और रात के समय कौन से शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है, आइए चलिए आपको ये भी बता देते हैं।

0: चंद्र ग्रहण को लेकर तस्वीर साफ होने के बाद अब बारी है उस सवाल की जिसका इंतजार हर भाई और बहन को है। आखिर 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा? इस बार रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण का संयोग जरूर बना है, लेकिन भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ऐसे में ग्रहण का सूतक मान्य नहीं माना जा रहा है।
1: ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए ग्रहण को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर संवेदनशील समय माना जाता है। ऐसे में अनावश्यक डर, तनाव, गुस्सा या किसी रिश्ते में गलतफहमी बढ़ने से बचना चाहिए। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रक्षाबंधन का ये पर्व नकारात्मक हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के कारण रक्षाबंधन प्रेम, सुरक्षा, विश्वास और पारिवारिक जुड़ाव का पर्व है, इसलिए इस दिन भाई बहन के बीच प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है।
0: रक्षाबंधन पर सिर्फ ग्रहण ही नहीं, भद्रा को लेकर भी विशेष सावधानी बरती जाती है। हिंदू पंचांग में भद्रा को ऐसे समय के रूप में देखा जाता है जिसमें मांगलिक और शुभ कार्य करने से बचने की परंपरा रही है। इस बार 27 अगस्त को भद्रा का प्रभाव सुबह 9:08 से रात 9:32 तक रहेगा, यानी 27 अगस्त की रात तक भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए किसी भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। यही वजह है कि बहनें 28 अगस्त को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मना सकती हैं। अब बात करते हैं राखी बांधने के सबसे शुभ समय की। 28 अगस्त की सुबह 6:23 से 9:48 तक का समय राखी बांधने के लिए सबसे शुभ बताया गया है।
2: सूर्योदय से लेकर 9:48 तक पूर्णमासी का समापन होने तक पूर्णतया सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त है। इस बीच में रक्षा सूत्र अपनी भाई को बांध सकती है बहन,
0: यानी सुबह का ये समय भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बेहद खास रहेगा। इस दौरान बहनें पूजा की थाली सजाकर भाई को तिलक लगा सकती हैं, आरती कर सकती हैं, मिठाई खिला सकती हैं और इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। अगर किसी वजह से सुबह के मुहूर्त में राखी नहीं बांधी जा सकी तो दिन में भी दूसरे शुभ मुहूर्त मौजूद हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:05 तक रहेगा। अगर सुबह और दोपहर में राखी बांधना संभव नहीं है तो शाम को भी शुभ समय उपलब्ध रहेगा। शाम के समय गोधूली मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:57 से 7:19 तक रहेगा। इस दिन चौघड़िया के अनुसार शुभ, लाभ और अमृत वेला में राखी बांधी जा सकती है। चौघड़िया के हिसाब से देख लें तो दिन में कई अच्छे समय मिल रहे हैं। लाभ चौघड़िया सुबह 7:57 से 9:31 तक रहेगा। इसके बाद अमृत चौघड़िया सुबह 9:31 से 11:05 तक रहेगा। दोपहर में शुभ चौघड़िया 12:40 से 2:14 तक रहेगा। शाम को चर चौघड़िया 5:22 से 6:57 तक रहेगा। रात में लाभ चौघड़िया 9:48 से 11:14 तक रहेगा।
3: सबसे जरूरी है कि अपने घर में जो आपके ठाकुर जी हैं, आप उनको पहले रक्षा सूत्र बांधें, भगवान से आज्ञा लेकर के तब अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें, क्योंकि हमारे इस घर में जो ईश्वर विराजमान है उसका प्रसाद स्वरूप लेकर के राखी हम बांधेंगे। और जिस कामना से हम रक्षाबंधन करने जा रहे हैं, बहनें रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, वह उनकी कामना फलीभूत होगी और उनका भाई आयुष्यमान होगा, दीर्घायुष्य होगा। यह मंगल कामना के साथ इस त्यौहार को हम बनाएंगे।
0: रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, ये पर्व भावनाओं, विश्वास और आत्मिक रक्षा के उस पवित्र धागे का नाम है जो काल और परिस्थितियों से परे है। शास्त्रों में विधान है कि जिन बहनों के सगे भाई नहीं है वो जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं।
2: सामान्यतया ये माना जाता है कि अगर अपना सगा भाई ना हो तो अपने चचेरे भाई आदि, ममेरे भाई आदि को बांधते, पर अगर किसी प्रकार के मन में कामना नहीं है तो गणेश जी को अपना भाई बनाने का विधान है। या भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधने पर वो भाई के समान आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये माना जाता है।
0: पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में रक्षाबंधन का विशेष महत्व बताया गया है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से सबसे भावुक कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया तो युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि समय आने पर वो आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे, और द्रौपदी के चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने इस वचन को निभाया।
2: तीसरी कथा एक और आती है जो कि हमने भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का अभय वर देने का था। इस प्रकार से हम मानते हैं ये केवल भाई बहनों का ही त्योहार नहीं, ये रक्षा सूत्र है। पुरोहित अपने जजमानों को बांधते हैं उनकी मंगल कामना के लिए, और वर्ष पर्यंत उनकी सुरक्षा, आयु, धन संपत्ति आदि की सुरक्षा होती रहे।
0: इसीलिए रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधा धागा नहीं है, ये विश्वास का बंधन है। एक बहन जब राखी बांधती है तो वो सिर्फ भाई की कलाई नहीं बांधती, वो अपने विश्वास को बांधती है। और भाई जब उस राखी को स्वीकार करता है तो वो सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि बहन की रक्षा, सम्मान और साथ निभाने का संकल्प स्वीकार करता है। रक्षाबंधन का त्योहार संदेश देता है कि रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं रिश्तों की भी होती है, साथ सिर्फ सुख में नहीं संकट में भी होता है, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त आने पर एक एक वचन का कर्ज चुका देते हैं। यही वजह है कि सदियों बाद भी कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता याद दिलाता है कि राखी का धागा छोटा जरूर होता है लेकिन उसमें बंधा विश्वास बहुत बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेएनटी के साथ। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या के श्री राम मंदिर में अद्भुत अलौकिक आयोजन हो रहा है। यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला अपने भव्य भवन में दिव्य झूलनोत्सव मना रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रामलला के दरबार में और दिखाते हैं झूलनोत्सव की शानदार छटा।

0: लगता है जैसे अयोध्या में त्रेता युग जीवंत हो उठा है। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला झूलनोत्सव मना रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, गर्भगृह में विशेष रूप से तैयार किए गए सोने चांदी के भव्य झूले पर रामलला विराजमान है। झूलनोत्सव के लिए प्रभु को विशेष रेशमी और जरी के वस्त्र पहनाए गए हैं। भजन कीर्तन के बीच यहाँ का माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से यहाँ पर सावन का ये उत्सव त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब पूरी अयोध्या आनंद में डूबी रहती थी। श्री राम मंदिर परिसर में रामलला का ऐतिहासिक झूलनोत्सव इस बार 15 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू हुआ। संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में भगवान श्री राम की उत्सव मूर्ति को भाइयों के साथ विधि विधान पूर्वक झूले पर विराजमान कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये उत्सव रामलला के प्रति भक्ति की भावना से प्रेरित है। सावन की उमस और गर्मी से राहत देने के लिए भक्त भगवान को फूलों और चंदन से सजे ठंडे झूले पर बिठाकर धीरे धीरे झूला झुलाते हैं ताकि उन्हें सुख मिल सके। आराध्य को छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं और हिंडोले पर बिठाकर पंखा चलते हुए उन्हें झूला झुलाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से झूला उत्सव का खास वीडियो जारी किया गया है। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरमियान यहां मंदिर परिसर में संत महात्माओं की मौजूदगी में लगातार धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जो अयोध्या की इस युगों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को और भव्यता प्रदान कर रहे हैं। खास बात यह है कि 12 दिनों के झूलनोत्सव के दौरान हर दिन शाम को रामलला को पालकी में बिठाकर कुबेर टीला ले जाया जाता है और वहाँ उनके दर्शन की विशेष व्यवस्था रहती है। केवल राम जन्मभूमि ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या इस समय उत्सव के रंग में सराबोर है। सरयू के तट से लेकर कनक भवन तक और तमाम मंदिरों में भी हर तरफ इन दिनों उत्सव का माहौल है। सावन शुक्ल तृतीया से शुरू हुआ ये झूलनोत्सव पूर्णिमा तक इसी तरह पूरी भव्यता के साथ जारी रहेगा। अयोध्या से मैं शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी है। यात्रा के दौरान पवित्र छड़ी की चंदन वाड़ी शेषनाग और पंचतरणी में विश्राम होगा। रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी।
2: ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और वादियों में गूंजता महादेव का जयकार। साधु संतों की टोली आगे पड़ रही है तो श्रद्धालु बाबा के दरबार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हवा में भक्ति की महक है, आंखों में दर्शन की उम्मीद है और दिल में सिर्फ एक नाम, जय शिव शंकर। कश्मीर की धरती पर इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा है। श्रीनगर से लेकर पहलगाम और पुंछ तक शिव भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक अपने सफर पर निकल चुकी है। चारों तरफ प्रभु के जयकारे और भक्ति की अनोखी चमक दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर की वादियां इन दिनों सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि शिव भक्ति परंपरा और श्रद्धा के संगम के लिए भी खास बन गई है। श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद छड़ी मुबारक को पहलगाम के लिए रवाना किया गया। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाग और 26-27 अगस्त को पंचतरणी में पड़ाव होगा। इसके बाद 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा।
3: जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और 28 तारीख प्रातःकाल, जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, तो वहां पर छड़ी मुबारक को वहां स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा।
2: अमरनाथ गुफा में विधि विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बीच छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद छड़ी मुबारक पंचतरणी लौटेगी और 29 अगस्त को वापसी का सफर शुरू होगा। शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए 30 अगस्त को पहलगाम पहुंचने के बाद पूजा और विसर्जन के साथ इस धार्मिक परंपरा का समापन होगा।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
6: की नाल के प्रयोग से शनि की अशुभता दूर हो जाती है। घोड़े की नाल आखिर शनि की समस्या कैसे दूर कर पाती है? घोड़े की नाल के प्रयोग से पूरे घर का शनि कैसे बेहतर हो सकता है? क्या है घोड़े की नाल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना